एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। आज शनिवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 20वीं तिथि। तदनुसार दिनांक 11 जुलाई सन 2026 है। स्टूडियो घड़ी में सवेरे के 5:59 होने को हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा अब आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभाग है। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच मुक्त व्यापार समझौते सहित वाणिज्य और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत जारी है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और प्रमुख उद्योग तथा खेल जगत की हस्तियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया की यात्रा पूरी करने के बाद न्यूजीलैंड पहुंचे। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। भारतीय समुदाय ने भी उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी की दो दिवसीय यात्रा के स्वागत में ऑकलैंड के प्रसिद्ध स्काई टॉवर को भारतीय तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये न्यूजीलैंड की 40 साल बाद पहली यात्रा है। न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में भारत की राजदूत मुआनपोई साइवई ने आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में बताया कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते से कई क्षेत्रों को लाभ होगा।
2: फ्री ट्रेड अग्रीमेंट इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी।
3: मुक्त व्यापार समझौता भारत और न्यूजीलैंड के लिए साथ मिलकर काम करने का एक बड़ा अवसर है। न्यूजीलैंड बागवानी, डेयरी और कृषि जैसे प्राथमिक उद्योगों में बेहद मजबूत है, जबकि भारत के पास कुशल मानव संसाधन और विशाल कार्यबल है। साथ ही न्यूजीलैंड से निवेश की भी अच्छी संभावना है। यदि दोनों देश मिलकर साझेदारी करें और नवाचार को आगे बढ़ाएं तो इससे दोनों देशों को लाभ होगा और हम अपने उत्पादों व समाधानों को वैश्विक बाजारों तक भी पहुंचा सकेंगे।
2: एंड देन वी कैन सेल टू फर्दर मार्केट्स एज वेल।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज बिहार के गया जी का दौरा करेंगे। इस दौरान उपराष्ट्रपति बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। स्वदेशी स्टील द फिगरेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना भारत की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक व्यापार समुद्री मार्गों से होता है, इसीलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और एल मुरुगन ने संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों की समीक्षा की। ये सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक चलेगा। श्री मेघवाल ने बताया कि आगामी सत्र के लिए निर्धारित विधायी कार्यों की समीक्षा की गई और आवश्यक निर्देश जारी किए गए। रेलवे ने उत्तरी रेल के 680 किलोमीटर मार्गों पर स्वदेशी रेल सुरक्षा प्रणाली कवच के कार्यान्वयन के लिए 206 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य सुरक्षा और परिचालन दक्षता में सुधार करना है। इस बीच रेलवे ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में 250 इलेक्ट्रिक इंजन के लिए अतिरिक्त प्राथमिक रखरखाव केंद्र बनाने के लिए 175 करोड़ रुपए मंजूर किए। प्राथमिक केंद्र में इंजन की सुरक्षा जांच, मरम्मत और देखभाल की जाती है। भाजपा ने बिहार के बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए नीरज कुमार सिन्हा को उम्मीदवार घोषित किया है। पार्टी ने मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव के लिए आशुतोष तिवारी को मैदान में उतारा है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मंजलपुर विधानसभा सीटों पर मतदान 30 जुलाई को होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल मस्कत में ओमान के विदेश मंत्री बदर बिन अहमद अल मुसैदी से मुलाकात में दोनों देशों के बीच सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि चर्चा व्यापार, निवेश, संपर्क, समुद्री सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, रक्षा और साइबर तथा AI क्षेत्रों पर केंद्रित रही। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा सिक्किम में मूसलाधार और कुछ स्थानों पर अत्यधिक बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खेलों में फीफा विश्व कप में स्पेन ने बेल्जियम

0: को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। आज तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। विंबलडन टेनिस में आज महिला सिंगल्स फाइनल में चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा का मुकाबला लिंडा नोस्कोवा से होगा। दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम।

चिंतन। स्वामी विवेकानंद का कथन है, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार मनुष्य द्वारा चुना गया हर मार्ग, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। भक्ति संगीत।

हम विविध भारती से बोल रहे हैं। झरोखा सुनिए विविध भारती से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। श्री रामचरितमानस गान का 246वां भाग आप सुनेंगे अब से बस कुछ ही देर बाद सुबह 6:35 पर। सुबह 6:45 और शाम 6:45 पर संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों चल रही है श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आज 11वीं कड़ी, कलाकार हैं बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार। प्रस्तुति अनुश्री पाठक।

सुबह 7 बजे भूले बिसरे गीत कार्यक्रम 7:30 पर हम हैं राही प्यार के, 8:15 पर त्रिवेणी, 8:30 पर चित्रलोक, सुबह 9:30 और शाम 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम। हास्य अभिनेत्री और गायिका उमा देवी पर ये कार्यक्रम केंद्रित है। सुबह 10 बजे गीतों भरी कहानी, आज की कहानी है वो पुरानी बेंच, लेखिका है सौम्या शर्मा, प्रस्तुति राघवेंद्र सिंह नेगी। 11 बजे चित्रपट संगीत कार्यक्रम होगा, 11:30 पर मैटिनी शो, 12:05 पर सुनिए यादों की महफिल, दिन में 1 बजे सुरीला सफर, दिन में 2 बजे त्रिवेणी, दो 2:30 पर सदाबहार नगमे, दिन में 3 बजे मनचाहे गीत कार्यक्रम होगा, 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत आप सुनेंगे नाटक रहीम की ढाणी, लेखक हैं हरी राम आचार्य और निर्देशक महेंद्र मोदी।

0: शाम 4 बजे पिटारा में बॉम्बे टॉकीज के अंतर्गत लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग सुनवाया जाएगा, प्रस्तुति अनुश्री पाठक। शाम 5 बजे छाया गीत 5:30 पर तराने नए पुराने। 6:35 पर संध्या रंजन कार्यक्रम होगा। 6:45 पर संगीत सरिता में श्रृंखला चल रही है, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, 11वीं कड़ी आज। शाम 7 बजे अभिनेता प्राण द्वारा प्रस्तुत विशेष जयमाला कार्यक्रम सुनवाया जाएगा। 7:45 पर इंद्रधनुष के अंतर्गत जिज्ञासा। रात 8 बजे हवा महल में सुनो कहानी श्रृंखला के अंतर्गत कहानी विश्वास का दूसरा भाग, वाचक स्वर अमरकांत दुबे। 8:15 पर चित्रलोक, 9 बजे आपके लिए। 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम केंद्रित होगा हास्य अभिनेत्री और गायिका उमा देवी पर। 10 बजे छायागी, 10:30 पर ढलती जाए रात। 10:30 रूपरेखा आज दिन भर के कार्यक्रमों की, सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन। हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद

0: पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
1: और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: सुनिए,
4: हम विविध भारती से बोल रहे हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस कहानी भाग 246।

मुनि अगस्त्य के एक परम ज्ञानी शिष्य थे सुतीक्ष्ण, जिनकी श्री राम चरणों में अथोर प्रीति थी। वन में विचरण करते हुए जब उन्होंने अपने आराध्य के आगमन का समाचार सुना तो प्रेम और भक्ति भरे पुलक से उनका शरीर कंटकित हो गया। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वे प्रभु के दर्शन पाएंगे। प्रेम में मग्न सुतीक्ष्ण प्रभु का गुणगान करते राह में नाचने गाने लगे। उनके पग आगे पड़ते हैं या पीछे, इसकी भी सुधि नहीं रही। श्री राम एक पेड़ की आड़ लेकर उनकी उन्मत्त दशा देख रहे थे। भक्तों का उद्धार प्रभु की बान है। वे सुतीक्ष्ण के हृदय में प्रकट हुए। मुनि प्रेमोन्मत्त होकर बीच राह में अचल समाधि सी स्थिति में स्थिर बैठ गए। अपने आराध्य के निकट आ जाने के बाद भी जब उनका ध्यान नहीं टूटा तो प्रभु ने उनके हृदय में अपना राजसी रूप छोड़ चतुर्भुज रूप प्रकट किया, और उस रूप के अंतर ध्यान होते ही सुतीक्ष्ण को श्री राम, लक्ष्मण और सीता के प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुए। वे दंड की भांति श्री राम के चरणों में गिरे ही थे कि प्रभु ने उठाकर उन्हें हृदय से लगा लिया।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी।
1: श्रोताओं नमस्कार। पंडित जी, आज हमारे श्रोताओं को बताइए कि पंडित जगन्नाथ पहाड़ी आपके गुरु जी थे, उनके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। और हमें याद आ रहा है कि पंडित छन्नूलाल मिश्र से भी आपकी बड़ी गहरी मित्रता थी और बहुत कुछ उन्हें आप गाते हुए सुनते थे।
2: उनको मैं चाचा कहता था और वो इतना प्यार करते थे कि बनारस में जब मैं बजा रहा था कला प्रकाश के लिए तो उनका फेवरेट राग हंस ध्वनि था
1: जी।
2: और हंस ध्वनि मैं उस दिन बजा रहा था तो मेन राग हंस ध्वनि कोई बजाना नहीं चाहते क्योंकि उसमें कॉम्बिनेशन कम है ना
1: जी, जी।
2: वो 10 मिनट बाद तो कलेजे के ऊपर आने लगता है राग
1: जी।
2: तो मैंने 1 घंटा बजा दिया, 1 घंटे से ज्यादा। तबले में उनके पुत्री थे पंडित राम कुमार मिश्रा, और आके लिपट लिए मुझे, बोले कहा बजौला तू हंस ध्वनि, हमके चाचा ये तो के सुनावत रहली। तो बहुत प्रसन्न हुए। तो एक चीज उनका मैं बजाता हूँ, और रामायण भी बहुत अच्छा गाते। तो मेरी जो आध्यात्मिक जीवन है उस वजह से हम लोग कभी कभी छन्नू महाराज और हम एक होटल में रहते थे तो बड़ा आध्यात्मिक चर्चा करते थे। वो बोलते थे कथा प्रवचन क्यों छोड़ दिया तूने।
1: यहाँ पर अपने श्रोताओं को हम बता दें कि पंडित रोनू मजुमदार पहले एक कथावाचक थे और अभी भी इनके सामने ना कोई कागज है ना कलम है, ये ऐसे स्पॉन्टेनियस बोल रहे हैं बिना किसी तैयारी,
2: बिना कुछ किसी चीज की मुझे जरूरत नहीं। तो मैं छन्नू महाराज जी को एक उनकी चीज है जिसमें खोलो श्याम अब चंदन केवड़िया, अकेली डर लागेला धीरे धीरे, सावन झर लागेला धीरे धीरे
1: जी जी।
2: तो ये बजा के जो बोलते हैं लोग कि आपके बजाने में कुछ आध्यात्मिक रस आ रहा है, वो पंडित जगन्नाथ पहाड़ी जी का देन
1: जी,
2: है
1: जी। तो तनी पंडित जी, पंडित छन्नूलाल मिश्र वाला सुनावे बांसुरी पर आप।
2: हाँ

0: वाह अद्भुत।
1: उसके पहले जगन्नाथ पहाड़ी जी की आपने बात कही तो पंडित जगन्नाथ पहाड़ी बहुत बड़े कथावाचक हुए, 20,000 लोग। जब मैं उल्लासनगर बनारस से आने के बाद पहले उल्लासनगर में झूलेलाल मंदिर में वो आते थे, उनकी एक लाइन सुना रहा हूँ कि धुनी उसके दर पे तू रमा ले, वो तुम पे रीझ जाएगा, उसके दर को अपना घर बना ले, वो तुझ पे रीझ जाएगा, वो दिल पसीज जाएगा। मेरे भगवान को मगरूर नहीं भाती है, उसे तो भावना की डोर खींच लाती है, पुकार दिल से निकले वो अर्श हिलाती है, जाके भगवान के दहलीज से टकराती है। तो ऐसे कवि हुए कि जिसका जवाब ही नहीं
0: जी। और कविता का गुण आप में भी आया है
1: जी, उनसे इंस्पायर होके मैंने लिखा, उन्हीं की कृपा, ये समझिए जनेऊ संस्कार होता है हमारे हिंदुओं में। बाल योगी जी ने मेरा जनेऊ किया था हरिद्वार में जब मैं 13 साल का था
0: जी।
1: तो मैं उनके साथ संन्यास लेके जाने के लिए तैयार हो गया था। तो फिर उन्होंने मेरे कपाल को देख के कहा कि हिंदुस्तान पाकिस्तान पार्टीशन जब हुआ तो सब कुछ हमारा लूट गया, तो वो सब वापस आएगा तुम्हारे नसीब से ही, तुम गृहस्थ आश्रम में रह के बांसुरी की सेवा करो
0: जी।
1: क्योंकि तुम पूर्ण कथावाचक नहीं हो, तुम थोड़ी कुछ कथा करते हो फिर बीच में बांसुरी बजाते हो, ये नई चीज है, ये तुम्हें जीवन में काम आएगा। तो उससे मैं इंस्पायर होकर मैंने लिखा, चाहे ऊंचे महल बना लो मालाओं से कंठ सजा लो, चाहे ऊंचे महल बना लो मालाओं से कंठ सजा लो, जब तक हृदय न तिलक करेगा ये अभिनंदन व्यर्थ रहेगा।
0: वाह।
1: ये मैंने नरेंद्र मोदी जी को भी सुनाया जब मुझे पद्मश्री मिला तो अलग से वो आए फोटो खिंचाने के लिए मेरे पास।
0: क्या बात है।
1: अरे कैसे हैं मजुमदार जी, अब कब मिले थे जब वो उनके ऊपर लगा था कि वो इंटॉलरेंस और वो सब, तब से लेके ये कब मिले, और ये पद्मश्री तो मुझे 2024 में 26 जनवरी को अनाउंस हुआ कि इनको पद्मश्री दिया जाएगा रोनू मजुमदार जी को, मगर मिला तो मुझे 25 में ना जिस दिन अवार्ड वितरण करते हैं, मगर उनको याद था कि मैं कविता करता हूँ।
0: क्या बात है,
1: कविताएं लिखना चालू है ना
0: जी। अच्छा
1: हाँ जी।
0: हाँ हाँ।
1: मजुमदार जी और क्या हाल है आपका,
0: क्या बात
1: तो
0: है?
1: मैं आज भी लिखता हूँ, ये मेरा लिखा हुआ है
0: जी।
1: अजहू न आए घनश्याम, राह तकत हारे नैन हमारे
0: जी।

0: आज भी कितनी बंदिशें मैंने कोरोना काल में लिखे होंगे कि पूरी ग्रंथ भर गई।
1: क्या बात है।
0: जो मेरा बड़ा बेटा कह रहा है कि पिताजी छपवाइए इसको, पिताजी की बंदिशें।
1: हाँ, हमारी ओर से।
0: मैंने कहा कि मैं क्या साथ में ले जाऊंगा बेटा। बोले आप साथ में कुछ लेके नहीं जा सकते, इसीलिए दे के जाइए।
1: बिल्कुल सही बात।
0: उससे मैं जीत नहीं पाता हूँ। मेरा जो बड़ा बेटा है वो बहुत मेरा फैन सबसे बड़ा वो है।
1: संगीत के क्षेत्र में है वो भी।
0: वो डेंटिस्ट है मगर बांसुरी बहुत अच्छा बजाता है।
1: अच्छा।
0: उसने इसको अपना प्रोफेशन, अपना व्यवसाय नहीं बनाया मगर वो प्लेइंग में कम नहीं है।
1: जी,
0: छोटे बेटे ने बनाया, ऋषिकेश ने।
1: जी जी। रोनुदा, आप एक साधक के रूप में भी जाने जाते हैं, बांसुरी को आपने साध लिया है, तो जब एक साधक अध्यात्म की ओर जाता है तो क्या होता है?
0: ओशो रजनीश के वहां भी मैंने बजाया और वो बोले कि आज तुमने बहुत अच्छा बजाया।
1: जी।
0: तो मैंने जवाब दिया मैं अपने लिए बजा रहा था। बोले क्यों? मैंने कहा क्योंकि आप पैसे तो देते नहीं है तो मैं अपने लिए क्यों ना बजाऊं। बोले कि जब पैसे मिले तब भी अपने लिए बजाना। जब अध्यात्म मालूम पड़ने लगता है तब इंसान अपने लिए बजाने लगता है। इसीलिए राजन भैया को मैं इतना मानता हूं। जब राजन भैया गए तो मैं इस तरह रोया कि जैसे बच्चे फूट फूट के रोते हैं। वो कहते थे कि जब तुम ईश्वर के लिए बजाओगे तो सब सुनेंगे, जब तुम उनके लिए बजाओगे तो वो सुनेंगे नहीं।
1: जी।
0: इसीलिए ईश्वर तो अंदर है, तो इसीलिए खुद के लिए बजाओ।
1: जी।
0: हर चीज में ऐसा सोचो कि तुम छात्र हो, सब्जेक्ट से प्यार करो, सक्सेस से नहीं।
1: जी जी।
0: आजकल जो शिष्य आते हैं मेरे पास वो पहले बोलते हैं कि YouTube में मेरे लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं। अरे मैंने कहा YouTube में लाइक्स बढ़ भी जाएंगे तो तेरा बजाना थोड़ा ही अच्छा होगा, वो तो पैसे से भी तू लाइक्स खरीदा जाता है आजकल। ये नहीं पूछ रहा है तू कि मिराज़े गजल में आपने ऐसी फ्लूट कैसे बजाई थी।
1: जी जी।
0: ये क्यों नहीं पूछ रहा है?
1: बिल्कुल।
0: सलोना सा सजन और मैं हूँ, ये कैसे उसमें फ्लूट आया? कहाँ आशा जी गुलामली मिलके कर रहे हैं काम और मैं उसमें बांसुरी बजा रहा हूँ। तू ये क्यों नहीं पूछ रहा है कि जमीन आसमान में वो आपका आलाप गुरुजी वो रे को सा करके क्यों बजाया आपने? ओरिजिनल सा में क्यों नहीं बजाया?
1: जी, तो हम तो आपसे अनुरोध कर रहे हैं पंडित जी की बजा के सुनाए हमारे श्रोताओं को।
0: देखिए मैं आपको ओरिजिनल सा से भी सुनाता हूँ, आपको आनंद नहीं आएगा।

0: ऐसे करके लुई बैंक्स घुसते हैं, मेरी बांसुरी खत्म होती है। तो मैं चाहता हूं कि जो संगीत में बांसुरी लेना चाहते हैं, अगर उसको फुल टाइम लेना है तो सक्सेस के बारे में इतना ना सोचें,
1: जी जी
0: सब्जेक्ट के बारे में सोचें। मैं कितने प्रकार के विश्व के बांसुरी ट्राई करो। अभी स्पीक मैके ने मुझे आयरलैंड भेजा था,
1: जी जी,
0: आयरिश फ्लूट मुझे गिफ्ट किया उन लोगों ने।
1: क्या बात है,
0: वो ऐसी बांसुरी है कि आप देखेंगे, आज नहीं है मेरे पास, नहीं तो मैं आयरिश बांसुरी आपको, पूरा ब्लैक है,
1: जी जी,
0: तो आज भी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ,
1: जी जी,
0: कि कुछ ना कुछ मुझे मिलता जाए।
1: जी, अब आज की इस कड़ी को यहाँ पर विराम दे रहे हैं, कल नई जानकारी और बांसुरी की तान के साथ उपस्थित होंगे फिर से। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।
2: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 11वीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

श्रोताओं, अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रम सुन रहे थे, जिन्हें हम हमारे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7 बजे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपके रेडियो दोस्त का नमस्कार। श्रोताओं, एक बार फिर हम हर रोज की तरह हाजिर हैं आपके दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम में। आगाज करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम का सुविचार के साथ।

जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है।

श्रोतों, कार्यक्रम में आइए बात करते हैं ग्रामीण सेवा शिविर के बारे में। ग्रामीण सेवा शिविर ग्रामीणों तक सरकारी सेवाएं और योजनाओं को आसान पहुंच के लिए आयोजित किए जाते हैं, ताकि उन्हें शहर जाकर सरकारी दफ्तरों में इंतजार न करना पड़े, परेशानी का सामना न करना पड़े। इन शिविरों का मुख्य उद्देश्य है सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों को सीधे ग्रामीणों तक पहुंचाना। यह पहल ग्रामीणों को घर बैठे सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करती है, और साथ ही प्रशासन का संपर्क ग्रामीण जनता के लिए आसान बनाती है। इन शिविर में सप्ताह के कई दिन शामिल किए जाते हैं और सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक, और कहीं कहीं रात्रि चौपालों के माध्यम से भी ये शिविर आयोजित किए जाते हैं। प्रत्येक दिन पंचायत समितियों के विभिन्न ग्राम पंचायतों में ये शिविर लगाए जाते हैं। जिला स्तर पर अभियान की तैयारी, क्रियान्वयन, निगरानी और समीक्षा की संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन के अधीन होती है। शिविर में विभिन्न ग्रामीण विकास और सरकारी विभाग भाग लेते हैं, जैसे स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, बागवानी, सामाजिक कल्याण और अन्य आवश्यक सेवाएं इनमें शामिल है। ग्रामीण अपनी पहचान, आवेदन फॉर्म, योजनाओं के लिए आवश्यक दस्तावेज लेकर सीधे इन विभागों से सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। और इन शिविरों की सबसे खास बात और अहम बात यह है कि सारे विभाग एक ही जगह मौजूद रहते हैं, जिससे सारे ही काम उसी समय निपट जाते हैं, और ग्रामीण भाइयों को अपने काम के लिए शहर जाकर सरकारी दफ्तरों में लंबी कतारों के माध्यम से परेशान नहीं होना पड़ता। सरकारी स्कीमों का सीधा लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में ही मिल जाता है, और इसके माध्यम से प्रशासन और ग्रामीण समुदायों के बीच सीधी बातचीत होती है और मैक्सिमम सहयोग ग्रामीणों को प्राप्त होता है। राजस्थान सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर ग्रामीण सेवा शिविरों की पूरी सूची, तिथि, स्थान, नोडल अधिकारी आदि सभी की जानकारी आप वहां से सीधे प्राप्त कर सकते हैं। और ग्रामीण सेवा शिविर ग्रामीणों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो सरकारी प्रयासों को स्थानीय स्तर पर बहुत अधिक प्रभावी और पहुँच योग्य बनाती है। श्रोताओं, कार्यक्रम में अब हम बात करते हैं भीष्म साहनी की पुण्यतिथि। 11 जुलाई सन 2003 में इनका निधन हुआ था। भीष्म साहनी का जन्म 8 अगस्त 1915 को रावलपिंडी में हुआ, और ये आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। इन्हें विशेष रूप से उपन्यास तमस के लिए जाना जाता है, जो सांप्रदायिक उन्माद और मानव संघर्ष की कहानी को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से हम सभी तक पहुंचाता है। इसके अलावा इन्होंने कई और उपन्यास, कहानियां, संग्रह, नाटक और आत्मकथाएं लिखी है, जिनमें प्रमुख हैं झरोखे, बसंती, मैयादास की माड़ी, भाग्यरेखा, पहला पाठ और अमृतसर आ गया। भीष्म साहनी न केवल लेखक थे, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता और मानवतावादी दृष्टिकोण के समर्थक भी थे। ये भारतीय जन नाटक संघ से जुड़े और विभाजन के समय शरणार्थियों के लिए राहत कार्यों का संचालन किया। उनके साहित्य में मानवीय मूल्य, समाज के आर्थिक और सांप्रदायिक विसंगतियां, साथ ही साथ नैतिकता का गहन चित्रण आपको देखने को मिलता है। उन्हें उनके साहित्यिक योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मान से भी नवाजा गया है, जिनमें प्रमुख हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार सन

1975 शिरोमणि लेखक सम्मान, लोटस पुरस्कार, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण शामिल है। इसीलिए 11 जुलाई यानी आज के दिन भीष्म साहनी की पुण्यतिथि पर उन्हें अनेक साहित्यिक योगदान और मालवीय मूल्यों के कारण याद किया जाता है।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आइए अब हम बात करते हैं विश्व जनसंख्या दिवस के बारे में। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य जनसंख्या वृद्धि, उसके प्रभाव और सतत विकास के महत्व पर जागरूकता बढ़ाना है। श्रोताओं, आज के हमारे इन कार्यक्रमों में या आज के हमारे हम अगर बात करें तो हमारे दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम में हर रोज जागरूकता फैलाने के लिए इन दिवसों पर बात की जाती है। रोजाना आने वाले दिवस विशेष पर इन कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने का प्रमुख उद्देश्य है कि आप सभी लोग इनके प्रति जागरूक रहें। विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1989 में की थी। इसे पहली बार मनाने का मुख्य उद्देश्य बढ़ती विश्व जनसंख्या और उससे संबंधित सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करना था। 11 जुलाई की तिथि इसीलिए चुनी गई थी क्योंकि सन 1987 में आज ही के दिन वैश्विक जनसंख्या 5 बिलियन के पास पहुंच गई थी। जनसंख्या वृद्धि के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिन लोगों को यह बताता है कि तेज जनसंख्या वृद्धि से हमारे पास जो संसाधन है वो सीमित है और उन संसाधनों पर अगर हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ती है तो निश्चित रूप से दबाव बढ़ सकता है। माताओं और महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा और परिवार नियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करना भी इसका एक उद्देश्य है। साथ ही साथ आज का यह दिन प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण और हरित भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाने की प्रेरणा देता है। तेज जनसंख्या वृद्धि के कारण कई चुनौतियां उत्पन्न होती है, जिसमें प्रमुख है हमारे सीमित संसाधनों की कमी, पर्यावरणीय संकट, आर्थिक दबाव और जीवन स्तर में असमानताएं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए नीति निर्माण, जागरूकता अभियान और शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इसीलिए श्रोताओं, विश्व जनसंख्या दिवस केवल संख्या पर ध्यान देने का दिन नहीं है, बल्कि यह विकास, स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन पर विचार करने का समय है। हमें यह सोचने के लिए आज का दिन यह प्रेरित करता है कि कैसे हम संसाधनों का सतत उपयोग कर सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्थिर भविष्य सुनिश्चित कर सकते हैं। श्रोताओं, ये तो बात हुई आज की हमारी चर्चा की।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, आइए अब जानते हैं हमारी आज की प्रसारण सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर में यानी सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। सुबह 8:00 दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का अनुप्रसारण किया जाएगा। 8:15 पर आप सुनेंगे विकसित भारत संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम। 8:30 पर हम हाजिर होंगे कार्यक्रम महिला जगत लेकर। सुबह 9:00 आप सुनेंगे

श्रोताओं, आज है शनिवार और आज के दिन शाम 5 बजे आप सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम जो आधारित होता है पत्रों पर आपकी फरमाइश। 6:05 पर एक बार फिर आप आनंद लेंगे फिल्म संगीत कार्यक्रम का। 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम किसानवाणी और 7:30 पर हम आप तक पहुंचाएंगे कार्यक्रम कृषक चौपाल। पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। 9 बजे हर रोज की तरह कार्यक्रम होगा सबरस और 9:30 पर हम लेंगे हमारी आज की प्रसारण सभा से विदा।

0: संख्या स्थायित्व कार्यक्रमों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के दम पर झालावाड़ ने एक बार फिर प्रदेश में अपनी मजबूत पहचान दर्ज कराई है। जिले को राज्य स्तर पर चौथा स्थान मिला है। खास बात यह है कि पिछले 10 साल से झालावाड़ टॉप 5 में अपनी जगह बना रहा है। विश्व जनसंख्या दिवस पर 11 जुलाई को आयोजित राज्य स्तरीय वर्चुअल समारोह में झालावाड़ जिले को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। इसके साथ ही उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, स्वयंसेवी संस्था और पंचायत प्रतिनिधियों को भी सम्मान मिलेगा।
1: जलवायु, उपभोग और उत्पादन, यह यूनेस्को का संदेश है। अत्यधिक उपभोग जलवायु संकट को और बढ़ा रहा है। आज की इकोनॉमी, खासकर अमीर देशों में, तेजी से उत्पादन और बेकार उपभोग का बढ़ावा देती है। इससे ज्यादा प्रदूषण होता है, संसाधन खत्म होते हैं और प्रकृति को तेज नुकसान पहुंचता है। इससे ठीक करने के लिए बड़े बदलाव और व्यक्तिगत कार्रवाई दोनों की सख्त जरूरत है। सरकारों को व्यवसायों पर नियंत्रण रखना चाहिए, स्थिरता को बढ़ावा देना चाहिए और शिक्षा को समर्थन करना चाहिए। व्यक्ति, विशेषकर संपन्न लोग, कम खरीदकर पर्यावरण के अनुकूल उत्पादन को चुनकर और ज्यादा से ज्यादा दोबारा इस्तेमाल करके अपने कार्बन उत्सर्जन कम कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं, 2000 से 2017 के बीच प्रति व्यक्ति सामग्री उपभोग में 40% से ज्यादा वृद्धि हुई है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
0: लॉ कॉलेज में कट ऑफ जारी कर दी गई है। कॉलेज के प्रवेश प्रभारी ने बताया है कि विधि प्रथम वर्ष सत्र 2026-27 के लिए 60 सीटों पर कुल 144 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इसमें प्रमुख अस्थायी प्रवेश सूची में कट ऑफ सामान्य वर्ग में 65.16%, सामान्य महिला में 64.67%, ईडब्ल्यूएस में 57.23, ओबीसी 59, ओबीसी महिला 55.94, एमबीसी 44.55, एससी 51.72, एससी महिला 51%, एसटी 47.66% रही है। प्रवेश शुल्क जमा कराने और मूल दस्तावेजों का सत्यापन 11 से 15 जुलाई तक सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक लॉ कॉलेज झालावाड़ में किया जाएगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने लिपि ग्रेड सेकेंड और कनिष्ठ सहायक संयुक्त भर्ती परीक्षा 2026 के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर दिया है। बोर्ड के अनुसार अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन पत्रों में ऑनलाइन सुधार कर सकेंगे। साथ ही वायुसेना ने अग्निवीर वायु और एयरमैन ग्रुप बाई मेडिकल असिस्टेंट पदों पर भर्ती अधिसूचना जारी की है। अभ्यर्थी 16 जुलाई तक पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शुल्क ₹550 है और कंप्यूटर आधारित परीक्षा 22 और 23 सितंबर को आयोजित की जाएगी।

श्रोताओं नमस्कार, झालावाड़ कार्यक्रम में आइए अब बात करते हैं आज की दैनिक सूचनाओं के बारे में। परिवार कल्याण और जनसंख्या

श्रोताओं, चलते चलते अब बात करते हैं आज के तापमान के बारे में। तो अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान है, साथ ही बादल छाए रहने के साथ बूंदाबांदी के आसार हैं। श्रोताओं, आज का हमारा नमस्कार झालावाड़ कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। तो दीजिए आपके रेडियो दोस्त को आज के इस कार्यक्रम से इजाज़त।

FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 7:30 हुए हैं। श्रोताओं, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत कार्यक्रम का पहला गीत आप सुन रहे हैं ये दिल आशिकाना फिल्म से। कुमार शानू और अनुराधा पोडवाल की युगल गायकी को आपने सुना है। बोल लिखे हैं समीर ने और नदीम श्रवण ने संगीत निर्देशन किया है।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ को आपने सुना है, फिल्म का नाम मैंने प्यार किया। तर्ज बनाई है असद भोपाली ने और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने संगीत निर्देशन किया है। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी की चंद्रभागा चैनल से कार्यक्रम फिल्म संगीत।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
2: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
1: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: श्रोताओं, अगर आपको भी तलाश है मधुर संगीत की तो ट्यून कीजिए आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम में अगला गीत, फिल्म कुछ कुछ होता है से। आप सुनेंगे उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल गायकी को।

0: उदित नारायण और अलका याग्निक की युगल गायकी में समीर का लिखा हुआ ये गीत जतिन ललित ने संगीत निर्देशित किया है। फिल्म का नाम कुछ कुछ होता है।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के

0: ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह है।

0: शंकर महादेवन महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में फिल्म कुछ ना कहूँ का ये गीत श्रोताओं अभी आप सुन रहे हैं। जावेद अख्तर ने बोल लिखे हैं और शंकर एहसान लॉय ने संगीत निर्देशन किया है। श्रोताओं, इसी गीत के साथ ही आज का हमारा फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम भी अब यहीं संपन्न होता है। थोड़ी देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित समाचार प्रभात सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता।

0: भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक और रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति तथा सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टेल्थ फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। गृहमंत्री अमित शाह ने बंदरगाह सुरक्षा ब्यूरो के क्रियान्वयन में हुई प्रगति की समीक्षा की। मजबूत तटीय सुरक्षा उपायों के निर्देश दिए। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में, आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज्य की कैरोलिना मुकोवा हमवतन लिंडा नोस्कोवा के साथ खेलेंगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन एवं डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऑकलैंड स्थित गवर्नमेंट हाउस में औपचारिक स्वागत किया गया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने उन्हें राजकीय सम्मान के साथ रिसीव किया। औपचारिक स्वागत के बाद दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान रक्षा, पशुपालन, डेयरी, पर्यटन, खेल और आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ, जिससे भारत न्यूजीलैंड साझेदारी को नई गति मिली। इसके बाद दोनों प्रधानमंत्रियों ने भारत न्यूजीलैंड बिजनेस एंगेजमेंट कार्यक्रम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रिकॉर्ड कार समय में मुक्त व्यापार समझौते के संपन्न होने पर खुशी जताई और विश्वास व्यक्त किया कि वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2 गुना हो जाएगा। उन्होंने न्यूजीलैंड के उद्योग जगत को भारत में निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत केवल एक बड़ा बाजार ही नहीं बल्कि वैश्विक विकास का एक सशक्त लॉन्च पैड भी है। मंजू मीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
0: वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 40 वर्ष बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड यात्रा दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है।
2: 40 साल के बाद भारत के प्रधानमंत्री का न्यूजीलैंड आना हुआ है और एक प्रकार से आपकी आर्थिक राजधानी में कार्यक्रम बना करके भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को एक नई ताकत देने का एक अवसर पैदा किया है कि मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। ये हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है जो हमारे संबंधों की नई ऊर्जा, हमारी मित्रता के नए संकल्प को दोहराने वाला है।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला एक ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
2: लोकतांत्रिक मूल्यों के में दृढ़ विश्वास हमें नेचुरल पार्टनर बनाता है, मेड फॉर ईच अदर जैसा है ये। और दूसरी प्रकार से दो मैरिटाइम देश के रूप में हमारा करीबी सहयोग इंडो पैसिफिक को एक नई ताकत देता है और शांति के हमारे जो लक्ष्य है उसको अचीव करने में हमारे संबंध एक नई ऊर्जा भर सकते हैं।
0: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाई देगी। उन्होंने कहा कि सामरिक साझेदारी से व्यापार सहित कई क्षेत्रों में सहयोग का दायरा और बढ़ेगा।
3: Marking the first visit by an Indian Prime Minister to New Zealand in 40 years. This visit is also a significant milestone in the New Zealand-India relationship. When I visited last year, you welcomed me and my delegation with great warmth and tremendous generosity.
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे और उद्योग तथा खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी को आज आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। ये भारत की रक्षा आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है। समारोह से पहले रक्षा मंत्री ने नौसैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत हिंद महासागर क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रमुख संरक्षक है। उन्होंने कहा कि देश का 90% से अधिक

0: पार समुद्री मार्गों से होता है, इसलिए समुद्री सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण है।
1: हमारे व्यापार का 90% से अधिक हिस्सा समुद्री मार्ग से ही होता है। हमारे विशाल इंप्रेसिव इकोनॉमिक जोन है, हमारे आईलैंड टेरिटरीज है, और यह जो रीजन है वह आज पहले से कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स और अधिक चैलेंजिंग होता जा रहा है, और इस रीजन में एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स की प्रेजेंस और एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, जिस स्वयं आप प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 14555 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो की स्थापना में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृहमंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाना चाहिए। उन्होंने वर्तमान बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए पत्तन सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण शीघ्र शुरू करने का निर्देश दिया।
2: इस बैठक में केंद्रीय गृह सचिव, खुफिया ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय सचिव, मत्स्य पालन विभाग के सचिव, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के महानिदेशक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। BOPS का गठन मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025 की धारा 13 के प्रावधानों के तहत एक वैधानिक निकाय के रूप में किया जा रहा है। ब्यूरो का नेतृत्व एक महानिदेशक करेंगे और यह पत्तन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अधीन काम करेगा। श्री शाह ने मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के साथ मछली पकड़ने वाले बंदरगाहों और मछली उतारने के केंद्रों के लिए सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा भी की। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज एक दिन के बिहार दौरे पर गया जी जाएंगे। इस दौरान वे बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में बिहार विधानसभा सदस्यों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि हाल के तनाव के बावजूद अमेरिका और ईरान वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान ने वार्ता जारी रखने का अनुरोध किया है और अमेरिका इस पर सहमत हो गया है। अमेरिका ने ईरान से होर्मुस जलडमरू मध्य में जहाजों पर हमले रोकने की मांग की है। इन हमलों के कारण तनाव बढ़ने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। वेनेजुएला में पिछले महीने आए 2 शक्तिशाली भूकंप में मरने वालों की संख्या 4,000 से अधिक हो गई है। वेनेजुएला संसद प्रमुख जॉर्ज रोड्रिगेज के अनुसार अब तक 4,118 लोगों की मौत हो चुकी है और 16,740 लोग घायल हुए हैं, वहीं हजारों लोग अब भी लापता हैं। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत लोगों को पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के काम में लगे आशीष अग्रवाल से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
3: प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रुमाल वगैरह से। इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, कितना बड़ा मेल है उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है, तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। ये चर्चा आज सवेरे 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड पर प्रसारित होगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल

0: बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया है। लॉस एंजलिस में आज क्वार्टर फाइनल में स्पेन ने बेल्जियम को 2-1 से हरा दिया। स्पेन के लिए विजयी गोल मिकेल मेरिनो ने 88वें मिनट में किया। इससे पहले फ्रांस ने पहले क्वार्टर फाइनल में मोरक्को को 2-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 2:30 बजे शुरू होगा। वहीं चौथे क्वार्टर फाइनल में कल मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से होगा। उधर विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा का सामना लिंडा नेस्कोवा से होगा। चेक गणराज की दोनों खिलाड़ी पहली बार विंबलडन फाइनल में पहुंची हैं। पुरुष सिंगल्स फाइनल में कल विश्व के नंबर एक खिलाड़ी यानिक सेनर का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वरेव से होगा। सेनर ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को और ज़वरेव ने ब्रिटेन के आर्थर फेरी को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच लंदन के लॉर्ड्स में पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में कल के 21 रन पर 1 विकेट के स्कोर से आगे खेलेगा। कल का खेल समाप्त होने के समय माया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर थीं। इससे पहले भारत ने पहली पारी में 285 रन बनाए थे। स्मृति मानधाना ने 83 रन, कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने अर्धशतक बनाए।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन यायार मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद कनक। पेट्रोल में इथेनॉल मिश्रण से संबंधित खबर आज अखबारों के पहले पन्ने पर है। हिंदुस्तान ने सरकार का बयान दिया है, E20 से माइलेज थोड़ा घटेगा मगर इंजन सुरक्षित। जनसत्ता लिखता है, पेट्रोलियम मंत्रालय ने दी जानकारी, इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से 5% कम हो जाएगी औसत। पत्र ने संपादकीय में लिखा है, ये अच्छा हुआ कि अंततः सरकार की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि E20 ईंधन से गाड़ियों का माइलेज भले ही कम होता हो लेकिन ये ऊर्जा सुरक्षा और स्वच्छ पर्यावरण के लिए उपयोगी होने के साथ ही किसानों के लिए लाभकारी भी है। अल्कोहल युक्त दवाओं पर नए नियम लागू होने पर नवभारत टाइम्स ने नहीं मिलेगी छूट से लिखा है, अल्कोहल 12% से अधिक तो डॉक्टर की पर्ची से ही दवा, सरकार ने कहा हो रहा था गलत इस्तेमाल। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान बदतमीजी करने पर याचिकाकर्ता को कक्ष से बाहर निकाले जाने की खबर दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान में है। दिल्ली में भूजल में तय सीमा से अधिक यूरेनियम, NGT सख्त, अमर उजाला की खबर है। वंदे मातरम जन गण मन को लेकर नई गाइडलाइन पर पंजाब केसरी लिखता है, सभी राज्यों और केंद्रीय मंत्रालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और पहले वंदे मातरम तथा उसके बाद जन गण मन गाया जाएगा। फीफा विश्व कप की खबर देते हुए जनसत्ता ने लिखा है, गोल्डन बूट की दौड़ में अब एम्बाप्पे आए मेसी के बराबर। अमर उजाला ने अमरनाथ यात्रा पर लिखा है, प्रकृति में दखल से जल्दी अंतर्ध्यान हुए बाबा बर्फानी। दैनिक भास्कर ने अपने खास आलेख में लिखा है, अतीत आज से बेहतर ये सच नहीं, बीते कल की चाहत में आज गुम न होने दें, यादों से ऊर्जा लें, भविष्य की चुनौतियों से लड़ सकेंगे।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने आर्थिक तथा रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए रक्षा, आपदा प्रबंधन और पशुपालन सहित प्रमुख क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्र गिरी आज नौसेना में शामिल होगा। फीफा विश्व कप में स्पेन बेल्जियम को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में पहुंचा। आज रात तीसरे क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। और विंबलडन टेनिस के महिला सिंगल्स फाइनल में आज चेक गणराज की कैरोलिना मुकोवा अपने ही देश की लिंडा नेस्कोवा से खेलेंगी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। स्टूडियो घड़ी में सुबह के 8:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प से सिद्धि। आइए इस कार्यक्रम में सुनते हैं युवा छात्र ईशांत शर्मा से धर्मेंद्र कुमार की बातचीत।
4: नमस्कार साथियों, आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रासंगिक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, विकसित भारत सन 2047, संकल्प से सिद्धि।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज़ादी के अमृतकाल में देश के सामने सन 2047 तक भारत को एक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य रखा है। इस विजन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं एक होनहार विद्यार्थी। आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सभी को मेरा नमस्कार।
0: बहुत धन्यवाद। सबसे पहले कार्यक्रम में हमारे सभी श्रोता जानना चाहेंगे आपके संक्षिप्त परिचय के बारे में।
1: मेरा नाम ईशान शर्मा है और मैं द्वितीय वर्ष पॉलिटेक्निक का छात्र हूँ।
0: ईशान जी, आप पॉलिटेक्निक की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, द्वितीय वर्ष में आप अध्ययनरत हैं और पॉलिटेक्निक यानी एक तकनीकी कौशल आप प्राप्त कर रहे हैं। ईशान जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के इस विकसित भारत के सपने को आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि आप एक युवा भी हैं और एक विद्यार्थी के नजरिए से आपके लिए विकसित भारत का क्या अर्थ है?
1: मेरे नजरिए में विकसित भारत वह भारत होगा जहां हर युवा आत्मनिर्भर होगा। हमारे युवाओं को स्किल्स सीखने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि डिग्री लेने। मेरे लिए विकसित भारत 2047 का सपना केवल ऊंची इमारतें, स्मार्ट सिटीज या एक बड़ी अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के हर युवाओं के आत्मनिर्भर हो, जहाँ शिक्षा केवल डिग्रियों तक सीमित होकर स्किल्स में बदल जाए और हर नागरिक अधिकारों के कर्तव्य पर जागरूक हो। प्रधानमंत्री जी ने हमें 5 बातें बताई है, जिसमें पहली बात यह है कि विकसित भारत का लक्ष्य है। दूसरी बात हमें ये बताई है कि गुलामी का सोच से मुक्ति, तीसरी अपनी विरासत पर गर्व, चौथी एकजुटता और 5वीं है नागरिकों का कर्तव्य।
0: अच्छी बात आपने बताई है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से हम सभी देशवासियों से आह्वान किया है और हम सभी को 5 प्रण या 5 संकल्प के बारे में बताया है। पहली बात आपने बताई है कि विकसित भारत का लक्ष्य, दूसरी गुलामी की हर सोच से हमें मुक्त होना होगा, तीसरी अपनी विरासत पर हम सभी देशवासियों को गर्व होगा, चौथी हम सभी को एकजुट होकर विकसित भारत के लिए प्रयास करना होगा और 5वीं हम सभी नागरिकों का कर्तव्य है कि हम आज से ही एकजुट होकर विकसित भारत के संकल्प के लिए आज से ही मेहनत करने लग जाएं। ईशान जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई है, नागरिकों का कर्तव्य। एक छात्र का सबसे पहला कर्तव्य उसकी शिक्षा होती है। आज के समय में जब दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है, तो एक विद्यार्थी अपनी शिक्षा के माध्यम से इस संकल्प से सिद्धि की यात्रा में कैसे अपना योगदान दे सकता है?
1: मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा केवल एक मार्गदर्शन है हमारे जीवन में, विकसित भारत की सबसे महत्वपूर्ण नींवों में से एक है। ये हमारे देश में सभी युवाओं को शिक्षित होने के लिए AI एवं कोडिंग आदि चीज़ों की तकनीकों का ज्ञान होना चाहिए एवं साइबर जैसे अपराधों से बचने के लिए उसके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए, जिससे आने वाले समय में हमारे देश के युवाओं को एक प्रेरणा के रूप में विकसित हो सके। एक विद्यार्थी के रूप में मेरा सबसे पहला सहयोग ये होगा कि मैं अपनी शिक्षा के प्रति ईमानदार रहूं। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी इसी बात पर जोर देती है। मैं केवल रटने के बजाय क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर केंद्रित रहता हूँ।
0: बिल्कुल ईशान जी, आपने बताया है कि भारत दुनिया का इस समय सबसे युवा देश है, लेकिन यह युवा शक्ति तभी देश के काम आएगी जब वह सही दिशा में हो। और आपने जिक्र किया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति का और साथ ही साथ क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पर आपने ध्यान देने के लिए सभी युवाओं से अपील की है। तो ईशान जी, क्या आप इसका एक कोई हमारे श्रोताओं को व्यवहारिक उदाहरण दे सकते हैं?
1: हाँ जी जरूर, मैं आपको ये उदाहरण बताना चाहूँगा कि मैं एक इंजीनियर छात्र हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं आगे जाके बड़ी कंपनियों में काम करूँ, बल्कि मेरा उद्देश्य यह रहेगा कि हमारे देश के अस्पतालों एवं ट्रैफिक लाइट एवं गरीबों के उत्थान के लिए मैं कुछ कर सकूँ। आज हमारे देश में नौकरी देने वालों की जरूरत
0: है कि आज जॉब

0: सीकर्स यानी नौकरी मांगने वालों से ज्यादा जॉब क्रिएटर्स यानी नौकरी देने वालों की जरूरत है, और इसके लिए भारत सरकार ने कई प्रकार के ऐसे प्रोग्राम्स चला रखे हैं जैसे स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया। ये ऐसे अभियान हैं जिनको सफल बनाने की जिम्मेदारी हम सभी छात्रों की है, हम सभी आज की युवा पीढ़ी की है कि आप सभी अपने नए नए विचारों के साथ, नए नए नवाचारों के साथ, नए नए इनोवेशंस के साथ देश को विकसित भारत की ओर लेकर जाएं। ईशान जी, नवाचार और तकनीक की बात अगर हम करें तो आज का युग पूरी तरह से डिजिटल है। इस डिजिटल क्रांति में आप अपने स्तर पर क्या सहयोग दे सकते हैं?
1: 2047 तक हमारा देश और अत्यधिक डिजिटल होगा, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। हमारे देश के अंदर सबसे ज़्यादा UPI का उपयोग होता है, जो कि हमें देश में नंबर 1 बनाता है। ये हमारे लिए बड़ी गौरवान्वित बात है, जो कि हमारे देश के आगे बढ़ने के लिए सहयोग करती है। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि अत्यधिक मेड इन इंडिया जैसी चीज़ों का उपयोग करें। तकनीकी एक बहुत बड़ा हथियार है। आज भारत डिजिटल पेमेंट्स की दुनिया का नंबर 1 है। एक जागरूक छात्र होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी सीखूं, जो कि भविष्य की चुनौतियों के लिए मैं तैयार रह सकूं। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है डिजिटल साक्षरता। मेरे परिवार में, मेरे पड़ोस में और ग्रामीण इलाकों में जो बुजुर्ग लोगों के स्मार्टफोन और इंटरनेट का सही उपयोग नहीं जानते हैं, साइबर सुरक्षा के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें जागरूक करूँ।
0: और ईशान जी, आर्थिक स्तर पर एक छात्र क्या कर सकता है? छात्र तो पैसे नहीं कमाते, तो अर्थव्यवस्था में उनका क्या योगदान हो सकता है?
1: ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। जब हम कमाना शुरू करेंगे तभी अर्थव्यवस्था में हम योगदान दे पाएंगे। हम आज के कंज्यूमर हैं। प्रधानमंत्री जी का एक बहुत बड़ा नारा है, वोकल फॉर लोकल। एक छात्र के रूप में मैं ये संकल्प ले सकता हूँ कि रोजमर्रा के उपयोग की चीजें जैसे कपड़े, स्टेशनरी सामान, त्योहारों के मिट्टी के दिए, सजावट आदि चीज़ों को मैं अपने देश की कंपनियों से ही खरीदूं, जो कि मेड इंडिया हो, ये मेरा लक्ष्य रहेगा।
0: बिल्कुल ईशान जी, जैसा कि आपने बताया है कि देश का युवा मेड इन इंडिया उत्पादों पर गर्व करेगा, तभी हमारे स्थानीय उद्योग मजबूत होंगे और भारत एक बहुत बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। और निश्चित रूप से भारत सरकार के द्वारा भी विभिन्न प्रकार के लघु और सूक्ष्म उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार बहुत प्रयत्न भी कर रही है, और साथ ही साथ हमारे युवाओं को आर्थिक सहायता भी प्रदान कर रही है। ईशान जी, आपकी बातों से स्पष्ट होता है कि छोटे छोटे प्रयासों से बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं, लेकिन अगर हम समाज और पर्यावरण की बात करें तो वहां एक विद्यार्थी की क्या भूमिका होनी चाहिए?
1: कोई भी देश जब तक विकसित नहीं हो सकता तब तक उसका पर्यावरण सुरक्षित ना हो, उसकी सड़कें साफ ना हो। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान शुरुआत की है, यह हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। मेरा सहयोग बहुत इतना सा है, मैं गंदगी नहीं करूंगा और न करने दूंगा। सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करूंगा और कम से कम लोगों को 5 पेड़ लगाने के लिए प्रेरित करूंगा, और यहाँ तक कि मैं पानी एवं बिजली को बचाने की आदत अपनाऊंगा।
0: और है कि आज का युवा जो दिन भर सोशल मीडिया और रील्स में खोया रहता है, क्या यह वो सब कुछ कर पाएगा?
1: हमारे देश के युवाओं के लिए एक शारीरिक और एक मानसिक रूप से यह चुनौती है, जो कि आने वाले समय में दखल देगी। लेकिन मैं सबों को ये प्रेरित करना चाहूँगा कि अत्यधिक मोबाइल एवं स्मार्टफोन का यूज ना करके अपने देश को विकसित करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। तो सबसे पहले हमें शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत होना होगा। हमें जंक फूड को छोड़कर योग और खेलों की दिनचर्या को शामिल करना होगा। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि मुझे लोहे की मांसपेशियां और फौलाद की नस वाले युवा चाहिए, तभी हमारे राष्ट्र के निर्माण हो सकेगा।
0: अंतिम चरण में है, आपकी बातों से यह साबित कर दिया है आपने कि 2047 का विजन कोई सरकारी योजना भर नहीं है, बल्कि हर भारतीय का व्यक्तिगत लक्ष्य होना चाहिए। अंत में आप अपने साथी छात्रों और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं अपने सभी साथी छात्रों से यह कहना चाहूंगा कि 2047 कोई बहुत दूर साल नहीं है। आइए हम

0: सब इसे मिलकर अपने कठोर परिश्रम से एक स्वर्ण काल में बदल दें। कानून का पालन करें, हमेशा सोचें कि मेरे इस कदम से देश का क्या फायदा होगा। अगर भारत का हर छात्र अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा ले तो मुझे पूरा विश्वास है कि संकल्प और सिद्धि से महायज्ञ जरूर सफल होगा। भारत 2047 तक विश्वगुरु बनेगा।
1: ईशान जी, बहुत ही प्रेरणादायक और ऊर्जा से भरे विचार आपने बहुत ही गहराई के साथ हम सभी युवाओं के साथ, हम सभी सुनने वाली श्रोताओं के साथ साझा किए हैं। शिक्षा, तकनीक, पर्यावरण और आत्म अनुशासन के जरिए एक विद्यार्थी देश के इस महान संकल्प में कैसे अपना पूर्ण योगदान दे सकता है। हमारे साथ जुड़ने और इतने बेहतरीन विचार साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, अभी आप विकसित भारत संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में युवा छात्र ईशान शर्मा से धर्मेंद्र कुमार शर्मा की बातचीत सुन रहे थे।

FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम महिला जगत।

आंसू ना होते तो आंखें इतनी खूबसूरत ना होती, दर्द ना होते तो खुशी की कीमत ना होती। अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने ही से, तो दुनिया में ऊपर वाले की जरूरत ना होती। गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल और जगत के इस अंक में मैं अनीता शर्मा स्वागत करती हूँ मेरी सभी सखी सहेलियों और सभी श्रोताओं का। सखियों, आज है विश्व जनसंख्या दिवस, जिसे हर साल 11 जुलाई को यानी कि आज ही के दिन मनाया जाता है। सखियों, 11 जुलाई 1987 को दुनिया की आबादी लगभग 5 अरब पहुंच गई थी। इसे 5 बिलियन डे कहा गया। इसी दिन से प्रेरित होकर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP की गवर्निंग काउंसिलिंग ने 1989 में विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत की। सखियों, ये दिवस पहली बार 11 जुलाई 1990 को 90 से अधिक देशों में आधिकारिक तौर पर मनाया गया और तब से लेकर हर वर्ष 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता आ रहा है। सखियों, बढ़ती हुई विश्व जनसंख्या मानव अस्तित्व के लिए एक खतरा बन रही है और अत्यधिक जनसंख्या के कारण विश्व के प्राकृतिक संसाधन प्रतिदिन असहनीय दर से घट रहे हैं। स्वास्थ्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति ने मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम किया है और जीवन काल को बढ़ाया है। इसलिए एक स्वच्छ समाज के लिए खतरे को कम करने और आने वाली पीढ़ी के लिए एक बेहतर और टिकाऊ भविष्य प्रदान करने के लिए अधिक जनसंख्या से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता पैदा करना और लोगों को शिक्षित करना आवश्यक है। सखियों, विश्व जनसंख्या दिवस का उद्देश्य विभिन्न जनसंख्या मुद्दों पर लोगों की जागरूकता बढ़ाना है, जैसे कि परिवार नियोजन, लिंग समानता, गरीबी, मातृ स्वास्थ्य और मानव अधिकारों का महत्व। शिक्षा के माध्यम से महिलाओं और लड़कियों को जनसंख्या संबंधी समस्याओं के बारे में शिक्षित किया जा सकता है। सखियों, शोधों से पता चला है कि शिक्षित महिलाएं छोटा परिवार रखने और अपने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश करने की अधिक संभावना रखती हैं। सरकारों ने शिक्षा तक पहुंच में सुधार और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए नीतियां लागू की हैं। सखियों, ये दिन समाधान खोजने, जिम्मेदार परिवार नियोजन पहलों की वकालत करने और ऐसी नीतियों को बढ़ावा देने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है, जो ये सुनिश्चित करती हैं कि भविष्य में हर कोई पृथ्वी की वहन क्षमता के भीतर फल फूल सके। विश्व जनसंख्या दिवस से प्रेरित होकर सामूहिक प्रयासों के माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिक सतत भविष्य की दिशा में काम कर सकते हैं। तो सखियों, ये तो थी चर्चा विश्व जनसंख्या दिवस पर। और मौसम है बारिश का और महीना है आषाढ़ का, तो क्यों ना मनाया जाए मेघराज को। तो आइए मनाते हैं मेघराज को।

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 इयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: सखियों किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए संतुलित और पौष्टिक आहार बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसके साथ ही माहवारी के दौरान स्वच्छता और मानसिक स्वास्थ्य का भी विशेष ध्यान रखना अति आवश्यक है। सखियों इस उम्र में एनीमिया और शारीरिक विकास से जुड़े बदलावों को समझने के लिए उचित पोषण और मार्गदर्शन भी अत्यंत आवश्यक है। किशोरियों में एनीमिया एक प्रमुख समस्या है और इसे बचने के लिए आयरन युक्त खाद्य पदार्थों जैसे कि पालक, खजूर, अनार इन सब का सेवन करना बहुत ही अधिक आवश्यक है। इसके साथ ही सखियों तनाव मुक्त रहने के लिए पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और परिवार और दोस्तों के साथ संवाद बनाए रखना भी बहुत अधिक आवश्यक है। सखियों किशोरावस्था शारीरिक एवं मानसिक विकास की एक महत्वपूर्ण अवस्था है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार इस उम्र में सही पोषण न मिलने से भविष्य में कुपोषण, एनीमिया और गर्भावस्था के दौरान जटिलताओं का खतरा बढ़ जाता है। किशोरी स्वास्थ्य और पोषण इस विषय से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए आइए सुन लेते हैं ये भेंटवार्ता। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे महिला जगत कार्यक्रम में। सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना परिचय स्वयं हमारी बहनों और सभी श्रोताओं को दें।
2: मैं डॉक्टर मधुरिमा वर्मा, वरिष्ठ आचार्य त्रियम प्रसूति रोग विभाग झालावाड़ मेडिकल कॉलेज।
1: मैम जैसा कि आज हमारी भेंट वार्ता का विषय है किशोरी स्वास्थ्य और पोषण, तो सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि उम्र के किस पड़ाव को किशोरावस्था का प्रारंभ माना जाता है।
2: किशोरावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होता है, तो ये जो एज होती है 10 से लेकर 19 वर्ष तक को अपन किशोरावस्था को मानते हैं। टाइम में जो किशोरियां होती है उनमें शरीर में, मन में और भावनाओं में बहुत ही तेजी से परिवर्तन होता है। ये जो टाइम होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। इस समय जो किशोरियां होती है उनको पोषण का, अपने स्वास्थ्य का, पढ़ाई लिखाई है उसका बहुत ध्यान देना बहुत जरूरी है।
1: मैम किशोरी बालिका के भोजन में किस तरह की पोषण सामग्री या खाद्य पदार्थों को शामिल किए जाने की आवश्यकता होती है?
2: किशोरियों के लिए वैसे तो हम सबके लिए ही संतुलित आहार बहुत जरूरी है, लेकिन उनके बढ़ने की अवस्था होती है इसलिए उनके जो भोजन है उनमें स्पेशली जो प्रोटीन होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन और मिनरल्स होते हैं, ये होना बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन हमारे खाने में हम दाल से प्राप्त कर सकते हैं, दूध, दही, पनीर, सोयाबीन या फिर जैसे अंडा है, मटन है और चिकन है, इनसे भी हमारी जो खाने में बहुत प्रोटीन हम प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे आयरन है तो आयरन रिच फूड होते हैं जैसे पालक, मेथी, ये जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती है।

0: अलावा गुड़ होता है, गुड़ चना राजमा, और फ्रूट में जैसे जो शहतूत होता है, स्ट्रॉबेरी होती है, अनार होता है, इनमें काफी आयरन होता है।
1: मैम, बालिकाओं में मासिक धर्म प्रारंभ होने के दौरान कौन कौन से शारीरिक और मानसिक बदलाव देखने को मिलते हैं, और क्या उन्हें इस समय किसी भावनात्मक सहारे की भी आवश्यकता होती है?
0: बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे पहले जब लड़कियों को मेंसेस, उसको मिनार्की भी बोलते हैं, फर्स्ट टाइम जो मेंसेस आती है उसको मिनार्की बोलते हैं, तो मिनार्की के साथ साथ गर्ल्स में बहुत सारे शारीरिक और मानसिक बदलाव भी होते हैं। जैसे उनकी लंबाई लंबाई बढ़ जाती है और वजन में भी उनका बढ़ जाता है। प्यूबिक हेयर्स वगैरह है जैसे जननांगों में, और जो बगल होती है उनमें उनके बाल आने शुरू हो जाते हैं, जननांगों का पूर्ण विकास हो जाता है, जैसे कि जो गर्भाशय और अंडाशय है उनका भी विकास होता है, और जैसे उनके चेहरे पे मुहासे होते हैं वो आने लग जाते हैं। तो ये सारे बदलाव, शारीरिक बदलाव देखने को मिलते हैं। साथ
1: जी
0: साथ में जैसे उनकी हम अगर मानसिक या फिर भावनात्मक बदलाव को अगर हम बात करें, तो जैसे उनके मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत
1: जी
0: जल्दी वो गुस्सा हो जाते हैं, बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ जाता है। अगर उनकी कोई बात अगर हम नहीं मानते हैं या फिर नहीं उनको करने देते उनके मन की, तो वो बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं, और वो अपने जिस पढ़ाई के लिए या फिर अपने करियर के लिए बहुत ज्यादा सजग हो जाते हैं। ज्यादातर वो अपना टाइम अपने जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ बिताना वो पसंद करते हैं। तो
1: जी
0: इस तरह से उनमें काफी बदलाव देखने को मिलता है। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम लगती है कि वो चिंता तनाव वगैरह अगर उनको है, तो सबसे पहले तो उनको अपने माता पिता से कोई भी अपनी बात है वो शेयर करनी चाहिए, या फिर अगर उनके पढ़ाई से संबंधित अगर कोई भी बात है तो उनको अपने जो टीचर है उनसे, उनको खुल के उनसे बात करनी चाहिए।
1: परिवार के सदस्यों को भी उनके साथ जो व्यवहार है उनका, क्या उसमें भी कोई परिवर्तन लाने की आवश्यकता होती है?
0: हाँ बिल्कुल, परिवार के सदस्यों को भी समझना चाहिए कि अभी इनके शरीर में कुछ हार्मोनल बदलाव हो रहे हैं, तो ये तरह से रिएक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए उनको भी अपना थोड़ा सा नजरिया, उनको देखने का नजरिया उनको अपना बदलना चाहिए, ताकि वो उनको अच्छे से समझ सके, वो जो बिहेव कर रहे हैं उसको अच्छे से समझ सकते हैं, और उनके साथ मतलब एक फ्रेंडली उनका बिहेवियर होना चाहिए, ताकि वो अपनी सारी बात उनके साथ शेयर कर सकें।
1: मैम, किशोरी बालिका के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में योग या प्राणायाम की क्या भूमिका हो सकती है?
0: योग या प्राणायाम तो बहुत ही जरूरी है, स्पेशली गर्ल्स हैं उनके लिए, क्योंकि ये शरीर को तो मजबूत करता ही है, साथ साथ में ये अपनी जो मेंटल पावर है उसको भी स्ट्रोंग करता है, ये अपने जो शरीर है होता है लचीला बनाता है, मजबूत बनाता है, जो हड्डियां वगैरह होती है और मसल्स होती है उनको भी ये मजबूत करता है, जो मोटापा होता है उसको भी नियंत्रण करता है, जो पीरियड्स वगैरह होते हैं उनको भी ये रेगुलर करने में हेल्प करता है, या थोड़ा बहुत जो पीरियड्स के टाइम दर्द होता है उसको भी ये कंट्रोल करता है। साथ ही ये जैसे मानसिक शांति भी प्रदान करता है, उनकी जो एकाग्रता है उसमें भी ये इम्प्रूवमेंट करता है, या स्मरण शक्ति अपन कह सकते हैं को भी ये इम्प्रूव करता है, और उसकी नींद वगैरह है उसमें भी ये हेल्प करता है। तो प्राणायाम और योग तो बहुत ही जरूरी है।
1: मैम, किशोरावस्था में खून की कमी या एनीमिया गर्भावस्था के दौरान गंभीर जटिलताओं का कारण भी बन सकता है, आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं?
0: बिल्कुल, ये एनीमिया की बीमारी है जो हर एज वर्ग की वुमन को अफेक्ट करती है। जो खून की कमी, अगर इस एज में भी खून की कमी रहेगी तो वो आगे चल के बढ़ती ही जाएगी, और जब भी अगर वो कभी भी प्रेग्नेंट होगी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर सकती है। माँ के अंदर अगर खून की कमी रहती है तो माँ को बहुत ज्यादा थकान होने लग जाती है, कमजोरी आती है, चक्कर आती है, या फिर जैसे बार बार जो पेशेंट होता है उसमें बार बार इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, जैसे कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, विजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, या फिर बार बार पेशेंट को बुखार आ सकता है, या फिर अगर अपन बात करें तो प्रेगनेंसी के अंदर जो बीपी बढ़ने को, जिसको प्रीक्लेम्प्सिया भी कहते हैं, उसके भी इंसिडेंस बढ़ जाते हैं एनीमिया के अंदर। डिलीवरी के टाइम जैसे ब्लीडिंग वगैरह होती है तो थोड़ी सी भी ब्लीडिंग उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी के अंदर खून वैसे ही कम है, और अगर डिलीवरी में और थोड़ी और अगर ब्लीडिंग हो जाती है तो वो तो सहन नहीं कर पाती है, ये कंडीशन उनके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक सिद्ध होती है। कभी कभी तो ये माँ की मृत्यु का भी एक बहुत बड़ा कारण है हमारे इंडिया में, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करें तो कभी कभी हार्ट फेलियर भी हो जाता है।
1: मैम, किशोरियों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए कौन कौन से पोषक तत्वों की बहुतायत में आवश्यकता होती है?
0: संतुलित आहार बहुत ही ज्यादा जरूरी है किशोरियों के लिए। संतुलित आहार में वैसे तो हमारे जो आहार होता है उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल, ये सब कुछ होना जरूरी है, लेकिन हमारे खाना है, हमारा जो भोजन है उसमें स्पेशली प्रोटीन और आयरन, कैल्शियम इनका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन होता है वो हमें दूध, दही, पनीर है, सोयाबीन है, तो ये हमारी डाइट में जरूर होना चाहिए। और आयरन में जैसे लोहे की कढ़ाई में भी हम खाना बना सकते हैं, हमारे जो खाने में आयरन की वृद्धि होती है, और हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी वगैरह, बथुआ है, इनमें काफी आयरन होता है, तो ये हमें जरूर खानी चाहिए। फ्रूट्स में भी अनार वगैरह है कि

0: भी है, स्ट्रॉबेरी है, शहतूत है, गुड़ है, चना है, इनमें भी काफी आयरन होता है। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के समय हमें चाय कॉफी वगैरह ये नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जो आयरन हमारे खाने में जो आयरन होता है उसका अब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। और कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम भी जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, दूध और दूध से बनी हुई चीजें, दही है, पनीर है, तो इनमें काफी आयरन होता है। उसके अलावा रागी, रागी है और तिल है, इनमें भी काफी आयरन होता है।
1: मैम, एनीमिया से बचाव के लिए कौन कौन से पदार्थों को अपने डाइट में शामिल करने की आवश्यकता होती है?
0: एनीमिया जो खून की कमी है, वो तो मैंने जैसे खाने का तो मैंने बता दिया है कि क्या क्या हमें लेना चाहिए। अगर उसके बावजूद भी अगर हमारे शरीर में खून की कमी रहती है तो टेबलेट भी ले सकते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट की भी एक स्कीम है एनीमिया मुक्त भारत, तो ये बच्चों से लेकर एक बड़े तक और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो फीमेल होती है या फिर किशोरियां होती है, इन सब में अलग अलग मात्रा में हमें आयरन गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है, ताकि हम एनीमिया से मुक्त रह सके। और आगे जैसे चल के जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी एनीमिया और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। इससे भी अगर हमारा एनीमिया ठीक नहीं होता है, खून की कमी अगर हमारी ठीक नहीं होती है, तो उसके बाद हम इंजेक्टेबल आयरन भी दे

0: एक बड़े तक और रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की जो फीमेल होती है या फिर किशोरियां होती है, इन सब में अलग अलग मात्रा में हमें आयरन गवर्नमेंट के थ्रू दिया जाता है ताकि हम एनीमिया से मुक्त रह सके और आगे जैसे चल के जब प्रेगनेंसी होती है तो उसमें भी एनीमिया और उससे रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो। इससे भी अगर हमारा एनीमिया ठीक नहीं होता है, खून की कमी अगर हमारी ठीक नहीं होती है, तो उसके बाद हम इंजेक्टेबल आयरन भी दे सकते हैं, जैसे इंजेक्शन के थ्रू भी हम आयरन दे सकते हैं। अगर काम नहीं करता है तो उसके बाद फिर हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करवा सकते हैं डायरेक्ट।
1: मैम, अब अंत में चलते चलते आप हमारी सभी बहनों और श्रोताओं को क्या सुझाव या सलाह देना चाहेंगी?
0: मेरा यही सुझाव है, जो भी हमारे घर में अगर किशोरियां हैं, हमें ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये हमारे राष्ट्र के विकास से जुड़ा हुआ है, तो हमें जो हमारी किशोरियां हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति हमें बहुत ही जागरूक रहना है, उन्हें सही शिक्षा और सही स्वास्थ्य मिले तो इसके लिए हमें भरपूर प्रयास करना चाहिए, संतुलित आहार लें और समय समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाएं।
1: मैम, आपने हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण और लाभप्रद जानकारियां साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: मैम, महिला जगत कार्यक्रम जानकारियों के साथ साथ मनोरंजन का भी माध्यम है। तो चलते आप अपनी पसंद का कौन सा गीत हमारी सभी बहनों और श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगी?
0: मेरे घर आई है कि नन्ही परी।
1: जी मैम, तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

सरकार का एक प्रमुख स्वास्थ्य अभियान है जिसे 25 दिसंबर 2014 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था। सगया इसका उद्देश्य देश भर में उन सभी महिलाओं और 2 साल तक के बच्चों का टीकाकरण करना होता है जो किन्हीं कारणों से नियमित टीकाकरण से वंचित रह जाते हैं। सखियों, इस योजना के तहत 11 जानलेवा बीमारियों जैसे कि डिफ्थीरिया, तपेदिक, जापानी एंसेफलाइटिस, न्यूरोमकोल रोकर और रोटा वायरस, रुबेला, निमोनिया, काली खांसी, टिटनस, पोलियो, टीबी, खसरा और हेपेटाइटिस बी जैसी बीमारियों से बचाव के टीके मुफ्त लगाए जाते हैं। सखियों, इस अभियान की शुरुआत सफलता को देखते हुए सरकार ने इसके कई उन्नत संस्करण सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 से लेकर 5.0 तक लागू किए हैं। हालिया चरणों में 5 साल तक के बच्चों को भी शामिल किया गया है। सखियों, भारत में समग्र टीकाकरण तंत्र का हाल ही में विस्तार हुआ है जिसमें 14 वर्ष की बालिकाओं के लिए राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान और स्वदेशी रूप से निर्मित टेटनस डिप्थीरिया TD वैक्सीन की शुरुआत शामिल है। सखियों, स्थानीय टीकाकरण शिविर का पता लगाने या अपने बच्चे की पात्रता को जांचने के लिए आप अपने निकटतम सरकारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से परामर्श कर सकते हैं या UWIN प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण कर सकते हैं। तो सखियों, ये तो थी जानकारी मिशन इंद्रधनुष पर और अब समय आ चुका है आपसे अनुमति लेने का। तो फिर मिलेंगे नई चर्चा, जानकारी, गीत संगीत और ढेर सारा मनोरंजन लेकर। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अब दीजिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति आपकी रेडियो सखी अनीता शर्मा को। नमस्कार।

सखियों, अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर मधुरिमा वर्मा जी की पसंद का ये गीत। इसके लिए हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और अब कर लेते हैं कुछ जानकारी की बातें। सखियों, जानकारी की बातों में आज हम बात कर रहे हैं मिशन इंद्रधनुष के बारे में। सखियों, मिशन इंद्रधनुष भारत

श्रोतो, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम महिला जगत। ये आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। अब से कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा, पशुपालन और पर्यटन सहित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी में 1258 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस आज। प्रदेश भर में परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां। और राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा, स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता की। इसके बाद दोनों देशों ने रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता के दौरान

0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा। प्रधानमंत्री ने मुक्त व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि भारत और न्यूजीलैंड हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।
1: न्यूजीलैंड की इनोवेशन, एंटरप्राइज और फ्यूचर ओरिएंटेड सोच का प्रतीक है। भारत की ओर से मैं 140 करोड़ लोगों की एस्पिरेशंस और एम्बिशंस का संदेश लेकर आया हूँ। फ्रेंड, यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत और न्यूजीलैंड के संबंध एक टर्निंग पॉइंट पर है। आज हम अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के सूत्र में बांध रहे हैं। यह केवल एक डिप्लोमेटिक माइलस्टोन नहीं है, यह हमारे साझा भविष्य का एक नया संकल्प है।
0: इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे तथा उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री कृषि उपज मंडी समिति में आयोजित कार्यक्रम में 1258 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की सौगात देंगे। केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 6 विकास कार्यों का लोकार्पण, 10 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली फोर लेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री इस दौरान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। अजमेर जिला कलेक्टर लोकबंधु ने कल कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
2: शिलान्यास लोकार्पण का और आमसभा का प्रोग्राम स्थापित है, जिसको लेकर मैंने एसपी साहब ने संबंधित अधिकारियों के साथ सभा स्थल का दौरा किया है और कार्यक्रम स्थल पर सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के आवश्यक निर्देश दिए हैं। आने वाले सभी लोगों के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था हो, चाय की व्यवस्था हो, पार्किंग की क्या व्यवस्था है, किस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जहां आगमन होगा उस रूट पर कोई अन्य ट्रैफिक नहीं हो, इसी प्रकार के बाकी अन्य जो व्यवस्थाएं, आने वाले सभी लोग जो इस सभा में आ रहे हैं उनके लिए जो भी व्यवस्थाएं करनी है उसके संबंध में निर्देश दिए हैं।
0: मुख्यमंत्री ने रामजल सेतु लिंक परियोजना के सभी काम निर्धारित समय सीमा से पहले पूरे करने के निर्देश दिए हैं। कल जयपुर में हुई परियोजना की समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि इससे पूर्वी राजस्थान के लाखों लोगों को पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक उपयोग के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध होगा। उन्होंने परियोजना से जुड़े सभी निर्माण कार्यों की नियमित निगरानी करने और प्रभावित परिवारों के पुनर्वास तथा मुआवजा संबंधी कार्य तय समय में पूरा करने के अधिकारी को निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि परियोजना के तहत 24,000 करोड़ रुपए से अधिक के काम प्रगति पर हैं। नवनेरा बैराज और ईसरदा बांध का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि विभिन्न फीडर, नहरों, पंप हाउस, चंबल एक्वाडक्ट और अन्य घटक पर कार्य जारी है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इसका उद्देश्य परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और जनसंख्या संबंधी मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार की ओर से इस अवसर पर विभिन्न जन जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। प्रदेश में आज से सभी जिलों में 18 जुलाई तक जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह मनाया जाएगा। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि अभियान की थीम जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने सही और खुशहाल पर जिले भर में विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं।
3: अभियान के तहत आशा सहयोगिनियों, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर योग्य दंपति सर्वे किया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में सास बहु सम्मेलनों का आयोजन किया जाएगा, जिनमें गर्भ धारण के बीच स्वस्थ अंतराल और आधुनिक गर्भ निरोधक साधनों पर खुली चर्चा होगी। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आधुनिक गर्भ निरोधक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेंगे। सुखी परिवार और बेहतर स्वास्थ्य के लिए आशा सहयोगियों तथा स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा आमजन को जागरूक किया जाएगा। मनीष यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर।

0: ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए डाक विभाग और भारतीय दूरसंचार विनिमायक प्राधिकरण ट्राई के बीच दिल्ली में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत देश के 5,68,000 से अधिक गांवों में विभिन्न दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के मोबाइल नेटवर्क का ऐप आधारित सर्वेक्षण किया जाएगा। सर्वे का काम 1,40,000 से अधिक ग्रामीण शाखा डाकघरों के माध्यम से किया जाएगा। डाक सेवक अपनी नियमित डाक वितरण गतिविधियों के दौरान ट्राई द्वारा विकसित मोबाइल ऐप और नेटवर्क संबंधी आंकड़े जुटाएंगे। इन आंकड़ों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं की कमियों की पहचान की जाएगी और नेटवर्क व्यवस्था को बेहतर बनाने के प्रयास किए जाएंगे। राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग राजनीतिक प्रतिनिधित्व ने कहा है कि स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय, वैज्ञानिक और पारदर्शी है। आयोग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि सर्वे उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप कराया जा रहा है। केवल अधिकृत प्रगणक ही ओबीसी परिवारों का सत्यापन कर निर्धारित प्रारूप में जानकारी दर्ज कर रहे हैं। आयोग के अनुसार पोर्टल पर उपलब्ध नागरिक विकल्प आम लोगों के लिए स्वतंत्र रूप से डेटा दर्ज करने के लिए नहीं है, बल्कि अधिकृत प्रगणकों के लिए वैकल्पिक तकनीकी व्यवस्था है। आयोग ने आमजन से सर्वे को लेकर भ्रामक सूचनाओं पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की राज्यस्तरीय रैंकिंग में सीकर जिला केंद्रीय सहकारी बैंक प्रदेश में पहले स्थान पर रहा है। वहीं केंद्रीय सहकारी बैंक बूंदी दूसरे और जोधपुर तीसरे स्थान पर रहा। एमपैक्स श्रेणी में नीमोद ग्राम सेवा सहकारी समिति ने पहला, बूंदी जिले की भिया ग्राम सेवा सहकारी समिति ने दूसरा और घाट का बराना ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये जानकारी सहकारिता विभाग के शासन सचिव और रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक में दी। उन्होंने कहा कि जिला केंद्रीय सहकारी बैंक और एमपैक्स मिलकर काम करें ताकि सहकारी योजनाओं का लाभ किसानों, पशुपालकों, महिलाओं और युवाओं तक प्रभावी ढंग से पहुंचाया जा सके। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच रक्षा, पशुपालन और पर्यटन सहित 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी में 1258 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। विश्व जनसंख्या दिवस आज, प्रदेश भर में परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए विभिन्न जागरूकता गतिविधियां और राजस्थान राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने कहा स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण के लिए कराया जा रहा ऑनलाइन सर्वे पूरी तरह विश्वसनीय है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। कुछ ही देर में आप हमारे दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम सुनेंगी। यह पॉडकास्ट सीरीज का 9वां एपिसोड है जिसका पुनः प्रसारण आप सुनेंगी। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: पर्यावरण
1: मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं। सस्टेनेबिलिटी, माइंडफुल कंजम्पशन, अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग, ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सके जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए। आज जो विशेष मेहमान है आशीष अग्रवाल जी, जो हम सबको राह दिखाते हैं कि अपनी जीवन शैली को सरल बनाकर ही कितना फायदा हमें हो सकता है और हमारी प्रकृति को भी कितना फायदा हो सकता है। सो आपका बहुत बहुत स्वागत आकाशवाणी में। आशीष जी, सर्वप्रथम जो आपका एक मुहिम है उससे ही शुरुआत करते हैं। सस्टेनेबिलिटी, माइंडफुल कंजम्पशन, अ वे टू मिनिमलिस्टिक लिविंग, ये जो आपका तथ्य है, जो कॉन्सेप्ट है, इसको आप अगर हमें सरल शब्दों में समझा सके जो हमारे श्रोता सभी समझ पाए कि क्या है ये कॉन्सेप्ट,

0: इसके पीछे की मूल सोच क्या है?
1: तो मैं इसके वाई से शुरू करता हूँ कि ये पूरा मुहिम शुरू क्यों हुआ। तो आज के डेट में समाज में तीन तरह के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। पर्सनल लेवल पे अगर देखा जाए तो तनाव बहुत बढ़ गया है, स्ट्रेस बहुत बढ़ गया है। सोशल लेवल पे देखा जाए तो हम लोग हमेशा बात करते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश में सिविक सेंस की थोड़ी कमी है। और अगर ग्लोबल लेवल पे देखा जाए तो क्लाइमेट चेंज, वातावरण का जो बदलाव हो रहा है वो बहुत ही तेजी से हमारे सामने आ रहा है। तो ब्रिज फॉर चेंज एक मिशन पर है जहां वो यस आई एम माइंडफुल मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें माइंडफुल कंजम्पशन को एज अ प्रोफाउंड टूल हम लोग प्रेजेंट करते हैं, जिससे हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी। और हमारी वेलबींग इंप्रूव होगी, हमारे एक्शंस इंप्रूव होंगे, तो आसपास होने वाले जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप मिटिगेट होना शुरू हो जाएंगे। जिसमें हम लोग कहते हैं युवाओं से कि छोटे छोटे एक्शंस लेने हैं, जहां पॉसिबल हो वहां एक्शंस लेने हैं, जितना पॉसिबल हो उतना करना है। तो इसको हम लोग टर्म देते हैं PRR, कि क्या हम लोग कभी पॉज लें, अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रिफ्लेक्ट करें, और जिस भी पैरामीटर्स पे, चाहे वो फूड है, फैशन है, टेक्नोलॉजी है, रिलेशन है, प्रोफेशन है, किसी भी आयाम पे जहां उनको लगता है रेगुलेट कर सकते हैं उस चीज को रेगुलेट करें। और ये एफर्टलेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाएंगे तो वही 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेंगे, उसके बाद फिर हमारा मोटिवेशन कहीं ना कहीं लैक करने लगता है। तो छोटे छोटे स्टेप्स, टाइनी एक्शंस कैन ब्रिंग जाइगेंटिक रिपल्स, तो वो हमारा ध्येय है। और सरल जीवन जहां आपको सही लगता है और उसमें छोटे छोटे स्टेप्स, तो यही पूरा मूवमेंट का थॉट प्रोसेस है।
0: आशीष जी, आप जो बात कर रहे हैं माइंडफुल कंजम्पशन की, वही धुरी है आपके पूरे जो मुहिम की। उसको और गहराई से समझने के लिए अगर हम ये आपसे जानना चाहें कि माइंडलेस कंजम्पशन क्या होती है, जिसको काउंटर करने के लिए आप ये जो माइंडफुल कंजम्पशन लेके आए हैं, ताकि हम बेहतर समझ पाए कि इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्या है।
1: जो माइंडलेस कंजम्पशन की बात करें तो जो नीड वर्सेस वांट जो बोलते हैं
0: जी,
1: कि हम लोग सबको कहीं ना कहीं पता है कि हमारी नीड तो इतनी ही है, लेकिन कई बार हमारी चाहते होती हैं, पीयर प्रेशर होता है, समाज का स्टेटस होता है, उस चीज को अकॉम्प्लिश करने के लिए हम लोग बहुत सारी चीज ऐसी खरीदते हैं, बहुत सारी चीज ऐसी इस्तेमाल करते हैं, एक लाइफस्टाइल ऐसा फॉलो करते हैं जिसकी शायद हमें उतनी जरूरत नहीं हो। और उस जर्नी में फिर बहुत सारे अलग अलग माध्यम से हम लोग ओवर कंजम्पशन करते हैं, अनरियलिस्टिक एम्बिशंस सामने रखते हैं। तो उस चीज को ही हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस अनरियलिस्टिक जो हमारे एम्बिशन है उसको कैसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, थोड़ा सा बेहतर और मोर रिस्पॉन्सिबल लाइफ स्टाइल की तरफ युवाओं का, हमारे जो भी ऑडियंस है उनका ध्यान लाया जाए।
0: तो आपने जो नीड्स और वांट्स की बात करी कि एक तो है हमारी जरूरत और एक है हमारी ख्वाहिश,
1: बिल्कुल,
0: ये नीड और वांट का जो अंतर है, क्या आप हमें और गहराई से इसको समझा सकते हैं?
1: ये बहुत मुश्किल है। नीड का तो हमारा मानना है कि सॉफ्टवेयर ही हमारा वैसा डेवलप है कि हमें पता है कि ये हमारी जरूरत है, कब वो जरूरत वांट हो रही है उतना हमें अंदर से आवाज आ जाती है। लेकिन चूंकि हम लोग इतने कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में रहते हैं, इतने फास्ट इवॉल्विंग सोसाइटी में, कि वांट का कहीं ना कहीं ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है, और वहीं पे फिर प्रॉब्लम शुरू होती है। प्रॉब्लम इसलिए शुरू होती है कि सपोज मैं आज आशीष एक्स पर हूँ, मुझे वहाँ 5x तक पहुँचना है, जस्ट बिकॉज मेरे पीयर ग्रुप में कोई वहाँ पर है, तो मैं ये नहीं देखता कि मेरे स्किल्स क्या है, मेरी अपॉर्चुनिटीज क्या है, राइट टाइम राइट प्लेस पे मैं हूँ कि नहीं। मैं बस भागता रहता हूँ कि मुझे 5x तक पहुँचना है, क्योंकि मेरे चाचा का बेटा या XYZ इन माई फैमिली इज एट दैट पॉइंट। तो उसमें दो चीजें होती है। पहला तो होता है कि मैंने बहुत मेहनत की लेकिन सही समय पे सही जगह पे नहीं था, तो मैं एक्स से 3x तक पहुंचा, तो सोसाइटी इतनी कॉम्पिटिटिव है, इतनी शॉर्ट साइटेड है कि वो उस चीज के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं करेगी 3 गुना आगे बढ़ा, बट उस चीज के लिए रेडिक्यूल करेगी कि देखो अभी भी वो इंसान तुमसे कितना आगे है। तो वो जो स्यूडो कमी है ना, जो समाज बताता है कि तुम में कुछ कमी है, तुम उतने स्मार्ट नहीं हो, तुम उतने स्किल्ड नहीं हो, उस कमी को छुपाने के लिए हम लोग माइंडलेस कंजम्पशन करते हैं। उस भड़ास को दबाने के लिए किसी का वो भड़ास, फ्रस्ट्रेशन, वो वॉइड खाने पे निकलता है, किसी का फैशन पे निकलता है, किसी का रिलेशन पे निकलता है, किसी का दिन भर इंस्टाग्राम और ये सब पे निकलता है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि अगर मैं एक्स से 5x पहुंच भी गया, राइट टाइम राइट प्लेस, बहुत मेहनत की, सही लोग मिले, तो भी अगर मैं 5x पे पहुंचा तो ये समाज मुझे शांति वाली जिंदगी, एक सिंपल जिंदगी जीने के लिए प्रेरित नहीं करता है। वो बोलता है अब तुम 6-figure सैलरी कमा रहे हो, तो तुम्हें इस तरह का मोबाइल, इस तरह का घर, इस तरह के वेकेशंस होने चाहिए। तो हमने जो रिसर्च किया उसमें यही पाया कि वेदर वी आर सो कॉल्ड सक्सेसफुल और नॉट, दोनों ही केस में मैं माइंडलेस कंजम्पशन करता हूं बिकॉज ऑफ द पीयर प्रेशर। और वही सारे स्ट्रेस की, वही सारे नॉइस की जड़ है। इसीलिए माइंडफुल कंजम्पशन के प्रति हम लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश करते हैं डेटा की मदद से।
0: जी, तो कैसा डेटा, किस तरह से फायदा, जब आप कह रहे हैं कि माइंडफुल कंजम्पशन होती है, जितनी आपको जरूरत है उसके अनुसार आप कंज्यूम करते हैं, तो इसका जैसा आप कह रहे हैं कि आपको खुद को फायदा होता है, क्लटर कम हो रहा है, आप एक पीसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं, उसके अलावा पर्यावरण को भी इसका लाभ होता है, जो आप डेटा की बात कर रहे हैं उसको आप हमें थोड़ा समझा सकते हैं?
1: तो कोई भी चीज जब हम लोग करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी यूज होती है किसी भी फॉर्म में, और उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए कुछ ना कुछ एमिशंस, कुछ पॉल्यूशन हुआ, उस पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट

0: मेजरमेंट में नापा जाता है। जैसे हम लोग होते हैं दूरी को किलोमीटर में नापते हैं, वजन को किलोग्राम्स में नापते हैं, वैसे पॉल्यूशन को कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट, कार्बन फुटप्रिंट जो बोलते हैं हम लोग। तो कोई भी काम करते हैं उसका कुछ ना कुछ कार्बन फुटप्रिंट है। तो ये एक अच्छी बात भी है और मुश्किल भी है कि हर चीज का इमिशन हो रहा है तो मैं कंट्रोल कैसे करूं, लेकिन हर चीज का इमिशन हो रहा है तो वहां अपॉर्चुनिटी है कि हम लोग चूंकि सैकड़ों चीजें अपने दिन में कंज्यूम करते हैं, तो जहां जहां हमें पॉसिबिलिटी लगती है हम लोग अगर उसको थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा इनडायरेक्ट पॉल्यूशन बचाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम में से सब लोग भारत में तो चाय पीना पसंद करते हैं, तो अगर मैं हर दिन सुबह 1 कप चाय पीता हूँ तो हफ्ते में मैंने 7 कप चाय पिए, तो डेटा बताता है, जैसे उसका सोर्स है आवर वर्ल्ड इन डेटा, तो डेटा बताता है कि 1 लीटर दूध बनाने के लिए 3 किलोग्राम कार्बन इमिशन होता है, और अगर 1 लीटर दूध में 10 कप चाय बनते हैं तो इसका मतलब हर कप का करीब 250 ग्राम हुआ। तो हम लोग जब इंगेज करते हैं अपने ऑडियंस के साथ तो ये नहीं बोलते कि आप चाय पीना बंद कर दो, हम लोग बोलते हैं कि अगर आप कंफर्टेबल हो तो हफ्ते में 1 कप कम कर सकते हैं। तो अगर हफ्ते में 1 कप भी कम किया गया तो साल में 250 ग्राम × 52 करीब 12-13 किलो कार्बन एमिशंस बच जाए। तो ये सिर्फ एक पैरामीटर है, ऐसे हजारों चीज हम लोग अपने अंदर ले रहे हैं, तो जहां जहां हम लोग कंफर्टेबल हैं वहां अगर थोड़ा सा रेगुलेट करें तो बहुत सारा एमिशंस बचाया जा सकता है।
1: इस संदर्भ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में जो शुरू किया था मिशन लाइफ, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, तो उसमें भी उन्होंने हर एक नागरिक की सक्रिय भागीदारी को एक महत्वपूर्ण बताया था जो पर्यावरण संरक्षण है उस दिशा में। तो वहां पर आप हमें बताएं कि कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें हैं, किन किन आदतों से हम हमारा जो भी वातावरण है उसको हम ज्यादा शुद्ध करने में या उसके संरक्षण में हम अपना योगदान कर सकते हैं।
0: तो इसको शेयर करने के लिए मैं 5R का यूज करूंगा, रिड्यूस, रियूज, रिसाइकिल। तो 5R में सबसे पहले वही रिड्यूस आता है। तो एक चीज तो बहुत क्लियर है कि अगर हम लोग अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन नहीं लाएंगे तो कितना भी पेड़ लगाएं, कितना भी टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए, एमिशंस कम नहीं होंगे तो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अपनी लाइफस्टाइल को, जीवन शैली को थोड़ा बदलना ही पड़ेगा, जो कि मिशन लाइफ का भी देह है कि अपने लाइफस्टाइल को एनवायरमेंट से कैसे अलाइन किया जाए। तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में जैसे यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम का डेटा बताता है कि हर साल करीब 50 किलो खाना हर भारतीय वेस्ट करता ऑन एन एवरेज। तो फूड वेस्ट एक ऐसी चीज है जो हमें इमीडिएटली रोक देनी चाहिए अगर अभी तक हम लोग के जीवन शैली में वो चीज नहीं आई है। तो वैसे ही एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत होता है, चाहे वो मिल्क हो, चाहे वो मीट बेस्ड चीजें हो, जो भी चीज एनिमल से आ रही है, तो उसको हम लोग थोड़ा रेगुलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। वैसे ही एयर ट्रेवल का कार्बन इमिशन बहुत होता है, तो रिड्यूस के कॉन्टेक्स्ट में एक आम नागरिक जो करता है तो फूड वेस्ट ना करे और एयर ट्रेवल कम हो। रिड्यूस के बाद अगर रिप्लेस की बात करते हैं तो बहुत सिंपल सा है, जैसे कपड़े का थैला यूज करें। तो आमतौर पर हर दिन अगर हम लोग सब्जी वब्जी लेने जा रहे हैं तो 3 प्लास्टिक 4 प्लास्टिक यूज हो जाता है, तो सिर्फ एक बैग यूज करेंगे तो साल भर में अगर 3 × 365 भी करें तो 1000 प्लास्टिक की बैग्स सिर्फ और सिर्फ सब्जी के मायने में कम हो सकती हैं। और वही वो प्लास्टिक भी जैसा हम लोग बोलते हैं ना, सिंगल यूज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रिप्लेस के कॉन्टेक्स्ट में प्लास्टिक को रिप्लेस कर दिया हमने कपड़े के बैग से, वैसे ही प्लास्टिक की बॉटल्स को रिप्लेस कर दिया मेटल की बॉटल से, आजकल टिश्यू पेपर को यूज करने का बहुत फैशन चला है, तो टिश्यू पेपर को रिप्लेस कर दिया रूमाल वगैरह से, जो हमारे घर में हमारे माता पिता और दादा दादी हमेशा ही करते आए हैं। तो इससे बहुत सिंपल सा एक्ट है लेकिन बहुत सारा पानी, बहुत सारा कचरा, बहुत सारा कार्बन इमिशन बच सकता है। रिपेयर, आजकल हमारी लाइफस्टाइल इतनी फास्ट हो गई कि रिपेयर कराने का उतना टाइम नहीं है, तो अगर मैं 2 घंटे जाऊंगा रिपेयर कराने फिर वापस लेने आऊंगा, इतने में तो मैं नया सामान मंगा लूंगा। लेकिन रियल कॉस्ट हम लोग नहीं पे करते किसी भी चीज का, अगर एनवायरमेंटल कॉस्ट भी जोड़ा जाए, वेस्ट मैनेजमेंट का भी कॉस्ट जोड़ा जाए, तो किसी भी प्रोडक्ट का रियल कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। तो जहां जहां पॉसिबल हो रिपेयर कराएं। इन सब में जब सब हो गया, रिड्यूस हो गया, रिप्लेस हो गया, रिपेयर हो गया, तब जो बचा उसको रिसाइकलिंग के लिए दें।
1: आशीष जी, युवाओं की अगर हम बात करें, आप युवाओं को प्रेरित करने पर काफी बल देते हैं। अब युवा महत्वाकांक्षी भी होते हैं और वो अपने जो स्वप्न हैं उनको भी बहुत गहराई से देखते हैं, गंभीरता से देखते हैं, और एक आधुनिक जीवन शैली भी वो जीना चाहते हैं। तो ऐसे में आप कैसे उनको कन्विंस करते हैं कि आप अगर साधारण अपनी जीवन शैली को करेंगे, मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल अडॉप्ट करेंगे तो उससे आपकी प्रगति में कोई बाधा नहीं आएगी बल्कि आपका जीवन बेहतर होगा? तो ये बताइए कितना चैलेंजिंग है और कैसे आप इसको अचीव करते हैं जो युवा है उनको इस दिशा में ले जाने की ओर?
0: थोड़ा चैलेंजिंग होता है, बट इनफ रिपोर्ट्स आर देयर इन मार्केट जहां पे ये पता है कि हमारा जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप है जिसको अब अपर मिडिल क्लास बोलते हैं, उसके ऊपर फिर जो इलीट क्लास, एफ्लुएंट क्लास होता है। तो आज के डेट में जितनी भी मॉडर्न एज बीमारियां हैं इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, डायबिटीज हो, कोलेस्ट्रॉल हो, ओवरवेट हो, लोनलीनेस हो, स्ट्रेस हो, एंग्जाइटी हो, डिप्रेशन हो, ये सब उसी एफ्लुएंट क्लास में आ रहा है। तो इसलिए बहुत एविडेंट है कि सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल गेन करने से हमारा लाइफ की क्वालिटी ओवरऑल नहीं बढ़ सकती। उसके लिए अपने लिए समय निकालना जरूरी है, अपनों के लिए समय।

0: निकालना जरूरी है, सेहत पे ध्यान देना जरूरी है, रिलेशंस पे ध्यान देना जरूरी है। तो इस पूरे मुहिम में, इस पूरे मिशन में वही थॉट प्रोसेस होता है कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि बहुत जरूरी है, लेकिन अगर सादगी के साथ वो समृद्धि लाई जाए तो उसमें चार चांद लग जाते हैं। और वो आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है, तो अगर सादगी भरा जीवन रहेगा आपका, माइंडफुल अगर आप रहोगे जीवन में, तो आपका ही ये जो तनाव है, ये जो स्ट्रेस है, कम होगा, आपकी फिजिकल और मेंटल वेलबींग इंप्रूव होगी, और आपकी अगर वेलबींग इंप्रूव हो रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, जिससे आपका काम और बढ़ेगा। तो ग्रो करने के अगेंस्ट नहीं है कोई भी थॉट प्रोसेस, बट वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ, वी शुड बी ग्रोइंग नॉट एट द कॉस्ट ऑफ आवर रिलेशंस। तो वही थॉट प्रोसेस है। और गांधी जी ने भी बोला है कि कैपिटल में बुराई नहीं है, उसका यूज किस तरीके से करते हैं वो डिफाइन करता है वेदर इट इज एन एविल और ब्लेसिंग। तो हम लोग वही बोल रहे हैं कि आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है, समृद्धि और को साथ में लेके चलने की कोशिश करो।
1: कोई ऐसे डेटा पॉइंट्स भी हैं जिनसे उनको समझाते हैं कि कैसे आप एक इंडिविजुअल लेवल पर अगर माइंडफुल कंजम्पशन करते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने लाइफस्टाइल को मिनिमलाइज करते हैं जरूरत के अनुसार, तो किस तरह का फायदा होता है एनवायरनमेंट को, ये थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं एग्जाम्पल्स देके?
0: आज के यूथ बहुत इंस्पायर्ड हैं, बहुत मोटिवेटेड हैं, बहुत ब्लेस्ड भी हैं, और हमने देखा है कि दे वांट टू डू समथिंग गुड फॉर द सोसाइटी, बस उन्हें थोड़ा सा नज की जरूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस की जरूरत है। तो अगर रैशनैलिटी बेस्ड बातें की जाए, लॉजिकल तरीके से कोई चीज पुट की जाए, तो उनका सपोर्ट काफी मिलता है। तो ये जो माइंडफुल लिविंग है, ये तो हमारे एंसेस्टर्स हमेशा से करते आए हैं, कोई नई चीज नहीं, हमारे सभ्यता में, हमारे ट्रेडिशंस में है। बस डेटा की मदद से जब हम लोग पुट करते हैं उनके सामने, कीप इट, तो उनका इमोशंस एक्शन की जर्नी है बहुत ईजी हो जाती है। अगर अभी कपड़े की बात करें, तो एक कंपनी का भी रिसेंटली सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट आया था, उसमें उनका कहना था कि जो वो एक जीन्स बनाते हैं उसके लाइफ साइकिल में, मतलब डेनिम बनाना, स्टिच करना, शॉप पे ले जाना, फिर हमारे जैसे लोग उसको परचेज किए, यूज किए, धोए, यूज किए, धोए और फाइनली फेंके, तो उस पूरे जीवन काल में एक जीन्स के करीब 3800 लीटर पानी का इस्तेमाल होता है। तो हम लोग यही बोल रहे हैं कि आपके प्रेजेंट लाइफस्टाइल जैसा भी हो बहुत बढ़िया है, क्या उसमें छोटा सा बदलाव ला सकते हैं।
1: आशीष जी, एक जो प्रोजेक्ट 333 है, अंतर्राष्ट्रीय प्रोजेक्ट, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, शायद आपने उसको खुद अपनाया भी है, तो आप बता सकते हैं अपने अनुभव से कि किस तरह से ये बेनिफिट करता है, न सिर्फ पर्सनली जो भी उसको अपना रहा है, जो भी अडॉप्ट कर रहा है उस व्यक्ति के लिए वो लाभदायक है, हमारे पर्यावरण के लिए भी लाभदायक है।
0: जब हम लोगों ने ये मूवमेंट शुरू किया 2021 में, तो बहुत इंपॉर्टेंट था कि पहले हम लोग कुछ प्रैक्टिस करें और फिर उसके बाद उसकी शेयरिंग करें। तो उसमें जब रिसर्च किए तो ये एक इनिशिएटिव आया, प्रोजेक्ट 333, जहां पे पार्टिसिपेंट को इनवाइट किया जाता है कि वो 33 पर्सनल आइटम्स के साथ 3 महीने की जिंदगी जिए। वो पर्सनल आइटम्स मतलब जो आप अपने साथ कैरी करते हैं, जिसके बिना आपका जीवन नहीं हो सकता, आपका किचन वेयर, आपका सोफा, वो नहीं, आपका खुद का 33 आइटम्स।
1: कुछ अगर आप एग्जांपल दे सकते?
0: हाँ, जैसे मेरे कपड़े हुए, मेरे स्टेशनरी हुई, मेरा सैनिटरी किट हुआ, मेरा ट्रेवल बैग, लैपटॉप वगैरह हुआ, तो जो चीज अगर मैं कहीं जा रहा हूँ तो अपने साथ रखूंगा। तो वो चैलेंज हम लोगों ने लिया 2021 में, और आज 5 साल हो गए मैं उसी 33 सामान के साथ जिंदगी जीता हूँ। तो उससे बहुत वही लिबरेशन हुआ, क्योंकि मुझे सोचना नहीं है कि मुझे क्या पहनना है, बहुत सारी चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, घर में बहुत सारा स्पेस होने की जरूरत नहीं है, बहुत सारा रिसोर्स मुझे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो वही चीज, अगर अगेन 33 इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट पुटिंग सम फिगर इज इम्पॉर्टेंट। तो जिसको जो इम्पॉर्टेंट लगता है, जिसको जो कम्फर्टेबल लगता है, वो एक दायरा बना ले कि मुझे 50 चीजें या 55 चीजें के साथ 3 महीना 6 महीना ट्राई करना है, तो वो एक जो फ्रीडम है उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो ये सारे तरीके होते हैं अपने क्लटर को कम करने का, जिससे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है उस पर फोकस कर सके। आजकल ऑनलाइन ऑर्डर्स हमारे लाइफ का बहुत इंटीग्रल पार्ट हो गई है, तो उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है कि जितना भी कर रहे हैं उसमें क्या थोड़ा कम किया जा सकता है। तो 2 तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं, एक तो ग्रोसरीज वगैरह मंगाने में, तो उसमें भी अगर हम लोग बल्क में मंगाते हैं या खुद जाके ले आते हैं, तो अननेसेसरी जो पैकेजिंग है वो कम होगी
1: जी।
0: और उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है क्लाइमेट के दृष्टिकोण से, वेस्ट मैनेजमेंट के दृष्टिकोण से, वो है पैकेज्ड फूड, उसको कहीं ना कहीं कम करने की जरूरत है, क्योंकि उसमें फिर जब सामान आता है तो 1 टाइम प्लास्टिक, 1 टाइम कटलरी, और उसमें फिर जो वो खाना लगा हुआ होता है उसको वेस्ट मैनेजमेंट में बहुत दिक्कत होती है, उसको रिसाइकिल करने में। तो क्या हम लोग इस तरह के ऑनलाइन ऑर्डर्स जो करते हैं उसको थोड़ा सा कम करें, एलिमिनेट कर पाए तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट शुरुआत तो करें, तो ये भी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है।
1: तो इसी से जुड़ा है मेरा अगला सवाल कि कैसे हम आइडेंटिफाई करें, एवरेज एक आम नागरिक कैसे ये पहचान करे कि क्या चीज हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, माइंडफुल कंजम्पशन के दायरे में आती है, और कौन सी चीज इम्पोर्टेंट नहीं है जो माइंडलेस कंजम्पशन के दायरे में आती है और जिसको हम हटा सकते हैं।
0: तो इसमें 2-3 प्रश्न हमेशा मिलेंगे आपको, जब भी हम लोग परचेज करने की सोच रहे हैं या शॉपिंग करने का या किसी भी तरीके का कंजम्पशन करने की सोच रहे हैं, तो क्या हमें इसकी जरूरत है इमिडिएटली, अगर मैं इसको 3 महीने बाद भी लूं तो क्या कुछ?

0: फर्क पड़ेगा। तो जो 3 महीने का गैप है या 2 वीक का गैप है, उससे आपको इमिडिएटली पता चल जाएगा कि ये रियल में नीड है या वांट है। तो एक बार नीड वर्सेस वांट की चीज हो गई, तो जैसा बोलते हैं ना कि गुस्से में बात नहीं करनी चाहिए, वैसे ही कंजम्पशन के कॉन्टेक्स्ट में भी इम्पल्स शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो जब हमें महसूस हो रहा है इम्पल्स है, तो बोले कि चलो 2 घंटे बाद ही कर लेंगे, तो फिर हम लोग जजमेंट लेने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे कि ये सही में नीड है या वांट है। और फिर नीड है कि वांट है, फिर वो क्वेश्चन से पूछ सकते हैं कि आज इसको मैं नहीं खरीदता हूँ या खरीदती हूँ तो मुझे क्या फर्क पड़ेगा, 2 हफ्ते बाद खरीदूंगा। तो फिर 2 हफ्ते कम से कम वो चीज टली, 2 हफ्ते तक तो कम से कम वो इमिशंस इनडायरेक्टली बचे।
1: जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था, वही वांट में ये भी आ जाता है कि आप अपने आसपास वाले जो लोग हैं उनके साथ कंपीट करना चाह रहे हैं, उनके पास कोई चीज है तो आप भी वो ले लेते हैं हालांकि आपको उसकी जरूरत नहीं है। तो ये भी बहुत सारे पहलू हैं वांट के, जिसमें शायद अगर हम थोड़ा सा कहें कि हार्श वर्ड है लेकिन उसको लालच या ग्रीड भी कह सकते हैं, तो उससे हमें बचना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ग्रीड का तो कोई एंड ही नहीं होता ना, देयर इज इनफ रिसोर्सेज फॉर नीड बट नॉट फॉर ग्रीड, वो तो हमने सुना ही है। और उसका वो रेस का एक स्पाइरल है, वो कभी खत्म नहीं होगा, और उससे स्ट्रेस ही होना है। जो पहले मैंने एक बार शेयर किया x से 3x और 5x की बात, वो वही चीज है। तो हमें देखना है कि हमारी जर्नी क्या है, क्योंकि हम लोग सबकी जर्नी अपनी अपनी है, और हमारे कैनवास पे जिस चीज की जहां जरूरत है उस पे अगर फोकस करेंगे तो बहुत लाइफ सिंप्लीफाइड रहेगी और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी पाएंगे हम लोग,
1: हेल्दी लाइफ भी जी पाएंगे। और शायद ये भी है कि आपका जो फिजिकल स्पेस जब फ्री होता है तो आपका मेंटल स्पेस भी फ्री होता है, आपको कम चीजों का ध्यान रखना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हम अपनी हॉबीज का या अपने रिलेशनशिप्स को ज्यादा टाइम दे सकते हैं,
0: बिल्कुल
1: अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट है उनको ज्यादा टाइम दे सकते हैं, आपका क्या अनुभव रहा है?
0: 100% मैम। तो अभी हम लोग क्या है कि कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्रीज का जो लाइफस्टाइल है उसके तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, डेवलपमेंट इज ऑलवेज गुड, लेकिन उसी में डेटा भी बताता है कि वेस्टर्न कंट्रीज में ही बहुत ज्यादा लोनलीनेस है, वहां के बच्चों में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है। तो हम लोग इतने स्मार्ट हैं कि वी नीड टू टेक बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, तो हमारी जो अच्छी चीजें हैं उसको बनाकर वेस्ट की जो अच्छी चीजें हैं उसको इनग्रेन करनी है। तो बोलते हैं ना, मॉडर्निटी और सभ्यता को मिलाने की जरूरत है।
1: तो जो एक सादगी वाला जीवन शैली है, जिसे आप मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल कहते हैं, उसको लेकर अलग अलग धारणाएं हैं सबके बीच। सो आप हमें बताएं कि प्रमुख गलत फहमियां क्या है मिनिमलिस्ट लाइफस्टाइल को लेकर, और उनको दूर करना कितना इम्पोर्टेंट होता है जब आप युवाओं को कन्विंस करना चाहते हैं इस राह की ओर बढ़ने की तरफ।
0: तो जब भी हम लोग माइंड और सस्टेनेबल लिविंग की बात करते हैं ना, तो आम तौर पे ये धारणा बनी है कि हमें बहुत रिस्ट्रिक्टिव लाइफस्टाइल के लिए बोला जाएगा
1: जी।
0: बोला जाएगा ये मत करो वो मत करो, होता है ना साधु बन के हिमालय पे चले जाओ। तो उस कारण से क्या होता है कि लोग इस लाइफस्टाइल को, इस जीवन शैली को ट्राई नहीं करने चाहते, बहुत ज्यादा फ्रिक्शन महसूस होता है शुरुआत में। तो ये जो मिथ है उसको हम लोग ब्रेक करने की कोशिश करते हैं कि माइंडफुल होने के लिए डे वन पे छोटे छोटे एक्शन लेने की जरूरत है, और वो छोटे छोटे एक्शन किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया, इतनी सारी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं, फूड, फैशन, ट्रेवल, टेक्नोलॉजी, किसी भी मायने में अगर आप अपने लाइफस्टाइल को थोड़ा रेगुलेट करती हैं तो आपकी वेलबींग बढ़ेगी, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उससे आपका प्रोफेशनल ग्रोथ होगा, वेलबींग बढ़ेगी तो आपकी पर्सनल जर्नी, पर्सनल रिलेशंस इंप्रूव होंगे तो आपका पर्सनल ग्रोथ होगा। तो उस चीज को बताना कई बार होता है कि डे वन पे हम लोग बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, तो वो हम लोग कहते हैं कि मत कीजिए, और किसी भी चीज में वो हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि हमें अगर कुछ 6 महीने बाद कोई चीज अचीव करनी है तो हमें वी हैव टू ब्रेक डाउन दैट टारगेट, उस टारगेट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना जरूरी है। तो माइंडफुल लिविंग में भी वैसा ही है, एक छोटे सी चीज से शुरुआत करते हैं और वो चीज भी आपको डिसाइड करनी है। तो देयर इज नो फिक्स गाइडलाइन कि अगर आप एक्स करते हो तो आप माइंडफुल हो, अगर आप वाई करते हो तो माइंडफुल नहीं हो। ये एक्स और वाई हर इंडिविजुअल अपने लिए डिसाइड करे
1: जी,
0: कि वो सैकड़ों चीजें कंज्यूम कर रहा है उसमें कहां वो किस चीज को रेगुलेट कर सकता है, और विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफस्टाइल, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पीस, क्योंकि लाइफस्टाइल और पीस से कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो अगेन वो सस्टेनेबल नहीं होगा।
1: हमारे जो श्रोता हैं जो आपकी बात सुनकर इंस्पायर होंगे और वो तुरंत कुछ ऐसा करना, बदलाव लाना चाहें अपने जीवन शैली में जो सिर्फ त्वरित ना हो, लंबे समय तक उसका पर्यावरण को फायदा हो, तो कोई ऐसी कॉमन चीजें बता सकते हैं जो हरेक के लिए लागू है, कोई सरल 2-3 ऐसे उपाय, ऐसी बदलाव अपनी जिंदगी में जो वो ला सकते हैं?
0: जहां जहां अगेन पॉसिबल हो, तो अगर हम लोग कार यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में अगर एक बार कारपूल कर ले, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर लेते हैं तब तो बहुत ही अच्छा है। महीने में मैं एक बार ट्रेवल कर रहा हूँ तो साल में 12 ट्रिप ले रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट एयर ट्रेवल। तो 12 एयर ट्रेवल करने से कम करके अगर एक भी कम करके मैंने ट्रेन ले लिया तो एयर ट्रेवल का बहुत ज्यादा कार्बन फुटप्रिंट होता है।
1: Yes.
0: वैसे ये टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज हर इंसान, चाहे वो युवा हो चाहे वो बड़े लोग हो, दिन भर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली टेक्नोलॉजी से हमारा मिलना होता ही है, चाहे वो काम के कॉन्टेक्स्ट में हो या वो लेजर एक्टिविटीज के कॉन्टेक्स्ट में हो। तो डेटा बताती है कि एक आम हिंदुस्तान

0: पानी करीब 3 घंटे रोज सोशल मीडिया पे स्पेंड करता है। काम पे तो जो हम लोग करते हैं वो करते ही हैं, तो उस 3 घंटे को घटा के 2 घंटे भी किया जाए तो उसका भी बहुत बड़ा इमिशन है। तो अगर 1 घंटे भी कम किया जाए तो साल भर में 365 घंटे हमने स्ट्रीमिंग कम की तो उसका बहुत बड़ा इमिशन बचेगा। सिमिलरली जो वर्किंग लोग हैं हमारे मेल्स में, हम लोग बहुत सारे लोग को मैंने देखा है इन अनरीड मेल्स 2000 रहेंगे, 5000 रहेंगे, 10000 रहेंगे, 100 रहेंगे, तो वो अनरीड मेल क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो किसी कंपनी के सर्वर में सेव है, तभी तो आपके लिए वो जब आप खोलते हैं वहां दिखाता है। तो हर मेल का 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम एमिशन है, कितना बड़ा मेल है, उसमें अटैचमेंट है कि नहीं है। तो सिर्फ इनबॉक्स को अगर हम लोग क्लियर रखते हैं उससे बहुत सारे एमिशंस बच सकते हैं। तो जो भी पहलू है हमारी जिंदगी का, किसी भी चीज को काम करने में चूंकि एमिशंस हो रहे हैं तो किसी भी चीज को में हम लोग थोड़ा माइंडफुलनेस लाते हैं तो एमिशन बचेंगे, चाहे वो फूड हो, फैशन हो, ट्रेवल हो, टेक्नोलॉजी हो।
1: कुछ और एग्जांपल्स भी आप बताना चाहेंगे?
0: तो जैसे IIT बॉम्बे के एक सर है, सोलंकी सर, तो उनका बहुत सुंदर सा एक इनिशिएटिव है वाह का, रिंकल्स अच्छे हैं, तो उनका कहना है कि हफ्ते में एक दिन अगर हम लोग बिना आयरन किया हुआ कपड़ा पहने तो कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है, क्योंकि आयरनिंग का एमिशन बहुत है, 150 ग्राम, 200 ग्राम एक कपड़े को आयरन करने में एमिशन होता है। एनर्जी हमने यूज की बिजली को, बिजली उत्पन्न करने में जो इमिशन हुआ, हाँ, तो कार्बन इमिशन वैसे कैलकुलेट हुआ कि हमने डायरेक्ट इसके लिए तो बिजली यूज की
1: जी।
0: लेकिन ये बिजली को पहुंचाने में क्या इमिशन हुआ वो मेजर होता है। तो अगर एक कुर्ते में मैंने 100 ग्राम यूज किया एग्जांपल के लिए, तो 52 हफ्ते में मैं सिर्फ 52 कपड़े कम करूंगा तो 5.5 किलो इमिशन हमने कम किए। तो जहां पे भी पॉसिबल हो, जितना पॉसिबल हो वो करने की जरूरत है, और वो जरूरत इसलिए कि कई बार हमें लगता है इस छोटे से एक्ट से बहुत ज्यादा कुछ बदलाव नहीं आएगा, लेकिन 150 करोड़ लोग हैं, 150 करोड़ लोग छोटा छोटा ही बदलाव लाएंगे तो कलेक्टिवली बहुत बड़ा बदलाव आ जाता है। और हर देश का चूंकि वर्ल्ड को एक कमिटमेंट है एमिशंस को लेके, तो उस कमिटमेंट में बहुत बड़ी भागीदारी हो सकती है वो।
1: एक तरह से आप कह रहे हैं कि हम सबके पास ये शक्ति है कि हम योगदान दें, जो हम अपने पर्यावरण को संरक्षित करना चाहते हैं, एमिशंस कम करना चाहते हैं। एक और पहलू जिस पर हम आपकी राय चाहेंगे कि पिछले कुछ समय में किस तरह के बदलाव आए हैं, किस तरह के नवाचार आए हैं जो आपको प्रमुख लगते हैं, जिनसे ये उम्मीद जगती है कि हम सही दिशा में प्रगति कर रहे हैं।
0: सबसे बड़ा एग्जांपल तो ये इंटरव्यू ही है कि इतने बड़े स्केल पे इतने सारे लोगों को आप बुला रहे हैं और इस पे चर्चा कर रहे हैं। देश की बात करें मिशन लाइफ के बारे में, ग्लोबल लेवल पे यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है 17 गोल 2030 तक के लिए जो है, तो 17 में से 3 गोल, गोल नंबर 3, 12 एंड 13 सीधे सीधे जो हम लोग बातें कर रहे हैं उससे अलाइंड है। क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, एंड गोल नंबर 3 इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरे विश्व ने भी इस चीज को समझा है कि वेलबींग और माइंडफुल लिविंग बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज में आजकल ESG के ऊपर बहुत फोकस है कि उनकी सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, उनके जो ऑपरेशंस हैं वो एनवायरनमेंट से अलाइंड होने चाहिए। ई एनवायरनमेंट, एस सोशल एंड जी इज गवर्नेंस, तो इन तीनों ही मामले में उनको अलाइन होना चाहिए। तो उसपे बहुत सारा काम हो रहा है, हर कंपनी इस पे फोकस कर रही है कि उनके एमिशंस को वो लोग कैसे कम कर सके। सेम चीज अगर कॉलेजेस की बात की जाए तो कॉलेजेस में भी आज बहुत सारी रैंकिंग में होते हैं ना, गवर्नमेंट रैंकिंग देती है कि आपका ए है, ए प्लस है, बी है, तो उस रैंकिंग का बहुत बड़ा हिस्सा है कि आपके कैंपस में क्या सस्टेनेबिलिटी के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं। तो इंसान के लेवल पे, इंस्टीट्यूशन के लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स पूरे देश में, पूरे विश्व में हो रहे हैं।
1: आशीष जी, जो भी युवा चाहें कि हम एक लॉन्ग लास्टिंग प्रभाव छोड़ें एनवायरनमेंट पर, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट, अपनी जीवन शैली को साधारण करके खुद भी ज्यादा खुश हो, डीक्लटरिंग जैसा आप कह रहे हैं कि जब डीक्लटरिंग होती है तो फिजिकल स्पेस क्रिएट हो रही है, मेंटल स्पेस क्रिएट हो रही है, आप और चीजों के बारे में सोच सकते हैं, जो चीज जरूरी है उस पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, तो इस पूरी जर्नी में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आजकल के यूथ को कि किस तरह के वो एक दृष्टिकोण अपनाएं, माइंडसेट अपनाएं, या कौन से ऐसे प्रमुख बदलाव लाएं ताकि वो बहुत ही सक्रिय भागीदार बने इस पूरी यात्रा में, इस पूरे मुहिम में?
0: तो इम्पोर्टेंट बस वो है कि वी हैव टू डू आवर बिट, क्योंकि उस चीज को इनसिग्निफिकेंट हम लोग समझने की गलती नहीं कर सकते। या इस चीज को अगर मैं ऐसे प्रेजेंट करूं कि जब तक हर इंसान अपनी भागीदारी नहीं करेगा तब तक कोई भी पॉलिसी अपना जो डिजायर्ड इम्पैक्ट है वो नहीं ला पाएगी, क्योंकि पॉलिसी को धरातल में सक्सेस या अनसक्सेसफुल जनता करती है, इसलिए हमें हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत है। किस मायने में कर सकते हैं, तो जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया कि कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, जहां भी उस इंसान को, मुझे मेरा पर्पस अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है, किसी XYZ का अलग हो सकता है, अपनी अपनी जर्नी को मैं पॉज करें, रिफ्लेक्ट करें, और जहां लगता है कि हाँ ये चीज थोड़ी इम्प्रूव करने की जरूरत है उस चीज को इम्प्रूव करें। जैसे मुझे मालूम है मुझे 2 किलो वजन कम करना है, तो मेरा फोकस वेट पे होगा, मेरा फोकस थोड़ा एक्सरसाइज करने पे होगा, किसी को

0: लगता है कि वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है मोबाइल पे, तो उसका फोकस डिजिटल डिटॉक्स पे होगा। किसी को लगता है कि उसको बहुत इम्पल्सिव आदत है वो शॉपिंग करने की, तो अपने हर अलग अलग इंसान का अलग अलग फोकस हो सकता है और उसका जज वो खुद ही होगा। तो यहाँ पे कोई गाइडलाइन नहीं है कि आपको ये ही करने की जरूरत है, जो भी आपको सही लगता है वो कीजिए, लेकिन करना जरूरी है। जब तक वो नहीं करेंगे, तो हम लोगों ने जो रिसर्च किया था उसमें यही पाया कि इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज, बीइंग द चेंज वाला कॉम्पोनेंट कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। हम लोग बदलाव चाहते हैं लेकिन होने में थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। तो अभी भारत जिस स्टेज में है, हमें बदलाव होने की भी बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत है।
1: सो आशीष जी, आप जो इस राह पर चले हैं माइंडफुल कंजम्पशन को बढ़ावा देने की राह पर, आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा आपका अनुभव रहा जिसने आपको प्रेरित किया?
0: तो मैम, मैंने इरमा के बाद साबरमती गांधी आश्रम अहमदाबाद में पर्यावरण मित्र नाम की एक संस्था स्टैब्लिश की, जो कागज बिनने वाली बहनों के साथ काम करता है। तो इट इज ए कोऑपरेटिव ऑफ रैग पिकिंग सिस्टर्स। तो वो इनिशिएटिव अभी भी चल रहा है, 12 साल हो गए। लेकिन 2014 से 2020 की जर्नी में दो चीज बहुत सामने आई, बार बार आई, कि हमारे जो यूथ हैं, हमारे सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप के अर्बन यूथ प्रिविलेज्ड सेक्शन में जो हैं, वो बहुत ज्यादा समय कम्युनिटी को नहीं दे पा रहे। वो आते हैं एज एन इंटर्न, अपना 2 वीक 4 वीक रहते हैं, चले जाते हैं। तो वो एक सवाल था कि सब कुछ है जिंदगी में, फिर भी गिव बैक क्यों नहीं कर पा रहे। और दूसरा सवाल था, 2020 की बात है ये, कि 75 साल हो गए आजादी को, लेकिन हम लोग अभी तक वो भारत क्यों नहीं बना पाए जिसको कल्पना हम लोग करते हैं, डिजायर्ड इम्पैक्ट क्यों नहीं आ पाया। तो 2021 में 15 महीने की एक यात्रा की मैंने, प्रोजेक्ट मंथन, जहां 2500 घंटे हम लोगों ने इन्वेस्ट किए 95 ऑर्गेनाइजेशंस विजिट करने में, जहां 8 अलग अलग डोमेन के लोगों से हम लोग मिले, किसान से, हाउसवाइफ से, वर्किंग प्रोफेशनल से, आईएएस, आईपीएस, एमएलए, सोशल चेंज मेकर, सब से ये समझने की कोशिश किए कि ये जो इम्पैक्ट है उनके दृष्टिकोण में उनके काम का क्या रहा। तो उस पूरे 15 महीने की जो जर्नी थी उसका निचोड़ यही निकला, इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द चेंज वी समटाइम्स फॉरगेट टू बी द चेंज। तो माइंडफुल लिविंग, माइंडफुल कंजम्पशन, सादगी भरा जीवन है उसका एक सार बन के निकला, कि ये जो चीज है वो इस दोनों ही प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। हम लोग सब लोग बी द चेंज भी हो पाएंगे और सादगी भरे जीवन से तनाव भी कम होगा। और इसीलिए फिर इस पूरे मूवमेंट को हम लोगों ने लॉन्च किया, और इस पे फिर ये थोड़ा सा समय लिया कि ये बातें अगर युवाओं तक पहुंचानी है तो उनकी भाषा में पहुंचानी होगी। तो वहां पे फिर डेटा बेस्ड अप्रोच हम लोगों ने लिया कि कैसे डेटा के माध्यम से, एक्सपीरियंशियल गेम्स के माध्यम से ये सारी बातों को सामने रखा जाए। तो यहां से शुरुआत की, और एक नंबर अपने आप को इंस्पायर करने के लिए हम लोगों ने एज ऑर्गेनाइजेशन ये नंबर लिया कि 10 लाख लोगों तक ये बात 2030 तक पहुंचानी है। तो इसीलिए ब्रिज फॉर चेंज उस मूवमेंट को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, जहां पे ये बातें हम लोग बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, इंटरैक्टिव तरीके से, गेम्स के तरीके से युवाओं तक पहुंचा सके।
1: आशीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस गहन बातचीत के लिए और हमें बताने के लिए कि सादा जीवन शैली सभी के लिए कितनी फायदेमंद है, हमारे पर्यावरण के संरक्षण के लिए कितनी महत्वपूर्ण है, और हम सब उसमें अपना अपना योगदान करें, ये कितना जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस वंडरफुल अपॉर्चुनिटी।
2: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पर्यावरण अनुकूल जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहे आशीष अग्रवाल के साथ विशेष बातचीत। इस संवाद का संचालन कर रही थी सोनू सूद। आप इस कार्यक्रम को हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
4: श्रोताओं, अभी आप विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन रहे थे। हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए प्रस्तुत है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

तो वे भी उमा देवी के गायन से काफी प्रभावित हुए और जब दर्द में उन्होंने पहला गाना गाया तो पहला ही गीत सुपर डुपर हिट हुआ। उसके बाद तो उनके गायन का सिलसिला तेजी से चल पड़ा।

ये गाना जब ये यूपी में पिक्चर लगी, इसका नाम है अनोखी अदा, तो साहब सिनेमा में इतने पैसे फेंकते थे इसके रिदम और गाने पर कि मैं बयान नहीं कर सकती।

0: दोस्तों, चूंकि संगीत की दुनिया बदल रही थी और नई प्रतिभाएं अपना असर दिखा रही थीं, इसलिए उमा देवी के गाने लगातार कम होते चले गए। उन्होंने अपने दोस्त दिलीप कुमार साहब से कहा कि वो अपनी किसी फिल्म में अभिनय का मौका दें। इस तरह 1950 की फिल्म बाबुल में पहली बार नजर आई दिलीप कुमार के साथ।
1: देखो, पहले मैं गाने गाती थी और अच्छे बहुत मशहूर हीरोइनों के गाने दिए मैंने, तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा शौक पैदा हुआ कि मैं भी हीरोइन बन जाऊं। अब मुश्किल ये हुई कि हीरोइन सिंगल होती और मैं डबल। मैंने दिलीप कुमार जी के संग रोल लिया और वो पिक्चर थी बाबुल। बाबुल में मैं उनकी प्रेमिका थी, लेकिन मुश्किल ये हुई कि 2-3 हाथ मारे तो वो फिर पलट के कभी नहीं।
0: दिलीप कुमार ने ही उनका नया नाम रखा था टुन टुन।

0: माया।
1: दोस्तों, उमा देवी के गायन का सफर दोपहर की तेज धूप की तरह चमका, लेकिन इससे पहले कि शाम ढले यानी उनके गायन का सफर धीमा हो, उन्होंने एक नया रास्ता चुन लिया। वो रास्ता था अभिनय का, और अभिनय का ये सुझाव भी संगीतकार नौशाद की ओर से ही था, और उमा देवी बन गईं टुनटुन।
2: हाय हाय हाय हाय।
1: हास्य अभिनेत्री के रूप में उन्होंने अनगिनत किरदार निभाए, और फिल्मी पर्दे पर लोगों को दिल खोलकर हंसाना उनका शगल बन गया।
2: हाय हाय हाय हाय।
1: लोगों को उमा देवी के करियर का ये दूसरा रास्ता

इतना पसंद आया कि लोग आज भी उन्हें टुनटुन के ही नाम से याद करते हैं। एक रूढ़िवादी पंजाबी परिवार में जन्मी उमा देवी को परिवार की ओर से कोई बढ़ावा या कोई मदद न मिली, इसलिए जीवन के खट्टे मीठे रास्तों को तय करती हुई अपने हुनर को ही उन्होंने अपनी जिंदगी में मील का पत्थर बना लिया।

0: दोस्तों 50 और 60 के दशक में टुनटुन ही एक महिला कॉमेडियन थी जिनके पर्दे पर आते ही हॉल में ठहाके गूंजने लगते थे। उस दौर में हर दूसरी तीसरी फिल्मों में वे नजर आया करती थीं। ये थी उनके अभिनय की कामयाबी और यही थी उनकी प्रतिभा। गुरुदत्त के साथ टुनटुन ने 3 फिल्मों में अभिनय किया, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55 और आर पार।
1: मोहब्बत

0: दोस्तों, आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था गायिका उमा देवी यानी टुनटुन पर। शोध, आलेख और स्वर रेडियो सखी ममता सिंह का, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

अमिताभ बच्चन के साथ टुनटुन नजर आई फिल्म नमक हलाल में। दोस्तों, आखिरी बार टुनटुन फिल्म कसम धंधे की में नजर आई। आज उमा देवी यानी टुनटुन हमारे बीच नहीं है, लेकिन वे अपनी आवाज, अपने फन के जरिए आज भी हम सबके दिलों पर राज कर रही हैं।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर कर...

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वह पुरानी बेंच। हार हमेशा मैदान में नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के मन में होती है। ऐसा ही कुछ यश के साथ भी हुआ था। यश की उम्र लगभग 40 वर्ष थी। एक प्रतिष्ठित कंपनी में 15 वर्षों तक काम करने के बाद अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीनों तक नौकरी ढूंढने के बावजूद उसे सफलता नहीं मिली। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी और आत्मविश्वास भी। हर सुबह वो अपने शहर के रेलवे स्टेशन पर जाकर एक पुरानी बेंच पर बैठ जाता। वहाँ बैठकर वो आती जाती ट्रेनों और लोगों को देखता रहता, बिल्कुल अपने बचपन की तरह। यश के पिताजी रेलवे में नौकरी करते थे और छुट्टियों में वो अक्सर उसे स्टेशन ले जाया करते थे। यश घंटों वहाँ बैठकर लोगों और ट्रेनों की आवाजाही निहारा करता था, किंतु आज उसे लग रहा था कि जैसे सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, केवल उसकी ही रुक गई है।

इसी तरह उदास यश रोज वहां बैठा करता। एक दिन स्टेशन पर उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वो अपने हाथों से बने अचार और पापड़ बेचने दूसरे शहर जा रही थी। बातचीत में पता चला कि उनके पति का कई वर्ष पहले निधन हो गया था और उन्होंने अकेले ही अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया। उन्होंने यश को अपने हाथों से बने अचार भी चखाए और ये भी बताया कि किस प्रकार उन्होंने जीवन की हर कठिनाई का सामना करते हुए ये छोटा सा व्यवसाय खड़ा किया था। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और चेहरे पर एक अलग ही संतोष झलक रहा था। यश ये समझ ही नहीं पा रहा था कि जीवन में इतनी परेशानियां झेलने के बाद भी कोई इतना प्रसन्न और उत्साही कैसे रह सकता है। वो इन्हीं विचारों में खोया हुआ था कि तभी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की उद्घोषणा हुई। यश ने सोचा कि उनका भारी सामान होगा, इसलिए उनकी सहायता कर दे। जैसे ही वो सामान उठाने के लिए झुका, महिला ने मुस्कुराते हुए उसे रोक दिया और बोली, बेटा ये तो मेरा रोज का काम है, मैं इसे स्वयं संभाल लूंगी। ये सुनकर यश स्वयं को रोक न सका। उसने संकोच भरे स्वर में पूछा, माताजी, यदि आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं, जीवन में इतनी कठिनाइयां आने के बाद भी आप इतनी प्रसन्न कैसे रहती हैं? क्या कभी आपका मन हार मान लेने का नहीं हुआ? यश के प्रश्न को सुनकर पहले तो महिला मुस्कुराई। उनकी आंखों में अनुभव की गहराई और चेहरे पर वर्षों के संघर्ष से उपजा आत्मविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जीवन में मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं। अगर मैं हार मान जाती तो मेरे बच्चों का भविष्य भी हार मान जाता, इसलिए मैं चलती रही। और एक बात मैंने जीवन में और सीखी है, जब तक हम चलते रहते हैं जिंदगी भी चलती रहती है।

अपनी बात कहकर उन्होंने यश के सिर पर आशीर्वाद भरा हाथ रखा। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी और वो मुस्कुराते हुए अपनी ट्रेन की ओर बढ़ गईं। लेकिन उनके शब्द यश के मन में देर तक गूंजते रहे। जब तक हम चलते रहते हैं, जिंदगी भी चलती रहती है। अगले दिन यश फिर उसी रेलवे स्टेशन की बेंच पर आकर बैठ गया। तभी एक मनमोहक धुन ने उसका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वो धुन स्टेशन के प्रथम श्रेणी विश्राम गृह से आ रही थी। सुरों में ऐसी मिठास थी कि कुछ क्षणों के लिए यश अपनी चिंताएं भूल गया और उस संगीत के स्रोत की ओर बढ़ चला। उनकी मधुर आवाज सुनकर अनेक यात्री मंत्रमुग्ध हो गए थे और आसपास खड़े थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कुछ क्षणों के लिए पूरे स्टेशन का वातावरण ही बदल गया हो। यात्रियों की भागदौड़, ट्रेनों का शोर और प्लेटफॉर्म के चहल पहल सब उस संगीत के सामने फीके पड़ गए थे।

जब संगीत थमा तब तक यश उस विश्राम गृह के कमरे के बाहर पहुंच चुका था। वो दरवाजे पर खड़ा होकर उस कलाकार को निहार रहा था। तभी भीतर से आवाज आई, कौन हो भाई, क्या मेरा खाना आ गया? अचानक आवाज सुनकर यश थोड़ा घबरा गया और वहाँ से जाने के लिए मुड़ा। तभी उस व्यक्ति ने फिर बड़े स्नेह से कहा, अरे रुकिए, क्या मेरा खाना आ गया है? तभी यश को एहसास हुआ कि वो व्यक्ति दृष्टिहीन था। ये जानकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। वो कुछ क्षण वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। कुछ देर बाद उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए फिर पूछा, खाना आ गया? उसकी खुशबू तो नहीं आ रही। इस बार यश ने धीरे से उत्तर दिया, नहीं, मैं खाना लेकर नहीं आया हूँ, दरअसल आपके धुन सुनकर यहाँ चला आया था, मैं तो बस एक राहगीर हूँ। ये सुनकर वह व्यक्ति कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभर आई। अच्छा, तो संगीत तुम्हें यहाँ तक खींच लाया, उसने हंसते हुए कहा। फिर उसने यश को पास बैठने का इशारा किया। आओ बैठो, मैं यहाँ अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ ही भोजन लेने गए हैं, उनके आने में भी थोड़ा समय लगेगा, तब तक तुम ही मेरा साथ दे दो। यश बिना कुछ कहे उनके पास चुपचाप बैठ गया। उसे पता नहीं था कि अगले कुछ मिनटों में होने वाली ये बातचीत उसके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देने वाली थी। बातचीत के दौरान यश को महसूस हुआ कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल एक असाधारण संगीतकार था, बल्कि एक अत्यंत विनम्र और सकारात्मक सोच वाला इंसान भी था। उसकी बातों में आत्मीयता थी और चेहरे पर एक अजीब सा संतोष। यश के मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था कि इतना प्रतिभाशाली और अच्छा इंसान होने के बावजूद भगवान ने इसके साथ ऐसा क्यों किया होगा। ये प्रश्न उसके मन में लगातार उठता रहा। अंततः वो स्वयं को रोक न सका और संकोच भरे स्वर में बोला, यदि आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? संगीतकार हल्के से मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल, पूछो बेटा। यश कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीरे से बोला, आप इतने अच्छे इंसान हैं, इतना सुंदर संगीत रचते हैं, फिर भी भगवान ने आपसे आपकी दृष्टि छीन ली, क्या आपको कभी अपनी किस्मत से शिकायत नहीं हुई? यश के प्रश्न के बाद कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। संगीतकार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान उभरी, मानो उसने ये प्रश्न पहले भी अनेक बार सुना हो। फिर उसने गहरी सांस ली और बोला, पहले बहुत होती थी, मैं हमेशा यही सोचता था कि भगवान ने मुझसे मेरी आँखें क्यों छीन ली, लेकिन एक दिन मेरे गुरु ने मुझसे पूछा, क्या हुआ? मैंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, आपसे क्या छिपा है, आँखों के बिना अब ये सब कैसे संभव होगा? मेरी बात सुनकर गुरुजी ने मुझसे एक प्रश्न पूछा, बताओ संगीत के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या है? मैं कुछ समझ नहीं पाया। थोड़ी देर सोचने के बाद मैंने उत्तर दिया, संगीत का वाद्य यंत्र। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, नहीं। फिर मैंने कहा, आवाज? उन्होंने फिर सिर हिलाकर कहा, नहीं। मैंने तीसरी

और उत्तर दिया संगीत की शिक्षा। इस बार भी उन्होंने कहा नहीं। संगीतकार कुछ क्षणों के लिए रुक गया, मानो वो उस दिन को फिर से जी रहा हो। फिर गुरुजी ने गहरी सांस ली और कहा, अच्छा ये तो बाद में सोचेंगे कि संगीत के लिए सबसे जरूरी क्या है, पहले ये बताओ कि जिन चीजों को तुम सबसे आवश्यक मानते हो क्या वे अभी भी तुम्हारे पास हैं? मैंने बिना सोचे उत्तर दिया, हाँ वे सब तो मेरे पास ही हैं गुरुजी। ये सुनकर गुरुजी मुस्कुराए और बोले, तो फिर शुरुआत कर दो। कुछ पलों तक तो मैं उनकी बात का अर्थ समझ ही नहीं पाया, लेकिन जब मैंने अपने ही दिए हुए उत्तरों के बारे में सोचना शुरू किया, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी दृष्टि चली गई थी, पर मेरे वाद्य यंत्र मेरे पास थे, मेरी आवाज मेरे पास थी और वर्षों की साधना से प्राप्त संगीत की शिक्षा भी मेरे पास थी। मैं उस एक चीज के शोक में डूबा हुआ था जो मुझसे छिन गई थी और उन अनमोल चीजों को भूल चुका था जो अभी भी मेरे पास थी। ये कहते हुए संगीतकार के चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान फैल गई। उसने आगे कहा, उसी दिन मैंने तय कर लिया कि मैं अपनी कमी को अपनी पहचान नहीं बनने दूंगा। ये कहकर उसने हारमोनियम पर एक मधुर सुर छेड़ा और कहा, जब मैंने अपनी कमी के बजाय अपनी क्षमता पर ध्यान देना शुरू किया, तभी मेरी जिंदगी बदल गई और वो गाने लगा।

तभी उनके साथ ही भोजन लेकर कमरे में आ गए। बातचीत का सिलसिला वहीं थम गया। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है मेरा इंतजार अब खत्म हुआ। फिर उन्होंने अपने साथी का परिचय करवाया और कहा, बेटा जीवन में खुश रहने का सब

सबसे आसान तरीका है, जो नहीं है उसकी चिंता कम करो और जो है उसका सदुपयोग अधिक करो। यश जाने लगा तो उनके साथी ने मुस्कुराते हुए बताया, शायद आपको पता नहीं है लेकिन आप जिनसे बात कर रहे हैं वे देश के एक प्रतिष्ठित संगीत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं। इनके शिष्यों में कई प्रसिद्ध गायक और संगीतकार शामिल हैं। ये सुनकर यश कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गया। जिस व्यक्ति ने अपनी दृष्टि खो दी थी उसने हार मानने की बजाय अपने जीवन को इस तरह संवारा था कि आज वो न जाने कितने लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। यश वहां से लौट तो आया लेकिन उस सज्जन के शब्द और उनकी मुस्कान देर तक उसके मन में गूंजती रही। उसके मन में विचारों का एक नया द्वार खुल चुका था। उसे लगने लगा कि शायद समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी हम उन्हें अपनी सोच में बना लेते हैं। विचार बदल रहे थे लेकिन निराशा ने अब भी यश का साथ नहीं छोड़ा था। एक सप्ताह बाद स्टेशन की उसी बेंच पर एक सैनिक आकर यश के बगल में बैठ गया। यश के चेहरे पर छाई निराशा को देखकर उसने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने हताश क्यों दिखाई दे रहे हो? यश ने अपनी नौकरी छूटने से लेकर भविष्य की चिंताओं तक सारी बातें उसे बता दी। सैनिक शांत भाव से उसकी बातें सुनता रहा, फिर वो बस मुस्कुरा दिया और अपना हाथ आगे बढ़ाया। यश ने जब ध्यान से देखा तो उसे एहसास हुआ कि वो हाथ असली नहीं बल्कि कृत्रिम था। वो सैनिक लगभग उसी की उम्र का था। सैनिक ने धीमे स्वर में कहा, ये हाथ मैंने सीमा पर एक युद्ध के दौरान खो दिया था। कुछ पल रुककर वो आगे बोला, उस दिन दुश्मन लगातार हमला कर रहा था, मेरे कई साथी घायल हो चुके थे। मैंने अपना एक हाथ खो दिया और असहाय होकर अपने साथियों को संघर्ष करते हुए देख रहा था। उस समय मुझे लग रहा था कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। उसकी आंखों में उस युद्ध की यादें छलकने लगी थीं। तभी मेरी नजर अपने एक साथी पर पड़ी। उसने अपनी एक आंख खो दी थी, खून बह रहा था, फिर भी उसने कपड़े से घाव बांधा और अपनी दूसरी आंख से दुश्मन पर नजर टिकाए रखा। वो लगातार जवाबी हमला कर रहा था। सैनिक ने गहरी सांस ली और कहा, उस जांबाज को देखकर मेरे मन में एक विचार आया, यदि वो एक आंख खोने के बाद भी लड़ सकता है तो मेरे पास तो अभी एक हाथ बाकी है। मैंने बिना देर किए दूसरे हाथ से बंदूक उठाई। उसे संभालना आसान नहीं था लेकिन मैंने हार नहीं मानी। किसी तरह उसे सहारा देकर निशाना साधा और दुश्मन पर हमला शुरू कर दिया।

उस पल की बात याद करते हुए सैनिक के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई। उस दिन हमने केवल युद्ध नहीं जीता था, बल्कि अपनी परिस्थितियों के सामने हार ना मानने का संकल्प भी जीत लिया था। फिर उसने यश की ओर देखते हुए कहा, जवान, इंसान तब नहीं हारता जब वो कुछ खो देता है, वो तब हारता है जब जो बचा है उसकी कीमत भूल जाता है। मैंने एक हाथ खोया था, लेकिन दूसरा हाथ अभी भी मेरे साथ था। तुम्हारी नौकरी चली गई है, तुम्हारी योग्यता और हिम्मत नहीं। उस रात यश बहुत देर तक सोचता रहा। उसे एहसास हो चुका था कि वो अपनी परिस्थितियों को अपनी पहचान बना चुका था। सैनिक ने युद्ध में अपना एक हाथ गवाया था, अपने कई साथियों को खोया था, फिर भी उनके चेहरे पर संतोष था। उन माताजी ने भी जीवन की असंख्य कठिनाइयों का सामना किया था, फिर भी उनके चेहरे की मुस्कान फीकी नहीं पड़ी थी और उस दृष्टिहीन संगीतकार ने अपनी आँखों की रोशनी खो दी थी, फिर भी उसके जीवन में आशा और उसके सुरों में उत्साह का प्रकाश आज भी विद्यमान था। इन तीनों ने कुछ न कुछ खोया था, फिर भी वे जीवन से नाराज नहीं थे। शायद समस्या मेरी परिस्थितियों में नहीं, मेरी सोच में थी। जीवन में मुश्किलें सबके हिस्से में आती हैं। फर्क बस इतना होता है कि कुछ लोग उनसे हार मान लेते हैं, जबकि कुछ लोग उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही यश ने ये सोचा, उसने ठान लिया कि उसे कुछ करना है। अगले दिन जब यश स्टेशन पर बैठा लोगों को देख रहा था, तभी उसकी नजर एक परिवार पर पड़ी। वे पहली बार उस शहर में आए थे और होटल, टैक्सी तथा शहर के प्रमुख स्थानों की जानकारी के लिए इधर उधर भटक रहे थे। कोई उन्हें अलग दिशा बता रहा था तो कोई उनकी मजबूरी का फायदा उठाकर अधिक पैसे मांग रहा था। ये देखकर यश को एहसास हुआ कि ऐसी समस्या केवल उस परिवार की नहीं बल्कि प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की थी। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि यदि यात्रियों को सही जानकारी और उचित मार्गदर्शन एक ही स्थान पर मिल जाए तो उनकी परेशानी काफी हद तक कम हो सकती है। उसी समय उसे उन तीनों लोगों की बातें याद आ गईं, वृद्धा का संघर्ष, संगीतकार का आत्मविश्वास और सैनिक का साहस। पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन उसे किसी नए रास्ते की ओर ले जाना चाहता है।

यश ने अपनी बची हुई थोड़ी सी पूंजी इकट्ठा की और स्टेशन के बाहर एक छोटी सी मेज और कुर्सी लगाकर सूचना एवं सहायता केंद्र शुरू कर दिया।

उसने एक साधारण सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था यात्री सहायता केंद्र, सही जानकारी, उचित मार्गदर्शन। शुरुआत आसान नहीं थी, कई दिनों तक मुश्किल से कोई ग्राहक आता, कभी कभी पूरे दिन की कमाई इतनी भी नहीं होती कि उसका खर्च निकल सके। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, नौकरी नहीं मिली तो अब ये काम शुरू कर दिया, कुछ लोग ताना मारते। लेकिन इस बार यश पहले वाला यश नहीं था, उसने हार मानने के बजाय धैर्य रखना सीखा था। वो मुस्कुरा कर लोगों की सहायता करता रहता, फिर धीरे धीरे यात्रियों को उसकी ईमानदारी और विनम्र व्यवहार पर भरोसा होने लगा। जो लोग उसकी मदद से संतुष्ट होते वो दूसरों को भी उसके बारे में बताते। कुछ ही महीनों में उसका छोटा सा सहायता केंद्र यात्रियों के लिए भरोसे का नाम बन गया। समय बीतता गया, यश ने अपने काम का विस्तार किया, उसने होटल बुकिंग, स्थानीय परिवहन, पर्यटन मार्गदर्शन और आपातकालीन सहायता जैसी सेवाएं भी शुरू कर दी। बढ़ते काम के साथ उसने कुछ बेरोजगार युवाओं को भी अपने साथ जोड़ लिया। कुछ वर्षों बाद वही छोटा सा सहायता केंद्र एक सफल ट्रैवल और यात्री सेवा संस्थान में बदल चुका था। वहां कई लोगों को रोजगार मिल रहा था और प्रतिदिन सैकड़ों यात्रियों की सहायता की जा रही थी। एक दिन यश अपने कार्यालय की खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर उसे वही रेलवे स्टेशन दिखाई दे रहा था और उसके सामने रखी वही पुरानी बेंच भी। अनायास ही उसके कदम वहां की ओर बढ़ गए और वो जाकर खड़ा हो गया। उसने उसे ध्यान से देखा और मुस्कुरा दिया, उसके चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान उभर आई। वही बेंच जो कभी उसकी निराशा की साक्षी थी, अब उसके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन चुकी थी। उसे एहसास हुआ यदि उस दिन वो निराशा में डूबकर हार मान लेता तो शायद ये सब कभी संभव नहीं हो पाता। उस दिन स्टेशन पर एक ट्रेन सीटी बजाती हुई आगे बढ़ गई। यश ने महसूस किया कि उसकी जिंदगी भी इसी ट्रेन की तरह फिर से चल पड़ी है।

यश कुछ देर तक उसी बेंच के सामने खड़ा रहा। उसके मन में अतीत की अनगिनत यादें उमड़ पड़ी, वृद्धा की मुस्कान, संगीतकार के शब्द और सैनिक का साहस। तभी एक युवक आकर उसी बेंच पर बैठ गया। उसके चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। वो बार बार अपना सिर झुकाकर गहरी सांसें ले रहा था। यश ने उसे कुछ देर तक देखा। उसे लगा मानो वह वर्षों पहले के स्वयं को ही देख रहा हो। यश धीरे धीरे उसके पास गया और बेंच पर उसके बगल में बैठ गया। कुछ पल तक दोनों के बीच मौन छाया रहा। फिर यश ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या बात है जवान, इतने परेशान क्यों दिखाई दे रहे हो? युवक ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन फिर उसके भीतर दबा हुआ दर्द शब्दों में निकलने लगा। उसने अपनी असफलताओं, बेरोजगारी और भविष्य की चिंताओं के बारे में बताना शुरू कर दिया। उसकी बातें सुनकर यश की आंखों के सामने अपना ही अतीत घूम गया। वो हल्का से मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें तीन लोगों की कहानी सुनाता हूँ। और फिर उसने उस वृद्धा, उस दृष्टिहीन संगीतकार और उस सैनिक की कहानी सुनानी शुरू कर दी, जिन्होंने कभी उसके जीवन की दिशा बदल दी थी। कहानी समाप्त होते होते युवक के चेहरे पर भी आशा की एक हल्की सी किरण दिखाई देने लगी। यश बेंच से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, याद रखना दोस्त, जीवन में अंधेरा स्थायी नहीं होता, बस चलते रहना पड़ता है। इतना कहकर वो आगे बढ़ गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने पीछे मुड़कर देखा तो युवक अब पहले की तरह निराश नहीं लग रहा था। उस पल यश को एहसास हुआ कि वर्षों पहले जिन तीन अनजान लोगों ने उसकी मदद की थी, आज वही कहानी किसी और के जीवन में आशा जगा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, शायद सकारात्मक सोच की सबसे बड़ी ताकत यही है कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती रहती है, ठीक वैसे ही जैसे एक दीपक से दूसरा दीपक जल उठता है।

जीवन में सभी कुछ ना कुछ खोते ही हैं, परंतु जो बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है, और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुँचाती है।

बचता है उसी से नया भविष्य बनाना हमारे हाथ में है। सकारात्मक सोच परिस्थितियों को नहीं बदलती, लेकिन परिस्थितियों का सामना करने की हमारी शक्ति को बदल देती है और यही शक्ति हमें सफलता तक पहुंचाती है।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे सौम्या शर्मा की लिखी कहानी वो पुरानी बेंच, वाचन स्वर नेहा शर्मा का, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और लेकर आई हूं चित्रपट संगीत।

पेंटर बाबू फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में, रचना थी कतील शिफाई की। आइए अब सुने ये गाना, फिल्म का नाम हीर राजा। मोहम्मद रफी की आवाज, कैफी आजमी के बोल, मदन मोहन का संगीत है।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
2: और आ गया।
1: एक और आ गया।
3: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
4: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

शंकर हुसैन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में। जानिसार अख्तर के बोल थे, खयाम का संगीत था। आइए अब सुने आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में। गुलजार की रचना है, सलील चौधरी का संगीत।

आनंद फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज थी। इसी के साथ चित्रपट संगीत कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम प्रस्तुत है मैटिनी शो। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको सुनवा रहे हैं बारिश वाले गीत। देश के बहुत सारे हिस्सों में बरसात हो रही है और कुछ जगहों पर बरसात नहीं हो रही है। जहां पर बरसात नहीं हो रही है, इस शुभकामना के साथ ये गाने सुनवा रहे हैं आप तक। बरसात फिल्म का गाना लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें।

कोई बात है, एक लड़की भीगी भागी सी, सोती रातों में जागी सी।

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना

0: नमक हलाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाजों में। अनजान की रचना थी, बप्पी लहरी का संगीत था।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
2: एक और आ गया।
4: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
0: विविध भारती पर, अब आपको सुनवा रहे हैं लगान फिल्म का गाना, उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों की आवाजों में।

लगान फिल्म का गाना उदित नारायण, अलका याग्निक, सुखविंदर सिंह, शंकर महादेवन, शान और साथियों की आवाजें थी। जावेद अख्तर के बोल एआर रहमान का संगीत था। फिल्म 1942 अ लव स्टोरी, कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाजें हैं। जावेद अख्तर के बोल

अब आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 12 बजने वाले हैं, थोड़ी देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच आज ऑकलैंड में द्विपक्षीय वार्ता हुई। दोनों देशों के बीच रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुक्त व्यापार समझौते को द्विपक्षीय संबंधों को नई गति देने वाला ऐतिहासिक कदम बताया।
1: इस वर्ष दोनों देशों के बीच 9 महीनों के रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। यह आप सभी के लिए मार्केट एक्सेस, इन्वेस्टमेंट, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और टैलेंट मोबिलिटी के नए अवसर लेकर आएगा। मुझे विश्वास है हम 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना बढ़ाएंगे।
0: विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने ऑकलैंड में बताया कि दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। श्री टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है। प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। इससे पहले गवर्नमेंट हाउस में श्री मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। उन्होंने उद्योग और खेल जगत की प्रमुख हस्तियों से भी मुलाकात की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को मजबूत करके एक सशक्त, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। उन्होंने कहा कि भविष्य के युद्धों में AI और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों का उपयोग हो सकता है, लेकिन उन्हें दृढ़ संकल्प और सेना के साहस के साथ ही जीता जा सकता है। विशाखापट्टनम में नौसेना के बेड़े में प्रोजेक्ट 17A के 6 स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का आज जलावतरण किया गया। उन्होंने कहा कि भारत की समुद्री ताकत को बढ़ाने और स्वदेशी रक्षा क्षमता को मजबूत करने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इसमें उन्नत स्वदेशी तकनीकों का उपयोग किया गया है।
2: INS महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें INS महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की तटीय सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री शाह ने पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के साथ पत्तन सुरक्षा ब्यूरो के कार्यों में हुई प्रगति की समीक्षा के दौरान ये बात कही। गृह मंत्री ने कहा कि पत्तन सुरक्षा का दायित्व केवल लाइसेंस प्राप्त निजी सुरक्षा एजेंसियों को ही सौंपा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी आज नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में ब्रिक्स देशों के बीच परिवहन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने और साझा परिवहन

0: नीति पर चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले तीन दिन मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में अगले पांच दिन भारी बारिश की संभावना है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट मैच के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में एक विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्पेन फीफा फुटबॉल विश्व कप में तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे इंग्लैंड के साथ खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जाने माने अभिनेता कुमार गौरव का जन्मदिन है, उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं और कुछ गाने उन्हीं के नाम। फिल्म लव स्टोरी लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजें हैं, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत।

लव स्टोरी फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज, लता मंगेशकर और अमित कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे, राहुल देव बर्मन का संगीत था। ये फिल्म है नाम, पंकज उधास और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

0: तेरी कसम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अमित कुमार की आवाज में, रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार राहुल देव बर्मन।
1: एक बेटी की यादों में उसके पिता
2: 77-78 में मेरे पिताजी सदाशिव अमरापुरकर, एक ही बार उन्होंने पूरी लाइफ में जॉब करी है, उन्होंने आकाशवाणी परभणी में वो एज एन अनाउंसर उन्होंने ज्वाइन किया था और वहाँ पर वो लगभग 2 महीने टिके।
1: सदाशिव अमरापुरकर यानी अर्ध सत्य के रामा शेट्टी।
2: मुझे याद है कि जब रामा शेट्टी के रोल के लिए गोविंद जी ने उन्हें कास्ट किया था, तब पापा ने पूछा था कि मुझे इस रोल के लिए क्यों कास्ट किया है। गोविंद जी ने उन्हें कहा था कि तुम्हारी आंखें बहुत अपॉर्चुनिस्टिक हैं।
1: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में जाने माने अभिनेता सदाशिव अमरापुरकर की बेटी रीमा अमरापुरकर की यादों के उजाले।
2: हम लोग बंबई आए और जैसे ही टैक्सी वालों ने पापा को देखा, रामा शेट्टी रामा शेट्टी रामा शेट्टी, और इतनी हड़बड़ी और झुंड वहां पर आ गई कि हमें पता ही नहीं चला कि क्या हो रहा है।
1: 21 जून से 12 जुलाई हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

तेरे नाम इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। समीर ने इसे लिखा था, धुन बनाई थी हिमेश रेशमिया ने। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज।

0: नज़िया सुल्तान फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे कब्बन मिर्ज़ा की आवाज़ में। निदा फाजली के बोल थे, खयाम का संगीत था। विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

जुबैदा फिल्म का गाना आप सुन रहे थे अलका याग्निक की आवाज में। शब्दकार थे जावेद अख्तर और संगीतकार एआर रहमान। फिर तेरी कहानी याद आई, ये नाम फिल्म का है। इसी फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं। अलका याग्निक की आवाज, कतील शिफाई के बोल हैं।

0: उनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है। जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

साजन फिल्म का गाना आप सुन रहे थे एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। रचना थी समीर की, संगीतकार नदीम श्रवण। 1947 अर्थ फिल्म का गाना सुनिए साधना सरगम की आवाज में, जावेद अख्तर के बोल यार, रहमान का संगीत।

0: आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लगजन के बीच ऑकलैंड में हुई वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने अपने संबंधों को सामरिक साझेदारी का दर्जा दिया। दोनों नेताओं ने वर्ष 2030 तक द्विपक्षीय वस्तु और सेवा व्यापार को बढ़ाकर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य भी तय किया। वार्ता के दौरान अगले 4 वर्षों के लिए सहयोग रणनीति, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग बढ़ाने की रूपरेखा और भारतीय नौसेना तथा न्यूजीलैंड रक्षा बल के बीच पारस्परिक लॉजिस्टिक सहयोग समझौते पर सहमति बनी। दोनों नेताओं ने भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौते का स्वागत करते हुए इसे जल्द लागू करने पर जोर दिया। पश्चिम एशिया की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने सभी पक्षों से संयम बरतने, तनाव कम करने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापत्तनम में स्वदेशी आईएनएस महेंद्र गिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्र गिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत समुद्र से हवा में और समुद्र की सतह तक मार करने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं के लोकार्पण तथा शिलान्यास कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। श्री शर्मा कृषि उपज मंडी समिति में आयोजित कार्यक्रम से 1,258 करोड़ के विभिन्न विकास कार्यों और परियोजनाओं की सौगात देंगे। इन परियोजनाओं में केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के लिए 6 विकास कार्यों का लोकार्पण, 10 महत्वपूर्ण विकास योजनाओं और नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली फोरलेन परियोजना के पहले चरण का शिलान्यास शामिल है। राजस्थान समान नागरिक संहिता 2026 यूसीसी के संबंध में सुझाव लेने के लिए आज जयपुर में संभाग स्तरीय जनसुनवाई आयोजित की जा रही है। आज दूसरे दिन आमजन से सुझाव और आपत्तियां मांगी जा रहे हैं। जयपुर जिला कलेक्टर संदेश नायक ने बताया कि कल हुई जनसुनवाई में सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी शत्रुघ्न सिन्हा ने विभिन्न वर्गों के सुझाव सुने।
1: कल काफी धर्म क्षेत्र के लोगों से और उसके साथ साथ पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा भी जनसुनवाई में पार्टिसिपेट किया गया था। उनके सुझाव, उनके मतों को और उनकी चिंताओं को हमने कलेक्ट किए हैं। कल कुछ लोग जो जनसुनवाई में नहीं आए थे उनके लिए भी आज हमने जनसुनवाई का ऑप्शन रखा हुआ है। हमारे विज्ञ अधिकारी मौजूद है। उन्होंने जो व्यक्ति हैं, जो आ रहे हैं, जो संगठन आ रहे हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन को कलेक्ट करके उन सभी संग्रहण करके उनको समिति के समक्ष प्रेषित की जाएगी। उनके ऊपर समिति निर्णय लेगा।
0: विश्व जनसंख्या दिवस पर आज प्रदेश भर में विभिन्न जनजागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इन गतिविधियों के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन और लैंगिक समानता के लिए जागरूक किया जा रहा है। सभी जिलों में आज से जनसंख्या स्थिरीकरण सप्ताह की भी शुरुआत हुई। जैसलमेर और भरतपुर में जागरूकता रैली निकाली गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आमजन से जनसंख्या संतुलन, स्वस्थ परिवार और जागरूक समाज के निर्माण की अपील की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि संतुलित जनसंख्या ही सशक्त समाज, समृद्ध राष्ट्र और सतत विकास का आधार है। रेलवे जल्द ही आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट का बीटा संस्करण जारी करेगा। कल आईआरसीटीसी और सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम क्रिस के अधिकारियों ने जयपुर के एमएनआईटी के विद्यार्थियों को वेबसाइट का बीटा संस्करण दिखाया और उनसे सुझाव लिए। नई वेबसाइट में कैप्चा प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सभी श्रेणियों में सीट उपलब्धता एक साथ दिखाई देगी। टिकट बुकिंग की प्रक्रिया तेज होगी।

श्रोताओं, अभी आप विविध भारती राष्ट्रीय सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रमों का आनंद ले रहे थे, जिन्हें हम हमारे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल है। कुछ ही देर में आप हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। कृपया

0: और यात्री की जानकारी सुरक्षित रहने से बुकिंग आसान होगी। अधिकारियों ने बताया कि नई वेबसाइट को यात्री आरक्षण प्रणाली से जोड़ा जा रहा है और नया पोर्टल अगले कुछ महीनों में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम।

कुछ दिल ने कहा। दोस्तों बताइए जरा, आपके दिल ने कब क्या कहा और आपने किन लम्हों में खुद से गुफ्तगू की, ये बताते चलिए। और साथ में किसका इंतजार कब किया और कब किसी के इंतजार में दीप जलाए, कौन से वो गाने हैं। हमने तो आपको हिंट भी दे दिया कि कौन कौन से गाने हैं, देखते हैं कि कौन से श्रोता लिख पाते हैं हमने जो गीत चुना है वो। बहरहाल ये तो श्रोताओं वाला ही गाना था। बहरहाल आगे बढ़े और आपकी टिप्पणियां आप तक पहुंचाते चलें। एक श्रोता ने लिखा है कि किसी अपने का इंतजार दिल की सबसे खूबसूरत आदत है। हर आहट में उसका एहसास, हर दस्तक में उसके आने की आहट सुनाई देती है। जब किसी अपने के आने का इंतजार रहता है तब घड़ी की सुइयां भी जैसे थोड़ी धीरे चलने लगती हैं। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। एक श्रोता लिख रहे हैं कि बहुत खूब है आज की इबारत जो हमें सिखाती है कि दिल का अजीब होना ही उसकी खूबसूरती है। यदि दिल में उदासी न हो तो खुशियों का मूल्य समझ में ही नहीं आएगा, और यदि वो इंतजार के मोती न पिरोए तो मिलने का आनंद अधूरा रहेगा। दिल दरअसल विपरीत भावनाओं, खुशी गम शोर खामोशी तन्हाई प्यार के बीच संतुलन बनाने की निरंतर कला है। तो अब बात इंतजार की चली है, मतलब दो श्रोताओं ने लिखा इंतजार की बात, तो इंतजार वाला गाना सुनते हैं, फिल्म छलिया। आपको पूछना है गीतकार और संगीतकार का नाम, लता मंगेशकर की आवाज़।

छलिया फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, कमर जलालाबादी के बोल कल्याण जी आनंद जी का संगीत। श्रोताओं ने गीतकार संगीतकार का नाम बिल्कुल सही बताया। इसके पहले हमने आपसे पूछा था अनुपमा फिल्म के गाने में कौन है हीरोइन, सभी श्रोताओं ने इसका भी जवाब सही दिया, शर्मिला टैगोर, और गीतकार का नाम भी बिल्कुल सही फरमाया, कैफी आजमी। और अब अगला गीत क्या हो सकता है जरा पूछिए तो हम आपको हिंट दे रहे हैं कि कौन सा ऐसा मौका आता है जब आप दीप जलाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, किस खुशी के मौके पर, ये बताइए और गाना बूझिए। तब तक हम आपकी टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि जिस भी उम्र में जो चीज़ दिल को छूती है यादों में शामिल हो जाती है, कोई गहरी संवेदना एक रूप में ढलकर एक आहट बनकर बस अपनी बात कह रही हो, जैसे कि फिल्म अनुपमा का ये गीत कुछ दिल ने कहा कुछ भी नहीं, जुगनू तभी चमकता है जब तक उड़ता है, कमोवेश यही हाल दिल का भी है, जब इसकी धड़कन रुक जाए तो हम भी थम जाते हैं, दिल के मौसम का हाल ख्यालों और ख्वाबों की मखमली जमीन से जुड़ा है, इसलिए दिल को कभी मुरझाने मत देना, इसे अपने खूबसूरत विचारों से हमेशा सजाए रखना। क्या बात कही है, सचमुच अपने दिल की हिफाजत भी करनी चाहिए, क्योंकि दिल कई बार कमज़ोर भी हो जाता है, कई बार जज्बाती हो जाता है, कई बार बोझ सहन नहीं कर पाता है, इसलिए अपने जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के टेंशन्स हैं, तनाव हैं, उन्हें दूर भगा दीजिए और दिल को बिल्कुल खाली रखिए, बिल्कुल खाली बर्तन की तरह। और हाँ, अभी हमने बूझने के लिए कहा है कि कौन सा गाना होगा, ज़रा बूझते रहिए, आपकी टिप्पणी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल ये टिप्पणी आप तक पहुंचा रहे हैं कि एक श्रोता ने लिखा है, कभी ये खुशियों की पालकी में बैठकर सपनों के आकाश में उड़ने लगता है, तो कभी इंतज़ार के मोती चुनते चुनते यादों की नदी के किनारे जा बैठता है, कभी

मुस्कान की रोशनी से चेहरा जगमगा उठता है तो कभी अनकही बातों का बोझ इसे खामोश कर देता है। मेरी इबारत को थोड़ा हेर फेर करके लिख दिया है इन्होंने। अब हम आगे देखते हैं कि हमारे अगले श्रोता ने क्या लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल को मनाने की भी कला होना जरूरी है। हम सभी को प्रभु परमेश्वर ने दिमाग सर से भी नवाजा है, इसलिए अगर जिंदगी की सही पारी खेलनी है तो अपने दिल भाई साहब को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी होता है। तो बताइए, आप कब अपने दिमाग की सुनते हैं, कब दिल को इग्नोर करते हैं, ये भी बताते चलिए। और सच बात तो ये है कि जब कोई निर्णय लेना पड़ता है तो दिल को हमें नज़रअंदाज करके दिमाग की सुननी पड़ती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवा रहे हैं अब चित्तचोर फिल्म का गाना। और हमने आपसे पूछा था कि कब किन मौक़ों पर दीप जलाते हैं आप, ज़रा ये बताइए कि फिल्मी पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कौन कह रहे हैं एक दूसरे से ये बात। हीरो हीरोइन का नाम पूछना है, फिल्म चित्तचोर, ये सुदास और हेमलता की आवाजें हैं।

चितचोर फिल्म का गाना था, ये सुदास और हेमलता की आवाजें थी। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम। बहुत त्वरित जवाब आया श्रोताओं की ओर से और सही जवाब आया अमोल पालेकर और जरीना वहा पर्दे पर होते हैं और एक भी श्रोता ने गलत जवाब नहीं दिया। बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए। एक श्रोता ने लिखा है कि वैसे तो दीप जलाने की परंपरा दिवाली के त्यौहार के दौरान होती है पर अपने घर के मंदिर में तो रोज़ ही दीपक जलाते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि नवरात्रि पर, नववर्ष पर, दीपावली पर और कुछ साल पहले तो शाम होते ही हमारा काम दिया जलाकर रखने का होता था, बिजली हर वक्त नहीं रहती थी। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि दीप जलाने की परंपरा तो जब खुशी का मौका आता है तब भी हम दीप जलाते हैं। बिल्कुल खुशी में हम दिए जलाते हैं और खुशी का दीप जलाने की बात दिल से भी होती है कि दिल आपका जब आप खुश होते हैं तो अपने आप दिल में खुशी का दिया जलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज की तरह होता है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ब्लड प्रेशर को संतुलित रखना पड़ता है। एक श्रोता ने लिखा है कि 2014 को हृदय की शल्य चिकित्सा हुई थी तब डॉक्टर साहब ने एक बहुत सही सलाह दी थी, आज के बाद किसी भी स्थिति में सुख में बहुत ज़्यादा खुश न हो, बस प्रसन्नता को खुशबू की तरह महसूस करते रहो और दुख का समय आए तो बहुत ज़्यादा दुख में न घिरते हुए अपने आप को संभाल कर रखो। एक श्रोता लिख रहे हैं कि जिंदगी के चौराहे पर अक्सर हम खुद को खड़ा पाते हैं जहाँ एक तरफ दिमाग की ठंडी दलीलें होती हैं और दूसरी तरफ दिल की बेबाक पुकार। दिमाग नफा नुकसान देखता है, गणित लगाता है लेकिन दिल सिर्फ सुकून ढूंढता है। और सच तो ये है कि दुनिया के सबसे खूबसूरत फैसले चाहे वो किसी से बे इंतहा मोहब्बत हो या किसी अजनबी की मदद के लिए हाथ बढ़ाना, हमेशा दिल से ही लिए जाते हैं फैसले। बिल्कुल सही फरमाया है आपने। और ज़रा आप ये भी बताइए कि कब आप खामोश हो जाते हैं, दोस्तों के बीच कौन सी वो घड़ी है जब आपको लगता है कि हाँ तो चुप रह जाना ही बेहतर है, या घर परिवार में कौन सा ऐसा लम्हा आता है जब आपको लगता है कि चलो जाने दो, खामोश रहो, छोड़ो हटाओ, ये बात आती है। और जब आप तन्हा होते हैं तो आप अपना दिल कैसे बहलाते हैं, कोई गीत सुनते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, कोई फिल्म देखते हैं या फिर कहीं घूमने निकल जाते हैं यूं ही बेसबब, तो अपनी बात आप बताते चलिए विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर www.facebook.com/vbsmumbai टाइप करेंगे तो पहुंच जाएंगे विविध भारती के फेसबुक पेज पर। अब बहुत सारे श्रोताओं ने इस गाने का जिक्र किया है फिल्म आकाशदीप, तो सुन लीजिए यही गाना दिल का दिया जलाकर। जरा गीतकार और संगीतकार का नाम बूझिए। यहाँ तन्हाई भी है, दिल भी है, क्या नोटिस किया आपने?

आकाशदीप फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी, रचना थी मजरूह सुल्तानपुरी के, संगीतकार चित्रगुप्त, और ये हमारा सवाल भी था, श्रोताओं ने सही जवाब लिख भेजा है। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रस्तुत गद्य इबारत की इबादत से निकले शब्दों में, मतलब इबारत से निकले शब्दों में दिल बड़ा अजीब कभी खुद से रूठ जाता है, जमाने से सुबह शाम उदास तन्हाई जैसे अनेक संज्ञा सर्वनाम विशेषण वाले शब्द हैं, तो इन शब्दों की भरमार है, तो मेरे हिसाब से गीत कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, और गीत के बोल इन्होंने लिखे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, कभी किसी बीती बातों को दुखद याद करके मायूस हो जाता है, आंखें झरझर बहने लगती हैं, फिर अपने आप को दिलासा देकर शांत होकर अगली भोर की आशाओं की किरण के साथ प्रफुल्लित होकर एक नई ऊर्जा से भर जाता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब कोई मित्र परिवार का सदस्य अपने दिल का हाल या दुख बांट रहा हो तो उन्हें ज्ञान सलाह या उपदेश की जरूरत नहीं होती, उस वक्त आपका एक शांत श्रोता बनकर उनकी बात को सुनना ही आपके लिए सबसे बड़ा सहारा होता है, मतलब ऐसे मौके पर आप शांत रह जाते हैं। तो अब क्या बात है, थोड़ी मुस्कुराने की बात की जाए तो अपने मुस्कुराने की बात आप बताइए कि कब आप मुस्कुरा पड़ते हैं। कभी कभी यूं ही बैठे बैठे लोग मुस्कुरा उठते हैं अपने आप, कुछ लोग मोबाइल में कुछ टेक्स्ट देखकर, कुछ मैसेज देखकर मुस्कुरा उठते हैं, आजकल तो रील देखकर मुस्कुराने का ज़माना बड़ा गजब का है। ज़रा अपने अनुभव भी साझा कीजिए, आप कब और कैसे मुस्कुराते हैं, बच्चों की नटखट शरारतों पर मुस्कुराना होता है तो बताइए। फिल्म का नाम आपको बूझना है, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, चित्रगुप्त का संगीत।

भाई, किसी की मुस्कुराहट से आपका दिल बहल जाए तो मुस्कुराना ठीक है, बहुत ज़रूरी हो जाता है किसी के लिए मुस्कुराना। और कभी कभी यूं ही खुद से गुफ्तगू करते हुए भी हम मुस्कुरा पड़ते हैं। बहरहाल, बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है कि हम कब कैसे मुस्कुराते हैं। ज़रा ये बताइए कि एक गाना है रूठने मनाने का, इसमें तो रूठना शब्द भी है, आप शायद भूल गए। उसके लिए बहुत कम श्रोताओं ने गाने लिखे हैं रूठने वाले। एक ऐसा गाना हम आज खोज कर ले आए हैं जिन्हें आप कभी कभार सुनते होंगे या ना के बराबर सुने हो वो, लेकिन विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में वो गाना बजाया जाता है, प्रसारित किया जाता है। तो कोई ऐसा गाना रूठने वाला याद आ रहा है आपको तो ज़रा विविध भारती के फेसबुक पेज पर ज़रूर बताइए, और हम उसे देख रहे हैं और आपकी टिप्पणी वहाँ पर सुरक्षित रहती है और सेव रहती है। एक श्रोता ने लिखा है कि आपने तो अकेले लोगों के दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी के गए एक साल से ऊपर हो गए, कैसे दिन गुजरते हैं, कैसे दिल को समझाकर रखा है हम ही जानते हैं, और बेड पर एक रेडियो है, रात 11 बजे तक विविध भारती सुनते रहते हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल तो है क्या कहना इसका, कभी बिना वजह मुस्कुरा देता है, कभी छोटी सी बात पर उदास हो जाता है, ये रिश्तों में अपनापन ढूंढता है, यादों में सुकून तलाशता है और उम्मीदों के सहारे हर दिन एक नई शुरुआत कर लेता है, टूट कर भी धड़कना नहीं छोड़ता, हार कर भी प्यार करना नहीं भूलता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मानव शरीर का मुख्य अंग हृदय यानी दिल होता है, जिंदा रहने के लिए दिल यानी हृदय का धड़कना जरूरी है, उसी तरह आकाशवाणी रूपी शरीर का दिल देश की सुरीली धड़कन विविध भारती है, जिसे हर इंसान यानी श्रोताओं के मनोरंजन के लिए दिन रात धड़कना जरूरी होता है, तभी तो हमारे आपके रंग दिल की धड़कन भी लाती तो होगी, दोपहर 1 बजे सुरीला सफर में जुड़ने याद उनको भी आती तो होगी, हमने तो हमारे दिल की गिरह खोल दी है चुप न बैठकर, हमारे दिल ने कुछ कहा कुछ भी नहीं कुछ भी लिख दिया। भाई, आपका लिखा और आपका कहा विविध भारती के फेसबुक पेज तक पहुंच गया और अब श्रोताओं तक भी पहुंच गया।

करोड़ों श्रोता जान गए आपके दिल की बात। चलिए अब हम इंतजार की बात करते हैं और आपको पूछना है पर्दे पर कौन गा रहे हैं ये गाना, कलाकार का नाम और साथ में स्वर और संगीत किसका है। रूठने वाला गाना भी आपको याद करना है।

खामोशी फिल्म का गाना था और हमने आपसे पूछा था हीरो हीरोइन का नाम, राजेश खन्ना और वहीदा रहमान। स्वर और संगीत भी पूछा था लेकिन बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, हेमंत कुमार और गुलजार के बोल थे। और हमने आपसे पूछा था रूठने पर एक ऐसा गाना है जो आपने कभी कभार ही सुना होगा। विविध भारती के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम से हम प्रसारित करते हैं वो गाना, तो उस गाने का जिक्र अभी तक किसी ने नहीं किया, लेकिन जिसने गानों के जिक्र किए हैं जिन श्रोताओं ने, वो ये गाने हैं, रूठे सैया मनाऊं कैसे, रूठा है तो मना लूंगा, और एक श्रोता ने लिखा है तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं। ये गाना बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है, रूठा है तो मना लेंगे, रूठे रूठे पिया मनाऊं कैसे, ओ दिलवर जानियां रूठने मनाने में बीत न जाए जवानियां, और रूठो ना हमसे ओ बच्चों की नानी, और एक श्रोता ने लिखा है देखो रूठा न करो अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। भाई ये सारे गाने तो आप अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन ये वाला गाना पिछली बार कब सुना था, जरा याद हो तो बताइएगा। फिल्म का नाम अगर बता सके तो बताइए। गीतकार का नाम भी बताइए।

दो फूल फिल्म का ये गाना था। लता मंगेशकर और आशा भोसले की आवाजें थी। हसरत जयपुरी के बोल थे, वसंत देसाई का संगीत था। इसकी जानकारी शायद किसी को नहीं थी, किसी ने इस बारे में बताया नहीं, ना फिल्म का नाम, तो ये भी नहीं बताया आपने कि पिछली बार आपने कब सुना था। अब कभी भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में सुनिएगा और याद कीजिएगा ये गाना। बहरहाल रूठने पर बहुत सारे गाने हमारे श्रोताओं ने लिख भेजे हैं। कब तक हुजूर रूठे रहोगे लेकिन गुस्से में प्यार बलम जी अब तो हंसो, रूठा है तो मना लेंगे ना रूठो ना रूठो मेरी जान, देखो रूठा ना करो रूठे सैया। और एक श्रोता ने लिखा है कि धन्यवाद इस गाने के लिए, और एक श्रोता ने लिखा है कि वो तो रूठा है मना लेंगे। एक श्रोता ने लिखा है, मोबाइल पर जब कोई रील देखता हूँ तो कभी कभी हंस हंस कर पेट में बल पड़ जाते हैं, फिर मासूम बच्चों की मासूम हरकतें देखकर हंसी आ जाती है। ये इस बात पर है कि कब किन लम्हों में आप मुस्कुराते हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि रूठना मनाना अच्छा जी मैं हारी, ये वाला गाना लिखा है। और बहुत सारे श्रोताओं ने लिखा है रूठने पर गाने, लेकिन ये भी बताइए कि जब कोई रूठ जाता है आपसे तो आप मनाते हैं या आप रूठने वाले को यूं ही छोड़ देते हैं, जाओ भाड़ में जाओ रूठे रहो हम तो नहीं मनाएंगे। आप मनाते हैं या आप मनुहार करवाते हैं, दोनों बातें लिखिए। एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं तनहा होता हूँ तो या तो मोबाइल ऐप पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के प्रोग्राम सुन लेता हूँ, या फिर घंटे भर के लिए कहीं घूमने चला जाता हूँ, अखबार भी पढ़ लेता हूँ या पुराने गाने सुनकर अपनी तन्हाई को दूर करता हूँ। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब मैं गुस्से में होती हूँ तो चुप हो जाती हूँ, थोड़ी देर में अपने आप गुस्सा शांत हो जाता है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है वैसे, कि अगर सामने वाला गुस्से में कुछ बोल रहा है, आपको भी गुस्सा आ रहा है, तो आप शांत हो जाएं तो सामने वाले का

सा भी खत्म हो जाता है आपका भी। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का विचित्र फंडा है, किसको अपनाएगा किसको छोड़ देगा इसकी जानकारी नहीं होती है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल का क्या कहें, सुबह शाम उठते बैठते कैसे इसकी धड़कन बढ़ गई, हांफने पर डॉक्टर तक पहुंचे जिन्होंने कहा कि आपने कुछ ऐसा सोचा क्या, आप जिंदगी के निजी फैसलों में कभी दिल को न लें, बस दिमाग ही लगाएं और उनकी टैबलेट आज तक छूटी नहीं। भाई अपने दिल का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल है कि मानता ही नहीं और किसी पर भी आ जाता है, दिल एक तरह से धड़कता हुआ स्पंज है। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल भी टूट के छलनी हुआ, विधि ने जो घात किया, खुशियां पल भर में लुट गई, यादों को भी नदी में ही विसर्जित कर दिया, बस एक सिर्फ एक निजी जागती उसकी निशानी अब कलेजे से लगा के संभालना है और उसे आंखों में संभाल के रखना है जब तक सांस चलती है। और अब चलिए सुनते हैं ये गाना, जरा बताइए कौन है हीरोइन, पर्दे पर कौन गा रही है ये गाना और गीतकार का नाम आपको बूझना है। फिल्म है भरोसा। इसमें इबारत के कौन कौन से शब्द हैं जरा ये भी बूझिए आप।

भरोसा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, रवि का संगीत। इस गाने में एक नाराजगी भी है और दुख भी है और साथ भी है, भूलने की बात भी है, याद भी है, दिल भी है। तो आज की इबारत के बहुत सारे शब्द इस गाने में थे और हमारे श्रोताओं ने भी इस गाने का जिक्र किया था। एक श्रोता ने लिखा है कि मैं जब रूठती हूँ तो न मनाती हूँ न मनुहार करवाती हूँ। क्या बात है भाई, ये तो अच्छा नुस्खा है कि ठीक है, ना मैं मनाऊंगी ना तुम, मतलब मैं ना मैं रूठूं ना तुम रूठो, ये वाला

किताबें हैं ना, और बहुत सारे श्रोताओं ने जवाब दिया है कि पर्दे पर आशा पारेख हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि मन की हर उदासी का सबब दिल का टूटना नहीं होता है, कई बार कुदरत का बदलता मिजाज और शरीर में विटामिन की कमी जैसी शारीरिक वजहें भी इंसान को अवसाद और डिप्रेशन में डाल देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि सामने वाला हमारी कोई गलती के बिना ही रूठता है तो मनाने का सवाल नहीं है, पर अगर सोचने पर हमारी गलती महसूस होती है तो ज़रूर मनाने की कोशिश करनी चाहिए। एक श्रोता ने लिखा है कि दिल के बारे में क्या कहें, ये एक ऐसी चीज़ है जो अनवरत क्रियाशील रहती है, जहाँ इसने धड़कना छोड़ा व्यक्ति इस संसार से विदा हो लेता है। दिल का धड़कना और सोचना उम्र के साथ बदलता रहता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि खुशियों में झूम उठता है दिल, गम में मौन हो जाता है। वैसे ये हमारे एक मानसिक स्थिति है जो हमारे मनोभावों को प्रस्तुत करती है, एहसास दिलाती है, चाहे वो प्यार हो, दोस्ती हो, परिवार के प्रति जिम्मेदारी। फिल्मों में दिल के संबंधित कई गाने हैं और दिल एक मंदिर है गानों की लंबी फहरिस्त दी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि दिल शब्द के ही गाने हमने आपसे पूछे थे, हमने तो आज की इबारत से जुड़े हुए गाने पूछे थे। एक श्रोता ने बहुत सारे शब्द लिखे हैं, जमाना, उदास, तन्हाई, और इन्होंने तन्हाई और अकेलापन, सुबह शाम ये भी लिखा है। तो सुबह शाम बहुत कम श्रोताओं ने लिखा है, तो चलिए भाई ये गाना सुनते हैं और देखिए कि क्या आपने याद किया। और हाँ, आपको बता दें, दो फूल फिल्म का गाना जो हमने सुनवाया था, कुछ हमारे सुधीर श्रोता हैं जिनकी जानकारी बड़ी समृद्ध है, उन्होंने लिख दिया था विविध भारती के फेसबुक पेज पर, हमें देर से दिखा, तो उनका भी हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। ज़रा सुनिए ये गाना और बताइए गीतकार और संगीतकार का नाम। फिल्म

जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो हम ये गीत ज़रूर गुनगुनाते हैं, और जब आपके घर में आपके आसपास खास तौर से टीन एज बच्चे

जब भी कभी मुश्किल वक्त आता है तो हम ये गीत ज़रूर गुनगुनाते हैं, और जब आपके घर में आपके आसपास ख़ास तौर से टीन एज बच्चे जब पढ़ाई के प्रेशर से परेशान हो, तन्हा उन्हें अकेलापन लग रहा हो, तो उन्हें ये गाना ज़रूर गा के सुना दीजिए कि हाँ सुबह ज़रूर आएगी और तुम्हारे पेपर्स अच्छे होंगे, मार्क्स बढ़ेंगे। इस तरह के बहुत सारे गाने हैं समझाइश वाले, गानों के माध्यम से हमारे बड़े बुज़ुर्ग समझाया करते थे, तो आप भी समझा सकते हैं। गीतकार संगीतकार का नाम पूछा था साहिर लुधियानवी और खयाम। एक श्रोता ने लिखा है कि बेबस बेकाबू बेचैन दिलों के हसरतों उमंगों तरंगों को चित्रित करती इबारत है। अनुभूति तन्हाई बेबसी मान मनवल हंसाती रुलाती बेबसी दिलों के तजुर्मा को तरन्नुम में ढाल आज सुरीला सफ़र। बाकी खासम खास रहेगा और खासम खास हो रहा है, एक श्रोता ने लिखा है। एक श्रोता ने लिखा है कि इस दिल की दास्तान की क्या कहें, आशा निराशा के समुद्र में हिचकोले खाता है, आशाओं के किरण के साथ प्रफुल्लित होकर नई ऊर्जा से भर जाता है, नए सपनों और उन्हें पूरा करने की ओर अग्रसर हो जाता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि दिल और दिमाग का द्वंद्व हमेशा से रहा है, रिश्ते बनाए तो दिल से जाते हैं लेकिन निभाए दिमाग से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि अगर सामने वाले पर गुस्सा आ रहा हो तो उस समय चुप रहना ही उचित रहता है, क्योंकि गुस्सा तो थोड़ी देर बाद शांत हो जाता है पर उस समय गुस्से में कही गई बातें सामने वाले को दूर कर देती हैं। और एक श्रोता ने लिखा है कि कभी खुद से रूठ जाता है दिल, कभी ज़माने से। और एक श्रोता लिख रहे हैं कि ये दिल बड़ा अजीब है। और अब चलिए प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं, फिल्म आह से। आपको पूछना है कौन है हीरो कौन है हीरोइन, और गीतकार संगीतकार का नाम भी ज़रा बताइएगा। फिल्म आह

0: आह फिल्म का गाना था, लता मंगेशकर की आवाज थी। हमने आपसे पूछा था गीतकार और संगीतकार का नाम। गीतकार थे शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन, और हीरो हीरोइन का नाम भी पूछा था। सभी श्रोताओं ने बहुत कम वक्त में बहुत जल्द त्वरित जवाब दिया, नरगिस और राज कपूर। एक श्रोता ने लिखा कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट गीत है, मैंने अपनी डायरी में लिखा था ये गीत। और एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे ज़्यादा वक्त मेरी नवासी को मनाने में लगता है। और एक श्रोता ने लिखा है कि जब किसी को गुस्सा आए तो चुप रहना ज़्यादा बेहतर होता है। बहुत सारे श्रोताओं ने आज अपनी बातें और अपनी यादें साझा की। किसी ने रूठने की बातें की, किसी ने तनाई की बातें की, किसी ने।
1: दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द मिडडे न्यूज़।

0: भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया, कहा न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया, कहा भारत एक मजबूत आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 को अपनाया गया। बावी तूफान के कारण जापान और ताइवान में उड़ानें रद्द और स्कूल बंद। भारत और इंग्लैंड के बीच पांचवा और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में खेला जाएगा और फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से और अर्जेंटीना का सामना स्विट्जरलैंड से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य है। ऑकलैंड में दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी देशों के प्रभारी सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने बताया कि आगामी 4 वर्षों में साझा रूप से काम करने के लिए भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी 2030 तक की रूपरेखा को भी मंजूरी दी गई है। इसका उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करना है।
1: दोनों देशों के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने का निर्णय ये दर्शाता है कि हम अपने रिश्तों के सभी क्षेत्रों में संबंध मजबूत कर रहे हैं, विशेष रूप से रक्षा तथा सुरक्षा के क्षेत्र में और राजनीतिक स्तर पर।
0: इससे पहले दोनों नेताओं के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद रक्षा, पशुपालन और डेयरी, पर्यटन, खेल तथा आपदा प्रबंधन से जुड़े 5 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ये दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी स्थापित करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो भविष्य के सहयोग को नई दिशा देगा।
2: आज हमने इंडो पैसिफिक में मैरिटाइम कोऑपरेशन के लिए एक फ्रेमवर्क पर सहमति बनाई है। बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, लॉजिस्टिक सपोर्ट और हाइड्रोग्राफी में सहयोग से हमारा आपसी तालमेल बढ़ेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के खिलाफ मिलकर काम करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
2: वैश्विक मंच पर भी भारत और न्यूजीलैंड भरोसेमंद साझेदार और करीबी मित्र है। हमारा मानना है कि वर्तमान समय की चुनौतियों का सामना करने के लिए UN सहित अन्य वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म आवश्यक है। आतंकवाद के विषय पर कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ाने के लिए आज हमने ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप का गठन किया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश खेल संबंधों की 100वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
2: 100 साल पहले मेजर ध्यानचंद के नेतृत्व में हॉकी टीम ने यहां आकर जो इतिहास रचा था वह हमारी खेल साझेदारी को आज भी प्रेरित कर रहा है। इस उपलक्ष्य पर हम दोनों देशों में कई स्पोर्ट्स इवेंट्स आयोजित कर रहे हैं। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों में भी सहयोग बढ़ाने के लिए हमने स्पोर्ट्स ज्वाइंट एक्शन प्लान बनाया है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच मजबूत होते संबंधों का महत्वपूर्ण आधार है। ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के संबंध साझा विरासत, स्थायी मित्रता, समान लोकतांत्रिक मूल्यों और उज्ज्वल भविष्य के साझा संकल्प पर आधारित हैं।
2: हमने न्यूजीलैंड से भी बहुत कुछ सीखा है और अब भी सीख रहे हैं। न्यूजीलैंड दुनिया का वो देश है जिसने सबसे पहले महिलाओं को वोटिंग का राइट दिया था। भारत भी आज विमेन लेड डेवलपमेंट के मंत्र के साथ महिलाओं के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि ऑकलैंड से वेलिंगटन और

0: क्राइस्ट चर्च से क्वींसटाउन तक भारतीय समुदाय ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: इस अवसर पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने कहा कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी लगातार मजबूत हो रही है। उन्होंने कहा कि मुक्त व्यापार समझौते से न्यूजीलैंड के निर्यातकों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच मिलेगी और न्यूजीलैंड में भारतीय कारोबार के लिए नए अवसर खुलेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। परियोजना 17 एकाई युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि भारत पारंपरिक रक्षा क्षमताओं और उन्नत प्रौद्योगिकियों को सुदृढ़ करके एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। श्री सिंह ने कहा कि आईएनएस महेंद्रगिरी में 75% से अधिक स्वदेशी घटकों का इस्तेमाल हुआ है। उन्होंने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। इससे हिंद महासागर में भारत की समुद्री ताकत और बढ़ेगी।
2: आईएनएस महेंद्रगिरी में मल्टी फंक्शन राडार के साथ लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल्स का कॉम्बिनेशन है, जो आकाश से आने वाले किसी भी खतरे को दूर से ही पहचान कर नष्ट कर सकते हैं। और इसमें इंडिजिनस रॉकेट लॉन्चर है, टॉरपीडो लॉन्चर्स है, एक इंटीग्रेटेड एंटी सबमरीन डिफेंस सिस्टम है, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट है और क्लोज इन वेपन सिस्टम भी है। ये तमाम चीजें आईएनएस महेंद्रगिरी को महेंद्रगिरी पर्वत के समान ही अभेद और मजबूत बनाती हैं।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 अपनाई गई है। बैठक में ब्राजील, चीन, मिश्र, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और संयुक्त अरब अमीरात के परिवहन मंत्रियों ने अपने विचार साझा किए। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के अंतर्गत दो दिन की ये बैठक आज से नागपुर में शुरू हुई। गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का शुभारंभ किया। श्री शाह ने युवाओं से पुस्तकालयों में जाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि पुस्तकें व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। श्री शाह ने कहा कि महान क्रांतिकारी और विचारक जयप्रकाश नारायण ने देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
3: किशोरों ने और युवाओं ने अपने रुचि के विषय छान लेने चाहिए और सुने सुनाए ज्ञान की बगैर हमारे रुचि के विषय में जिन्होंने पूरा जीवन खपा दिया है, जिन्होंने पूरा जीवन लगा दिया है, ऐसे लोगों ने जो अपने अनुभव, अपने विचार, अपना चिंतन और चिंतन की व्यवहारिता जो पुस्तकों में अंकित की है उसको पढ़ना चाहिए। ये बहुत बड़ा मौका है दिल्ली के युवाओं के लिए कि फ्री ऑफ कॉस्ट 32,000 पुस्तक और 1 करोड़ ई बुक का एक्सेस है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि हैदराबाद को प्रमुख हाई स्पीड रेल हब के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रस्तावित बुलेट ट्रेन कॉरिडोर हैदराबाद को पुणे, चेन्नई और बेंगलुरु से जोड़ेगा। हैदराबाद में श्री वैष्णव ने कहा कि हाई स्पीड रेल नेटवर्क से यात्रा में लगने वाले समय में कमी आएगी और दक्षिण भारत में रेल संपर्क मजबूत होगा। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय

0: मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व है। उन्होंने कहा कि अभियान का नारा जब बच्चों में हो सही अंतराल, परिवार बने स्वस्थ और खुशहाल, गुणवत्तापूर्ण परिवार नियोजन सेवाओं तथा जागरूक प्रजनन संबंधी निर्णयों के महत्व को दर्शाता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। जापान के दक्षिणी द्वीपों में आज तूफान बावी के टकराने की खबर है। इस दौरान द्वीपों में तेज हवाएं चली और मूसलाधार बारिश हुई। लगभग 144 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं के साथ तूफान बावी के कल तड़के चीन के झेजियांग प्रांत में टकराने का अनुमान है। इस तूफान के कारण जापान के ओकिनावा प्रांत में 200 से अधिक उड़ानें रद्द की गई। ताइवान में स्कूल और सरकारी कार्यालय भी बंद रहे। इस बीच चीन ने भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने अगले 4 से 5 दिन तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर नरेश ने बताया कि अल नीनो के कारण देश में मॉनसून की बारिश सामान्य से कम हुई है।
1: आज के लिए हमारा असम मेघालय के लिए रेड अलर्ट भी है, वहाँ हम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल अनुमान लगा रहे हैं। ईस्ट उत्तर प्रदेश, बिहार, सब हिमालय वेस्ट बंगाल, सिक्किम, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में जो रेनफॉल एक्टिविटी है आने वाले 4 से 5 दिन कंटिन्यू रहेगी और नॉर्थ पंजाब, नॉर्थ हरियाणा में आज हैवी रेनफॉल हो सकती है। अगर आप NCR दिल्ली की बात करें, बाई इवनिंग और लेट इवनिंग हल्का फुल्का रेनफॉल हो सकता है।
0: सिक्किम एक बार फिर देश का सबसे समृद्ध राज्य बनकर उभरा है। प्रति व्यक्ति आय के नवीनतम विश्लेषण के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 6,46,000 रुपए से अधिक रही। ये राष्ट्रीय औसत से लगभग 3 गुना है। देश की कुल आबादी में सिक्किम की हिस्सेदारी केवल 0.05% है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सिक्किम एक बार फिर भारत का सबसे समृद्ध राज्य प्रति व्यक्ति आय के आधार पर घोषित हुआ है। बिजनेस स्टैंडर्ड की कल प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार सिक्किम के एक औसत निवासी की आय बिहार के एक औसत निवासी की तुलना में लगभग 10 गुना ज्यादा है। पिछले 10 वर्षों से शीर्ष 4 स्थानों पर सिक्किम, गोवा, दिल्ली और चंडीगढ़, जबकि सबसे निचले स्थानों पर बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर लगातार बने हुए है। मानुश्रोतिम शर्मा के साथ मोइनाक चैटर्जी, आकाशवाणी समाचार, गैंगटॉक।
0: भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज शाम 7 बजे साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। श्रृंखला में इंग्लैंड ने 3-0 की अजेय बढ़त बना ली है। लंदन के लॉर्ड्स में भारत के साथ पहले महिला क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन आज इंग्लैंड पहली पारी में 1 विकेट पर 21 रन से आगे खेलेगा। माइया बाउचियर 17 और हीथर नाइट 1 रन बनाकर क्रीज पर हैं। इससे पहले कल भारतीय टीम ने पहली पारी में 285 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 83, कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 58 और दीप्ति शर्मा ने 57 रन बनाए। फीफा फुटबॉल विश्व कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अंतिम क्वार्टर फाइनल में कल सुबह 6:30 बजे वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इससे पहले स्पेन और फ्रांस सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया। 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए तक पहुंचाने का लक्ष्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय प्रवासी समुदाय को संबोधित किया। कहा, न्यूजीलैंड में भारतीय समुदाय दोनों देशों के बीच साझा सफर का एक अहम हिस्सा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्र गिरी का जलावतरण किया। कहा, भारत एक मजबूत, आत्मनिर्भर और भविष्य के लिए तैयार रक्षा बल का निर्माण कर रहा है। परिवहन क्षेत्र में तकनीकी और नवाचार आधारित सहयोग मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा पत्र 2026 को अपनाया गया। और भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5वां और अंतिम T20 क्रिकेट मैच आज शाम साउथहैम्पटन में। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत कर रही हूँ मैं, आपकी रेडियो सखी ममता सिंह।

0: राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, चित्रगुप्त का संगीत था, लता मंगेशकर की आवाज थी और फिल्म थी भाभी।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है

0: रोल, तो मुझे दिखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक मिल
1: एक और आ गया।
0: एक और आ गया।
2: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
4: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता, नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

0: दिल ही तो है इस फिल्म का गाना आप सुन रहे थे मुकेश की आवाज में। रचना थी साहिल लुधियानवी की, संगीतकार थे रोशन। अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट

0: डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़ जंगल पहाड़ झरने इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
1: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: लता मंगेशकर की आवाज में ये था साहिर लुधियानवी का लिखा गाना, संगीतकार थे रवि, फिल्म थी आंखें। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी,
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां,
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत,
2: मैं तेरा राग तू मेरी रागनी,
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत
3: तुम्हारी याद सताते हैं,
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

अमर प्रेम फिल्म का गाना आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में। शब्दकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार राहुल देव बर्मन। अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। मन चाहे गीत कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

दोस्तों, मैं हूं आपके रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम मन चाहेगी। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान, न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। आपको याद आ गया होगा, इसी शैली में मन चाहे गीत कार्यक्रम की शुरुआत किया करते थे और बहुत सारे श्रोता अपने रेडियो की आवाज सचमुच बढ़ाया करते थे, क्योंकि श्रोताओं के पसंदीदा फिल्मी गीतों का ये कार्यक्रम है और बहुत बेसब्री से श्रोताओं ने इंतजार किया था और हाल ही में ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। तो चलिए आज बढ़ाइए आवाज और देखिए कि आपका नाम इसमें शामिल है या नहीं, आपकी पसंद शामिल है या नहीं। प्यार का मौसम फिल्म का गाना।

प्यार का मौसम फिल्म का गाना था, किशोर कुमार की आवाज़ और इस गाने की फरमाइश भेजी थी हमारे इन श्रोताओं ने। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से कुमारी वंदना मराठा, भाऊ मराठा, गणेश दादा और इनके परिवार के अन्य लोग और स्वाति नारायण, ललिता नारायण खर्चे का भी नाम लिखा है इस पोस्ट कार्ड में। और श्रोताओं की फरमाइश आई है चांदूर बिस्वा तालुका नंदुरा जिला बुल्ढाणा महाराष्ट्र से, नारायण भाऊ खट से, रक्षा ताई खट से, ललिता संजना और इनके परिवार के अन्य लोग, जोधपुर राजस्थान से गिरधारी लाल विश्वकर्मा और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये श्रोताओं की पसंद पर।

गाइड फिल्म का गाना था लता मंगेशकर की आवाज़, शब्दकार शैलेंद्र, संगीतकार सचिन देव बर्मन। और श्रोताओं की फरमाइश पर यह गाना था गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से एम फारूक कादरी और फिरासत हुसैन, मुनव्वर लल्ला, पप्पू बिजली वाले, शेख शमा परवीन और अफसाना बेगम, महजवी शेख और इनका पूरा परिवार, दयाल बंदे बिलासपुर छत्तीसगढ़ से, पद्माकर राउत, सविता राउत, अश्लीला राउत, आदित्य राउत और इनके अन्य साथी। और इसके अलावा फरमाइश आई अयोध्या स्टेट भोपाल मध्य प्रदेश मयूरी परिसर से श्रवण सिंह के नारे और इनका पूरा परिवार। चलिए अब सुनते हैं अगला गीत, ये फिल्म जीने की राह।

0: बल्कि और स्तर पर की सांस्कृतिक विरासत को नई आयाम दिए हैं। आइए उनसे बात करते हैं।
1: सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद
1: सर। आप नुआपड़ा जिले की सिनापली के मूल निवासी हो, तो आपके बचपन और प्रारंभिक जीवन के कौन से अनुभव ने आपको लोक संगीत और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया, इसके बारे में कुछ बताइए।
2: मेरा बचपन कालाहांडी का नुआपड़ा जिला है, वहाँ सिनापली ब्लॉक में आदिवासी बहुल क्षेत्र है। हम एक कोंद गांव में रहते थे और उसी समय हम आदिवासी नहीं थे, फिर भी हमने बचपन में अपने आदिवासी बच्चों के साथ खेलते हुए और प्रारंभिक स्कूल में प्राथमिक स्कूल में आदिवासी बच्चों के साथ पढ़ते हुए उनकी भाषा से हम बात करना शुरू किया था बोल के। और फिर प्रारंभिक जीवन में आदिवासी बच्चों का जो अपनी जो जीवन धरातल और संस्कृति और प्रकृति है उसके साथ मेरा जीवन का लगभग 15-16 साल बीता हाई स्कूल तक। तो क्लास 1 से क्लास 11 तक मैंने जो एक आदिवासी संस्कृति के अंदर अपना स्कूली शिक्षा संपूर्ण किया, उसी समय मेरे को दो चीज मिला। एक ही स्कूली शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाया और दूसरा है अनुभव की ज्ञान, जहाँ की आदिवासी का विवाह, नृत्य गीत, शादी ब्याह, पूजा परंपरा, देवी देवता, नृत्य गीत, नाटक, ये सब मेरे को बहुत श्रद्धा के साथ देखना मजा आता था बचपन में। और ये कल्चर मेरे लिए अपना कल्चर जैसा लगा, इसलिए मुझे जो अपॉर्चुनिटी मिला, जो देखने को मिला, जो खेलने कूदने नाचने को मिला आदिवासी दोस्तों के साथ, वो मेरे आदिवासी लोक संगीत, लोक नृत्य और लोक साहित्य की ओर प्रेरित किया। गोंड गांव में जब था हम लोग, उसी समय गोंड का परघनिया नाम का एक जाति होते हैं जो बहुत लंबे गीत गाते हैं, लोक काव्य गाते हैं, और वो जैसे चितल सिंह छत्री है, हीराकान छत्री है, ऐसे काफी लंबे लंबे कथात्मक गीत गाते थे, जिसको सुनकर हम कल्पना करते थे कि इनका गीत में क्या इतना बड़ा कहानी है किसी राजा का, गोंड राजा का, मध्य प्रदेश का, वो सब मैं सुनता था। और डांस और म्यूजिक बहुत चलता था, शादी ब्याह में हो या कुछ भी फेस्टिवल होता था, होली में होता था, दशहरा में होता था, और नुआखाई नाम का एक नया चावल देवी को समर्पण करने के बाद लोग उसी चावल को खाते थे, उसको नवार नबा नुआखाई कहते हैं, वो फेस्टिवल मैंने बहुत मनाया। तो ये सब मेरे को बहुत लुभावना किया। उसके साथ साथ उसी आदिवासी एरिया का जंगल, चिड़िया, जानवर, इनका जो एक मनुष्य के साथ सामीप्य है और जो संपर्क है, उसको मैं बड़ा गहराई से देख रहा था, और उसी के कारण मैंने आदिवासी संस्कृति के प्रति मेरा रुझान बढ़ गया।
1: जी सर।
2: तो उसी चीज ही मेरा बचपन ही मेरे को आज इस लेवल तक पहुंचाने की काम किया है।
1: सर आपने जैसे बताया कि उड़ीसा की मिट्टी, प्रकृति और लोक जीवन की सरलता हर कलाकार और लेखक को प्रभावित करता है। यहाँ की लोकगीत, लोक नृत्य, त्योहार और सामाजिक जो रीति रिवाज है हमारे, वो जन जीवन से गहरा रिश्ता रखता है। रथ यात्रा को, राज्य पर्व और नुआखाई जैसे पर्व सिर्फ उत्सव नहीं बल्कि उड़ीसा की सांस्कृतिक आत्मा का प्रतीक है। तो सर ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगी कि उड़ीसा की लोक संस्कृति ने आपका रचनात्मक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया।
2: जीवन को दो भाग में आप देख सकते हैं, एक है कि 800-900 किलोमीटर का एक सामुद्रिक उड़ीसा का उपकल, जो कटक, पुरी, बालेश्वर, गंजाम का एक सामुद्रिक जीवन और समतल प्लेन लैंड है, जहाँ खेती बाड़ी, धान की खेती कमाते हैं। और दूसरा है उड़ीसा का आहा जंगल है और पहाड़ पर्वत है, जहाँ आदिवासी लोग जीवन बिताते हैं। मेरा जो परवरिश जो हुआ मेरे घर में, वो उड़ीसा संस्कृति का था, क्योंकि मेरे पिताजी उड़ीसा के उड़िया भाषा जानते थे और उड़िया भाषा के अच्छे गीत गाते थे और कहानी बोलते थे, नाटक बोलते थे, नाटक करते थे। वो जो मेरे को जो परवरिश किया उड़िया संस्कृति का, और मेरे दोस्तों के साथ मैंने जो काम किया, घर में उड़िया संस्कृति है और वहाँ बच्चों के साथ, स्टूडेंट्स लोगों के साथ, और जितना त्योहार पर्व देख के, ये दोनों संस्कृति को मैंने अपनी बचपना से ही समाहित किया था और दोनों संस्कृति को देखता था। घर में हमारा आदिवासी संस्कृति का कुछ भी ऐसा चाल चलन नहीं था, लेकिन घर की चाल चलन जो हिंदू संस्कृति का था, और बाहर जो मैं

0: आदिवासी संस्कृति को देखता था, उसका एक समीकरण मेरे चेतना में बैठ गया था और वो एक रचनात्मक रूप से इसलिए निकला कि वहाँ के जो नाच गाना होते हैं, कथा होते हैं, लोक काव्य होते हैं, गीत होते हैं और उनका जो दैनंदिन जीवन और सांस्कृतिक जीवन, इनको जीने में मेरा एक अपना व्यक्तित्व बना। उसी कारण मैं जब उड़ीसा का आदिवासी क्षेत्र को देखा और आदिवासी क्षेत्र में जो भी मेरे को सीखने को मिला उसको मैं उड़िया संस्कृति में भी देखना शुरू कर दिया और देखा कि पंडित नीलकंठ दास ने कहा था कि उड़ीसा की भाषा आर्य है, उसका जो आचरण और उसका जो संस्कृति वो द्राविड़ है। तो मेरे को बहुत प्रभावित किया बाद में कि जब मैं उड़िया लिटरेचर को पढ़ने लगा कि उड़िया लिटरेचर में आदिवासी संस्कृति का बहुत प्रभाव है, उसका व्याकरण को, उसका साहित्य को और उसका जो नैरेटिव जो आख्यान को आदिवासी समाज उड़िया साहित्य को भी अच्छा प्रभावित किया है और उड़िया साहित्य भी आदिवासी अंचल में उड़ीसा का जो गीत है राधा कृष्ण के ऊपर, राम के ऊपर, शिव पार्वती के ऊपर, वो गीत को भी आदिवासी लोग बड़ा बहुत श्रद्धा के साथ जीते थे। इसका मतलब है कि भारत का जो बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता है उसी चीज को हम कालाहांडी में देखने को पा रहे थे। और जब आगे बढ़ा कि उड़िया लिटरेचर के ऊपर जब काम किया, उड़िया कल्चर के ऊपर जब मैंने काम किया, उसी समय मेरा जो रचनात्मक जीवन को ये जो प्रभावित किया दोनों संस्कृति, इसको लेके मेरा अपना ज्ञान का और विचार बनाया।
1: सर, हर सफल व्यक्ति के जो जीवन होता है एक दौर जरूर आता है जब उसे कठिन परिस्थितियां, चुनौतियां और संघर्ष के सामना करना पड़ता है। इस संघर्ष के दिन इंसान को मजबूत भी बनाती है, उसकी सोच को गहरा करती है और उसके सपनों को एक नई दिशा देती है। अक्सर देखा गया है कि जीवन के वो कठिन पल ही आगे चलकर सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है। तो सर, ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी संघर्ष के दिनों को आप किस तरह याद करते हैं?
0: 1984 से 1992 तक मैंने कालाहांडी के ऊपर रिसर्च किया, उसके ऊपर पीएचडी किया, लेकिन पीएचडी के साथ मेरा रिसर्च कभी बंद नहीं हुआ। और ये संघर्ष की बात जो कह रहे हैं, उसी समय सरकारी एक बस ही था कहीं जाने के लिए, लेकिन बस तो जंगल बिहड़ को नहीं जाते, तो हम साइकिल में बहुत जगह घुमा हूँ। अभी तो यकीन नहीं होता है कि 40 साल पहले हम 35,000 किलोमीटर साइकिलिंग किया है घूमने के लिए। 18 विकास खंड में मैंने कम से कम दूसरों से टेप रिकॉर्डर मांगता था, मेरे दोस्तों से कैमरा मांगता था, वहाँ कैमरा और टेप रिकॉर्डर का रील लगाकर मैं उधार मांगकर वो लेके 5-7 दिन के लिए जंगल को जाता था, रिकॉर्डिंग करता था, आने के बाद उसको फिर मैंने ट्रांसक्राइब करके मैं उसको रखता था। गाँव में रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस गाँव को जाओगे उसी गाँव के किसी आदमी के साथ बात करके बोलना पड़ता था कि हम आपके गांव को आए हैं कुछ काम करने के लिए, आपकी संस्कृति को जानने के लिए, थोड़ा सा रहने को मिलेगा। तो उन लोग कभी कभी मेरे को घर के बाहर जो एक गौशाला रहता है वहाँ भी मेरे को सोना पड़ा है, मच्छर, अंधेरा, टसों का तेल, किरोसिन और एक टर्च लाइट, इतना लेकर हम साइकिल में जाते थे, टेप रिकॉर्डर और कैमरा पकड़ के अकेला जाकर उसी गाँव में 2-3 दिन, 4 दिन रह के लोगों के साथ मिलता था। सब नारी पुरुष सब मिल के ये सब कहानी मैं जब कहता था, उनके दो लाइन गीत मैं गाता था, उसी लाइन को सुनने के बाद वो इतना प्रभावित होते थे कि ये बाहर से आके हमारी गीत गा रही है तो पूरा गीत तुमको मालूम नहीं है, तो मैं पूछता था कि पूरा गीत क्या है बताइए, तो पूरा गीत और पूरा कहानी मेरे को रिकॉर्डिंग करता था, वो सुनाते थे।
1: आप वो दो लाइन हमको भी सुना दीजिए।
0: कहीं जाए

0: सुई पर दवाने, इसका हिंदी अर्थ होगी आप अकेले कहाँ गए थे, हम आपको एक खटिया बैठने के लिए देते हैं, आप थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठो और बैठने के बाद बात करो, बात करने से मन को आनंद मिलती है। ऐसे आदिवासी भी गीत है कि जो मंत्र गाते थे, जो प्रकृति के साथ ईश्वर को जुड़ने का वो गीत होता है। ये जो ईश्वर को प्रकृति के साथ जोड़कर गीत गाने का वो मंत्र ऐसे गाते थे, कोई वैदिक मंत्र के उच्चारण हो रहा है, अर्थ नहीं समझ में आता था लेकिन उसका जो ध्वनि था रोमांचित कर देता था। ऐसे काफी गीत और कहानी है जिसको कि हम सुन के उसको अपनाया, उसका अर्थ निरूपण किया, उसका विश्लेषण किया और विश्लेषण करके उसके ऊपर किताब लिखा।
1: जी सर, सर आपने जैसे बताया कि हमारी जो लोकगीत है, हमारी परंपरा एक केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि हमारे इतिहास, भावना और जीवन दर्शन को भी दर्शाती है। आज के जो आधुनिक युग में जब डिजिटल माध्यम और नई संगीत के रूप तेजी से बढ़ रही है, तब लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि की आवश्यकता और भी अधिक महसूस होती है। तो इस संदर्भ में लोकगीत का संरक्षण और समृद्धि को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?
0: भारतीय समाज 5000 साल से श्रुति और स्मृति ये दोनों को लेकर है। श्रुति मतलब ही सुनना और स्मृति मतलब है स्मरण करना। ये दोनों ही मौखिक परंपरा का एक सबसे बड़ा पद्धति था। इसका मतलब है जहाँ लिखित समाज और लिखित साहित्य नहीं है, वहाँ गीत को सुनकर बार बार पुनरावृत्ति

0: करके उसी गीत को लोग गाते थे, सुनते थे। जो गीत और कहानी बार बार पुनरावृत्ति होके लोगों के सामने रखा जाता था, उसको केवल बोलने वाला नहीं सुनने वाला भी उसी गीत को सुनकर वो भी दूसरों के सामने उसी गीत को बचा के रखते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी यही लोकगीत आती थी। और लोकगीत केवल कल्पना की बात नहीं है, सामाजिक जीवन की बात है, अपनी मनुष्य का व्यक्तिगत पीड़ा की बात है, नारी जीवन की करुण कहानी है। और बच्चे हो या बूढ़े हो या समाज में जो चीज को सब लोग ग्रहण करते हैं वही हो, जो बुराइयां हैं उसको बिल्कुल ग्रहण नहीं करना है, ये सारे मैसेज, ये सारे संवाद लोकगीत में भरपूर है। और लोकगीत में कोई भी घटना होता है तो उसी घटना को भी उसी लोकगीत में उन लोग पिरोए करके रखते हैं और गाते हैं। कोई कवि साक्षर हो या निरक्षर हो, बात उसमें नहीं है, जो आंखों में देखे हैं, जो प्रत्यक्ष है, उसके साथ अतीत का किसी घटना को जुड़ के तुरंत उस लोकगीत बना देते हैं। तो लोकगीत का दृष्टिकोण ये है, ये समाज का दर्पण है लोकगीत। और लोकगीत में जीवन के सुख दुख, परिवार, समाज, देश की शासन गीतों में पिरोए रखते हैं और उसी गीतों में अपना पीड़ा, अपना आनंद, अपना जीवन का दर्शन, ये सारी चीज को गीत में रखते हैं। इसलिए ये क्या है, ये लोकगीत हमारे समय के इतिहास है, भूमि का इतिहास है, मनुष्य का जो सृजनशीलता है उसका इतिहास है। उसको सरकार इसीलिए लोकगीत का संरक्षण करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है, टेलीविजन है और काफी राज्य स्तरीय आदिवासी अनुष्ठान है जो राज्य सरकार के द्वारा, यहाँ एकेडमी ऑफ ट्राइबल लैंग्वेज एंड कल्चर जैसे उड़ीसा में है, यहाँ आदिवासी लोगों का गीत को इकट्ठा करके उसको किताब बना के उसी गीत को फिर लोगों के पास पहुंचाना सरकार का काम है। हालांकि ये भी एक चीज है कि ये जो आदिवासी लोकगीत है या जन समाज का लोक संस्कृति है, इसको कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ाया नहीं जाता। हालांकि कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से या सांगठनिक रूप से बहुत कम पैसे में इसको करते हैं, लेकिन एकेडमी होना चाहिए, जैसे कि नेशनल फोकलोर एकेडमी करता है और सारे राज्यों की जितने भी गीत है, कहानी है, धरोहर है, हमारा स्वतंत्रता संग्रामी है, हमारे साधु सन्यासी है, हमारा डांसर है, ड्रामाटिस्ट है, म्यूजिशियन है, ये सारे लोगों का गीत, नृत्य और चित्र और कहानी को, हालांकि इसको भारत की साहित्य अकादमी, केंद्र साहित्य अकादमी, ललित कला अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, ये सारी चीज कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ उसको ग्रामीण स्तर पर उसको जुड़ना बहुत जरूरी है। उसको अगर बचाएंगे तो क्या होगा कि समाज में जो परंपरा में हमारा जो मूल्यबोध था, एक भारतीय मूल्यबोध, इंडियन वैल्यू सिस्टम, उसी वैल्यू सिस्टम उनके गीत और कहानी में जो जिंदा था और पूजा पाठ में जिंदा था, आज धीरे धीरे बदल रहा है। इसका संवर्धन करके इसको स्कूल एजुकेशन में डालना चाहिए, बच्चों को खेल कूद, गीत और नाच, ये चार चीज बहुत अच्छा लगता है। ये चार चीज अगर दे देते हैं ना, तो बच्चे लोगों का संस्कृति को जो भूल रहे हैं वो संस्कृति को भूलना बंद करेंगे और परंपरा से फिर आधुनिकता की तरफ भी आएंगे।
1: सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आपके जीवन के अनुभव, संघर्ष और संवेदनाएं और लोक संस्कृति के प्रति आपके दृष्टिकोण को हमारे साथ साझा किया। इसी आशा के साथ कि ओडिशा की लोक संस्कृति यूं ही देश और दुनिया में अपनी मधुर गूंज फैलाती रहे, हम आपसे विदाई लेते हैं। नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी ओडिशा से संस्कृति और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान देने वाले श्री महेंद्र कुमार मिश्रा के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रही थी स्मृति रेखा तारेनिया। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। पता है podcast.airnews@gmail.com।
3: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नरोत्तम गौड़ और इनके साथियों ने फरमाइश भेजी थी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से। चलिए अब सुने ये गाना।

मेरे हम सफर फिल्म का गाना आप सुन रहे थे लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में। रचना थी आनंद बख्शी की, संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इस गाने को पसंद किया था आप सभी श्रोताओं ने। गणेश पेठ पाथरडी से अंबादास शिंदे, संगीता शिंदे, अमोल अमृत, सुवर्णा शिंदे और इनके परिजन, जगाधारी हरियाणा से विजय मोहन, मीनाक्षी और इनके परिवार के अन्य लोग, लुहेड़ी महोबा उत्तर प्रदेश से जयपाल यादव, इंद्रपाल यादव, अरविंद, राघवेंद्र, रिया, रेणु, दिव्यांशी, रोनिका और इनके परिवार के अन्य लोग। अब आज का मन चाहे गीत कार्यक्रम समाप्त होता है। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपने रेडियो सखी ममता सिंह के साथ। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

नाट्य तरंग। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं हरिराम आचार्य का लिखा नाटक रहीम की ढाणी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने। तो आइए सुनते हैं नाटक रहीम की ढाणी।

0: वाव, जैसलमेर हमको हर एंगल से फैसिनेट करता है मिस्टर ओझा।
1: अच्छा,
0: और हम क्या, दुनिया का कोई भी टूरिस्ट इधर से मुग्ध हुए बिना नहीं जा सकता।
1: क्या क्या आपने क्या बोला मिस चारुमित्रा, मुग्ध?
0: यस मिस्टर ओझा, आई मीन इट।
1: रियली? मगर ऐसी क्या अनोखी बात है यहाँ जिसके कारण आप जैसे कला और इतिहास के प्रेमी हर वर्ष यहाँ खींचे चले आते हैं?
0: ओह मिस्टर ओझा, दिस डेजर्ट, जे मीलों तक फैला रेगिस्तान, जैसे सोने की बालुका का सागर लहराता हो, कोड़ी धूप में तप करते शमी के पेड़, लुका छिपी खेलते घोड़ावर पक्षी, गोर बन से सजे ऊंट। मिस्टर ओझा, इट इज नॉट लेस देन ए वंडरलैंड फॉर मी।
1: आप हरे भरे बंगाल से आती हैं, इसलिए ये सूखा रंगहीन लैंडस्केप आपके लिए नई बात हो सकती है।
0: नो मिस्टर ओझा, ये तो एक ब्रॉड पैनोरामा है। इस बैकग्राउंड पर कलरफुल परिधान, आर्ट, कल्चर और इतिहास के जो रंग उभरते हैं, लोक संगीत के जो स्वर गूंजते हैं, वो सब कहने का नहीं, फील करने का चीज है।
1: एक बात कहूं मिस मित्रा?
0: ओह यस,
1: आप एकदम पागल हैं।
0: रियली? इज इट अ कॉम्प्लीमेंट?
1: एक खूबसूरत चीज को अप्रिशिएट करने के लिए एक खूबसूरत नजर भी होनी चाहिए, और वो नजर आपके पास है मिस मित्रा।
0: थैंक यू मिस्टर ओझा, यू आर सो नाइस टू मी।
1: आपने यहाँ का खूबसूरत सोनार किला देखा, मूमल महेंद्र की प्रेम गाथा सुनी, मांड धरती का मीठा संगीत भी सुना, अब नया तो कुछ बचा नहीं यहाँ, किधर ले चलूं?
0: हमको क्या मालूम, गाइड तुम है मिस्टर ओझा। नया कुछ नहीं बचा तो तुम हमको जंगल में किधर ले जा रहा है? क्या खाली पेट्रोल जलाने में तुमको मजा आता है?
1: नहीं मिस मित्रा, इस बार मैं आपको जैसलमेर के इतिहास का एक अछूत पृष्ठ दिखाना चाहता हूँ, देखना चाहेंगी?
0: ओह दैट्स लाइक ए गुड गाइड। लेकिन इतिहास का अछूत पृष्ठ और इस डेजर्ट में?
1: हाँ, यह पृष्ठ स्वाधीनता संग्राम के दिनों में सन 1940 के आसपास यहाँ एक ढाणी में लिखा गया, वो भी स्याही से नहीं, शरीर के रक्त से।
0: वहाँ जरूर ले चलो मिस्टर ओझा। वो जगह क्या बोला, ढाणी?
1: ढाणी यहाँ कुएं या ताल तलैया के आसपास छोटी सी बस्ती को कहते हैं।
0: आई सी।
1: लो आ गई हमारी मंजिल।

0: है रहीम की ठाणी, बहुत कम लोगों को जानकारी है इसकी। आइए।
1: रहीम की ढाणी, हम भी पहली बार नाम सुना। ये रहीम कौन है?
0: है नहीं, था। ये सामने है उसका स्मारक, रहीम का मजार, एक गुमनाम शहीद की समाधि, जिसने आजादी की लड़ाई में फिरंगी हुकूमत से टक्कर ली और अपने ही तरीके से देशभक्ति की एक अनूठी मिसाल कायम की। रहीम का सिर्फ एक मिशन था, अंग्रेज सरकार का खजाना या अंग्रेज परस्तों की दौलत लूटना और उसे गरीबों में बांट देना। ब्रिटिश हुकूमत के रिकॉर्ड में रहीम खां महज एक डकैत था, चलती ट्रेन में डाके डालने वाला डाकू, जेल तोड़कर भागने वाला एक खतरनाक मुजरिम।
2: आज की ताजा खबर, ट्रेन डकैतों का कुख्यात अपराधी रहीम खां मजबूर की जेल तोड़कर

0: अल्लाह अल्लाह।
1: पीर बाबा के कदमों में रहीम खां का सलाम।
0: खुदा खुश रखे। आ रहीमा, तुझे तो फिरंगियों ने कैद खाने में डाल रखा था ना।
1: हाँ पीर बाबा।
0: तो क्या तू जेल तोड़कर निकल आया?
1: बड़े कमजोर सींखचे लगा रखे हैं फिरंगी ने, हाथ लगाते ही टूट गए और मैं बाहर निकल आया।
0: पगले, तू जानता भी है कुछ? जवानी के जोश में तू किसे ललकार रहा है? उस फिरंगी सरकार को जिसका सूरज कहते हैं कभी डूबता नहीं।
1: झूठ है, अफवाह है पीर बाबा। ये सूरज मगरिब से उगा है, इसलिए इसका मशरिक में डूबना तय है।
0: कैसे?
1: क्योंकि ये उजाला देने वाला नहीं, अंधेरा फैलाने वाला सूरज है। जुल्म का अंधेरा, गुलामी का अंधेरा, नाइंसाफी का अंधेरा।
0: कुछ अपने गरेबान में भी झांक रही माँ, डकैती का धंधा करता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है।
1: ऐसा मत कहिए पीर बाबा, मैं डकैत नहीं हूँ, अदना सा खादिम हूँ आपका। अच्छे बुरे की पहचान आपसे सीखी है। इन काले दिल वाले गोरों ने जोर जुल्म से हमारे मुल्क की जो दौलत अपनी अय्याशी के लिए बटोरी है, उसे छीन कर अपने भाइयों में वापस तकसीम करने का फर्ज जान पर खेल कर भी अदा करता हूँ।
0: बेटे रहीमा, इस काम में खून खराबा भी तो होता है, नेक काम के लिए भला बंदूक क्यों?
1: मैं तो एक हक परस्त सिपाही का मेहनत कश बेटा था पीर बाबा। बंदूक उठाने पर मुझे गोरे अफसर ने मजबूर कर दिया।
0: क्यों भला?
1: बाबा, आपने ये सवाल करके मेरा जख्म कुरेद दिया। मेरे वालिद ने एक सिपाही की हैसियत से सारी उम्र इस नामुराद सरकार की खिदमत की, मगर जब वो बूढ़ा और बीमार होकर खटिया पर दम तोड़ रहा था, तब उसी के बड़े फिरंगी साहब ने दवा के लिए चंद पैसों की मदद मांगने पर उसे गोली से उड़ा दिया।
0: अल्लाह, ऐसी जलील हरकत, तूने जान नहीं ले ली उसकी?
1: हाँ, होता तो उसे जिंदा नहीं छोड़ता पीर बाबा।
0: तो तू कहाँ था?
1: मैं वालिद की दवा के लिए एक साहूकार के पास बीवी के कड़े बेचने गया था। लौटा तब तक सब कुछ खत्म हो गया था, वालिद का कत्ल हो गया था और मेरी बीवी ने खुदकशी कर ली थी।
0: या मेरे खुदा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ?
1: उसी दिन मैंने वालिद की बंदूक उठाकर कसम खाई कि इन फिरंगी लुटेरों को अपने जीते जी चैन से नहीं बैठने दूंगा। बंदूक का पहला घोड़ा मैंने जलील अफसर के सीने पर दबाया और ये रास्ता पकड़ लिया।
0: मगर इस रास्ते में चैन कहाँ है बेटे? ये रास्ता तो जेल और फांसी के अलावा और कहीं नहीं ले जाता।
1: जेल से तो निकल ही आया हूँ और अब तय कर लिया है कि जीते जी दुश्मन के हाथ नहीं आना है, चाहे वो मेरे सर पर कितने ही इनामों का ऐलान कर दे।
0: तो फिर अब करेगा क्या? हुकूमत के हाथ बड़े लंबे होते हैं बेटे, तू छुपेगा कहाँ?
1: अभी तो आपकी पनाह में हूँ, जहाँ का हुक्म आप देंगे वहीं चला जाऊंगा।
0: और तेरे साथी?
1: वो भी मेरे साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे।
0: देख रही माँ, यहाँ इस ठिकाने पर तो हर किस्म का आदमी आता है।
1: हाँ बाबा।
0: तेरा यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। तुम लोग मांगणियारों का भेष बनाओ और मेरा पैगाम लेकर जैसलमेर महारावल के पास चले जाओ। उनकी पनाह पुख्ता होगी और तुम वहां एकदम महफूज रहोगे।
1: जो हुक्म पीर बाबा।
0: अल्लाह।
1: बाबा
0: बोल बेटे।
1: इतना कर्म किया है तो चलते चलते एक और कर्म का वादा दे दो तो।

0: हाँ बोल।
1: इस हकीर बंदे का जब भी दम टूटे, आपके कदमों में टूटे, बस यही मेरा अरमान है।
0: जिंदगी और मौत तो परवरदिगार के हाथ है रहीमां, जो उसे मंजूर होगा वही होगा। जा अब आराम कर, कल सुबह कूच कर लेना आगे।
1: अच्छा बाबा, खुदा हाफिज बाबा।
0: अल्लाह हाफिज।

0: घने कमानदाता,
1: रियासत के क्या समाचार है दीवान जी?
0: सब अमन चैन है हुजूर, बस एक मामला आपकी सेवा में दरपेश करने की इजाजत चाहता हूँ।
1: पेश करो।
0: कल रात अमर सागर के रस्ते में 5 अनजान लोग मांगनियारों के भेष में पड़ाव डालकर गा बजा रहे थे।
1: कोई चोर डाकू तो नहीं है? कौन है उनका मुखिया?
0: वो अपना नाम रहीमा बताता है अंदाता, पीर पगारो की चिट्ठी लेकर आया है और हुजूर के चरणों में हाजिर होकर कोई पैगाम देना चाहता है।
1: कहाँ है वो लोग?
0: पुलिस की हिरासत में अंदाता।
1: और वो चिट्ठी?
0: ये है वो चिट्ठी अंदाता।
2: महारावल जैसलमेर, आप पर अल्लाह ताला की नजरे करम हो, पीर पगारो की दुआ कबूल फरमाएं। बाजाबता अर्ज की जाती है कि चिट्ठी लाने वाला शख्स हमारा वफादार खादिम है, इस नेक बंदे को अपनी पनाह में लेने का करम फरमाएं। ये आपकी जी जान से खिदमत करेगा, बाकी पैगाम इसके मुंह से रूबरू सुनकर खातिरी कर लें। बकलम पीर पगारो।
1: रहीमा को बाइज्जत बादल विलास में हमारे रूबरू पेश किया जाए।
0: जो हुकुम अंदाता।

0: महारावल का इकबाल बुलंद हो।
1: नाचीज की जोहार कबूल फरमाए अंदाता।
2: आओ रहीमा, पीर पगारों की चिट्ठी हमें मिल गई है।
1: हुजूर की मेहरबानी है।
2: दीवान जी को सवाल पूछेंगे तुमसे, ठीक से जवाब देना।
1: जो हुक्म अंदाता।
3: हमारे पास जो खबरें हैं उनके मुताबिक अमरकोट का बाशिंदा रहीम खां एक खतरनाक डकैत है जो ब्रिटिश हुकूमत के खजाने लूटता फिरता है।
1: खबर सही है।
3: वो रहीम खां कंपनी राज का एक सजा याफ्ता मुजरिम और फरार कैदी है।
1: एकदम सच है।
3: अंग्रेज सरकार ने उसके सिर के लिए 1,00,000 रुपए के इनाम की डोनी पिटवा रखी है।
1: आप बजा फरमाते।
3: क्या तुम वही रहीम खां हो?
1: खुदा झूठ न बुलवाए, ये खादिम वही रहीमा है।
2: इतने गुनाहों का बोझ लेकर हमारी रियासत में किस लिए आए हो?
1: महारावल की छत्र छाया में पनाह लेने अंदाता।
2: हमारा काम क्या डकैत और मुजरिमों को शरण देने का रह गया?
1: गुस्ताखी माफ हो अंदाता। रहीमा इंसानियत की, वतन परस्ती की राह पर चलने वाला एक नाचीज बंदा है। डकैत और मुजरिम का नाम तो उसे फिरंगियों ने दिया है, जो 7 समंदर पार से यहाँ आकर हमारे मुल्क की दौलत और इज्जत पर खुलेआम डाका डाल रहे हैं। रहीमा तो सिर्फ उनसे अपने मुल्क की दौलत वापस चीन लाने का काम अंजाम देता है।
2: तुम्हारी ज़बान से बगावत की बू आती है।
1: वतन परस्ती अगर बगावत है अंदाता, तो मैं फख्र के साथ अपना बागी होना कबूल करता हूँ।
3: किसी रजवाड़े में एक बागी को शरण देने का मतलब है ब्रिटिश राज से सीधी टक्कर लेना।
1: दीवान जी, मैं अनपढ़ आदमी हूं, सियासत नहीं समझता, मुल्क की खिदमत करना चाहता हूं और इन गोरों को यहां से बाहर खदेड़ने वाली हर जंग में हिस्सा लेना चाहता हूं। इसलिए अपने पीर बाबा के हुक्म से और महारावल की अजमत के एतबार से यहां आया हूं।
3: पूरी रियासत इस वक्त जबरदस्त अकाल की चपेट में है, खजाना तंग है, इसलिए फिलहाल हम तुम्हें महावार।
1: हमें कुछ नहीं चाहिए अंदाता, आपने जो भरोसा रखकर हमें पनाह दी है उसके बदले में मेरी खाल की जूती भी बनाकर आपको पहना सकूं तो कम है। और दीवान जी, रहीमा के जिंदा रहते अगर रियासत का खजाना तंग रह गया तो फिर रहीमा के वजूद का कोई मतलब नहीं।
2: क्या फिर कोई टाका डालोगे?
1: आप फिक्र न करें अंदाता, रियासत के खजाने को मालामाल कर देना मेरा पहला फर्ज होगा। डाका सिर्फ फिरंगी तिजोरियों पर पड़ेगा, वो भी सरहद के पार, ये मेरा अहद है।
2: तो फिर ठीक है देवान जी।
4: हुकुम।
2: रहीम खां को अपनी टोली के साथ खुफिया महकमे में खास औहदों पर लगा दो।
4: जो हुकुम अंदाता।
2: आज से इसका खुफिया नाम होगा राम।

धनी का महानदाता, इस मेहरबानी के बदले ये रहीमा आखिरी सांस तक आपकी खिदमत करेगा और वतन की मिट्टी पर अपने खून की आखिरी बूंद तक कुर्बान कर देगा।

0: ज्यादा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती, ब्रिटिश बैंक की तिजोरी लूटी, ट्रेन का 50 लाख की रकम लूट कर फरार, हर जगह कड़ी नाकाबंदी। पढ़िए आज की ताजा खबर, कराची एक्सप्रेस पे भारी डकैती।
1: साथियों, खुदा के फजल और आप लोगों की बहादुरी से हमें फिर एक बड़ी कामयाबी मिली। आज बड़े दिनों बाद अमल में स्वाद आएगा, क्यों करीमा?
2: रहीमा, ये वक्त राग रंग का नहीं है। छापा मार को वारदात के बाद वापस अपने गुप्त ठिकाने और गुप्त भैंस में लौट जाना चाहिए।
1: तो फिर बोलो, ब्रिटिश राज
3: मुर्दाबाद,
1: वतन के दुश्मन
3: मुर्दाबाद,
1: इनकलाब
3: जिंदाबाद,
1: हिंदुस्तान
3: जिंदाबाद।
1: अब चलो, ऊंटों के पिलान कस लो और कारतूस पेटी कमर में बांधकर बंदूकें संभाल लो, हम जैसलमेर चलेंगे।

0: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध प्रांत से समाचार मिला है कि अमरकोट का खतरनाक डकैत और फरार कैदी रहीम खां चलती ट्रेन में 50 लाख रुपयों की डकैती के बाद रात के अंधेरे में अपने साथियों के साथ फरार होने में कामयाब हो गया। सरकार को संदेह है कि वो सिंध की सरहद को पार करके जैसलमेर के रेगिस्तान की तरफ भागा है। उसकी तलाश और गिरफ्तारी के लिए सरकार ने सिंध प्रांत के आईजी पुलिस मिस्टर हटसन की अगुवाई में ऑपरेशन सर्च का ऐलान किया है।
1: Good afternoon, Your Majesty, His Highness of Jaisalmer.
2: आइए आइए, welcome, Mr. Harrison. फरमाइए क्या खिदमत की जाए?
1: As you know, Your Highness, हम इधर on duty आया। हमारा मिशन है Operation Search. इस ऑपरेशन में हम आपका मदद मांगता।
2: बड़े शौक से Mr. Harrison, आपकी मदद करके हमको खुशी होगी। आप इस ऑपरेशन की डिटेल्स बताएं तो बेहतर हो।
1: Oh yes, Your Highness. सिंध सूबे का रहीम खान एक ट्रेन रॉबरी के बाद फरार हो गया है। गवर्नमेंट को डाउट ही नहीं, पूरा यकीन है कि द ब्लडी एब्सकाउंडर वो भगोरा आपकी रियासत में कहीं छुपा है। इसलिए ये ऑपरेशन सर्च हम इधर से स्टार्ट करना मानता।
2: जरूर मिस्टर हर्सन, इस ऑपरेशन में हम आपकी पूरी मदद करेंगे।
3: राम सिंह
4: हुकुम अंदाता।
2: हर्सन साहब, ये राम सिंह हमारे खुफिया महकमे का बहुत काबिल अफसर है। रियासत की चप्पे चप्पे की बहुत अच्छी जानकारी है इसे। इसे अपने स्टाफ के साथ हम आपकी मदद के लिए बाकायदा तैनात करते हैं।
1: That's very good. Thank you, Your Highness. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
5: hey. रहीम खां का सलाम दीवान जी।
6: आओ रहीमा, कैसा रहा ऑपरेशन?
5: ऑपरेशन तो गोरी सरकार का था दीवान जी, पूरा करवा दिया। सच कहता हूँ दीवान जी, अंदाता का भी जवाब नहीं है। क्या मीठी और पुख्ता चाल खेली है, सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी। बस अब एक वारदात सक्कर सिंध में और करना चाहता हूँ दीवान जी।
6: कैसी वारदात?
5: वहां अंग्रेजों का एक पिट्ठू है, सोने चांदी में हीरे जवाहरात में लूटता है। गरीबों से लूट लूट कर अरबों की पूंजी कमाई है उसने। बस एक झपट्टा उस पर जरूर मारना है।
6: अब थोड़े दिन आराम ही कर ले रहीमा।
5: जब

0: तक ये गोरे लुटेरे यहाँ हुकूमत कर रहे हैं तब तक हमारे लिए आराम हराम है।
1: सिंध में चौकसी बहुत कड़ी हो गई होगी, तू क्यों अपनी जान जोखिम में डालता है?
0: यहाँ मौत का डर किसको है? जोखिम से खेलना ही तो अपना शौक रहा है दीवान जी। आज रात हमारी टोली निकल जाएगी, आप तो परसों तक लूट का माल जाब्ते में दाखिल खजाना करने की तैयारी रखवाना।
1: जैसी तेरी मर्जी रहीमा।
0: अच्छा, अलविदा।
1: अलविदा, ईश्वर तुझे सफलता दे।
2: ये ऑल इंडिया रेडियो है। सिंध सूबे से एक भारी डकैती के समाचार मिले हैं। रहीम खान ने कल रात सखर के एक नामी सेठ की कोठी पर संगीन डाका डाला। वारदात की खबर मिलते ही पुलिस ने कोठी को घेर लिया और गोलीबारी की, जिसमें कई सिपाही मारे गए। रहीम खान को भी गोलियां लगी, लेकिन वो घायल हालत में भी अपने साथियों की मदद से पुलिस को चकमा दे गया। लूट का ब्यौरा इकट्ठा किया जा रहा है और पूरे सिंध में रेड अलर्ट कर दिया गया है।

0: रो रहे भाई, पानी कैसी है तबीयत?
1: मैं ठीक हूं करीमा, माल कहाँ है?
0: वो ठीक ठिकाने पहुंच चुका होगा। अब्दुल जुम्मन और पंडित अलग अलग रास्तों से माल लेकर जैसलमेर गए हैं।
1: अब कोई फिक्र नहीं, जरा ये पट्टा खोल दे।
0: तुम्हारी हालत ठीक नहीं है रही भाई, सारे कपड़े खून में तर है।
1: जिस मिट्टी से ये जिस्म बना है, ये खून उसी की अमानत है। बहनी देरी से
0: जिद मत करो रही भाई, तुम्हें अभी बहुत जीना है। वतन की खातिर, हमारी खातिर तुम्हें फौरन अस्पताल पहुंचाना बहुत जरूरी है।
1: कौन सा अस्पताल?
0: जैसलमेर लिए चलता हूँ।
1: अरे पगले, जिसने मुझे जीते जी पनाह दी, उदा दिया उस अंधाता को मरने के बाद मुसीबत में डाल दूं? नहीं, जो अब तक राज रहा है उसे राज ही रहने दे करीमा।
0: मेरी बात मानो रही भाई, चलो मेरे साथ।
1: नहीं, अब ये ढाणी छोड़कर कहीं नहीं जाना। मेरा जिस्म रेगिस्तान की इस मिट्टी में मिल जाने दे करीमा।
0: ऐसा मत बोलो रही भाई, ऐसा मत बोलो।
1: रो मत करीमा, इधर देख पगले, मैं कितना खुश हूं। जैसी बन सकी वतन की खिदमत की, ना कि ऐश के लिए नहीं, फर्ज के लिए डाले। जिसने पनाह दी उसका कुछ कर्ज उतारा, आगे ये काम तुम लोग करना। फिरंगी रात से टक्कर लेते रहना। पानी।

0: ऐसी तमन्ना रही भाई, बोलो बोलो तो।
1: पीर बाबा का दीदार, उनकी कदम बोसी।
0: चलो रही भाई, मैं ले चलता हूँ वहाँ। या खुदा, तेरी खुदाई, पीर बाबा आप यहाँ।
1: पीर बाबा, आपने जहमत उठाई, या मेरे मौला, इस गुनहगार पर इतना करम।
2: गुनहगार नहीं है रहीमान, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।

0: गुने गार नहीं है सही माँ, तूने वतन परस्ती के हक में एक वफादार सिपाही की तरह अपना खून बहाया है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस मुल्क से ये फिरंगी राज खत्म होगा, आजादी का नया सूरज उगेगा।
1: आमीन। अलविदा बाबा।
0: रो नहीं करीमा, रहीम मरा नहीं, ये उसकी कुर्बानी है, शहादत है उसकी। शहीद को आंसुओं से विदा नहीं करते बेटे, जिस सरजमीन पर उसका खून गिरा है उसे वही बाइज्जत दफन करो। उसका मजार उसकी वतन परस्ती की याद दिलाएगा। आज से ये ढाणी रहीम की ढाणी कहलाएगी, जिस रेत के टीले उसकी कुर्बानी के सबूत बनेंगे और ये हवाएं उसकी शोहरत के नगमे दोहराएगी।
2: ये है जैसलमेर के इतिहास का वो गुमनाम पन्ना मिस मित्रा, रहीम की ढाणी, रहीम खां का ये मजार।
3: बड़ा पवित्र है ये स्मारक मिस्टर ओझा, श्रद्धा के भाव से हम इसको नमन करता है। इसका दर्शन कराने के लिए आपको धन्यवाद कैसे दिया जाए समझ में नहीं आता। आई रियली थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।
2: बस बस मिस मित्रा, एक गाइड के नाते ये मेरा फर्ज था। आइए चलें।

अभी आप सुन रहे थे हरिराम आचार्य का लिखा ये नाटक रहीम की ढानी। इसका निर्देशन किया महेंद्र मोदी ने और आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त हुआ।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: नमस्कार दोस्तों, बॉम्बे टॉकीज में आज आप सुनने वाले हैं जानी मानी राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत। आज प्रस्तुत है इस बातचीत का पहला भाग।
2: बॉम्बे टॉकीज में आप सभी सुनने वालों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मंदाकिनी जोशी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है जानी मानी लेखिका, निर्माता और फिल्म निर्देशक सीमा कपूर को। सीमा जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि विविध भारती पे एक बार फिर से मैं आई हूँ और आप लोगों से रूबरू हूँ।
2: जी, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपका जन्म रंगमंच और कला से जुड़े परिवार में हुआ है। आपके पिता रंगमंच से जुड़े हुए थे और माँ उर्दू कवित्री, शायरा और शास्त्रीय संगीत की गायिका हैं। तो आपका बचपन कहाँ और कैसे बीता?
3: देखिए, हमारा बचपन जो है बहुत ही रंग बिरंगा रहा है।
2: अच्छा।
3: हम सब बहन भाइयों का।
2: दरअसल
3: मेरे जो दादाजी थे वो आर्मी में कर्नल थे। उस समय तो पार्टीशन भी नहीं हुआ था, अंग्रेजों के जमाना था उस समय। और जितने भी हमारे रिश्तेदार हैं ददिहाल की साइड के, सब बड़े बड़े ओहदों पे हैं आर्मी में या बड़े बड़े वकील
2: जी।
3: मेरे पिताजी लाहौर में

0: पढ़े श्री मदन लाल कपूर, और मेयो कॉलेज जो बहुत ही उस समय और आज भी बहुत रेप्यूटेड कॉलेज है, वहाँ पढ़े वो। उन्हें पता नहीं क्या सूझा कि वो दिल्ली आ गए, और उन्होंने 1930 के करीब एक नाटक कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में दो चार नाटक कंपनियां चला करती थी, पारसी थिएटर उन्हें बोला जाता था, वो उस समय सोहराब मोदी साहब का था, पृथ्वीराज जी का था और बाबूजी का, मेरे पिताजी का। तो उन्होंने वो रंगमंच ज्वाइन किया और उन्होंने एक नाटक कंपनी बनाई जिसमें 300 के करीब लोग थे, और प्रोपराइटर मालिक बाबूजी थे मेरे पिताजी। वो कंपनी चलाना अपने आप में एक रंगमंच की सेवा जो है, लेकिन उस समय क्या था कि समाज में खासतौर से नॉर्थ इंडिया में नाटक को अच्छा नहीं समझा जाता था, नाचना गाना
1: जी।
0: तो मेरा जो ननिहाल था वो चूंकि बंगाली परिवार था, मेरे नाना नानी बंगाली थे, संगीत उन लोगों का तो रचा बसा है और उनका तो गाना सीखना बहुत जरूरी है, तो माँ मेरी क्लासिकल किराना घराने से उन्होंने गाना सीखा था, और किसी तरह संयोग से बाबूजी और माता जी की शादी हो गई। माँ मेरी बहुत छोटी थी जब शादी, उस जमाने में 13-14 साल की उम्र में हो जाया करती थी। तो इस तरह से बाबूजी को उनके परिवार ने डिसोन कर दिया, निकाल दिया एक तरह से, क्योंकि उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना था, और माँ ने लेकिन मेरे बाबूजी का साथ दिया। तो इस तरह से नाटक कंपनी में हमारी आँख खुली, और आप ये सोच लीजिए कि फिर वो हमारे रंगमंच जो है, नाटक कला हर विधा की, क्योंकि माताजी और पिताजी दोनों ही लिटरेचर पोएट्री इसमें दखल रखते थे। बाद में हमें मालूम पड़ा कि हमने बचपन में इंटरनेशनल साहित्य पढ़ा है, इंडियन साहित्य तो पढ़ा ही, भारतीय साहित्य तो सारा पढ़ा, चाहे वो शरद चंद हो, बंकिम चंद हो, रविन्द्रनाथ टैगोर हो, प्रेमचंद हो, जितने भी है, रेणु हो, और हमने बाहर का भी जो साहित्य है, टॉलस्टॉय, दोस्तोवस्की, और ये सारी चीज़ें, बाबूजी अंग्रेजी वाले थे, मम्मी उर्दू और हिंदी वाली थी, तो हमें विरासत में ये कला और संगीत, रंगमंच, वो हमारे खून में है। और सच पूछे तो अगर हमें कहा जाए कि आप कुछ ये नहीं करना है, जो कला क्षेत्र से आप हट जाए, तो शायद हम लोग भूखे मर जाए, हमें कुछ नहीं आता
1: और। जी जी जी, उसी में रचे बसे हैं और उसी में पूरा जीवन हमने लगाया है
0: जी।
1: तो सीमा जी, हम आपसे और भी बात करेंगे आपकी जिंदगी के पहलुओं पर। कोई गीत आपकी पसंद का पहले सुन लें।
0: जी बिल्कुल, संगीत तो आप जानती हैं हमारे रक्त में मिला हुआ है। फिल्म है आरती
1: जी,
0: रोशन साहब का म्यूजिक है, और उसमें गाना था आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया।
1: क्या बात है, क्या बात है। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये
0: जी।

0: सीमा जी, निर्देशक और नाटककार रंजीत कपूर की बात अगर हम करें, अनु कपूर साहब की बात करें और निखिल कपूर की आप बहन हैं और जाने माने अभिनेता ओमपुरी साहब से आपने विवाह किया, इन सब चीजों को, इन सब बातों को आप कैसे देखती हैं?
1: छोटा सा प्रश्न आपने पूछा है लेकिन वो पूरा जीवन उसमें समेटा हुआ है मेरा। मेरे भाई जो है तीनों अपनी अपनी विधा में लेकिन कला क्षेत्र में ही है। सबसे छोटा जो ब्रदर है वो बहुत अच्छा शायर है, उसने कई फिल्मों में गाने लिखे हैं। मेरी हर सीरियल का टाइटल सॉन्ग वो ही लिखता है और हर सीरियल और फिल्म का टाइटल वो ही रखता है। और अनु भाई एक्टर हैं, आप ही जानते ही हैं। रंजीत भाई जो हैं वो निर्देशक हैं, राइटर हैं। तो सब अपनी अपनी जगह बादशाह हैं अपने अपने फील्ड में
0: जी।
1: और जब आप ऐसे लोगों से घिरे होते हैं तो आप एनरिच होते चले जाते हैं। अच्छा, हम बहन भाइयों का करियर तकरीबन एक साथ ही शुरू हुआ, ऐसा नहीं था कि कोई आगे है कोई पीछे है, ऐसे सब साथ ही चल रहे थे, साथ ही संघर्ष कर रहे थे और अपने अपने क्षेत्र में, क्योंकि कोई भी क्षेत्र किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन उसके बावजूद कला से जुड़ा हुआ है
0: जी जी।
1: तो इसलिए हम लोग अपने अपने रास्तों पे, जो कंटकीर्ण रास्ते थे उन पे चलते हुए हम लोग यहाँ तक पहुंचे।
0: तो कभी भाई बहनों में कोई कंपटीशन रहता होगा?
1: कंपटीशन शब्द मैं नहीं इस्तेमाल करूंगी, एक अंग्रेजी में शब्द है जिसे हिंदी में प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। ईर्ष्या के बिना आप एनवी करते हैं, आप किसी से ये कहते हैं कि आपको इतना ज्यादा क्यों आता है, है ना, मन में ये सवाल होता है। और मुझे हमेशा मेरे जो जितने भी मैं अपने दुश्मन मानती हूँ ना वो बहुत ऊंचे, क्योंकि कहते हैं ना जिंदगी में दुश्मन भी बनाओ तो बहुत बड़ा बनाओ वरना आपको उसके बराबर होना पड़ता है। तो मेरा कंपटीशन हमेशा दुनिया के महान डायरेक्टर से है, दुनिया के महान राइटर से। कंपटीशन से मतलब प्रेरणा
0: जी जी,
1: आपको वहां जाना है, इतनी ऊंचाई पे जाना। तो भाइयों से भी वही रहा है कि इनको इतना ज्यादा आ रहा है मुझे क्यों नहीं। तो उसके बाद ना आपको एक फोर्स मिलती है कि आप और ज्यादा पढ़ें।
0: बिल्कुल, एक हेल्दी कॉम्पिटिशन रहा हमेशा
1: जी
0: जी। तो ओमपुरी साहब भी आपकी जिंदगी में आए, आपने उनसे विवाह किया, किन शब्दों में आप अपनी बात रखना चाहेंगी?
1: देखिए, 11 साल हमारा अफेयर चला और तब मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी और तब पुरी साहब स्ट्रगल कर रहे थे। और उसके बाद जब 11 साल के बाद हमने डिसाइड किया शादी करना, तब उनको थोड़ा थोड़ा काम मिलना शुरू हुआ था। तो शादी हुई। पुरी साहब एक ऐसे कलाकार हैं जो, अगर मैं अपने लोगों की तारीफ अपने मुंह से करना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, लेकिन दुनिया के इन्हें गिने जो कलाकार होते हैं मैं पुरी साहब को उनमें रखती हूँ। इसलिए नहीं कि मेरा उनसे प्रेम है, मेरी शादी हुई थी या जो भी, लेकिन ना बिल्कुल निष्पक्ष रूप से मैं देखती हूँ। क्योंकि देखिए, जिस कलाकार की

0: नकल की जा सके वो स्टार हो सकता है, वो कलाकार नहीं हो सकता
1: जी।
0: पूरी साहब की आप डायलॉग डिलीवरी की, उनके आप किसी भी चीज की नकल नहीं कर सकते, है ना। तो वो हर कैरेक्टर में ढल जाते थे। और मैंने उनका एक जो बहुत ही सशक्त पक्ष देखा है वो ये देखा है कि एक छोटा सा, मैं एक सीरियल बना रही थी तो उन्होंने कहा अरे ये रोल मैं करता हूँ, खुद कह के। मैंने कहा पुरी साहब आप इतनी बड़ी बड़ी फिल्में करते हैं, इतने महान मतलब नाम है आपका इंटरनेशनल लेवल पे, ये आप क्यों? नहीं नहीं सीमा छुट्टी है मैं करूंगा। मैं वो बैठ नहीं सकते थे,
1: हाँ।
0: उनकी प्रॉब्लम थी कि उनको काम
1: फ्री नहीं,
0: हाँ फ्री नहीं बैठ। तो मैं ऐसे काम करते हुए गई तो वो बैठे हुए नोट्स बना रहे थे। मैंने कहा क्या, कौन सी स्क्रिप्ट है, कौन से? बोले नहीं तुम्हारा वो करना। मैंने कहा इतनी छोटी सी सीरियल का एक छोटे से उसमें भी आप नोट्स बना रहे हैं, तो आप देखिए डेडिकेशन काम के प्रति के, इतना आपने जिंदगी हो गई है आपके, 40 साल हो गए हैं काम को करते हुए, जिसमें आपने इंटरनेशनल अवार्ड ले लिए हैं, नेशनल अवार्ड ले लिए हैं, इसके बावजूद छोटा सा काम है लेकिन उसके नोट्स बना रहे हैं, उसको अंडरलाइन कर रहे हैं और उस पर आप डिस्कस कर रहे हैं कि सीमा मैं ऐसे करूं, मैं ये पहन लूं या वो कर लूं, इसको इस कैरेक्टर को ऐसे बना लूं। तो आपको ये सीखने को मिलता है, जैसे लता जी वगैरह को भी मैंने देखा है कि कोई भी काम जब वो करते हैं तो वो अपने आप को तिफले मकतब समझते हैं कि मैं अभी पहली क्लास में हूँ, और यही उनके जो विनम्रता है उनको महान बनाती है।
1: जी,
0: और वही पूरी साहब में था
1: जी।

0: तो उनकी आवाज, उनकी अभिनय प्रतिभा, उनका चेहरा हर बात पर मतलब संवाद बोलता था, उनका चेहरा, उनकी आंखें, जो उनकी जज्बात फीलिंग्स वो पर्दे पर साकार हो जाती थी। आपको उनकी कौन सी फिल्में पसंद थी?
1: मुझे परफॉर्मेंस वाइज तो देखिए वो सब में बहुत न्याय करते थे अपने किरदार के साथ, लेकिन एक सौभाग्य मैं कहूंगी कि हरियाणा फिल्म फेस्टिवल था, यमुनानगर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार थी, रंजीत भाई की फिल्म चिंटू जी थी और पुरी साहब की फिल्मों का सिंहावलोकन था, रिट्रोस्पेक्टिव था, तो उसमें हम तीनों ही वहाँ थे। तो मैं पुरी साहब की एक फिल्म मैंने नहीं देखी थी, तो मैंने कहा कि चलिए मैं देखूंगी आज आपकी ये फिल्म, बाकी फिल्में देखी थी, वो थी माई सन द फैनेटिक, अंग्रेजी फिल्म थी। तो मैं जब वो फिल्म देखी, यकीन मानिए मैं एक तो ज़ारो कतार रो रही थी, और मैंने ना जैसे ही फिल्म ख़त्म हुई है ना, मैंने उनके पैर छू लिए। मैंने कहा क्या ऐसा लग नहीं रहा था कि ये पुरी साहब हैं, मैं वो किरदार को देख रही थी, मतलब मैं आपको शायद शब्दों में ना समझा पाऊं कि वो परफॉर्मेंस जो थी ना उनकी, वो दुनिया से बाहर की परफॉर्मेंस थी।
0: जी, जी, जी।
1: तो वो फिल्म मेरे लिए सबसे उनकी महत्वपूर्ण है।
0: इसके अलावा उनकी बहुत सारी फिल्में आपने देखी भी होंगी।
1: सारी फिल्में तकरीबन देखी हैं।
0: हाँ।
1: अब देखिए ना उनके फ्लेवर देखिए आप, एक तरफ अर्धसत्य करते हैं, आक्रोश करते हैं, गूंगे का रोल है, आंखों से बोलते हैं, है ना, और एक तरफ चाची 420 करते हैं, है ना, माला माल वीकली करते हैं, और सीरियसली आपको सीरियस रह के आपको हंसाते हैं, उसमें कहीं बफूनरी की जरूरत ही नहीं है कि ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बिल्कुल सीरियसली। तो उनका रेंज आप, क्योंकि देखिए रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है, तो वो कलाकार थे, मतलब अल्टीमेट कहूंगी इनको मैं,
0: और इंटरनेशनल
1: जी
0: लावल के कलाकार, उनकी मतलब कोई फिल्म ऐसी नहीं है जिस पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ हम उनके अभिनय से प्रभावित नहीं हुए।
1: फिल्म कमजोर हो सकती है, फिल्म की स्क्रिप्ट कमजोर हो सकती है, फिल्म का डायरेक्शन कमजोर हो सकता है, लेकिन वो उनको जितना किरदार दिया गया वो कमजोर नहीं हो सकता।
0: बिल्कुल। आपको संगीत में भी बहुत रुचि रही है ना, और आपकी चूंकि माताजी स्वयं क्लासिकल सिंगर रही हैं, तो आपके खून में भी सिंगिंग रही होगी, तो किस रूप में आप देखती हैं संगीत को?
1: अगर आप इंडियन संगीत की बात करते हैं, भारतीय क्लासिकल संगीत की बात करते हैं और वेस्टर्न क्लासिकल की बात करते हैं, तो मुझे दो चीजें हैं। वेस्टर्न क्लासिकल जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ह्यूमन इमोशंस दिखाई देते हैं, इंसान के जो जितने भाव हैं उसके जितने भी भावनाएं वो दिखाई देती हैं, और जब आप इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं तो आपको कुछ नहीं दिखाई देता, आपको दिव्य रोशनी दिखाई देती है। तो दो चीज़ों का ये मेरे लिए दिव्यता जो है वो म्यूजिक है।
0: जी,
1: मैंने भी सीखा है नसीर अहमद खान साहब से दिल्ली में, तो मैं सीखती थी, लेकिन जैसे बोल रही हूँ ना कि म्यूज़िक मेरे लिए डिवाइन है, दिव्य है, उसको मैं प्रोफेशन नहीं बना सकती, उससे कमाई नहीं कर सकती, इसलिए मैंने अभिनय और म्यूज़िक को कभी प्रोफेशन नहीं बनाया, वो मेरे लिए आत्मा की चीज़ है, उसको सुनती हूँ।
0: तो अगर हम आपसे कुछ गुनगुनाने को कहें तो आप कुछ पसंद करेंगी गुनगुनाना?
1: गुनगुनो ये तो आपने
0: क्योंकि यहाँ वो प्रोफेशन से नहीं जुड़ा है
1: एक लाइन गुनगुनाती हूँ
0: जी।
1: मेरी माताजी गाया करती थी ये गाना, बचपन में सुना था, लता जी का है,

0: वाह, बहुत सुंदर। तो सीमा जी, चूंकि आपके जीवन में रंगमंच और कला शुरू से थी, तो आपके जीवन में लेखन और थिएटर की शुरुआत कब से हुई, कैसे हुई, और आपने लिखना कब शुरू किया?
1: मैं जब 15-16 साल की थी तो मैं छुप के कविताएं लिखती थी
0: अच्छा, छुपकर
1: जी।
0: क्यों?
1: छुपकर ये कि मुझे, देखिए ना, माँ इतनी बड़ी शायरा थी और

0: एक सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि 1988 से आपके टीवी धारावाहिक शुरू हुए और साथ ही आपने सरकारी मंत्रालयों के लिए भी डॉक्यूमेंट्रीज लिखी काफी, इन सभी पर थोड़ा सा हम जानना चाहते हैं।
1: जी, कॉलेज से मैं निकलने के बाद पढ़ी रही थी, उन दिनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ती थी, और कहते हैं ना, जहां जहां पड़े पग संतन के वहीं वहीं भंटा ढार। तो जैसे ही मैंने अलीगढ़ में एडमिशन लिया, उन दिनों राइट्स बहुत होने लगे, फसाद, तो हमें भागना पड़ता था वापस। तो वो 3 साल का 4 साल में हो गया बीए, तो उस बीच मुझे दिल्ली आना पड़ता था क्योंकि अलीगढ़ से दिल्ली पास था, तो मैं दिल्ली आ जाती थी। इसलिए मैंने 83 में सबसे पहले पपेट थिएटर ज्वाइन किया
0: जी,
1: दिल्ली
0: हाँ,
1: में
0: जी।
1: तो वो इंटरनेशनल लेवल का था, जो हमारे ट्रेडिशनल पपेट्स होते वैसा नहीं था, मॉडर्न पपेट्री हम करते थे, और इंडिया को हमने कई कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। जो इंटरनेशनल पपेट फेस्टिवल्स होते थे उसमें मैं जाती थी, हमारे डायरेक्टर थे तब दादी पदम जी, तो उनके संरक्षण में, उनकी देखरेख में मैंने मॉडर्न और ट्रेडिशनल पपेट थिएटर किया। उसके बाद चूंकि पपेट थिएटर में आप फाइनेंशियली सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आपको कमाना भी बहुत ज़रूरी है, तो फिर मैंने एक सीरियल डाली दूरदर्शन में, और उस समय एक ही चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, और दूरदर्शन में वो सीरियल हो गई किले का रहस्य
0: जी।
1: और चूंकि नौसिखिया थे इस फील्ड में आता नहीं था ज़्यादा, तो काफ़ी पैसे का भी लॉस हुआ, सब हुआ, लेकिन ठोकर खा खा के सीख लिया, तब से ये यात्रा है शुरू। जब दूसरे प्राइवेट चैनल्स आ गए तो उन पे भी लिखना और डायरेक्शन कर ही रहे थे, प्रोडक्शन भी कर रहे थे, तो वो सिलसिला चलता रहा।
0: और सरकारी मंत्रालयों से जुड़ने के लिए फिर
1: जी कई मैंने बनाई हैं डॉक्यूमेंट्रीज, जैसे अभी आपसे जिक्र कर रही थी महानदी के किनारे, तो छत्तीसगढ़ की लाइफ लाइन है महानदी, नदी जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो महानदी जब मैं बना रही थी तो अच्छा बजट था उसका, तब तक लता जी ने संन्यास ले लिया था
0: जी
1: गाने से
0: जी,
1: तो तब मुझे अवसर मिला कि मैं उन तक जा पाऊँ। उससे पहले फिल्म नहीं बनाई थी मैंने कोई, तो मैं नहीं जा पाई थी, तो मैंने हृदयनाथ मंगेशकर जी, जो उनके छोटे भाई हैं, बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने संपर्क किया, और नीरज जी, गोपाल दास नीरज, उनसे गीत लिखवाया महानदी पे, और हृदयनाथ जी से मैंने कहा कि मुझे लता जी से गवाना है गाना, और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि उन्होंने हाँ भी किया और मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए उन्होंने गाए। तो डॉक्यूमेंट्रीज तो मैंने बहुत बनाई हैं, और एड,
0: इन सब के लिए आपने बहुत ज्यादा काम किया है मुझे लगता है, जिस पर अगर हम चर्चा करने चले तो शायद हमें कई अंकों में यही कार्यक्रम समेटना पड़ेगा। लेकिन आपको क्या लगता है सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री आपकी नजर में कौन सी ऐसी बन पाई जिसे आप याद करती हैं?
1: महानदी।
0: महानदी,
1: क्योंकि आप एक नदी की कहानी कह रहे हैं, उसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जाए, और महानदी के किनारे जितनी सिविलाइजेशन हुई, बुद्ध आए उस दौरान वहाँ पर, और भगवान श्री राम, श्रृंगी ऋषि, और ये सब चीज़ों पे करते हुए आप एक्चुअली उस दौर में पहुँच जाते हैं। शूट जब कर रहे होते कि आप जिस धरती पे खड़े हैं वहाँ पे ये महान आत्माएं आके और चली गई हैं, तो आप अपने आप को ना कण समझते हैं कि मिट्टी का कण भी ज़्यादा बड़ा है आपसे, और आप भाग्यशाली समझते हैं।
0: बहुत सुंदर। तो चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
1: जी। मेरी पसंद का गीत है।

0: सीमा जी, जब आप ये लिखती हैं, जब कोई किरदार गढ़ती हैं, किसी विषय को उठाती हैं, लेखन करती हैं, तो आपकी कहानियों में, आपकी किरदारों को लिखते समय पटकथा में किन बातों का आप ख्याल रखती हैं? जैसे अभी आपने महानदी का जिक्र किया, तो उस समय की पूरे इतिहास को समेटना कोई आसान काम नहीं होता है। किस तरह से पूरी चीज़ों को समेट कर इतने खूबसूरत तरीके से आप पेश करती हैं?
1: जी देखिए, क्या है, हर विषय का कालखंड और वो अलग होता है। तो ऐतिहासिक जो विषय होते, जैसे अभी अवंतिका बनाई, तो वो पूरा इतिहास को लेके बनाया। लेकिन वही जब आप फिल्म बना रहे होते, मिस्टर कबाड़ी, तो वो आज की है। इसमें किरदारों को जो उठाने का आपने प्रश्न किया है, ये बहुत अच्छा और सार्थक प्रश्न है। हम लोग बहुत भाग्यशाली रहे हैं कि हम थिएटर कंपनियों में, छोटे छोटे गांवों में, हमारी थिएटर कंपनी दो दो मूविंग थिएटर कंपनी थी, दो दो महीने एक एक गांव में रहते थे। तो हम एक एक गांव में और शहरों में, कस्बों में हम लोग बहुत रहे हैं। अगर मैं आपको गिनाना चाहूं तो जितने साल मेरी उम्र है उसके कम से कम 5 गुना ज़्यादा कस्बे हम लोगों ने बदले हैं।
0: क्या बात है?
1: तो जब हम अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, हम मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोगों से लेके अपर क्लास के लोगों तक, कलाकार से लेके बिल्कुल मजदूर वर्ग के लोगों तक, जब आप उनसे बातचीत

0: करते हैं, और अगर आप ऑब्जर्वेंट हैं, अगर आप थोड़े से प्रज्ञावान हैं और आप चाहते हैं कि कुछ बनना है आपको, तो आप उन किरदारों को जिंदगी में आप आत्मसात करते हैं। फिर जब आप लिखने बैठते हैं तो पता नहीं कहाँ से कोई एक ठेले वाला है ना, कोई एक अचार बेचने वाला, कोई एक है ना, वो किरदार आते चले जाते हैं, वो जीवंत हो जाते हैं लेखनी के जरिए और आपके सेलुलॉइड के जरिए।
1: तो आपकी रचनाओं में जो आपके किरदार हैं वो बहुत जीवंत हैं। आप किसी भी सीरियल को उठाकर देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म को देख लीजिए, तो ये सब क्या आपके स्वयं के जीवन से जुड़े हुए कोई पहलू हैं, या जैसा कि अभी आपने कहा कि इतनी सारी जगह में रही हूँ, आसपास की घटनाओं से, लोगों से प्रेरित ज्यादा रहे?
0: बहुत ज्यादा। आपके कलाकार जो भी पात्र हैं वो आपके आसपास ही होते हैं, उनको फिर आप एक कैरेक्टर दे देते हैं, उस कहानी में ढाल लेते हैं। जैसे उदाहरण दूं मैं आपको, शोले फिल्म सबको समझ में आएगी कि शोले में आप जगदीप जी को देखते हैं कि वो टाल पे बैठे हैं। अब जब आप टाल पे बैठने वाले इंसान का कैरेक्टर आप गढ़ रहे हैं तो आपको भाषा भी उसकी वैसी ही लेनी पड़ेगी, ना कि वो जमींदार साहब की भाषा अलग होगी, उसकी भाषा अलग होगी, उसका नाम अलग होगा, है ना। गायत्री देवी आप नाम अगर है तो वो थोड़ी सी रॉयल फैमिली से ही होंगी
1: जी।
0: लाजवंती होंगी तो वो कुछ और होंगी, लीलाबाई होंगी तो वो, है ना। हाँ
1: बिल्कुल सही कहा। तो यानी कि हर किरदार को जब हम जीते हैं तो उसी के अनुरूप उसके बैकग्राउंड को भी महसूस करते हैं कि वो किस बैकग्राउंड से है
0: जी।
1: आपके जीवन में कौन सा ऐसा किरदार है जिसने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया अब तक?
0: मेरी फिल्म हार्ट द वीकली बाजार एक प्रथा पे है, मध्य प्रदेश मालवा और राजस्थान में एक प्रथा है, अभी भी थोड़ा बहुत चलन है तो काफी कम हो गई है, कि पति अपनी पत्नी को बेच सकता है, नाता बैठना बोलते हैं। तो वो किरदार कैसे गढ़ा, जब मैं पुरी साहब से बिछड़ गई थी बीच में, तो मैं झालावाड़ गई, झालावाड़ राजस्थान में, जहाँ माताजी पढ़ाती थी, उर्दू टीचर थी, वहाँ पर कहीं और जब ठिकाना नहीं होता है ना भावनाओं का, तो माँ ही याद आती है। माँ की गोद ही ऐसी जगह है जहाँ आप भूल जाते हैं, क्योंकि आप 9 महीने उसके पेट में रहे हैं, उसी से सांस ली है, उसी से खाया है, उसी से पिया है, तो आप निश्चिंत थे वो 9 महीने, आप तो निश्चिंत थे,
1: बिल्कुल
0: ना चिंता थी आपको सांस कैसे लूं और खाना कैसे खाऊं। तो उस समय जब मैं जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी, भावनात्मक रूप से, सोशली, फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली, तो मैं माँ के पास चली गई। जब मैं वहाँ गई तो हमारे यहाँ एक बाई काम करती थी, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, शारदा नाम मैंने रखा है उसका। तो शारदा एक दिन मुझसे बोली, वो 300 रुपया महीना उसकी उस समय तनख्वाह थी झाड़ू पोछे की, तो मुझसे बोली कि भाई साहब मुझे 5,000 रुपये उधार दे सकती हैं क्या? तो मैंने कहा तुम्हारी 300 रुपये तनख्वाह में तुम घर चलाती हो, दो और घर होंगे ज़्यादा, 600-700 रुपये में घर चलाती थी वो, 5,000 रुपये, पहली बात तो ऐसा क्या संकट आ गया, दूसरा कैसे चुकाओगी 5,000? उस समय ऐसे है कि कोई भाई मुझसे 5 लाख रुपये आज मांगे, तो कह लेंगे नहीं, मुझे ना नाते की झगड़े की रकम भरनी है वरना मुझे बेच दिया जाएगा। मैं तो इस मामले में बिल्कुल ही वो थी, मैंने कहा बेच दिया जाएगा मतलब, मैं समझी नहीं। तो उसने मुझे बताया कि पंचायत से मेरे आदमी ने खा, पंचायत टाइप होती, मैं अब उसके साथ नहीं रहना चाहती, वो बेच रहा है मुझे, दूसरे के नाते बिठा रहा है, तो मैं नहीं जाना चाहती हूँ, तो मुझे 5,000 रुपये देने। मैंने वो तो 5,000 दे दिए, उसको तो भगवान ने बचाया, मैं तो एक बहाना थी,
1: माध्यम बनी।
0: लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज आई कि हम इतने सक्षम नहीं है कि हजारों लाखों शारदाओं को बचा सके, तो फिर वो कैरेक्टर मेरी स्क्रिप्ट बन गया
1: जी,
0: और इसलिए मैंने हार्ट फिल्म लिखी
1: जी। जी, एक ज्वलंत विषय है ये जिस पर आपने अपनी फिल्म में विषय उठाया, उस पर भी हम बात करेंगे। पहले गीत सुन लेते हैं आपकी पसंद का।
0: शंकर जयकिशन की फिल्म है प्रोफेसर, आवाज देकर
1: हमें तुम बुलाओ। क्या बात है, बहुत सुंदर गाना है ये, आइए सुनते हैं इसकी
0: जी।

0: सीमा जी, बात चल रही है आपकी जिंदगी पर, आपके लेखन पर, आपके निर्देशन पर। हम आते हैं लेखन के साथ साथ आपके निर्देशन पर भी। लेखक जब लिखता है तो बहुत सारे किरदार उसके आसपास होते हैं। जब एक लेखक से आप निर्देशक की दुनिया में कदम रखते हैं तो फिर वो किरदार आपके सामने होते हैं जिन्हें आपको जीवंत करना होता है। तो निर्देशक बनने की जो यात्रा थी वो कैसे शुरू हुई और ये यात्रा कैसी रही?
1: देखिए, जब राइटर लिखता है तो उसकी लेखनी ना बहुत, जैसे बोलना चाहिए, हंसी में बता रही है, छलांगे मारती है, ये भी लिख दो, वो भी लिख दे, ये लिख दे। लेकिन जैसे ही आप निर्देशन में लाते हैं उस स्क्रिप्ट को, तो आपकी लिमिटेशन हो जाती है। आपको किरदार सामने खड़े होते हैं, उनको कितनी दूरी पे जाना है, कैमरा कैसे करना है, वो सिमट जाता है ना, आपका जो कैनवास है वो सिमट के फिल्म का पर्दे जितना हो जाता है। राइटर का तो कैनवास आकाश है
0: जी।
1: लेकिन निर्देशन में एक चीज है कि सृजन का जो राइटर और निर्देशक का जो एक मजा है लिखने का और उसको बनाने का, क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अभी तो शब्द है कागज पे, अब इसको कलाकारों के साथ, पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं, निर्देशन में जाना चाहते हैं, और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह। तो ये यात्रा दुरू होती है, मुश्किल होती है, क्योंकि डायरेक्टर को बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। उसको म्यूज़िक का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको कैमरे एंगल का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको लेंसेज का भी ज्ञान होना चाहिए, उसको एक्टिंग का भी ज्ञान होना चाहिए कि वो परफॉर्मेंस

0: ऐसे ले
1: बिल्कुल।
0: तो मुश्किल काम होता है लेकिन मजा आता है।
1: जैसे आपने कहा कि उसे हर एंगल का ज्ञान होना चाहिए, इसके पीछे क्या पहले आपने कुछ कोर्स किए या आप किसी के अंडर में रही? इतना एक वाइड जिसे एंगल देखने के लिए क्या एक निर्देशक की तैयारी होती है?
0: देखिए क्या हुआ कि पपेट थिएटर से निकलने के बाद सबसे बड़ा मसला था सर्वाइवल का, कि आप रोजी रोटी, दिल्ली में रहना है और मकान का किराया भी देना है, खाना भी खाना है, रहना भी है, और इतने सक्षम नहीं थे कि माता पिता भेज सकें, और आप 3 साल का 4 साल का FTII में जाके कोर्स कर सकें। तो जो भी सीखा जिंदगी से सीखा, ना तो किसी के अंडर में मैं असिस्टेंट रही, ठोकरे खा खा के सीखा, लेकिन सीखा खुद से ही सीखा और अभी भी सीख ही रहे हैं।
1: हर पलम सीखते ही
0: जी,
1: हैं।
0: जी।
1: तो जीवन के संघर्ष को कैसे देखती हैं आप?
0: बहुत संघर्ष रहा है जीना, जो है ना वो अपने आप में ही एक संघर्ष है। तब से शुरू हो जाता है जब हम कंसीव होते हैं, जब हमारा है ना, तब से ही संघर्ष शुरू हो जाता है। और उसके बाद जैसे ही दुनिया में आते हैं तो आपका संघर्ष है, रोटी कमाने का संघर्ष है, अपने आप को स्थापित करने का, और अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे बिना समझौता किए आपने एक प्रिंसिपल बना रखे हैं, उनसे समझौता किए बिना आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो थोड़ा सा मुश्किल रास्ते हो जाते हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि उन रास्तों से होके हम गुजर गए। समय लगता है, थोड़ा लंबा होता है।
1: तो आप जिस दुनिया में हैं, चाहे थिएटर की दुनिया से वो शुरुआत हुई और ग्लैमर वर्ल्ड तक आप पहुंची, आज भी आप वहां स्टैब्लिश हैं, आप बराबर काम कर रही हैं, तो थिएटर की दुनिया से लेकर ग्लैमर की दुनिया में जितनी भी महिलाएं हैं या आप खुद एक महिला के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर रही हैं, क्या संघर्ष होते हैं वहां महिला को अपने आप को स्थापित करने के और बने रहने के?
0: महिला होना ही अपने आप में एक संघर्ष है। हम बहुत सारी गुलामियों को तोड़ते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं, बहुत सारी गुलामियों। एक जमाने में, प्राचीन काल में, तो स्त्री बहुत स्वतंत्र थी
1: जी।
0: फिर धीरे धीरे धीरे धीरे जैसे ही आते गए आताताई आते गए तो स्त्रियों को सुरक्षा के लिए उसको पीछे कर दिया गया और वो फिर हमारी मानसिकता बन गई। आज भी मैं देखती हूँ मेरा जो संघर्ष रहा है वो शायद, मैं बहुत फॉर्चुनेट, सौभाग्यशाली रही हूँ कि मुझे किसी ने उस तरह से एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की, या फिर मेरा प्रोफेशन ऐसा था जिसमें कोई चांस नहीं था कि एक्सप्लॉइट, या मेरा अपना व्यक्तित्व ऐसा रहा होगा कि थोड़ा डरते भी थे लोग, क्योंकि मैं मुँह फट थी, थोड़ा सा इस मामले में बोल देती थी, आउटस्पोकन थी कि भाई ऐसा है कि अगर ऐसी बात है तो आप रखिए अपने पास, मुझे नहीं चाहिए काम। लेकिन और लोग इतनी सौभाग्यशाली नहीं होते हैं, मजबूर कर दिया जाता है उनको, या तो वो उस फील्ड को छोड़ देती हैं या फिर कहीं सरेंडर कर देती हैं। तो ये तो स्त्री के साथ चलता ही रहा है। और दूसरा एक और मानसिकता है समाज में कि अगर कोई स्त्री सक्सेसफुल हो गई है तो जरूर किसी ना किसी तरह के समझौते करके ही ऊपर आई है
1: जी।
0: ये एक अजीब सी मानसिकता है। उसमें मुझे एक सवाल हमेशा लोगों से ये खड़ा होता है कि भाई तुम सिर्फ समझौते देखते हो, चाहे लता जी हो, आशा जी हो, हेमा मालिनी हो, मतलब किसी मधुबाला हो, मीना कुमारी हो, या आप लेखिकाएं हो
1: जी,
0: उन सबके ऊपर ये लांछन लगते आए हैं, आप उनका टैलेंट नहीं देख रहे?
1: उनकी मेहनत
0: और उनकी प्रतिभा। आप कोई दूसरी लता मंगेशकर बता दीजिए ना, तो क्या वो कॉम्प्रोमाइज से हो सकता है क्या? नहीं। जब तक आपके अंदर प्रतिभा नहीं होगी, जब तक आपके अंदर एक डेडिकेशन नहीं होगा अपने प्रोफेशन को लेके, तब तक आप सक्सेसफुल हो नहीं सकते। वरना तो ऐरा गैरा नतु खैरा कोई भी बन जाएगा
1: जी,
0: स्टार
1: जी,
0: नहीं बनते ना
1: जी। तो कितनी महिलाएं हैं जो आज लेखिकाएं हैं या निर्देशिकाएं हैं या किसी भी प्रोफेशन में है, किसी भी कंपनी में है, किसी भी महकमे में वो काम कर रही है, वो अपनी मेहनत और मशक्कत के बाद जब किसी पद या प्रतिष्ठा पर पहुंचती हैं और उनको ये इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि भाई होगा कहीं कुछ न कुछ, वरना इतनी ऊंचाई पर पहुंचना एक महिला के लिए इतना आसान तो नहीं है, तो बड़ा दुख होता है। आज भी जब ये बातें कही जाती हैं तो
0: बहुत दुख होता है, और दुख नहीं शर्म आती है उन लोगों की मानसिकता

0: और मुझे एक बात की और शर्मिंदगी है कि इसमें पुरुष तो हैं ही शामिल, स्त्रियां भी शामिल हैं ये लांछन लगाने में, तो वो बहुत गलत है। हमको हमारी मानसिकता, समाज की मानसिकता को बदलने की बहुत जरूरत है
1: जी। चलिए अब एक सुंदर सा गीत सुन लेते हैं
0: जी।

प्रोड्यूसर सीमा कपूर से मंदाकिनी जोशी की बातचीत का पहला भाग। तकनीकी सहायक किरण बंग, संपादन सहयोग झरना सोलंकी, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। इस बातचीत का दूसरा भाग आप सुनेंगे अगले हफ्ते आज ही के दिन।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल FM 103.2 MHz पर।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल FM 103.2 MHz पर।
2: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।

आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का पत्रों पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश। कार्यक्रम आपकी फरमाइश लेकर मैं हूं आपके साथ इस अंक में आपका साथी दीपेश। आप सभी श्रोताओं का आज के आपकी फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। और आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे श्रोताओं के पत्रों से जिन्हें हम पढ़ रहे हैं, आपकी पसंद के गीत आप तक पहुंचा रहे हैं। और हमारे बाकी श्रोताओं से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें पत्र लिखें, अपने मन की बात लिखें और अपने पसंदीदा गीत लिखें। तो आइए सबसे पहले हमारे पास पत्र है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा का, और दूसरा पत्र है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर डॉक्टर अमनदीप, और कालका से शुभचंद्र बजाज बिट्टा बजाज और साहिल का। आप सभी की फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको बॉर्डर फिल्म का गीत सोनू निगम रूप कुमार राठौड़ और साथियों की आवाज़ में।

कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आप सभी का स्वागत है और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं अगले पत्र के साथ। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और महराज जहां ने ये पत्र हमें भेजा है आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। छत्रपति संभाजी नगर से अगला पत्र है राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश का। और बठिंडा रोड डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग ने हमें पत्र भेजा है। आप सभी को सुनवा रहे हैं पत्थर के फूल फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अगले पत्र के साथ। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरव शर्मा और शाइना शर्मा का पत्र अगली फरमाइश के लिए। और अगली फरमाइश के लिए एक और पत्र राजस्थान शार्दुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मन्नू प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान का। तीसरा पत्र है लाल माता रेडियो श्रोता सुदामा नगर अटलाई झालावाड़ से। लिखने वाले हैं रामेश्वर, कपिल, मीनाक्षी, सत्यनारायण, मनोहर भाई और प्रभुलाल बागरी। आप सभी की फरमाइश पर आप तक पहुंचा डर फिल्म का एक गीत।

अगले गीत के लिए हमारे पास जो पत्र है वो है तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन यूसुफुद्दीन फजान लल्ला फरहान लल्ला समीरा आजमीन गुड़िया मोहम्मद अब्दुल बाबा अनजाना और इनके साथियों का। अगला पत्र है अकोला से विजय वडालकर लता वडालकर वैष्णवी और अंजिक्य वडालकर का। रोहतक एकता कॉलोनी से अगला पत्र हमें भेजा है सीताराम कागड़ा बबीता बोध निखिल कागड़ा अंकित कागड़ा और साहिल कागड़ा ने। तो आइए आप सभी ने फरमाइश की है दीवाना फिल्म के इस गीत की, आइए सुनवाते हैं आपको ये गीत।

कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं अगले पत्र के साथ, जो हमें लिखा है मेहरनगर उमरखेड़े महाराष्ट्र से। लिखने वाले हैं अभिजीत गवाणकर, श्रीमती सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर, और आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से शैलेश गवाणकर, श्रीमती वैशाली गवाणकर, श्वेता सुमित गवाणकर, कुमारी ध्वानी गवाणकर, और डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का, तन्मय गजभिये। ग्राम चितलवाड़ी, जिला अकोला महाराष्ट्र से अमोल इंगले, सर्वेश इंगले, अधीरा इंगले, आरव इंगले, सारांश इंगले, राजवी और समस्त परिवार। आइए आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं गुलामी फिल्म का ये गीत।

आइए अब अगले पत्र को लेते हैं अगले गीत के लिए। अगला पत्र हमें मिला है गांव गुराड़िया भड़ता जिला पचपाड़ से, माफ़ कीजिए, गांव गुराड़िया भड़ता तहसील पचपाड़ जिला झालावाड़ से, और लिखा है राजूलाल मेहर, हरिराम मेहर, दिनेश मेहर, ललित मेहर, दिव्या मेहर और सुशीला मेहर ने। इसके बाद कंचन सिटी झालावाड़ से पत्र लिखा है कुलवीर सिंह राजावत, कानू रिमझिम राजावत, गणगौर कुंवर राजावत, यश कीर्ति और इनके साथियों ने। एक पत्र और इस फरमाइश के लिए हमारे पास है गांव बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम का। तो आइए आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं खुददार फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम के अंतिम चरण में हमारे पास जो पत्र हैं वो हैं ग्राम रटलाई बरसाना कॉलोनी से, ये पत्र हमें भेजा है भगत बाई सेन, पूजा बाई सेन, किरण बाई, सायती बाई सेन, मुकट बिहारी, देवकी नंदन सेन, भेरूलाल सेन, दिलीप सेन, मोहनलाल सेन, सुजान सेन कारपेंटर, सुजान सिंह सेन, सोहनलाल घनश्याम और शिवनगर ढाणी से बद्रीलाल देवासी, नानूराम देवासी और इनके समस्त श्रोता साथी। अगला पत्र है अनुरोध भोपाल मध्य प्रदेश से मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता श्रीवास्तव और सारा श्रीवास्तव का। अकली दीवान नई आबादी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से पत्र हमें भेजा है रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा चंद्रवंशी, काजल, ज्योति और दिलीप कुमार चंद्रवंशी ने। आइए आप सभी की फरमाइश पर आपको सुनवाते हैं परिंदा फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम को समाप्त करने की अनुमति दीजिए अपने साथी को। आप भी हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। हमारे केंद्र का पता है आपकी फरमाइश द्वारा, केंद्र निदेशक आकाशवाणी।

केंद्र झालावाड़ राजस्थान, पिन कोड है 326001। पता एक बार फिर से सुने, आपकी फरमाइश द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ राजस्थान, पिन नंबर 326001। तो आप भी हमें पत्र भेजिए, अपनी फरमाइश भेजिए, अपनी बातें भेजिए और हम शामिल करेंगे आपके पत्र अपने कार्यक्रम में, आपकी पसंद के गीत सुनवाएंगे। और अब जैसे जैसे समय पास आ रहा है कार्यक्रम को समाप्त करने का, तो अब हम आपसे इजाज़त लेंगे लेकिन कुछ लाइनों के साथ। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बाग में फूल खिलते रहेंगे, हवा के आने से पत्ते हिलते रहेंगे। रही अगर ऊपर वाले की मेहरबानी, तो जैसे आज मिले हैं कल फिर मिलते रहेंगे। अपनी यादों के उजाले हमारे साथ रहने देना, न जाने किस मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। जाते जाते बस यही एक बात कहनी है, आपकी मुस्कान हमेशा सलामत रहनी है। दूर तक रात ही रात होगी, हमारी यादों की आपसे मुलाकात होगी। अगले अंक में आपके साथ हम फिर जुड़ेंगे, आपके पत्रों के साथ, बातों के साथ और आपके पसंदीदा गीतों के साथ। आप सुन रहे थे अपना पत्रों पर आधारित फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम को लेकर मैं था आपके साथ, आपका साथी दीपेश। अगले अंक में फिर होंगे आपके साथ एक नए जज्बे के साथ, कुछ गीतों के साथ, बातों के साथ। अब अपने साथी दीपेश को दीजिए अनुमति। नमस्कार। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। आइए अब आपको दें हमारे केंद्र से आज के प्रसारित होने वाले और कल आने वाले कार्यक्रमों की जानकारी और उनका प्रसारण समय।

हमारे आज के शेष रहे कार्यक्रमों में सुनिए फिल्म संगीत शाम 6:05 पर और रात 8:15 पर। शाम 7:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम किसान वाणी, जिसमें होगी चर्चा विश्व जनसंख्या दिवस और फसल चक्र प्रबंधन पर। भेंट वार्ता का विषय होगा प्रगतिशील किसान की सफलता की कहानी। इसमें हम आपको मिलवाएंगे एक प्रगतिशील किसान से और जानकारी की बातों में देंगे आपको जानकारी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की।

शाम 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषक चौपाल। इसमें होगी चर्चा विश्व जनसंख्या दिवस पर और भेंट वार्ता होगी वर्षा ऋतु में पशुओं का प्रबंधन किस प्रकार से करें। जानकारी की बातों में आप लेंगे जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की, साथ ही होगा लोकगीत लोक संगीत। रात 9 सुनिए गैर फिल्मी गीत गजल कव्वालियों का कार्यक्रम सबरस। ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष रहे कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनका प्रसारण समय की जानकारी। और आइए अब आपको बताएं हमारे कल के कार्यक्रमों के का प्रसारण समय और कार्यक्रमों की रूपरेखा। सुबह 7 सुनिए दैनिक सूचनात्मक स्थानीय कार्यक्रम नमस्कार झालावाड़। फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 7:30 पर, शाम 5:00, शाम 6:05 पर और रात 8:15 पर। कल शाम 5:00 फिल्म संगीत में आप सुनेंगे सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो आकाशवाणी।

सुबह 8:30 पर होगा बच्चों के लिए कार्यक्रम फुलवारी। इसमें होगा आओ जाने में, गर्मी और धूल से बचने में पेड़ों की भूमिका। बच्चों के मुख से आप सुनेंगे क्विज, कहानी, कविताएं और सीख होगी छोटे छोटे अच्छे काम बड़ा बदलाव लाते हैं।

शाम 7 बजे आप सुनेंगे किसान साथियों के लिए कार्यक्रम कृषक चौपाल, जिसमें होगी चर्चा रेत और धूल भरी आंधियों से निमटने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, और भेंटवार्ता होगी वर्षा ऋतु में मसालों की उन्नत खेती। जानकारी की बातों में देंगे आपको जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, साथ ही आप सुनेंगे लोकगीत। रात 9 बजे

अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर, और भेंटवार्ता होगी वर्षा ऋतु में मसालों की उन्नत खेती। जानकारी की बातों में देंगे आपको जानकारी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, साथ ही आप सुनेंगे लोकगीत। रात 9 बजे हर रोज की तरह आप सुनेंगे हमारा गैर फिल्मी गजल कव्वालियों का कार्यक्रम सबरस।

तो ये थी हमारे केंद्र से आज के शेष रहे और कल आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा और उनके प्रसारण समय की जानकारी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज पर, और अब से कुछ ही देर में सुनिए हिंदी में समाचार, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की अपनी दो दिन की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। चार दशकों से अधिक समय में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की न्यूजीलैंड की ये पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से बातचीत की। दोनों नेताओं ने रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन और दुग्ध तथा पशुपालन सहित विभिन्न क्षेत्रों में 5 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इस यात्रा का प्रमुख आकर्षण ऑकलैंड के स्पार्क एरिना में आयोजित सामुदायिक कार्यक्रम था, जिसमें भारतीय प्रवासी समुदाय के 10,000 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री लक्सन ने सभा को संबोधित करते हुए भारत को एक विश्वसनीय मित्र बताया, न्यूजीलैंड की प्रगति में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। श्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन को उनके गर्मजोशी भरे आतिथ्य के लिए धन्यवाद दिया और कहा कि इस यात्रा ने भारत न्यूजीलैंड संबंधों में एक नया अध्याय खोल दिया है।
1: न्यूजीलैंड वो जगह है जहां निखिल रविशंकर एयर न्यूजीलैंड के सीईओ बन सकते हैं, जहां आनंद सत्यानंद गवर्नर जनरल बन सकते हैं, जहां क्रिकेट टीम में रचिन रविंद्र, कहीं बॉम्बे हिल्स है, कहीं कोरोमंडल है, ऐसे कितने ही नाम हैं। यहां रहते रहते आप भी पूरे के पूरे कीवी हो गए हैं।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज विशाखापट्टनम में स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को नौसेना के पूर्वी बेड़े में शामिल किया। प्रोजेक्ट 17A का ये युद्धपोत भारत की बढ़ती समुद्री शक्ति और स्वदेशी रक्षा क्षमता का परिचायक है। श्री सिंह ने कहा कि ये युद्धपोत अत्याधुनिक स्वदेशी हथियारों से सुसज्जित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। नई दिल्ली में आज जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण एक महान स्वतंत्रता सेनानी, विचारक और राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना PMFME ने देश भर में 2,00,000 से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11,00,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज एक विशेष कार्यक्रम में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये योजना भारत की खाद्य प्रसंस्करण

0: विकास यात्रा के अगले चरण के लिए एक मजबूत आधार है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन संविधान और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता सर्वोपरि रहनी चाहिए। उन्होंने बिहार में गयाजी में राज्य के लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान में 18वीं विधानसभा के सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए ये बात कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट आज वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास पलट गई। स्थानीय खबरों के अनुसार 15 लोगों के मारे जाने की आशंका है, जबकि 21 लोगों को बचा लिया गया है। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के फू कोक द्वीप के पास भारतीय नागरिकों के साथ हुई दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल FM 103.2 MHz पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गुलाम फिल्म के गीत से, जिसे गाया आमिर खान अलका याग्निक ने, लिखा नितिन रेकवार ने, संगीत जतिन ललित का।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा को सुनवाते हैं इस फिल्म का गीत, जिसे गाया फरहान अख्तर, ऋतिक रोशन और अभय देओल ने। गीत लिखा जावेद अख्तर ने, संगीत दिया शंकर एहसान लॉय ने।

आइए अब आपको सुनवाते हैं जग्गा जासूस फिल्म का गीत, जिसे लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया प्रीतम ने। आवाजें हैं अरिजीत सिंह, अमित मिश्रा की।

कार्यक्रम का अंतिम गीत थ्री इडियट्स फिल्म से, आवाज़ें सोनू निगम, स्वानंद किरकिरे और शान की। गीत रचना स्वानंद किरकिरे की, संगीत शांतनु मोहित्रा का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है। अब से कुछ ही देर में सुनिए प्रादेशिक समाचार, पहले हिंदी उसके बाद राजस्थानी में, साथ ही जिले की चिट्ठी, जिसे हम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूत करने के लिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी क्षेत्र को 1,258 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्र हित को सर्वोपरि बताया, कहा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं आने दी जाएगी। और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम, आबादी स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर जोर। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर वार्ता की। इसके बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में दोनों नेताओं ने रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि रिकॉर्ड समय में हुआ भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता FTA दोनों देशों के लिए नए अवसर खोलेगा। साथ ही 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना यानी 35,000 करोड़ रुपये करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होगा। दोनों देशों के बीच 18 समझौते हुए, इनमें रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी और डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र शामिल हैं।
2: हमने भारत न्यूजीलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जाने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत हम हर क्षेत्र में स्पष्ट लक्ष्यों और ठोस परिणामों के साथ आगे बढ़ेंगे। इस वर्ष हमने रिकॉर्ड समय में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया। इस उपलब्धि से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और युवाओं के लिए नए द्वार खुलेंगे।
1: प्रधानमंत्री श्री मोदी ने ऑकलैंड में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज का समय कोलैप का समय है और इसके लिए किसी देश की जनसंख्या नहीं बल्कि जन कल्याण की भावना अहम है।
2: भारत सबसे सीखता है, हमारे लिए सामने वाले देश की जनसंख्या नहीं जन कल्याण की भावना मायने रखती है।
1: न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री लक्सन ने भारत की बढ़ती वैश्विक प्रतिष्ठा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और न्यूजीलैंड के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज केकड़ी क्षेत्र को विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी। केकड़ी के कृषि उपज मंडी परिसर में हुए समारोह में श्री शर्मा ने 1,258 करोड़ रुपए लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने नसीराबाद केकड़ी देवली 4-लेन सड़क परियोजना के पहले चरण

0: की आधारशिला रखी। ये परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी। इससे क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी। इस अवसर पर आयोजित सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि सरकार प्रदेशवासियों के जीवन को सुगम बनाने का निरंतर प्रयास कर रही है।
1: लगातार कितनी कितनी बड़ी योजना आ रही है, आप देख रहे हैं कि 13,000 करोड़ रुपए की मेट्रो लाइन फेज 2 के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जो बड़े बड़े शहर हैं, कस्बे जिनमें आवश्यकता है, उसमें रिंग रोड बनाने का काम भी हमारी सरकार कर रही है। हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से कितने रेलवे स्टेशन हमने बनाए, आप हमारे एयरपोर्ट को देखेंगे, आप देखिए कितना विकास राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में हो रहा है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पिछले दिनों जान गंवाने वाली 5 प्रसूताओं के परिजनों को आर्थिक सहायता के चेक सौंपे। जन सहयोग से इकट्ठा की गई 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि पीड़ित परिवारों को दी गई। उधर भीलवाड़ा और बांसवाड़ा के सरकारी अस्पतालों में सिजेरियन डिलीवरी के बाद हाल ही में कुछ प्रसूताओं की मौत के मामले पर अस्पताल प्रशासन की ओर से किसी भी तरह की लापरवाही से इनकार किया गया है। भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर अरुण गौड़ ने बताया कि प्रभावित ऑपरेशन थिएटर की जांच की जा रही है और इस्तेमाल किए गए इंजेक्शनों के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। उन्होंने मरीजों को गंभीर स्थिति में रेफर होकर आने को मौत का कारण बताया। उधर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव ने बताया कि शुरुआती जांच में किसी तरह का संक्रमण सामने नहीं आया है। मामले की उच्च जांच के लिए जयपुर के 5 डॉक्टरों की टीम गठित की गई है।
2: चारों प्रकरण है, कारण जानने के लिए हमारे जो 5 सीनियर डॉक्टर्स हैं उनकी कमेटी का कल ही गठन कर दिया गया था। चारों केसेस काफी क्रिटिकल कंडीशन में थे। पहला केस था बाहर से कहीं से एमटीपी करवा के आया था, इनकम्प्लीट अबॉर्शन जिसको बोला जाता है। पेशेंट जब यहाँ पे एडमिट किया तो काइंड ऑफ सेप्सिस की कंडीशन में था। दूसरे वाले प्रकरण के अंदर हीमोग्लोबिन लगभग 7 के आसपास था और इसी तरीके से बाकी जो 2 केसेस हैं उनमें भी कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन थी।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो और वीडियो देख सकते हैं। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा है कि तबादलों के दौरान ग्रामीण और शहरी स्कूलों में शिक्षकों का संतुलन रखा गया है, जिससे किसी भी स्थिति में गांव के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं हो और बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। अलवर में पत्रकारों से बातचीत में श्री दिलावर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने तबादला प्रक्रिया पूरी कर ली है। गौरतलब है कि DEO, प्रिंसिपल और लेक्चरर सहित हजारों शिक्षकों के तबादले किए गए हैं। हालांकि तृतीय श्रेणी के सामान्य स्थानांतरण इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किए गए। राजधानी जयपुर के सभी कोचिंग संस्थानों को 31 जुलाई तक आसान निकास नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं। जिला कलेक्टर संदेश नायक ने इन्हें एग्जिट और सुरक्षा के लिए स्पष्ट नीति बनाने को कहा है। संस्थानों को पाठ्यक्रम छोड़ने पर विद्यार्थियों को आसानी से फीस वापसी का प्रावधान भी करना होगा। इसके अलावा मानसिक तनाव से निपटने के लिए नियमित काउंसलिंग को भी अनिवार्य किया गया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्रवेश की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के अनुसार 9वीं से 12वीं कक्षा में दाखिले के लिए अब 25 जुलाई तक आवेदन किए जा सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक सीताराम जाट ने बताया कि विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने और ड्रॉप आउट दर को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि 1ली से 8वीं कक्षा में प्रवेश प्रक्रिया साल भर चलती रहेगी। प्रदेश में कल से वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से ये परीक्षाएं 18 जुलाई तक 2-2 पारियों में ली जाएंगी। आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि ये भर्ती परीक्षा कुल 9,651 पदों के लिए है। 27 जिलों में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर प्रदेश भर में जागरूकता कार्यक्रमों की शुरुआत हुई। इनके माध्यम से मां और बच्चे के कल्याण के लिए 2 संतानों में उचित अंतर रखने और परिवार नियोजन पर जोर दिया जा रहा है। अनेक स्थानों पर स्वास्थ्य कर्मियों और आशा सहयोगिनियों को सम्मानित किया गया। वहीं जनसंख्या स्थायित्व में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए बांसवाड़ा जिले को प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। जयपुर के स्वास्थ्य

0: भवन में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में बांसवाड़ा को वर्चुअल रूप से यह सम्मान दिया गया। इस मौके पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की सचिव गायत्री राठौड़ ने गर्भवती महिलाओं से नियमित जांच करवाने और समुचित परामर्श लेने का आग्रह किया।
1: हम जनसंख्या स्थायीकरण की ओर आ गए हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जो हमारी जनसंख्या है उसको हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध करा सके, बच्चे के बर्थ से लेकर के वृद्धावस्था तक। महिलाओं को पहले से आजकल हो गया है कि इवन प्रेगनेंसी के पहले ही काउंसलिंग होती है, क्योंकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपने देखे हैं कि सिकल सेल एनीमिया वाला होता है, थैलेसीमिया होता है, तो प्री काउंसलिंग बहुत जरूरी है जिससे कि मदर हेल्दी रहे और उसके बच्चे हेल्दी रहे।
0: डीग जिले में कृषि पर्यवेक्षकों की टीम खाद और बीज विक्रेताओं की दुकानों का निरीक्षण कर रही है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक सुरेश मान ने बताया कि खरीफ सीजन में खाद और बीज की बढ़ती मांग के बीच कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए ये कार्यवाही की जा रही है। सिरोही जिले के आबूराज स्थित ब्रह्म कुमारी संस्थान में आज से राजनीतिक सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में देश भर से आए जनप्रतिनिधि और विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग भाग ले रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि अध्यात्म व्यक्ति के सार्वजनिक जीवन को सही दिशा देता है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सेवा, नैतिकता और सकारात्मक सोच के साथ विकास में योगदान देने का आह्वान किया। सम्मेलन में सुशासन, नैतिक नेतृत्व और समाज हित से जुड़े विषयों पर विभिन्न सत्रों में मंथन किया जा रहा है। पाली जिले में कालिका पेट्रोलिंग यूनिट की ओर से विभिन्न स्थानों पर महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े जागरूकता कार्यक्रम रखे गए। इस दौरान आत्मरक्षा प्रशिक्षण का प्रदर्शन और राजकोप सिटीजन ऐप की भी जानकारी दी गई। साथ ही महिलाओं और बालिकाओं को बताया गया कि किसी भी तरह की छेड़छाड़ और उत्पीड़न होने पर सजग रहें और पुलिस को सूचित करें। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला आज साउथैम्पटन में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से होगा। सीरीज में इंग्लैंड 3-0 से आगे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 136वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। ये सुझाव 24 जुलाई तक स्वीकार किए जाएंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और न्यूजीलैंड के संबंधों को मजबूत करने के लिए 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना कर 35,000 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केकड़ी क्षेत्र को 1,258 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने छात्र हित को सर्वोपरि बताया, कहा ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में शिक्षकों की कमी नहीं आने दी जाएगी। और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आबादी स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य पर जोर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप माधुरी वशिष्ठ से करौली जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख बांके बिहारी शर्मा ने तैयार किया है। जिले में पिछले महीने की सबसे प्रमुख घटना पांचना बांध के पानी के बंटवारे को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद समाप्त होना रही। राज्य सरकार की पहल पर कमांड और कैचमेंट क्षेत्र के किसानों के बीच सहमति बनने के बाद जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने नई लिफ्ट सिंचाई परियोजना का शिलान्यास किया तथा गंभीरी नदी और नहरों में सिंचाई के लिए पानी छोड़ा। बाद में तकनीकी कारणों से जल प्रवाह कम रहने पर किसानों ने फिर से आंदोलन किया। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के आश्वासन के बाद आंदोलन समाप्त हुआ और स्थिति सामान्य हो गई। जल संरक्षण को लेकर चलाया गया वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान भी पूरे महीने जिले भर में चर्चा में रहा। अभियान के तहत जल स्रोतों की साफ सफाई की गई, श्रमदान, पौधरोपण, फार्म पौंड निर्माण और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष

0: ओम प्रकाश भड़ाना ने जिले का दौरा कर अभियान की समीक्षा की। वहीं अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने कृषि विज्ञान केंद्र में फार्म पॉन्ड का भूमि पूजन कर किसानों से जल संरक्षण और प्राकृतिक खेती अपनाने का आह्वान किया। राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी और ग्रामीण सेवा शिविर भी पूरे माह आकर्षण का केंद्र रहे। इन शिविरों में वर्षों से लंबित राजस्व, भूमि, सामाजिक सुरक्षा, नगरीय विकास, जलदाय, विद्युत और अन्य विभागों से जुड़े प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। पात्र लोगों को पट्टे दिए गए और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने जिला मुख्यालय के शिविर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आमजन की समस्याओं का तुरंत पारदर्शी और संवेदनशीलता के साथ समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इन शिविरों में बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिली। राज्य सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर जिला मुख्यालय स्थित टाउन हॉल में जिला स्तरीय विकास प्रदर्शनी भी लगाई गई। विभिन्न विभागों ने अपनी योजनाओं और उपलब्धियों का प्रदर्शन किया, जिसका अवलोकन जनप्रतिनिधियों और आमजन ने किया। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बालोतरा के पचपदरा स्थित राजस्थान रिफाइनरी का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का जिला मुख्यालय पर आयोजित समारोह में सीधा प्रसारण किया गया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न विभागों में चयनित 1555 नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। जिला चिकित्सालय में अत्याधुनिक मदर लैब शुरू की गई है, जहां 148 प्रकार की जांचों की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई गई और राष्ट्रीय डेंगू दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए और स्टॉप डायरिया कैंपेन के तहत घर घर जाकर ORS और जिंक की गोलियां बांटी गई। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले भर में सामूहिक योग अभ्यास कार्यक्रम आयोजित किए गए। विभिन्न विभागों, शिक्षण संस्थानों और सामाजिक संगठनों के सहयोग से बड़ी संख्या में लोगों ने इन योगाभ्यास में भाग लिया और नियमित योग अपनाने का संकल्प लिया। जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लंबित प्रकरणों का आपसी समझौते के आधार पर निस्तारण हुआ। एक महत्वपूर्ण आपराधिक मामले में न्यायालय ने 2 आरोपितों को 7-7 वर्ष के कठोर कारावास अर्थदंड दिया। जिले में बीते माह धार्मिक और सामाजिक गतिविधियां भी हुई। ईद उल अजहा का पर्व जिले भर में श्रद्धा और सौहार्द के साथ मनाया गया। विभिन्न ईदगाहों और मस्जिदों में नमाज अदा की गई और अमन, चैन तथा भाईचारे की दुआ मांगी गई। वहीं अधिक मास के चलते जिले के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की गई। निर्जला एकादशी पर भी कई धार्मिक आयोजन हुए। करौली की अरुणा शर्मा ने श्री अन्न पर आधारित फूड प्रोसेसिंग इकाई लगाई है और जिले भर में अपनी नई पहचान बनाई है। इस इकाई के माध्यम से स्थानीय महिलाओं को रोजगार मिल रहा है और मोटे अनाज के प्रसंस्करण को भी बढ़ावा मिल रहा है। इसी के साथ करौली जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, भारत और न्यूजीलैंड रा रिश्ता मजबूत बनावन सारू साल 2030 ताई दोनों देशों बीच कारोबार दुगुनो कर 35,000 करोड़ रुपया रा लेवल ताई ले जावनो तय करीचियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा केकड़ी हल्का माय विकास रा 1,258 करोड़ रुपया रा काम शुरू कीना और पूरा फिया काम जनता ने सौंपिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो सरकार रो विद्यार्थियों रा भला माथे खास ध्यान, गांवई हलकान स्कूला माए शिक्षकां री कमी नी आवण दी जावेला। और विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज जयपुर माए राज्य स्तर रो कार्यक्रम राखीचियो। जनसंख्या स्थिरीकरण, मातृ और शिशु स्वास्थ्य माथे जोर। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर। अरब समाचार विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड रा प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन सागे दोनों देशों बीच सहयोग मजबूत करने रे बारा में चर्चा कीनी। इन पाछे जारी

0: रिकोरा प्रबंध निदेशक सुरेश कुमार ओला बतायो कि ई दौर री ई लॉटरी 31 जुलाई ने निकाली जावेला। वे बतायो कि प्रत्यक्ष आवंटन योजना रा तहत हाल ताई रा 11 दौर में 1844 प्लॉट रो आवंटन करियो जा चुक्यो है। आरे जरिए राज्य में 18,000 करोड़ रुपयों बत्तो निवेश करियो जा सकेला और 37,000 बत्ता नौजवाना सारू नौकरी धंधा रा मौका बनेला। समाचार आप आकाशवाणी जयपुर अजमेर सुन रहा हो। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप माना एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक माथे AIR न्यूज राजस्थान पर आई सुन सको हो। इसा गई आप माणी वेबसाइट newsonair.gov.in माथे इस समाचार सुन सको हो और संबंधित फोटो और वीडियो देख सको हो। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो है कि तबादला रे दौरान गांवाई और शहरी हलकां रे स्कूलां में शिक्षकां रो संतुलन बनाई चियो है ताकि गांवां रे स्कूलां में अध्यापकां रे कमी नी हो। अलवर में खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका दिलावर कहो कि शिक्षा विभाग में तबादला रो काम पूरो हो गयो है। ध्यान जोग है कि DEO प्रिंसिपल और लेक्चरर समेत न्यारा न्यारा ओहदा माथे काम कर रहे हजारों शिक्षकों का तबादला करी जिया। हालांकि थर्ड ग्रेड अध्यापकों का तबादला इन प्रक्रिया में शामिल नहीं है। राजधानी जयपुर में सगला कोचिंग संस्थानों ने 31 जुलाई ताई आसान निकास नीति अपनावन रा हुक्म दिया जिया है। जिला कलेक्टर संदेश नायक बतायो कि कोचिंग सेंटर रा भवन आसानी निकलवा रा सुबिता और हिफाजत सा गई सगला संस्थाना ने साफ नीति बनावनी फैला जिना तेत कोर्स छोड़बारी सूरत माए विद्यार्थियों ने फीस पाछे मिल सकेला। इसा गई मानसिक तनाव रो सामो करण सारू लगातार काउंसलिंग नई जरूरी करीची है। प्रदेश री सरकारी स्कूलां री 9वीं-12वीं कक्षा ताई दाखिला सारू अर्जी देवन री आखरी तारीख 25 जुलाई कर दी रीची है। माध्यमिक शिक्षा विभाग रा निदेशक सीताराम जाट आ जानकारी दीनी। वे बतायो कि पहली 8वीं कक्षा ताई दाखिला रो काम आखा साल चालेला। प्रदेश माए काल वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा शुरू भेला। राजस्थान लोक सेवा आयोग री ओर दो दो पारियां माइन ली जावन वाली आ परीक्षा 18 जुलाई ताई चालेला। आयोग रा सचिव राम निवास मेहता बतायो कि इन परीक्षा रे जरिए 9,651 ओहदा माथे भर्ती करी जावेला। परीक्षा सारू राज्य रा 27 जिला माए सेंटर बनाई चिया है। विश्व जनसंख्या दिवस रे मौके आज आखा राज्य माए जागरूकता कार्यक्रम शुरू करी चिया। आरे जरिए मायडा और बच्चा रा भला सारू दो बच्चा बीच जरूरी आंतरो राखण और परिवार नियोजन माथे जोर दियो जा रियो है। 18 जुलाई ताई चालन वाला जनसंख्या स्थायित्व जन जागरूकता सप्ताह रा तहत स्वस्थ परिवार और खुशहाल परिवार सारू न्यारा न्यारा कार्यक्रम राख्या जा रहा है। ई मौके जयपुर माए राखी जिया राज्य स्तर रा जलसा माए जनसंख्या स्थायित्व रा मामला माए बेहतरीन काम करण सारू बांसवाड़ा जिला रो वर्चुअल तरीका मान पानो देर मान करी जियो। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग रे सचिव गायत्री राठौड़ आस वाली लुगाइया ने टेम सर जांच करावन री अरज कीनी।
1: हम जनसंख्या स्थायीकरण की ओर आ गए हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास है कि जो हमारी जनसंख्या है उसको हम बेहतर चिकित्सा सुविधाएं किस तरह से उपलब्ध करा सके, बच्चे के बर्थ से लेकर के वृद्धावस्था तक। महिलाओं को पहले से आजकल हो गया है कि इवन प्रेगनेंसी के पहले ही काउंसलिंग होती है, क्योंकि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, आपने देखे है कि सिकल सेल एनीमिया वाला होता है, थैलेसीमिया होता है, तो प्री काउंसलिंग बहुत जरूरी है जिससे कि मदर हेल्दी रहे और उसके बच्चे हेल्दी रहे।
0: डीग जिला में कृषि पर्यवेक्षकों की टीम खाद बीज बेचण वाला की दुकानों की जांच कर रही है। कृषि विभाग रा संयुक्त निदेशक सुरेश मान बतायो कि खरीफ सीजन में खाद बीज री बढ़ती मांग बीच कालाबाजारी माथे आंकस लगावन सारू जांच करी जा रही है। सिरोही जिला माए आबू राज रा ब्रह्म कुमारी संस्थान माए आज राजनीतिक सम्मेलन शुरू भयो। तीन दिन रा ई सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र माए गोवारा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत कहो के आध्यात्म इंसान रा सार्वजनिक जीवन न सही दिशा

देवे है। वह जनतारा नुमाइंदाओं सेवा नैतिकता और सकारात्मक सोच सागे विकास माए योगदान देवन री अरज कीनी। पाली जिला माए पुलिस री कालिका पेट्रोलिंग यूनिट री ओरू नैरी नैरी छोड़ा महिलाओं री हिफाजत और मां नु जुड़िया कार्यक्रम राखी चिया। इन दौरान खुद री हिफाजत रा तरीका रो दर्शाव करी चियो और राज कॉप सिटीजन ऐप रे बारा माए जानकारी दी री ची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई दीतवार ने आकाशवाणी प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की

0: 1-1-7-8-0-0 मत 24 जुलाई ताई भेज सको हो। आखिर में खास समाचार एक कर फिर सुन ले रहो। भारत और न्यूजीलैंड रा रिश्ता मजबूत बनावन सारू साल 2030 ताई दुनियो देशा बीच कारोबार दुगुनो कर और 35,000 करोड़ रुपया रा लेवल ताई ले जाउनो तय करीचियो। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के एकड़ी हलका माए विकास रा 1,258 करोड़ रुपया रा काम शुरू की ना और पूरा फिया काम जनता ने सौंपिया। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर कहो सरकार रो विद्यार्थियों रा भला माथे खास ध्यान और विश्व जनसंख्या दिवस के मौके आज जयपुर में राज्य स्तर रो कार्यक्रम राखी जियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो थियो। नमस्कार।
1: आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। शाम के 7 बजे हैं, समय है कार्यक्रम किसानवाणी का, तो आइए सुनते हैं किसान साथियों के लिए कार्यक्रम किसानवाणी।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम किसानवाणी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: किसान वाणी कार्यक्रम सुनबा वाला सभी किसान भाई बहन के ताई संजू को गणो गणो राम राम। और आपके ताई
7: और संजू और किसान साथी हैं, आपका साथी धन्नालाल नागर को भी गणो गणो राम राम,
6: राम राम।
7: तो देखो संजू, बात जो है सब दूर जो है बढ़िया बारिश हुई है, साथ ही साथ में अपना किसान साथिया ने जन्ना ने बुआई नहीं करी थी, वीवी बुआई करवा में लाग गया है।
6: देखो लाल भाई, बहुत ही बढ़िया बात बताई चे, कोई किसान बेचारा मतलब पीछे रह गया चे, तो वहाँ भी लगभग सभी ने अब बुआई भी कर दी और बुआई भी देखो सही तरीका से वो भी गयो। पर देखो देखबा माओ चक मौसम में कोई जगह तो बरस रहो चे, कोई जगह न बरस रहो, तो उनकी तैयारी करबा में लाग रहे चे किसान साथी के भाई बड़े फसल हो जाओ, बीच बीच में मौसम हो जावे या बरस जावे तो अपनी फसल का नुकसान न रहे, टाइम से उग जावे।
7: सही बात है। और देखो बार आज एक दो दिन में तो थोड़ा उगाड़ को भी हुई हो, तो उनसे कही के फसल के धूप भी लाग जाएगा, साथ ही साथ में जो निंदाई गुड़ाई को काम है किसान साथी लोग वो भी आराम से कर लेगा।
6: और देखो निंदाई गुड़ाई की बात करी जी, देखो सभी किसान भाई बहन भी देखो निंदाई गुड़ाई में भी लाग गया चे, क्योंकि कोई का तो 15 दिन की फसल होगी चे, कोई का 20 दिन की भी होगी चे, तो यानी कि सभी खेत में किसान बैठ रहा चे और अपनी फसल कटाई देखभाल कर रहा चे निंदाई गुड़ाई की।
7: सही बात है। साथ ही साथ में आजकल जो अब बार रास्ता में आया तो देखा कि बहुत सारा साथी भाई लोगों ने जो है, अब पहला तो कहें कि बैल होता था तो वहाँ से कुल्पा लगाया जाता था, पर आजकल किसान भाई ने जो है मोटरसाइकिल पर या अन्य जो है कुछ जुगाड़ बना कर के जो है कुल्पा का काम कर रहा है। तो जशिया भी है किसान साथी लोग अपनों खेती बाड़ी को काम कर रहा है और निंदाई गुड़ाई को काम बढ़िया जबरदस्त कर रहा है। साथ ही साथ में आप तो यही कहवा संजू भाई कि भाई जशिया ही उगाड़ को लागे तो आप निंदाई गुड़ाई या देसी तरीका से काम करोगा खरपतवार नियंत्रण को तो बहुत बढ़िया रहेगा।
6: और देखो सही बात है, मान लो अपन निंदाई गुड़ाई हाथ से न करवाना तो अपनी फसल में अधिकतर अपनी मुन्ना पुन्ना मिले चाहे, तो अपनी अधिकतर किसान बेणिया से भी यही निवेदन चाहे कि अपन कम से कम देसी तरीका से देसी उपयोग के साथ साथ अपनी निंदाई गुड़ाई करनो चाहे जी, जैसे अपने हल हो या खुरपी हो इच तो अपन उसे खरपतवार निकाल सका चाहे आसान सर, उमें जो भी कूड़ो कचरो रहे चाहे अपना सोयाबीन मक्का में तो वो बाहर निकाल देना चाहे जी, ताकि वो अपनी डबल मेहनत न करनी पड़े चाहे और अपनी फसल भी बढ़िया रह चाहे।
7: सही बात है। निंदाई गुड़ाई खरती कुरती टाइम पे जैसे अपना अवशेष खड़े जैसे है एड़ा का कचरा है, बगदो है, जो भी है वो खेत से बाहर लगाएगा तो बढ़िया रहेगा और वहाँ से जो है रोग लागबा की कम संभावना रहेगा।

0: साथ ही साथ में समय की बात करी जाए तो देखो यो समय अपना यो बताओ कि समय के साथ आप कामकाज करो। देखो अगर बार समय पे काम नहीं करोगा और फिर बारिश आ जाएगा और फिर विचार कहाँ अपनी नींद वो खुद वो करा तो फिर वो कम सतुनो बैठेगा, क्योंकि बार बढ़िया मौसम है, बार बढ़िया टाइम है, खरपतवार थोड़ा छोटो है तो जैसे ही खुलेगा तो बढ़िया खुलेगा, फिर बड़ा बड़ा हो जाएगा तो फिर खोलवा में तकलीफ आएगा, उन्हें अगर खोलांगा बाद में तो उनके साथ में फसलें भी नुकसान होगा। तो समय के साथ अगर आप काम करोगा तो बेहतर रहेगा।
1: और ये सही बात है। देखो ये तो अपनी बातचीत तो वही चर, देखो आज अपन चर्चा को विषय चे विश्व जनसंख्या दिवस, तो आज तारीख चे अपने 11 जुलाई, तो आज अपन विश्व जनसंख्या दिवस भी मनावे जाओ चे।
0: सही बात है। साथ ही साथ में आज अपन बात करांगा कि भाई विश्व जनसंख्या दिवस भी है ही सही है, पर साथ ही साथ में आज अपन चर्चा को विषय है फसल चक्र।
1: जी भाई देखो कितनी बढ़िया बात है, अपना देखो फसल चक्र की भी अपना बात है, तो फसल चक्र मतलब काहे वो चाहिए।
0: देखो साथियों, फसल चक्र एक खेत से अलग अलग वर्षा में विभिन्न फसलाएं क्रमबद्ध तरीका से उगाबो ही की पद्धति है। यह मिट्टी का स्वास्थ्य सुधारवा, उर्वरकता बढ़ावा और कीट खरपतवार नियंत्रण करवा में सबसे प्रभावी तरीको है और घणो सस्तो तरीको है। तो बार बार अपन जो है फसल चक्र अपनाऊंगा तो अपनी पैदावार बढ़िया होगा।
1: फसल चक्र को मतलब यो हो जो धन ना पाए का अपना मान लो बार बार बदल बदल फसल बोनी चाहिए जे, इस ताकि अपना ना जो भी अपना फसल रहे चे तो वो अच्छी हो चे, मुनाफा भी अधिक बढ़िया मिले चे, तो अपना ये खेत की भी बढ़िया यह हो जाओ चे, अपना उर्वरक क्षमता रहे चे, पोषक तत्व रहे चे, तो वहां की समस्या रहे चे ना, तो यह समस्या भी ना हो सके, इसलिए फसल चक्र अपनाना चाहिए
0: सही
1: डबल।
0: बात है। फसल चक्र का कई कई लाभ है, ये भी आपने बताया कि मृदा को स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा। साथियों लगातार खेत में एक एक फसल लगावा से पोषण तत्व खत्म हो जावे। दलहनी फसलां जैसा मूंग उड़द नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिर करे, जड़ से अगली फसलें उपज बढ़े। साथ ही साथ में कीट और रोग नियंत्रण फसल चक्र अपनावा से संजू देखो हर फसल में अपन एक विशेष कीट हो है। और फसल बदलवा से भी कीट और बीमारियां को जीवन चक्र जो है समाप्त हो जावे और नष्ट हो जावे।
1: और जैसे अपना मिट्टी की सेहत रहे चाहे उनको भी अपन सुधार कर सका चाहे, यानी कि दलनी फसल बोआ सका चाहे, जैसे हम मटर हो या चना हो या सोयाबीन हो, तो यहाँ की यहाँ मतलब ये फसल बोआ बस यहाँ की जड़ रहे चाहे ना, जिमा अपना जिस जड़ का अनुकूल जैसे वो बैक्टीरिया हो चाहे, तो उसे भी अपना हवा के साथ नाइट्रोजन में अपने मिट्टी की पोषक तत्व को इस तरह चाहे वो सुधार हो जाओ चाहे,
0: सही
1: तो
0: बात है,
1: अपना ना फसल चक्र प्राकृतिक खाद का रूप में भी काम ले सका चाहे।
0: सही बात है। लागत भी घनी कम रहे। देखो फसल चक्र अपनाऊंगा तो फसल चक्र अपनावा से उर्वरक और कीटनाशका पर हो बावारा खर्चा घट जाएगा और आम जो बजट है वो भी कम हो जाएगा और जो है आय अपनी दुगनी हो जाएगा। तो वर्तमान समय में खरीफ की फसला में उड़द मूंग मूंगफली मक्का ज्वार कई विकल्प है। सो अपना किसान साथी सोचे कि भाई सोयाबीन अपन लगा ले वहाँ, तो ऐसी बात नहीं है, बहुत सारा विकल्प है जी आप लगा सको है। उड़द मूंग मूंगफली मक्का आदि आप यहाँ की बुआई कर सको। साथ ही साथ में अनि साल अन में मक्का वादी तो अगले साल उड़द बा सको या सोयाबीन बा सको।
1: हाँ सही बात है, मान लो जैसे धान की खेती हो जाए तो वो धान की खेती भी अपन कर सका चा, उसे भी फसल चक्र अपना सका चा, तो यह फसल चक्र अपना बस अपने अधिक मुनाफा मिले चा, रोरी में खर्चो भी ना हो ज्यादा।
0: संजू भाई घना किसान साथियों को यो खेबो के भाई जंगली जानवर को नुकसान करे तो उनका भी आजकल उपाय आ गया है। आप तार जाली लगाओ तो मूंगफली की फसल भी होगा, उड़द की फसल भी होगा और आजकल तो सभी फसला का जो है भाव राव भी बढ़िया मिल रहा है। तो निश्चित तौर से आप जो है फसल चक्र अपनाओगा असी आप उम्मीद करा जाए।
1: सही च देखो यह बात।
0: सही वे। और साथ ही साथ में कार्यक्रम में संजू आगे चला तो यहाँ अंतराल के बाद और भी अपनी बातचीत होगा।
2: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: कार्यक्रम में सभी साथियों को एक बार फिर घणो घणो स्वागत है। और साथियों, अपन कार्यक्रम में आज अपन एक प्रगतिशील किसान को जो है भेंट वार्ता अपन ले रहा है, तो एक ऐसा ही किसान है आज का यहाँ कार्यक्रम में,
1: तो सुनाओ ये भेंट वार्ता।
0: तो आओ अपन सब मिला और जाना अना किसान से। राम राम साहब।
2: राम राम साहब।
0: कई नाम है आपको?
2: हंसराज नागर।
0: हंसराजी नागर, कहाँ का रह रहे हो आप?
2: सिरपुरी का।

0: कोई यो गांव अपनों कहाँ पे पड़े?
1: ये सुनील के पास पिलावा तहसील लगती है साहब।
0: अच्छा, तो यह बताओ कि जमीन कतरी क्या आपने पा,
1: 30 बीघा जमीन है साहब।
0: और पढ़ाई कतरी कर रखी है आपने?
1: 12वीं पास भी की और ITI भी कर रखी साहब।
0: अच्छा, तो ITI आपने कर रखी, तो फिर ITI को कोई लाभ नहीं लियो आपने?
1: सब ITI करवा के बाद मुझे 4 साल पावर हाउस में भी काम करी साहब मैंने। उसके बाद फिर मैं वहाँ उचित सैलरी नहीं मिली तो मैंने छोड़ दी साहब।
0: तो उचित दाम में आपने नहीं मिली, तो फिर आपने कई निर्णय लियो?
1: घर वाला की भी देखो उम्मीद रहे, एक घर वाला की कि भाई आप छोरो पढ़े लिखे अच्छो पढ़े तो, पर बाकी वहाँ नहीं मिल पाए तो फिर मुँह खेती की ओर जुड़ गयो साहब।
0: अच्छा, तो खेती की ओर आप जुड़िया एकदम से, आप जुड़िया एक युवा किसान हो आप हो, तो खेती बाड़ी में तो बहुत सारी समस्या है, तो कई कई समस्या को सामना आपने करना पड़ी, और कैसा फिर मानसिकता बनी कि अब खेती ही करनी अपनाए?
1: देखो खेती बाड़ी करवा से लाभ भी है और हानि भी है, लेकिन फिर भी कहीं है कि अपन थोड़ा बहुत पढ़ लिख जावानी तो उनमें अपन खेती में बहुत सारो सहयोग मिले। जैसे घर वाला ने अपने जसो दियो वसो अपने कर ही रहा है, बाकी उसे थोड़ा सा ऊंचा उठवा के लिए आगे बढ़वा के लिए अपने थोड़ा बहुत सारा संघर्ष करना पड़े। तो अपन ने जैसे पानी की समस्या है तो वहाँ अपने आसपास डैम है तो वहाँ से अपन ने पाइपलाइन डाली और लाइट वगैरह की व्यवस्था करी। तो खेती बाड़ी 30 बीघा जमीन है तो उनके तार बाउंड्री की व्यवस्था करी। आजकल अपन जाना कि जानवर वगैरह भी है जो बहुत खेती को नुकसान पहुँचावे, तो ये सब समस्या अपन ने हल करिया के बाद ही सब अच्छा किसान बन पाया था।
0: बहुत अच्छी बात बताई कि एक पढ़े लिखे हो किसान होबा का कतरा फायदा होवे, साथ ही साथ में जो परंपरागत खेती करता आ रहा है, तो पुराना समय का अपना किसान में तो हिम्मत नहीं थी कि भाई अपन पाइपलाइन ले आवा या पानी की व्यवस्था कर लां या लाइट की व्यवस्था कर लां या जाली लगाना तार बाउंड्री कर लां ऐसी बहुत सारी, लेकिन आज का आप युवा एक किसान है तो जो भी समस्या आवे उन्हें तुरंत समाधान करवा को आपने निर्णय लियो और आप लगातार आगे बढ़ता रहा। हंसराज जी, आपके पास जमीन तो काफ़ी सारी है, पर अत्री व्यवस्था अत्रो एकजुटता कई प्रकार से, कहीं एक ही जगह जमीन है या अलग अलग जगह है?
1: देखो जमीन तो अपने पास 10-10, 12-12 बीघा का अलग अलग प्लॉट है और वहाँ सारी पानी व्यवस्था सब अलग अलग तरीका से ही हो रही कर रखी है साहब।
0: और काम वाला भी रख रखे है कि व्यवस्था कसू जुटानी है कि भाई एक खेत में कसी फसल बो दी, एक में कसी बो दी, कई प्रकार से तालमेल बिठा के आप काम काज करो?
1: देखो एक काम वालों जो भी रख रखे है तो वो भी अपनी मदद करे काम में, और उनके बावजूद अपना घर का भी है जो भी करे अपनी मदद, और छोटो मोटो काम जैसा सोयाबीन वगैरह, एक खेत में सोयाबीन बो दी, एक में मूँगफली बो दी, कोई में मक्का बो दी, तो ऐसा थोड़ा थोड़ा करके सभी बो रखी
0: जी। देखो खरीफ की फसल को समय चल रहा है और बारिश को समय बार है, या बताओ कि बार अपनी आपने कहीं कहीं बुआई कर रखी है?
1: सोयाबीन मक्का मूँगफली थोड़े थोड़े सब बार रखी साहब।
0: तो ज़्यादा रकबा में तो आपने सोयाबीन ही लगे होगा?
1: हाँ सोयाबीन है साहब।
0: अच्छा, तो बार कहीं कंडीशन है, पानी वानी का शौक पड़ी हो?
1: बारिश अच्छी होगी साहब, 2 दिन में बार जो बारिश हुई बहुत बढ़िया बारिश होगी साहब।
0: तो कतरा दिन की होगी लगभग सोयाबीन अपनी?
1: सोयाबीन अपने 15-16 दिन की सोयाबीन होगी साहब।
0: अब देखो समस्या यह आवे सर में सोयाबीन में क्या मुख्य फसल है या, तो बाहर अण में कहीं के खरपतवार को नियंत्रण करवो कहो जरूरी है, आप कहीं प्लान बना रहे हो खरपतवार नियंत्रण के लिए?
1: देखो अबार अपन अगर अपने कोई खेत में ज़्यादा खरपतवार उग्यो हो तो अपन खरपतवार नाशक दवाई भी डाल सका, और अगर अपने पास अगर अपना लागे के कम उग्यो या नहीं उग पायो है तो अपन अपने कल्पा भी निकाल सका। तो मारे को तो यही प्लान है साहब कि कल्पा निकालांगा मैं, दवाई को अबार स्प्रे नहीं करी हुई।
0: हंसराज जी, आजकल तो बेल वेल की कमी होगी, बेला है रागो लोग बाग पसंद नहीं कर रहा है, और आपने कल्पा की जो बात की तो कहीं बेला से आप कुल को लगाओगा?
1: ये साहब बेल तो अबे आधुनिक जमानों है तो बेल तो अपने पास भी नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल से अपन कल्पा निकाला है।
0: मोटरसाइकिल से कहीं जुगाड़ बना रखे हो मतलब?
1: हाँ साहब जुगाड़ बना रखे हूँ।
0: अच्छा, तो उनमें कई प्रकार से चले और कतरा आदमी काम कर सके उनमें?
1: जैसे कि अपन कम से कम 3 कर्पा फान सका और ज़्यादा से ज़्यादा 5, तो अपन जसो अपना है उचित समय जसो मिल जाए वसो कर सका अपन।
0: अच्छा, तो सक्सेसफुल है भी?
1: बिल्कुल साहब, बहुत बढ़िया तरीका से, जैसे बेल की बेल कर कर्पा जो गुड़ाई करे वही उनका कर्पा से गुड़ाई हो।
0: देखो रासायनिक को इस्तेमाल आप नहीं कर रहे और कुल्पा से गुड़ाई कर करके जो सोयाबीन की फसल आप लोगा, तो कतरो नुकसान है रसायन को इस्तेमाल करवा से?
1: देखो अगर अपन दवाई को स्प्रे करांगा तो ज़्यादा मत मानो आप 10 दिन तो आपके सोयाबीन डैमेज हो गए होगा। तो अगर अपन ने अगर ज़्यादा खरपतवार नहीं है और अपन ने अगर कुर्पा निकाल दिया तो आपके सोयाबीन एक तो ज़्यादा

0: मतलब डैमेज नहीं होगा। आजकल रासायनिक दवाई भी इतनी अतिरिक्त ज़्यादा महंगी होगी कि वह निंदाई से और कुरपा से ज़्यादा महंगी होगी। आजकल 10 बीघा का डोज 10,000 का मिलेगा तो वो ज़्यादा दिक्कत देगा। फिर उनसे बढ़िया तो अपना करपा निकाल लें और रेजा तो दाढ़ से बिना लें।
1: बहुत बढ़िया बात बताई। या तो देखो खेती बाड़ी में तो जितना कम खर्च होगा थोड़ी बढ़िया है। या बताओ कि आजकल यूँ कहे कि भाई खेती में कम खर्चो करो और अधिक मुनाफो आप पा सको, तो ऐसा कहीं कहीं तरीका है जो आप अपनाओ कि भाई खेती में जैसे किसी भी फसल की, रबी की, खरीफ की, किसी भी फसल की बात करा तो कम खर्चो अपना बखलेर कहीं कहीं प्रयास करना चाहे।
0: आजकल तो घनी तरह की फसल चल गई, असंग है, लहसुन है, कलौंजी है, बहुत सारी ऐसी फसल है जो लोग बुआ रहे। लेकिन ज़्यादातर ज़्यादा अपन की बात करा तो अपन तो दणो है, मसूर है, चना है या फसल बावा तो अनमें के खर्चो कम लागे और उत्पादन भी अगर भाव मिल जाए तो बहुत बढ़िया होवे। जैसा कि अपन बाबा से पहला अपन मोटर चला के रेल दा तो खरपतवार भी उग जा और अपन सीडिल से बुआई कर दा, क्यारिया बना दा, एक पानी और पिलाने के बाद अपना कहीं भी करना डायरेक्ट फसल काटनी है तो यू अपने सारो खर्चो बच जावे। सब
1: पिछला साल की अगर बात करें अपन रबी फसल की तो आपने कतरा मुनाफो कमायो और कई कई फसल ली है?
0: देखो साहब, आपने 4 बीघा की मसूर थी, 4 बीघा को धनो तो और चना भी था। ये जो अपन ने रेलवे की बात करी तो इन हिसाब से और बाकी हुए तो लहसुन भी तो सब तरह की फसल थी। लेकिन लहसुन में ज़्यादा मेंटेनेंस और अना चीज़ा में धनिया है, चना है, इना में कम मेंटेनेंस है। तो इना में कहीं अपन रेल के बाद 4 बीघा को दोनों 2,30,000 रुपये को बेचो साहब मार्केट में, तो आपने कहीं उसमें बिल्कुल भी खर्चो नहीं लगे, काटबा और बुआई को खर्चो लगे बस, और एक दिन दो दिन में पिलाई होने के बाद फिर ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। निंदाई गुड़ाई दवाई कुछ भी नहीं करनी पड़ती अपन।
1: और पानी कतरा पिलाया उन्होंने
0: सब? एक पानी तो अपने रेला था और उनके बाद एक पानी और पिलाया बस,
1: यानी कि 2 पानी में आपने काम कर लियो।
0: जी साहब।
1: तो उनमें मजदूर भी नहीं लगाना पड़ा, केवल कटाई और निकलाई का जो आपका पैसा लगे वही लग गया और बहुत ही कम खर्चो लग गया।
0: जी साहब।
1: अच्छा। सोयाबीन की फसल की और भी बात करें अपन तो आबा वाला समय में ये में और भी कई बीमारियाँ देखभा मिलेगा?
0: देखो बीमारियाँ तो आजकल बहुत सारी चल रही है, इल्ली आ गई है और एक साल से 2 साल में अगर अपन ने ज़्यादातर एक ही तरह को वो या एक ही क्वालिटी को बीज जो बायो तो वो भी आपने सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उनमें कहीं है कि ये जो रासायनिक चीज़ें जो अपन डाल रहे हैं तो ये ज़्यादा नुकसान कर रही। तो अपन एक साल से दूसरे साल में अगर वेराइटी अगर वही बोई तो फिर अपने सफल नहीं हो पाएगा साहब।
1: अड़ी साल आपने कई लागे कि भाई सोयाबीन की फसल कैसी होगा?
0: देखो अबार तक तो बारिश भी ठीक है और आगे मान लो वैज्ञानिक लोग जो बता रहा है कि बारिश कम है तो फिर अब अपन तो ऊपर वाला से कोई मिलिया को नहीं, पर जो वैज्ञानिक लोग है तो वे बता रहे उन हिसाब से तो थोड़ी की समस्या ही लाग रही थी अड़ी साल।
1: अच्छा, पानी की कमी रहेगा मतलब?
0: जी साहब।
1: हंसराज जी, आपसे जान पूछाऊँगा कि खेती बाड़ी तो आप करो सही, पर साथ ही साथ में पशुओं को भी अपना साथियों को एक साथी है तो पशुपालन को भी कहीं बताओगा आप, कहीं पशुपालन भी आप करो?
0: जी साहब, पशुपालन भी अपन ने यो आपने बहुत बढ़िया बात करी कि पशुपालन भी किसान है तो पशुपालन भी करना चाहिए, कि यो खेती से जुड़े तो को काम है और उन्हें करना चाहिए किसान। मेरे पास देखो अपनी बात करा तो अपनी बात में यह है कि अपने पास एक भैंस थी, एक भैंस से अपन ने 2 लाया, 2 से 4 करी, 2 से 4 से 5 और अपना गन्ने अबार 5 भैंसियाँ बंदी साहब, तो अपन ने उन्हें खिलाए पिलाए सब करिए चारों पानी सब घर को, तो आपने महीना को दूध जावे साहब 45 से 50 हज़ार रुपये महीना को। अगर 20 हज़ार रुपये भी अगर खर्चा को निकाल दो तो साहब 30 हज़ार रुपये आपने सूखा बचत है। उनके साथ साथ अपने साल भर में 10 से 15 ट्रली गोबर भी निकल रहे हो तो उसे अपने रासायनिक की जरूरत नहीं पड़ रही है और ये जैविक खाद बिल्कुल एक नंबर जिनमें कहीं दिक्कत नहीं है, वो अपन जनी जी जगह में डालांगा वो कम से कम 5 साल 10 साल अपने कहीं दिक्कत नहीं आएगा।
1: या तो बहुत अच्छी बात बताई आपने कि पशुपालन को जो काम आप खेती बाड़ी के साथ कर रहे हो तो एक अतिरिक्त इनकम आप कमा रहे हो और नियमित रूप से घर में पैसे आ रहे हैं, आपने 4-5 ठोड़ जो राख रखा है वहाँ से आप 30 से 40 हज़ार रुपया प्रति महीना में कमा रहे हो और बढ़िया ज़बरदस्त काम चल रहे है। तो एक खेती बाड़ी अगर सक्सेस नहीं है तो निश्चित तौर से किसान है जो है पशुपालन करना चाहे। और हंसराज जी, पशुपालन में कई कई समस्या को सामना करना पड़े?
0: देखो पशुपालन में भी बहुत सारी समस्या है, जैसे कि अपन भैंस यहाँ लावा है कभी वह रिपीट मार जावे और चारों पानी की जैसू समस्या है, अपन सोयाबीन है।

0: के या पिछली जो फसल है उनमें अपन जो दवाई डाल रहे हैं रासायनिक, तो वह दवाई जो है कि पशुपालन के लिए, पशु के लिए हानिकारक है। जो दवाई डाल रहे हैं वह नुकसान करे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो जैसे अपने खान पीन में नुकसान करती है वैसे पशु में भी नुकसान करती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो अपन को ध्यान रखनी होती है पशुपालन में।
1: पहला तो परंपरागत तौर से पशुपालन करता था, जैसे यहाँ के मक्का की पिंडी डायरेक्टली लाके पशुओं लाग देता, या हुड़ की पिंडी लाग देता, या जो भी मतलब तो जैसे भी चारों पूरों जैसे भी लाग देता था। लेकिन आज आधुनिक तरीकों है, अपना डॉक्टर पशु चिकित्सक भी बतावे कि कई प्रकार से घास फूस खिलाना चाहे और कहीं उनको सही तरीको है। आजकल विकल्प कम है चारा का अपने पास, फिर भी आप जो है कई प्रकार से देख रेख करो, कई प्रकार से चारा को प्रबंधन अपना पशुओं को रेवे।
0: सबसे ज़्यादा तो अपन शुक्ला की गेहूँ की जो फसल होती है वहाँ से ज़्यादा इकट्ठो करा। अपने पास पर्याप्त नहीं है तो अट्टी उट्टी से मोल लेवा या कहीं भी व्यवस्था बिठा के उ लेवा। उनके बावजूद अपन अगर ज़्यादा पशु रख पाए है अपने पास, तो बीघा की या आधा बीघा की जो भी अपने पास व्यवस्था है वो हरा चारा की व्यवस्था करा। और कुट्टी की मशीन लावा अपन, तो मैं कुट्टी करके और शुक्ला के साथ मिला के मिला, तो वो अपने सूख लो ऐसी चीज़ है जिनमें अपन रासायनिक चीज़ को कम इस्तेमाल करा। कीटनाशक जो चीज़ हो वह उनको अपन सूखला में या इल्ली की चीज़ है तो वो अपन इस्तेमाल नहीं कर पा करा, तो उनसे कहीं सूख लो एकदम अच्छी चीज़ रहे डांडा डोर के लिए।
1: अच्छा, और कहीं अच्छा पोषण तत्व या फिर खलबल कपास या कहीं प्रकार से दो आप?
0: देखो खल भी देवा 3,000 रुपये की बोरी आवे एक, और जो डेयरी पे दूध देवा वहाँ से भी पशु आहार लावा और वो भी दो आधो आधो करके देवा।
1: अच्छा, जैसे शुक्लो रहे तो शुक्ला में कहीं मिला के देवे, कहीं प्रकार से खिलावे शुक्लाएं?
0: शुक्ला में देखो अपना तो अपने चना है, गेहूं है, तो असा सोयाबीन है, तो यह जो भी चीज़ें अपने पास बचे जो अपन मार्केट में बेचवा जावा जन की वहाँ वैल्यू कम रहे, तो उन्हें अपन अपने घर की चक्की में पीस के और अना के जो चारों रेवे उनके साथ में अगर गीलो करके मिला देवा तो ये खल को काम करे।
1: ये तो बहुत ही बढ़िया बात बताई आपने, और पशुपालन को जो काम है बड़ा ज़बरदस्त आप कर रहे हो हंसराज जी। आपकी सफलता की कुछ बात ही अलग है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस आप यानी आधुनिक युग में कर रहे हो। एक किसान आप है तो आपको कार्यक्रम भी किसान साथी सुन रहा है, और समय तो अपने पास कम है, पर हंसराज जी चालता चालता जो है अपना युवा साथी आए कहीं संदेश देवो चाहोगा कि भाई कहीं तकनीक अपनानी चाहे, कई प्रकार से खेती बाड़ी करनी चाहे, कहाँ ऐसी प्रमुख बात है जिनको अपना युवा किसान आए ध्यान रखने की आवश्यकता है?
0: देखो चीज़ें तो बहुत सारी है लेकिन सबसे पहला तो देखो असो है कि आपने जो माँ बाप है और आपने माँ बाप है जो आपने ऊपर उम्मीद है उन पे अपन सबसे पहला तो उन पे खरो उतरा। अपन देखो बहुत सारा है जो कि माँ बाप बाप बेचारा पैसा भी बगाड़ रहा है, सब बात को कर रहा है लेकिन छोरा और है या लड़कियां हैं जो कि ध्यान नहीं दे रही है, तो अपन कहीं है कि अच्छे तरीक़े से उनकी बात भी समझा, अपना से कहीं गुना होना है ज़्यादा नॉलेज है, और खेती भी है ही सही और नहीं है तो अपन पैसा बगाड़ के भी पढ़ा रहा है, तो अपन अगर पढ़ाई की ओर ध्यान है तो पूरा पढ़ो, और अगर अपन नहीं पढ़ पाओ तो फिर अगर खेती कर रहा हो तो फिर वो अच्छी तरीक़े से करो, दो यही अपनों तो यही खेबो है।
1: हंसराज जी बड़ी छोकी जानकारी दी और आपने माँ के साथ जुड़े आप, यहाँ के लिए आपको घणो घणो धन्यवाद सा, राम राम सा।
0: राम राम साहब।
2: जलवायु कार्रवाई, यह यूनेस्को का संदेश है। जलवायु कार्रवाई की शुरुआत 1992 की पृथ्वी शिखर सम्मेलन से हुई थी और 2015 में पेरिस अग्रीमेंट ने एक बड़ा कदम उठाया जिसका लक्ष्य है वैश्विक तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखना। लेकिन लगभग सभी देशों के प्रतिबद्धता के बावजूद अब तक के वादे इस लक्ष्य के लिए काफी नहीं हैं। इसलिए तुरंत और प्रभावी बदलाव जरूरी है, खासकर गरीब देशों को वित्तीय सहायता और समर्थन देना होगा। कार्बन उत्सर्जन कम करना और पर्यावरण अनुकूल व्यवहार ही सबसे जरूरी उपाय हैं। यहाँ एक रोचक तथ्य है, यूनेस्को ने जलवायु जागरूकता बनाने के लिए 7 भारतीय भाषाओं में जलवायु साक्षरता की सामग्री तैयार की है। यह संदेश यूनेस्को और आकाशवाणी के सहयोग से प्रस्तुत किया गया है।
1: कार्यक्रम में सभी साथियों का स्वागत है, और संजू आज अपनी जानकारी की बात ले रहा है।

0: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। साथियों, सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना चलाई जा रही है, जिन में प्रमुख रूप से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी एक भारत सरकार की एक प्रमुख कौशल योजना है।
1: वो देखो यार, धन्ना भाई, मान लो कौशल प्रशिक्षण योजना, मतलब इको उद्देश्य रच जैसे अपना युवा रच वहां को उद्योग पार्षद संगीत प्रशिक्षण मतलब उम प्रदान करो जाओ छ, तो इके लिए वो अपना रोजगार मिल सके, रोजगार में बढ़ाओ रच, तो ई लिए विकास कौशल योजना चलाई गई है। या
0: यह योजना पूरी तरह से निःशुल्क है और सफल प्रशिक्षण के बाद सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जावे है। और संजू देखो, यह तो बढ़िया योजना है, पर साथ ही साथ में एक बढ़िया शोक लोक संगीत भी कार्यक्रम हो जाओ तो मजा आ जावे।
1: सही बात है, देखो ये तो बातचीत चलती रहे, मनोरंजन करबो भी जरूरी रहे।

0: तो संजू देखो कार्यक्रम तो बहुत ही बढ़िया रहो अपनों और किसान साथियों लोगों ने भी लाभ लेगा नहीं कार्यक्रम को लियो ही होगा और समय की अपने पास कम ही है। तो अब जो है किसान वाणी कार्यक्रम से दियो अनुमति आपका साथी धन्नालाल
1: और
0: लाडर
1: संजू को दो आज्ञा,
0: राम
1: राम राम।
0: राम।
2: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिले।

0: सुनिश्चित
1: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान
0: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
1: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
0: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
1: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे किसान वाणी कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 MHz पर। शाम के 7:30 हुए हैं। आइए अब सुनते हैं किसान साथियों के लिए कार्यक्रम कृषक चौपाल।

0: भाई कृषक चौपाल कार्यक्रम सुन वाला सभी साथी आए हैं। आपका साथी धन्नालाल नागर,
1: और संजू को गणो गणो
0: राम
1: राम
0: राम।
1: राम।
0: संजू देखो अपना किसान साथी लोग खेती बाड़ी में लाग रहा है और मौसम भी बहुत बढ़िया हो रहा है, तो ऐसा मौसम में अपना खेती बाड़ी को काम जोर से चल रहा है। साथ ही साथ में कुछ जगह तो बढ़िया बारिश हो गई थी, पर बाद में जो है कुछ जगह रह रही थी, तो वहाँ भी बढ़िया बारिश होबा के बाद किसाना का चेहरा पे खुशी को माहौल है और लगभग साथिया ने अपनी जो है सोयाबीन की ज्यादा से ज्यादा फसल की बुआई करी है।
1: और देखो धन्ना भाई मान लो अपन फसल भी बुआ दी चे और सभी किसान साथी काम भी जुट गया चे। और देखो वहां को काम भी चे खेती गृहस्थी को, तो खेती कर वो जरूरी रहे चे। और खेती के साथ साथ अपना पशुओं की देखभाल भी जरूरी रहे चे बरसात का टाइम पर।
0: बरसात का समय में तो पशुओं की बात ही अलग है। देखो विशेष तौर से इनकी देख रेख, पशुओं की देख रेख खास तौर से हो या करे है, और अना से आजकल कई युवा जो किसान है पशुपालक भाई है नवा नवा भी आजकल दूध को कारोबार कर रहा है, तो बारिश का समय में पशुओं की देख रेख भी बहुत बड़े तरीका से कर रहा है। तो साथ ही साथ में आज अपन जान रहा है कि आज विश्व जनसंख्या दिवस भी है संजू भाई, तो पूरा विश्व जो है विश्व जनसंख्या दिवस मना रहे है और लोगाएं जागरूक करवा के लिए जगह जगह कार्यक्रम आयोजित करे जा रहे हैं।
1: और देखो सही बात है कि ये को मुख्य उद्देश्य है कि अपनी बढ़ती जनसंख्या रच वहां से मतलब जुड़ी हुई जो भी समस्या रच पर्यावरण से संबंधित कोई दबाव रच कोई गरीब स्वास्थ्य ये रच सेवा, तो वहां के लिए अपन संसाधन का उचित उपयोग करवा के लेके ये विश्व जनसंख्या दिवस मनायो जाओ छ। और एक स्तर से मतलब जागरूक फैलावा को यो ये दिवस मनायो जाओ छ।
0: सही बात है। देखो तो सरकार भी इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रयास कर रही है, जैसे मातृत्व स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, लैंगिक समानता, गरीबी और मानवाधिकार जैसा गंभीर मुद्दा के प्रति लोगों जागरूकता फैलावा के लिए प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग में मातृत्व दिवस मनाए जा रहे हैं, उनमें भी जनसंख्या के प्रति और लोगों जागरूक कर हमेशा किया जा रहा है, तो एक बहुत बढ़िया से और लोग आए भी इनका बारे में समझना चाह कि भाई अच्छा स्वास्थ्य के लिए और बच्चा बच्ची की अच्छी परवरिश के लिए अपना जनसंख्या नियंत्रण करना चाहे और जनसंख्या पर ध्यान देना चाहे।
1: और जैसे अपना परिवार नियोजन रहे जो वहां के लोगों का परिवार में एक नियोजन का रूप में समिति के रूप में अपना संसाधन में उपयोग करना चाहे जी, जैसे शिक्षा का क्षेत्र में करना चाहे जी। मान लो एक लैंगिक जनन समता रहे समाज में, तू समाज को अलग मतलब देखो जाओ छो, तू को यो भी मिटावा के लेकर मनायो जाओ छो। जैसे मान लो महिला रहे छो, महिला को भी अधिकार रहे छो, रक्षा करना चाहिए महिला की। मातृ शिशु स्वास्थ्य दिवस रहे छो, तू जैसे

0: स्तर है जो गर्भावस्था के दौरान उचित देखभाल करना चाहिए मात्र स्वास्थ्य दिवस की। तो ई रूप में मान लो शिशु रह जाए अपना, तो शिशु कल्याण के बारे में भी जागरूक को बढ़ानु चाहिए जी। ई लिखा अपना ने विश्व जनसंख्या दिवस मनाई जाओ जो
1: सही बात है। देखो जब अपना घर परिवार में अगर ज़्यादा जनसंख्या होगा तो माता की सुरक्षा भी कमज़ोर होगा, बच्चा की सुरक्षा भी कमज़ोर होगा, उनको स्वास्थ्य भी खराब रहेगा, तो फिर मज़ो नहीं आएगा। और अगर एक या दो बच्चा होगा तो उनसे कहे कि बच्चा को स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा, शिक्षा समय पर मिलेगा और सब परवरिश बढ़िया होगा। तो अनिका ने जो जनसंख्या दिवस आज पूरा विश्व में मना रहा है तो सभी जागरूक करवा के लिए अपन तो यही कहना चाहूँगा कि भाई आप कम से कम जो है जनसंख्या पर ध्यान दो। और जैसे यहाँ दो बच्चा है, एक लड़को एक लड़की है, तो भी ठीक है। बाकी जो है जनसंख्या दिवस की एक बार फिर सभी बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। और अब फिर से अपना कार्यक्रम में आगे चला संजू भाई, और अपना पशुपालन की अगर बात करा तो देखो वर्षा को समय भी चल रहे है। बार अपना ने पूर्व में भी बात करी थी संजू भाई कि भाई वर्षा ऋतु में पशुओं को प्रबंधन कई प्रकार से होना चाहे, उनका बारे में जो है एक बहुत ही बढ़िया भेंट वार्ता है। डॉक्टर किरण वर्मा वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी आपके तीन जानकारी देगा साथियों। तो संजू सुनाओ यह जानकारी।
0: और सुनो या भेंट वार्ता। राम राम।
2: राम, मेरा नाम है डॉक्टर किरण वर्मा और मैं यहाँ वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के पद पर बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय झालावाड़ में कार्यरत हूँ। देखिए, जैसे देखा जाता है जब भी मौसम चेंज होता है, मौसम परिवर्तन होता है, तो पशुओं में चाहे बड़े जानवर हों चाहे छोटे जानवर हो, उनमें संक्रामक गैर संक्रामक बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है।
0: जी
2: अगर हम उचित प्रबंधन करके चलते हैं, जैसे अभी गर्मी से बारिश का मौसम आ ही रहा है, देखने आप रोज ही जो है बारिश हो रही है, अगर हम उचित प्रबंधन करते हैं तो हम कई हद तक अपने पशुओं को बीमारियों से बचा सकते हैं और उसके लिए हमें उचित रख रखाव करना काफी बेहद जरूरी है।
0: जी जैसे मान लो अपने वर्षा ऋतु में अपने जो भी जानवर रह जाए यानी कि पशु रह जाए, तो वहां को अपन रख रखवा किस प्रकार से करा जाए।
2: जैसे कि आपने जहाँ पे भी अपने पशुओं को रखा हुआ है, जो भी आपने पशुशाला बनाया हुआ है या जहाँ पे आप उनका रख रखाव करते हैं, सबसे पहले तो वो जो है वहाँ गीला बिल्कुल नहीं होना चाहिए,
0: जी
2: ठीक है। इस तरह का आप करें कि जो पानी है उसका निकास हो सके, पानी वहाँ इकट्ठा ना हो, क्योंकि अगर वहाँ पानी इकट्ठा होगा तो जो परजीवी है
0: जी
2: उनका उनकी जो है जनसंख्या बढ़ेगी और वो आपके पशुओं पे अटैक करेंगे, जिस वजह
0: जी
2: से वो जो है कमजोर भी हो जाते हैं पशु, खाना पीना भी बंद कर देते हैं, ठीक है। एक तो हो गया पानी का, जो जहाँ पशुओं का आपने रखा हुआ है वहां जो है वो पूरा हवादार होना चाहिए, सूखा रहे वो,
0: जी
2: है ना। उनके ये आप ध्यान रखेंगे जो पशुओं के जो खुर हैं पैर हैं वो गीले में ना हो, नहीं तो उनके सड़ने की संभावना ज्यादा रहती है, ठीक है। और थोड़ा ऊंचे स्थल पे उनके रखें, जैसे पीछे वाले पैरों को आगे, ताकि पानी जो है निकल सके, इकट्ठा ना हो,
0: यानी कि
2: ठीक
0: जो भी अपन छान बनाते हैं छपरा बनाते हैं तो उसका पानी का निकार करना
2: है। हाँ
0: जरूरी
2: बहुत
0: होता है।
2: जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से भी मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम है, पानी इकट्ठा बिल्कुल भी ना होने दें,
0: जी जी
2: ठीक है। स्वच्छ पानी की जो है उपलब्धता कराएं, ताकि स्वच्छ पानी आहार जो है संतुलित दे, जिसमें नमक और मिनरल मिक्सचर होना बहुत जरूरी
0: जी
2: है,
0: जी
2: ताकि जो है मौसम के अभाव, मौसम जो चेंज हो रहा है उस दौरान एनिमल जो है पशु जो है स्ट्रेस में भी चला जाता है।
0: जी
2: जैसे
0: जी
2: अभी तेज गर्मी थी, अब तेज गर्मी के बाद वर्षा आ गई, तो उस स्ट्रेस के कारण भी जो है पशु जो है खाना पीना कम कर देते हैं, तो इसका आप उचित ध्यान रखें। मिनरल मिक्सचर दें 50 ग्राम उसको, और नमक नमक जरूर खिलाएं उसे,
0: जी जी
2: उसे नमक से वो पानी भी ज्यादा पिएगा और जो है दूध उत्पादन भी सही रहेगा।
0: यानी कि वहाँ का मतलब खान पान की बात करा जाए अपन, तो खान पान मतलब टाइम टाइम पे समय समय पे उचित समय में देबो
2: हाँ।
0: जरूरी
2: अब
0: है।
2: जैसा कि अभी बारिश का मौसम चल रहा है, तो आप उनको हरा चारा, सूखा चारा, ठीक है, जिसमें जो है हरा चारा 1.4 के हिसाब से आप दे सकते हैं, हरा चारा ज्यादा हो, सूखा चारा कम हो, और वो खनिज मिश्रण जो आता है वो भी आप मिक्स करके दे सकते हैं।
0: जी यानी कि अपन सूखा चारा भी दे सका चाहे वहां कताए, और अपन जो भी अपना खल वाल रह जाए तो वह भी टाइम टाइम पर दे
2: हाँ,
0: सका चाहे,
2: टाइम टाइम पे दे
0: ताकि
2: सकते हैं।
0: कोई भी अपना भैंस होई या गाय होई तो उनको दूध को उत्पादन अधिक बढ़ जाओ चो।
2: हाँ, अधिक भी बढ़ेगा और या फिर कम नहीं होगा। अगर मौसम चेंज हो रहा है, एनिमल स्ट्रेस में आ रहा है, तो वो जो दूध जो देरी है या वो मेंटेन रहेगा, मतलब उसका स्तर कम नहीं
0: जी
2: होगा, है ना। बढ़ाने के लिए हम उनकी

0: जो है आहार में, अब जैसे कि मैंने बताया नमक दे रहे हैं, मिनरल खनिज मिश्रण दे रहे हैं, बाईपास फैट दे सकते हैं, ठीक है, इससे भी जो है पशुओं का
1: दूध उत्पादन
0: में बढ़ोतरी होती है।
1: जी जी, और जैसे मान लो अपन वर्षा ऋतु में अपन जो भी किन किन बीमारियों से अपन टीकाकरण करवा वो आवश्यक रच,
0: जैसे कि अभी एक होता है खुरपका मुंहपका बीमारी, हमने सुना होगा जैसे FMD बोलते हैं।
1: जी जी।
0: उसमें जो है खुर जो है खराब होने लग जाते हैं, मुंह पे जो है छाले टाइप आ जाते हैं, खुर पे भी छाले टाइप आ जाते हैं, अगर आप वक्त पे ध्यान नहीं देते तो वो छाले फूट भी जाते हैं।
1: जी
0: ठीक है, एक बार इस तरह की अगर कंडीशन हो जाती है तो जानवर में लंगड़ापन भी आने लग जाता है, जिससे भी जो है दूध उत्पादन एकदम से गिर जाता है,
1: गिर जाता है।
0: तो खुरपका मुंहपका हो गया, एक होता है गलगोटू होता है HS जो है जहाँ गले में सूजन आ जाती है।
1: जी
0: ठीक है, तो HS हो गया, BQ हो गया, ब्लैक वाटर जिसमें पीछे जैसे हम लंगड़ा बुखार भी कहते हैं।
1: जी,
0: तो इन सारी बीमारियों का जो है अगर आप बारिश के मौसम से पहले ही टीकाकरण करवा ले तो बिल्कुल
1: जरूरी है। और देखो मैं इसका लक्षण की अपन बात करा तो ये को लक्षण पशुओं में जैसे खुरपका मुंहपका रोग रहे तो की पहचान कैसे कर सका आप?
0: पहचान आपको ऐसे होगी कि भाई एक आध छाला होने लग गया, मुंह पे छाले हो रहे हैं, पैर पे छाले हो रहे हैं, लार गिरा रहा है जानवर कंटिन्यूस, तो आप उसको देखो कि भाई मुंह पे कहीं छाले तो नहीं है, पैरों पे लगड़ा के चल रहा है तो कहीं खुर के बीच में कहीं छाले तो नहीं हो गए हैं। ठीक है, अगर पहले अगर आप टीकाकरण करा लेते हैं तो पशुओं का बचाव हो जाता है, अगर टीकाकरण समय पे नहीं आया और पशु बीमारी से ग्रस्त हो गया तो फिर उसका सिर्फ ट्रीटमेंट चलता है।
1: सही है, देखो
0: तो जरूरी ये है कि जैसे ही मौसम चेंज परिवर्तन होने लगे, बारिशों का मौसम हो तो हर जो है जिला लेवल पे और पंचायत लेवल पे सब जगह जो है चिकित्सा पशु चिकित्सालय उपलब्ध है, वहां जाके आप खुद भी उनको अवगत करा सकते हैं कि भाई हमारे पास इतने पशु हैं, हमें टीकाकरण करवाना है FMD का हो चाहे BQ का, ऐसा तो वो आपको पूरी तरीके से जानकारी देंगे और कितने माह पे लगता है कैसे लगता है सारा आपको समझाएंगे।
1: तो जी आप अपना बताया कि टीकाकरण कितनी बार लगे पशुओं का?
0: जैसे 6-6 महीने में ये लगता है ना, बारिशों के पहले जरूर इसको लगवाएं, 4 माह के ऊपर वाले जितने भी पशु हैं उन पे लग जाता है।
1: यानी कि अपन जैसे अपना पशुधन रहे गाय भैंस या और अन्य बकरियां वगैरह सब रहे तो वहाँ को मतलब समय के अनुसार ही टीकाकरण करवाना चाहिए।
0: हाँ, टीकाकरण आप समय के अनुसार करें। इवन ये भी रहता है कि जो सरकारी योजनाएं आती है उसमें भी जो है टीकाकरण की व्यवस्था रहती है, जो सरकारी जो कर्मचारी है वो भी गाँव में जाके जो है टीकाकरण करवाते हैं, तो कभी भी अगर आता है आपके पास कि भाई अस्पताल से है टीकाकरण है तो उनको जो है आप मना ना करें,
1: यानी कि टीका लगवा वो जरूरी
0: है, टीका लगवाना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये योजनाएं भी आती है हमारे पास जिसके लिए फिर हम हमारे जितने भी कर्मचारी उनको भेजते हैं गाँव में, अलग अलग गाँव में वो जाते हैं, पंचायत लेवल पे भी जो है जितने सब सेंटर्स बने हुए हैं अस्पताल बने हैं उनके भी कर्मचारी जाते हैं, पर अधिकतर कहा जाता है हमारे पास की कुछ लोग जो है टीकाकरण कराने में इच्छुक नहीं रहते हैं।
1: जी,
0: उनको ऐसा लगता है कि टीका लग जाएगा तो दूध कम हो जाएगा या हमारी जो है भैंस बीमार हो जाएगी या ऐसा, तो ऐसा नहीं है। अगर सरकारी कोई अगर आ रहा है तो आपके पशुओं के भले के लिए ही आ रहा है, आपके भले के लिए आ रहा है, तो टीकाकरण अवश्य कराएं। ठीक है, और अगर फिर भी आपको अगर कोई डाउट रहता है तो अपने आसपास जो भी सरकारी अस्पताल है सब सेंटर है, ठीक है, वहाँ उपकेंद्र नाम से रहते हैं,
1: जी जी,
0: वहाँ जाके आप इसकी जानकारी ले सकते हैं कि भाई सही में टीके लग रहे हैं, सरकार की तरफ से आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और उसके बाद अपना टीका जरूर लगवाएं,
1: लगवाना भी चाहिए। देखो किसाना के ताए और जागरूक होना चाहिए
0: भाई। अभी जैसे कि अभी ये योजना चल रही है मंगला पशु बीमा,
1: जी
0: जिसमें भी ये है कि अगर मौसमी बीमारी से या अचानक से पशुओं की मृत्यु हो जाती है तो उसमें भी आपको जैसे आप 1-1.5 लाख रुपए के आप भैंसे लेकर आते हैं, तो अगर आपने बीमा करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, बीमा करवा रखा है, तो आपको 40,000 तक रुपए जो है
1: किसानों को मिल जाता है,
0: किसानों को मिल जाता है। पर उसके लिए जरूरी है कि आप अपने जानवरों में जो है कड़ियां लगवाएं, टैग बोलते हैं, जो जैसा अपना एक नंबर रहता है आधार कार्ड, उसी तरीके से जानवरों के लिए भी एक ID है, तो उसको ये ना समझे कि हम पशु को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो एक तरीके से उनका आइडेंटिफिकेशन नंबर है जिससे उनकी पहचान होती है और रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन में जो है 3-4 फोटो खींचे जाएंगे जन आधार के और पशु के, 3-4 फोटोज के टैग नंबर के फोटो खींचे जाते हैं और फिर बीमा कंपनी बीमा कर देती है। ठीक है, और जो है अगर अचानक जो बीमा जिसका बीमा हो रखा है पशु का, अगर वो किसी अचानक से उसकी मौत हो जाती है, चाहे बिजली के उससे, जैसे अभी केस बढ़ेंगे बिजली से मौत हो जाना या वो कहीं लाइट के उससे हो जाना, ठीक है, या मौसमी बीमार अचानक मृत्यु हो जाती है, तो उसमें आप इसकी सूचना अगर आप पहुंचाते हैं अपने जिस जो भी आपका वो

0: बीमा कंपनी जो लेके गई है उनको अगर आप सूचना पहुंचाते हैं कि मेरा पशु मर गया है, मैंने बीमा करवा रखा था, तो आपको 40,000 तक मैक्सिमम दूध उत्पादन के हिसाब से 40,000 तक पैसे जो है रिफंड हो जाएंगे।
1: यानी कि अपने सीधे किसान के खाता में,
0: सीधे किसान के खाते में आते हैं। उसके लिए भी वो सारा खाता वगैरह वो सब लेते हैं, पासबुक वगैरह सारी जानकारी।
1: जी जी।
0: तो अभी ये योजना चल रही है और इसमें जो है अधिकतर ये देखा जा रहा है कि लोग इच्छुक नहीं है, वो टैगिंग नहीं करवाते। हमारे लिए टैगिंग इसलिए जरूरी है क्योंकि वो एक तरह का आपके पशु का पहचान नंबर है।
1: जी जी।
0: ठीक है, पहले आप अगर उसमें कड़ियां लगवाएंगे, टैग लगवाएंगे, उसी के बाद सारा प्रोसेस होगा।
1: यानी कि उनकी भी पहचान होती है। हाँ। जैसे अपने पशु रहे हो, जैसे भैंस रहे, गाय रहे, है ना, तो उनकी पहचान रहे हो वहाँ कड़ियां के माध्यम से।
0: तो वो कड़ी को अगर लगा भी देते हैं सरकारी कर्मचारी, तो अधिकतर क्या करते हैं पशुपालक, उन कड़ियों को काट देते हैं।
1: अच्छा, वो गलत बात
0: है, वो गलत है। नहीं तो अगर आपका पशु मर रहा है तो हम कैसे पहचानेंगे कि वो आपका पशु है? उस कड़ी से ही वो पहचान में आएगा कि ये, क्योंकि उस कड़ी के बाद ही पशुपालक का नाम, उसका जन आधार, वो सारा अटैच होता है।
1: यानी कि यह तो बहुत ही बड़े बात है। और देखो किरण मैम, एक और बात है कि वर्षा ऋतु में पशुओं का आहार में मतलब किस प्रकार से बदलाव आओ चाहिए, यानी कि मौसम का अनुकूल।
0: अब जैसे कि आपने देखा होगा अभी गर्मियों का मौसम चल रहा था, गर्मियों के मौसम में हरा चारा इतना उपलब्ध नहीं रहता
1: जी,
0: सूखे चारे पे। और ज्यादातर तो पशुपालकों को मैंने देखा है जैसे यहाँ पे वो भूसा ही खिलाते हैं, जैसे अब दूसरी लैंग्वेज में जैसे हड़त में सुगला बोलते हैं, तो वो जो है भूसे पे ही उनकी जो है सारे जानवर रहते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं। मतलब वो पूरा संतुलित आहार नहीं माना जाता उसको। संतुलित आहार के लिए आपको हरे चारे की भी जरूरत है, सूखे चारे की भी जरूरत है, खल बाटा जो आप दे रहे हैं उसकी भी जरूरत है। ठीक है, अगर जैसे गर्मी के मौसम में नहीं है तो आप जो सूखा चारा है उसको जो है किसी गड्ढे में डाल के और उसके ऊपर मतलब एक पूरा प्रोसेस होता है फर्मेंट करना, जैसे
1: यानी कि अपन जो भी हरा चारा बाजरा का रूप में, चरी का रूप में हरा चारा कटिंग कर दो वहाँ की,
0: कटिंग कर
1: और अपनी जैसे खाची रहे देसी भाषा में बोले हाड़ोती क्षेत्र में, तो मैं मिक्स मिला रहा अपने खिला सकता पशु।
0: हाँ, मिक्स करके आप खिला सकते हो, नहीं तो उसको थोड़े दिन के लिए आप उसको जो है पॉलीथिन से कोई घट्टे में भर के पॉलीथिन से ढक दो
1: जी,
0: तो वो थोड़ा फर्मेंट मतलब सड़ जाता
1: है, गलन सड़
0: खटासी जो है उसमें वो आएगी, जो वो उसको भी आप सूखे चारे के साथ मिला के उसे खिला सकते हैं।
1: यानी कि दूध उत्पादन के लिए अच्छा रहता है।
0: हाँ, अच्छा रहता है। ये तो हो गई गर्मी की बात। अब जैसे वर्षा ऋतु चालू हो गया है तो वर्षा ऋतु में जो है आप हरा चारा आपको मिलेगा, बरसीम मक्की की इस तरह के आपको चारे उपलब्ध हो जाएंगे, तो आप उनको जरूर खिलाएं और सूखे चारे के साथ मिक्स करके खिलाएं।
1: यानी कि अपन मान लो वर्षा ऋतु में हरा ही हरा चारा भी न खिलाना चाहिए। हाँ। ताकि बदलाव मतलब बार बार अपन
0: को, अगर आप हरा चारा बिल्कुल ही हरा खिलाएंगे तो जो है उसके दस्त लगने के जो है पतले पतला गोबर करेगी। हाँ, वो चांसेस ज्यादा रहता है। तो हमेशा बैलेंस संतुलित आहार देने की कोशिश करें, हरा चारा ज्यादा दें, सूखा।
1: और जैसे मान लो वर्षा ऋतु में पशुओं में रख रखाव यानी कि उत्पादक की जो भी क्षमता रहे वही अपन कैसे बढ़ा सका जा?
0: सबसे पहले तो जैसे मैंने ये बताया कि जो जितने भी आप पहले देखें कि स्वस्थ पशु कितने हैं, स्वस्थ, अगर कोई भी आपको बीमार पशु लग रहा है तो उसको जो है स्वस्थ से अलग करने की कोशिश करें, अलग उसका खाना पीना हो, अलग ही उसका पानी। कभी भी बीमार और स्वस्थ को एक साथ नहीं रखें, नहीं तो जो जिस तरह का मौसम है उस दौरान ये बीमारियां ज्यादा फैलती है। अगर एक ही जगह खा रहे हैं उसी की, उसमें लार भी गिरेगी, वहीं वो गोबर भी करेगा सब, तो इससे इन्फेक्शन होने के ज्यादा चांस होते हैं।
1: यानी कि अपना बीमार पशु और वो स्वस्थ पशु रह जाए वहां से अलग कर देना चाहिए।
0: हाँ, उनका खाना पीना आप अलग रखें, जब वो स्वस्थ हो जाए तब भले ही आप उसको उनके साथ रख सकते हैं। एक ये है, कृमि नाशक दवाइयों का नियमित रूप से उनको देते रहे। परजीवी, जैसे अगर पानी इकट्ठा हो रहा है बारिश का है तो उनमें परजीवी का संक्रमण बहुत ज्यादा बढ़ जाता है।
1: जी जी।
0: तो उसके लिए भी, छिड़काव के लिए भी हमारे पास दवाइयां रहती है, साइपरमेथ्रिन वगैरह आता है, तो उसका आप छिड़काव कर सकते हैं, पशुओं पे भी कर सकते हैं और जो है अपने बाड़े में भी कर सकते हैं, ताकि जो इनका बढ़ोतरी ना हो परजीवी।
1: हाँ, यानी कि जो भी ये बीमारी फैल बस मतलब रुक सके जो। और जैसे मान लो अपन इस मौसम का प्रजनन से संबंधित जो भी समस्या रहे चाहे अपना अंतरजीवी, तो या काई रहे वो चाहे अंतरजीवी।
0: अंतरजीवी तो मैंने बताया ना, जो पेट के कीड़े होते हैं या जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उसके लिए तो दवाइयां रहती है कि आप उसे नियमित रूप से दे सकते हैं। ठीक है, परजीवी के लिए मैंने आपको बताया छिड़काव वगैरह, या फिर अगर हो ही गया है बहुत ज्यादा ही चीचड़े वगैरह हो गए हैं तो आप उसके लिए इंजेक्शन भी लगवा सकते हैं, वो अस्पताल, वो पशु चिकित्सालय में आप ले जाके करवा सकते हैं।
1: जी जी।
0: बाकी प्रजनन संबंधी का जो है एज सच मौसम से उसका कोई वो नहीं है, बस ये रहता है कि जैसे अगर उस टाइम पे अगर कोई गाय वगैरह ब्याही है।
1: जी।
0: ठीक है, और आपने इतना उचित रख रखाव नहीं कर रखा, पानी इकट्ठा हो रखा है जगह जगह जो है कि परजीवी हो रहे हैं।
1: जी जी।
0: तो वो जो है अपने नॉर्मल

0: फल उसमें जल्दी नहीं आ पाएगी, तो आपको ऐसा जो इसका रख रखाव करना है जहाँ सूखा हवादार जो है पशुशाला वो हो, पानी इकट्ठा ना होने दें, और जो है उसका ध्यान रखें भाई किस तरह का डिस्चार्ज आ रहा है, कहीं खराब तो नहीं है, सही है, तो उसका ऋतु से कोई वो नहीं है, बट आपको रख रखाव सही रखना
1: पड़ेगा। और देखो वर्षा ऋतु में अपन देखभाल आवाज चाहे की तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, बीमारियों से बचाव कर लेकर अपन को साफ सुथरी जगह रहना
0: चाहिए, सुथरी स्वच्छता बहुत ज्यादा
1: जरूरी रहे, क्यों क्यों अपना जानवर आ गई ना मनुष्य के ताए भी बीमारियां हो जाओ तो यहाँ को ध्यान रखो। और जैसे मान लो अक्सर अपनी देखभाल में आओ चाहे की स्वास बहुत आक्रामक हो जाओ तो वहाँ के लेकर अपनी काय काय रोकथाम करना पड़े,
0: जैसे की जब भी ये बारिशों का मौसम चालू होता है तो देखना आता है कि जितने भी स्वान हैं कुत्ते हैं ये बहुत ज्यादा आक्रामक हो गए,
1: जी जी
0: ठीक है, कोई भी गाड़ी जा रही तो उनके पीछे दौड़ रहे, तो जरूरी नहीं है कि उनमें जो है रेबीज जो बीमारी है जो मतलब कुत्ते के काटने से इंसानों में भी हो जाती है,
1: जी जी,
0: तो जरूरी नहीं कि वो रेबिड हो, पर वो जो है इस मौसम में वो थोड़ा आक्रामक हो ही जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो है अगर ऐसा आपको दिखता है कोई भी जानवर आपके पीछे भाग रहा है तो बिल्कुल आप भागे नहीं, क्योंकि उनके सिम्टम होता है अगर वो रेबिड है तो वो आप कोई भी चलती हुई गाड़ी है कोई भी तेज दौड़ता हुआ रहेगा तो उसके पीछे वो दौड़ेगा,
1: जी जी,
0: आप थोड़ी देर रुक जाए और आप अपने आप को सुरक्षित
1: रख सका। हाँ, और जैसे मान लो उनको मतलब अपनी सुझाव के लेकर अपनी काय काय करना चाहिए,
0: सुझाव ये कि अगर फिर भी बाय चांस आपको कोई स्वान काट लेता है
1: जी
0: ठीक है, तो उस केस में सबसे पहले आप उस घाव को जो है तेज बहते हुए पानी में तेज नल चला के उस पानी में उसको धोएं।
1: जैसे चालता चालता आप किसान भाइयों को ताई मतलब सलाह के तौर पर काहे के बुझाओ जो पशु,
0: सबसे पहले तो स्वच्छता का ध्यान रखें, बीमार पशुओं को और स्वस्थ पशुओं को अलग रखें, ठीक है, अपने जो आपने जहाँ भी जो भी बाड़ा है जहाँ पे आपने अपने पशुओं को रखा हुआ है उनमें जो है कीटनाशक जो दवाइयाँ रहती हैं जो आपने बाड़े में भी छिड़काव करवा सकते हैं ताकि इनका जो है बढ़ोतरी ना हो इनकी जनसंख्या में, ठीक है, समय समय पे अपने जो पशुओं को है कृमिनाशक दवाइयाँ और जो ये छिड़काव कराते रहे शरीर पे ये उपलब्ध कराएं, टीकाकरण जरूर कराएं, जैसे वर्षा ऋतु स्टार्ट होने से पहले आप FMD BQHS का इसकी जानकारी आप निकट जो आपके पशु चिकित्सालय हैं उपकेंद्र हैं वहां जाके आप जानकारी ले सकते हैं, और जो है बीमा जरूर करवाएं,
1: जी जी,
0: इससे अगर पशु की कम हो जाएगा, अगर आप बीमा नहीं कराते हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा,
1: जी जी
0: ठीक है, इस तरीके, तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी, राम।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है, सूचना शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी। आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: आकाशवाणी के 90 गौरवशाली वर्ष अटूट विश्वास अनवरत साथ।
1: संजू देखो, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की बात करा तो यह बहुत बढ़िया योजना है और सरकार के द्वारा किसानों के तहत यह जो योजना है अनको जरूर से अपना साथ है लाभ लेना चाहे।
2: और देखो यह किसान की योजना रहे जैसे मान लो कृषि भूमि को स्वास्थ्य को मतलब अपन बढ़ावा के लेके या सरकार की तरफ से रिपोर्ट कार्ड बनाए जाओ चे, इसे मतलब अपनी मिट्टी की जांच करी जाओ चे, तो ये मिट्टी की जांच करवा से जो भी अपना पोषक तत्व रह चे उमा मौजूद तो वहाँ का पोषक तत्व के बारे में अपनी पता चल जाओ चे। और जैसे मान लो पोटास रह चे, जिंक रह चे, आयरन रह चे, नाइट्रोजन रह चे, फास्फोरस रह चे, तो यहाँ का अनुकूल रहते हुए अपना जो भी मृदा कार्ड स्वास्थ्य रह चे वहाँ में अपने अधिक से अधिक

0: अपन ये आकर्षक आचा
1: सही
0: उपलब्ध।
1: बात है। खेवा को मतलब यूँ है कि अगर आपकी भूमि में कहीं भी प्रकार का तत्वों की अगर कमी है, फसल में उत्पादन नहीं हो पा रही है, बार बार फसल छोटी रह रही है या सूख जा रही है, कई भी बीमारी जो बार बार आ रही है, तो ज़रूर से आप मिट्टी की जांच कराओ। अगर मिट्टी की जांच कराओ तो उनमें आपके कहीं पतो लगेगा कि भाई आपकी ज़मीन में कई प्रकार का उर्वरक की कमी है, कई पोषक तत्वों की कमी है, फिर आपन उन्हें जो है आप पूरा करो। तो संजू देखो, समय तो अपने पास कम है और वापस है अपना साथियों के लिए मनोरंजन की ओर चलना, और एक और जो है लोकगीत अपना साथियों सुनावा।
0: सुनाओ यो लोक गीत।

0: लोक गीत बार आपने सभी ने सुनियो और आनंद भी आयो होगा। और संजू देखो अब आपनों कृषक चौपाल को भी कार्यक्रम समाप्ति को आ रहे है, तो दियो आपका साथी धन्नालाल नागर
1: और संजू को दो आ गया
0: राम राम, राम।

0: अभी आप सुन रहे थे कृषक चौपाल, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब चलते हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रमों की ओर, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: हवा महल।

0: हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी।
1: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं श्रृंखला सुनो कहानी के तहत मुंशी प्रेमचंद की कहानी विश्वास का दूसरा भाग। वाचक स्वर अमरकांत दुबे का, प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की।
2: अभी तक आपने सुना मिस राधिका जोशी, बंबई के सभ्य समाज की एक बहुत ही रसूखदार और प्रभावशाली महिला, जिसके बारे में सारा नगर ही नहीं सारे प्रांत का बच्चा बच्चा जानता था कि बंबई के गवर्नर मिस्टर जोहरी मिस जोशी के बिना दामों के गुलाम हैं। मिस जोशी की आंखों का इशारा उनके लिए नादिरशाही हुक्म है। बंबई की व्यवस्थापिका सभा ने अनाज पर कर लगा दिया था। इसके विरोध में जनता ने एक विराट सभा का आयोजन किया था। सभा के सभापति आप्टे, जो कि 30-35 वर्ष का दुबला पतला दुर्बल निस्तेज सा प्राणी था, उसमें न जाने क्या जादू था कि समस्त जनता उसकी पूजा करती थी। आप्टे कर लगाए जाने का तो विरोधी था ही, वो गवर्नर मिस्टर जोहरी का भी विरोधी था। प्रशासन द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ सभा में बोलते बोलते आप्टे ने मिस्टर जोहरी और मिस जोशी के विरुद्ध भी बहुत ही कड़ी टिप्पणी कर दी। मिस्टर जोहरी ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिए जाने का हुक्म जारी कर दिया, लेकिन मिस जोशी ने मिस्टर जोहरी को आश्वासन दिया कि आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए, आप्टे को मैं संभाल लूंगी। अब आगे सुनिए। प्रातःकाल मिस जोशी अपने भवन से निकली, लेकिन उसके वस्त्र बहुत साधारण थे और आभूषण के नाम पर शरीर पर एक धागा भी न था। अलंकार विहीन होकर उसकी छवि स्वच्छ निर्मल जल की भांति और भी निखर गई। उसने सड़क पर आकर एक तांगा लिया और चल पड़ी। आप्टे का मकान गरीबों के एक दूर के मोहल्ले में था। तांगे वाला मकान का पता जानता था, कोई दिक्कत ना हुई। मिस जोशी जब मकान के द्वार पर पहुंची तो न जाने क्यों उनका दिल धड़क रहा था। उसने कांपते हुए हाथों से कुंडी खटखटाई। एक अधेड़ औरत ने निकलकर द्वार खोल दिया। मिस जोशी उस घर की सादगी देखकर दंग रह गई। एक किनारे चारपाई पड़ी हुई थी, एक टूटी अलमारी में कुछ किताबें चुनी हुई थीं, फर्श पर लिखने का डेस्क था और एक रस्सी की अलगनी पर कुछ कपड़े लटक रहे थे। कमरे के दूसरे हिस्से में एक लोहे का चूल्हा था और खाने के बर्तन पड़े हुए थे। एक लंबा तड़ंगा आदमी, जो उसी अधेड़ औरत का पति था, बैठा एक टूटे हुए ताले की मरम्मत कर रहा था और एक 5-6 वर्ष का तेजस्वी बालक आप्टे की पीठ पर चढ़ने के लिए उसके गले में हाथ डाल रहा था। आप्टे इसी लोहार के साथ उसी के घर में रहते थे। समाचार पत्रों में लेख लिखकर जो कुछ मिलता उसे दे देते और इस भांति गृह प्रबंध की चिंताओं से छुट्टी पाकर जीवन व्यतीत कर रहे थे। मिस जोशी को देखकर आप्टे जरा चौंके, पर खड़े होकर उनका स्वागत किया और सोचने लगे कि कहां बिठाऊं। अपनी दरिद्रता पर आज उन्हें जितनी लज्जा आई उतनी और कभी ना आई थी। मिस जोशी उनका असमंजस देखकर चारपाई पर बैठ गईं और जरा रुखाई से बोली, मैं बिना बुलाए आपके यहां आने के लिए क्षमा मांगती हूं, किंतु

काम ऐसा जरूरी था कि मेरे आए बिना पूरा ना होता। क्या मैं एक मिनट के लिए आपसे एकांत में मिल सकती हूं? आपटे ने जगन्नाथ की ओर देखकर कमरे से बाहर चले जाने का इशारा किया। उसकी स्त्री भी बाहर चली गई, केवल बालक रह गया। वो मिस जोशी की ओर बार बार उत्सुक आंखों से देखता था, मानो पूछ रहा हो कि तुम आपटे दादा की कौन हो। मिस जोशी ने चारपाई से उतरकर जमीन पर बैठते हुए कहा, आप कुछ अनुमान कर सकते हैं कि मैं इस वक्त यहां क्यों आई हूं? आपटे ने झेपते हुए कहा, आपकी कृपा के सिवा और क्या कारण हो सकता है? मिस जोशी, नहीं, संसार इतना उदार नहीं हुआ है कि आप जिसे गालियां दें वो आपको धन्यवाद दे। आपको याद है कि कल आपने अपने व्याख्यान में मुझ पर क्या क्या आक्षेप किए थे? मैं आपसे जोर देकर कहती हूं कि वे आक्षेप करके आपने मुझ पर घोर अत्याचार किया है। आप जैसे सहृदय शीलवान विद्वान आदमी से मुझे ऐसी आशा न थी। मैं अबला हूं, मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। क्या आपको उचित था कि एक अबला पर मिथ्यारोपण करें? अगर मैं पुरुष होती तो आपसे ड्यूल खेलने का आग्रह करती। अबला हूं इसलिए आपकी सज्जनता को स्पर्श करना ही मेरे हाथ में है। आपने मुझ पर जो लांछन लगाए हैं वे सर्वथा निर्मूल हैं। आपटे ने दृढ़ता से कहा, अनुमान तो बाहरी प्रमाणों से किया जाता है। मिस जोशी ने कहा, बाहरी प्रमाणों से आप किसी के अंतःस्थल की बात नहीं जान सकते। आपटे, जिसका भीतर बाहर एक न हो उसे देखकर भ्रम में पड़ जाना स्वाभाविक है। मिस जोशी ने उत्तर दिया, हां तो वो आपका भ्रम है। मैं चाहती हूं कि आप उस कलंक को मिटा दें जो आपने मुझ पर लगाया है। आप इसके लिए प्रायश्चित करेंगे? अगर ना करूं तो मुझसे बड़ा दुरात्मा संसार में ना होगा। मिस जोशी ने कहा, आप मुझ पर विश्वास करते हैं? आपटे ने कहा, मैंने आज तक किसी रमणी पर अविश्वास नहीं किया। मिस जोशी, क्या आपको यह संदेह है कि मैं आपके साथ कौशल कर रही हूं? आपटे ने मिस जोशी की ओर अपने सदैव सजल सरल नेत्रों से देखकर कहा, बाई जी, मैं गंवार और अशिष्ट प्राणी हूं, लेकिन नारी जाति के लिए मेरे हृदय में जो आदर है वो श्रद्धा से कम नहीं जो मुझे देवताओं पर है। मैंने अपनी माता का मुख नहीं देखा, यह भी नहीं जानता कि मेरा पिता कौन था, किंतु जिस देवी के दया वृक्ष की छाया में मेरा पालन पोषण हुआ उनकी प्रेम मूर्ति आज तक मेरी आंखों के सामने है और नारी के प्रति मेरी भक्ति को सजीव रखे हुए है। मैं उन शब्दों को मुंह से निकालने के लिए अत्यंत दुखी और लज्जित हूं जो आवेश में निकल गए, और मैं आज ही समाचार पत्रों में खेद प्रकट करके आपसे क्षमा की प्रार्थना करूंगा। मिस जोशी को अब तक अधिकांश स्वार्थी आदमियों से ही साबिका पड़ा था, जिनके चिकने चुपड़े शब्दों में मतलब छिपा हुआ था। आपटे के सरल विश्वास पर उसका चित्त आनंद से गदगद हो गया। शायद वो गंगा में खड़ी होकर अपने अन्य मित्रों से यह कहती तो उसके फैशनेबल मिलने वालों में से किसी को उस पर विश्वास ना आता। सब मुंह के सामने तो हां हां करते, पर बाहर निकलते ही उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते। उन कपटी मित्रों के सम्मुख ये आदमी था जिसके शब्द शब्द में सच्चाई झलक रही थी और जो उसके अंतःस्थल से निकलते हुए मालूम होते थे। आपटे उसे चुप देखकर किसी और ही चिंता में पड़े हुए थे। उन्हें भय हो रहा था कि अब मैं चाहे कितनी भी क्षमा मांगूं, मिस जोशी के सामने कितनी भी सफाइयां पेश करूं, मेरे आक्षेपों का असर कभी ना मिटेगा। इस भाव ने अज्ञात रूप से उन्हें अपने विषय की गुप्त बातें कहने की प्रेरणा की जो उन्हें उसकी दृष्टि में लघु बना दे, जिससे वो भी उन्हें हेय समझने लगे, उनको संतुष्ट हो जाए कि यह भी कलुषित आत्मा है। बोले, मैं जन्म से अभागा हूं देवी, माता पिता का तो मुंह देखना ही नसीब ना हुआ। जिस दयाशील महिला ने मुझे आश्रय दिया था वो भी मुझे 13 वर्ष की अवस्था में अनाथ छोड़कर परलोक सिधार गई। उस समय मेरे सिर पर जो कुछ भी थी उसे याद करके इतनी लज्जा आती है कि किसी को मुंह न दिखाऊं। मैंने धोबी का काम किया, मोची

0: का काम किया, घोड़े की साइसी की, एक होटल में बर्तन मांजता रहा, यहां तक कि कितनी ही बार खुदा से व्याकुल होकर भीख भी मांगी। मजदूरी करने को बुरा नहीं समझता, आज भी मजदूरी ही करता हूं, भीख मांगनी भी किसी किसी दशा में क्षम्य है। लेकिन मैंने उस अवस्था में ऐसे ऐसे कर्म किए जिन्हें कहते लज्जा आती है, चोरी की, विश्वासघात किया, यहां तक कि चोरी के अपराध में कैद की सजा भी पाई। मिस जोशी ने सजल नयन होकर कहा, आप ये सब बातें मुझसे क्यों कह रहे हैं? मैं इनका उल्लेख करके आपको कितना बदनाम कर सकती हूं, इसका आपको भय नहीं? आपटे ने हंसकर कहा, नहीं, आपसे मुझे भय नहीं है। मिस जोशी ने कहा, अगर मैं आपसे बदला लेना चाहूं तो? आपटे बोले, जब मैं अपने अपराध पर लज्जित होकर आपसे क्षमा मांग रहा हूं तो मेरा अपराध रहा ही कहां जिसका आप मुझसे बदला लेंगे? इससे तो मुझे भय होता है कि आपने मुझे क्षमा किया ही नहीं। लेकिन यदि मैंने आपसे क्षमा न मांगी होती तो आप मुझसे बदला ले सकती थी। बदला लेने वाले की आंखें यूं सजल नहीं हो जाया करती। मैं आपको कपट करने के अयोग्य समझता हूं। आप यदि कपट करना चाहती तो यहां कभी ना आती। मैं आपका भेद लेने के लिए ही आई हूं, तो शौक से लीजिए। मैं बतला चुका हूं कि मैंने चोरी के अपराध में कैद की सजा पाई थी। नासिक के जेल में रखा गया था मुझे। मेरा शरीर दुर्बल था, जेल की कड़ी मेहनत ना हो सकती थी और अधिकारी लोग मुझे काम चोर समझकर बेंतों से मारते थे। आखिर एक दिन मैं रात को जेल से भाग खड़ा हुआ। ओ, आप तो छिपे रुस्तम निकले। ऐसा भागा कि किसी को खबर ना हुई। आज तक मेरे नाम वारंट जारी है और 500 रुपए का इनाम भी। तब तो मैं आपको जरूर पकड़ा दूंगी। तो फिर मैं आपको अपना असल नाम भी बतला देता हूं। मेरा नाम दामोदर मोदी है। यह नाम तो पुलिस से बचने के लिए रख छोड़ा है। बालक अब तक तो चुपचाप बैठा हुआ था। मिस जोशी के मुंह से पकड़ाने की बात सुनकर वो सजग हो गया। उन्हें डांट कर बोला, हमारे दादा को कौन पकड़ेगा? मिस जोशी ने कहा, सिपाही, और कौन? बालक फिर बोला, हम सिपाही को मारेंगे। ये कहकर वो कोने से अपने खेलने का डंडा उठा लाया और आपटे के पास वीरोचित भाव से खड़ा हो गया, मानो सिपाहियों से उनकी रक्षा कर रहा हो। मिस जोशी ने कहा, आपका रक्षक तो बड़ा बहादुर मालूम होता है। आपटे बोले, इसकी भी एक कथा है। साल भर हो गया, ये लड़का खो गया था, मुझे रास्ते में मिला। मैं पूछता पूछता इसे यहां लाया। उसी दिन से इन लोगों से मेरा प्रेम इतना हो गया कि मैं इसके साथ रहने लगा। मिस जोशी बोली, आप अनुमान कर सकते हैं कि आपका वृत्तांत सुनकर मैं आपको क्या समझ रही हूं? आपटे ने बोला, वही जो मैं वास्तव में हूं, कमीना, धूर्त। मिस जोशी बोली, नहीं, आप मुझ पर फिर अन्याय कर रहे हैं। पहला अन्याय तो क्षमा कर सकती हूं, यह अन्याय क्षमा नहीं कर सकती। इतनी प्रतिकूल दशाओं में पड़कर भी जिसका हृदय इतना पवित्र, इतना निष्कपट, इतना सदैव हो, वो आदमी नहीं देवता है। भगवान, आपने मुझ पर जो आक्षेप किए वो सत्य हैं। मैं आपके अनुमान से कहीं ज्यादा भ्रष्ट हूं। मैं इस योग्य भी नहीं कि आपकी ओर ताक सकूं। आपने अपने हृदय की विशालता दिखाकर मेरा असली स्वरूप मेरे सामने प्रकट कर दिया। मुझे क्षमा कीजिए, मुझ पर दया कीजिए। ये कहते कहते मिस जोशी उनके पैरों पर गिर पड़ी। आपटे ने उसे उठा लिया और बोले, मिस जोशी, मिस जोशी, ईश्वर के लिए मुझे लज्जित न कीजिए।
1: श्रृंखला सुनो कहानी के तहत मुंशी प्रेमचंद की कहानी विश्वास का दूसरा भाग अभी आपने सुना। वाचक स्वर अमरकांत दुबे का। इस कार्यक्रम को तैयार करने में प्रस्तुति सहयोग रहा आकांक्षा सिंह का। प्रस्तुति हर्षवर्धन गवई की।
2: सुनो कहानी।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल FM 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं लता मंगेशकर इला अरुण की आवाज़ में लम्हे फिल्म के इस गीत से, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने, संगीत दिया शिवहरी ने।

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

उदित नारायण की आवाज़ में आइए अब सुनते हैं दस्तक फिल्म का गीत। जावेद अख्तर के लिखे इस गीत को संगीत दिया राजेश रोशन ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए, आपको सुनवाते हैं मृत्यु दंड फिल्म का गीत। आवाज़ है कुमार शानू, साधना सरगम की, रचना जावेद अख्तर की, संगीत आनंद मिलन का।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत। अब सुनिए समाचार संध्या, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान। फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। और तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने रजत पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की यात्रा पूरी कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। न्यूजीलैंड से स्वदेश लौटते हुए श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के सामने अवसरों की अपार संभावनाएं हैं और वे अपनी साझेदारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी ऐतिहासिक 2 दिवसीय न्यूजीलैंड यात्रा पूरी कर भारत के लिए रवाना हो गए हैं। 4 दशकों से अधिक समय बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यह पहली द्विपक्षीय यात्रा रही, जिसने दोनों देशों के संबंधों को नई गति दी। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के बीच व्यापक वार्ता हुई। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, पर्यटन, खेल, आपदा प्रबंधन तथा डेयरी एवं पशुपालन सहित 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री लक्सन ने भारत को न्यूजीलैंड का विश्वसनीय मित्र बताते हुए भारतीय समुदाय के योगदान और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री लक्सन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह यात्रा भारत न्यूजीलैंड संबंधों में नए अध्याय की शुरुआत है।
3: भारत और न्यूजीलैंड के रिश्ते में यादें भी हैं, दोस्ती भी है, वैल्यूज भी है और एक कमिटमेंट भी है। भारत न्यूजीलैंड की यही वाका एक नई यात्रा पर निकलने के लिए तैयार है। हमारे सामने अवसरों से भरा खुला समुद्र है, हवाएं हमारे साथ है, समंदर की विशाल लहरें हमारे साथ है, इच्छा शक्ति का नीला आसमान हमारे साथ है, पाने को काफी कुछ है और मैं जानता हूँ हम सफल होंगे।
2: मंजुमीना, आकाशवाणी समाचार के लिए ऑकलैंड, न्यूजीलैंड।
1: पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के लिए समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए 9 सदस्यीय समिति का गठन किया है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई इसकी अध्यक्ष होंगी। मेघालय के पूर्व राज्यपाल तथागत रॉय भी समिति के सदस्यों में शामिल हैं। 2 जुलाई को मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता विधेयक के मसौदे की जांच के लिए समिति गठित करने का निर्णय लिया गया था। एक राष्ट्र एक चुनाव पर संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष सांसद पीपी चौधरी ने कहा है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से शासन व्यवस्था मजबूत होगी, खर्च कम होगा और देश की अर्थव्यवस्था को लाभ होगा। गोवा में मीडिया से बातचीत में श्री चौधरी ने कहा कि सभी प्रमुख राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व करने वाली 41 सदस्यीय समिति सरकारों, राजनीतिक दलों, संवैधानिक विशेषज्ञों, नागरिक समाज और अन्य हितधारकों के विचार जानने के लिए राज्यों का दौरा कर रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पर्यटकों को ले जा रही एक स्पीड बोट के आज वियतनाम के फुक्वोक द्वीप के पास पलट जाने से 15 भारतीय पर्यटकों की मौत हो गई। वियतनाम स्थित भारतीय दूतावास ने पुष्टि की है कि मृतकों में 13 पुरुष और 2 महिला

0: नहीं शामिल है। दूतावास ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में मृतकों की सूची साझा करते हुए कहा कि ये नाम वियतनामी अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। दूतावास के अनुसार मृतकों में से 10 तमिलनाडु से, 3 आंध्र प्रदेश से और 2 केरलम से थे। नाव में 32 भारतीय पर्यटकों, 3 चालक दल के सदस्यों और 1 परिचारक सहित कुल 36 लोग सवार थे। 17 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों सहित 21 लोगों को बचा लिया गया और अस्पतालों में भर्ती कराया गया। 2 जीवित बचे लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें गहन चिकित्सा देखभाल दी जा रही है। एक रिपोर्ट।
1: 32 भारतीय पर्यटकों और 4 चालक दल के सदस्यों को ले जा रही यह नाव होन में रूत नोगोई द्वीप से लगभग 400 मीटर दूर पलट गई, जिसके बाद बचाव अभियान शुरू किया गया। हनोई स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि खोज और बचाव अभियान जारी है। कुछ घंटे पहले हुई इस दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। वहीं प्रभावित परिवारों को जानकारी और सहायता प्रदान करने के लिए हो ची मिन्ह सिटी स्थित भारतीय दूतावास में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। यहां 8436789185523714 और 8433452414 नंबरों से संपर्क किया जा सकता है। आकाशवाणी समाचार के लिए समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नागरिकों के साथ हुई इस दुखद नाव दुर्घटना पर शोक व्यक्त किया है। अपने संदेश में उपराष्ट्रपति ने घायलों के शीघ्र और पूर्ण स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने व्यक्तित्व निर्माण में पुस्तकालयों की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख करते हुए युवा पीढ़ी से पुस्तकालयों से जुड़ने की अपील की है। आज नई दिल्ली में जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन करते हुए उन्होंने राष्ट्र निर्माण में पुस्तकालयों की भूमिका का उल्लेख किया और कहा कि वे आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जन समुदाय में देश की संस्कृति और ज्ञान के प्रसार का सशक्त माध्यम हैं। एक रिपोर्ट।
2: केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जयप्रकाश नारायण सार्वजनिक पुस्तकालय में 32,000 से अधिक पुस्तकों का संग्रह है। उन्होंने कहा कि पुस्तकालय में शोधकर्ताओं के लिए समर्पित सुविधाएं, एक आधुनिक बहुउद्देशीय सभागार, समकालीन पाठन क्षेत्र, बाल क्षेत्र, एक शोध केंद्र और 1 करोड़ ऑनलाइन पुस्तकों तक पहुंच प्रदान करने वाला एक ई पुस्तकालय मौजूद है। पुस्तकालय में हर स्थान पर मुफ्त वाईफाई उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि कई मॉनिटर भी लगाए गए हैं, जिससे आगंतुक अध्ययन के दौरान नोट्स ले सकते हैं, सामग्री डाउनलोड कर सकते हैं तथा अपने विचारों को और विकसित कर सकते हैं। पुस्तकालय अत्याधुनिक RFID आधारित पुस्तक प्रबंधन प्रणाली से सुसज्जित है। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना ने देश भर में 2 लाख से ज्यादा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को ऋण मंजूर करने का अहम पड़ाव पार कर लिया है। योजना के अंतर्गत 20,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश हुआ है और लगभग 11 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। नई दिल्ली में आज विशेष कार्यक्रम में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि ये उपलब्धि भारत की खाद्य प्रसंस्करण विकास यात्रा के अगले चरण के लिए मजबूत आधार है। श्री पासवान ने योजना के तहत मिलने वाली सीड कैपिटल की सहायता का भी उल्लेख किया। इसके माध्यम से 4,18,000 से ज्यादा स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की मदद की गई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना के संगारेड्डी जिले के नंदीगामा क्षेत्र में स्थित मेधा रेल कोच कलपुर्जा निर्माण सुविधा स्थल का निरीक्षण किया। 375 एकड़ भूभाग में फैली ये विशाल औद्योगिक इकाई रेलवे के आधुनिकीकरण में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित करती है। अपनी यात्रा के दौरान श्री वैष्णव ने मेक इन इंडिया पहल के एक महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में निजी क्षेत्र के उद्यमों को बढ़ावा देने संबंधी सरकार की वचनबद्धता पर बल दिया। आज विश्व जनसंख्या दिवस है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा है कि स्वैच्छिक परिवार नियोजन, जागरूक निर्णय और स्वस्थ परिवार समावेशी तथा सतत विकास की मजबूत नींव है। सोशल मीडिया संदेश में उन्होंने कहा कि इस वर्ष का विषय है मां और बच्चे के कल्याण के लिए गर्भधारण के बीच स्वस्थ अंतराल और नियोजित पितृत्व। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने विश्व जनसंख्या दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतियों पर मासिक वेबिनार श्रृंखला का शुभारंभ किया है। इस पहल का उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वास्थ्य सेवा नवाचारों को साझा करना और उनका विस्तार करना है।

0: परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में ब्रिक्स देशों के परिवहन मंत्रियों की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। श्री गडकरी ने बताया कि बैठक में वैकल्पिक जैव ईंधन तथा प्रदूषण मुक्त प्रौद्योगिकियों के माध्यम से सड़क, रेल, विमानन और जल परिवहन को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उपायों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि सहयोग को और मजबूत करने के लिए ब्रिक्स मंत्री स्तरीय घोषणा 2026 भी अपनाई गई।
1: ट्रांसपोर्ट सेक्टर में विशेष रूप से हमारी रोड सेक्टर, रेलवे, जलमार्ग और एविएशन, इस क्षेत्र में कार्बन न्यूट्रल हम कैसे बने, अल्टरनेटिव और बायोफ्यूल का भी उपयोग कैसे करें और प्रदूषण से तो मुक्ति मिलेगी भी, और उसके साथ साथ जो नई नई टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, रिसर्च है, अलग अलग ब्रिक्स देशों में एक दूसरे में कैसे कोऑपरेशन करें, कोऑर्डिनेशन निर्माण करें, इसके बारे में एक रेजोल्यूशन पास हुआ है और उसमें आगे की नीति भी तय हुई है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। मौसम विभाग ने अगले 4-5 दिनों में देश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। इन इलाकों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और ओडिशा शामिल हैं। इस बीच विभाग ने कल असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम और बिहार में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिनों में बारिश वाले इलाकों के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ आंधी तूफान आने की संभावना है। तटीय आंध्र प्रदेश में कल लू की स्थिति हो सकती है। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के बाद महाराष्ट्र में खरीफ फसल की बुआई में तेजी आई है। कृषि आयुक्त कार्यालय के अनुसार 6.51 हेक्टेयर पर बुआई पूरी हो चुकी है। इस बुवाई में 7 जुलाई तक गन्ने को छोड़कर राज्य के 14.44 करोड़ हेक्टेयर औसत क्षेत्र के 45% हिस्से को सम्मिलित किया गया है। गन्ने की खेती सहित 6.58 करोड़ हेक्टेयर में बुवाई और रोपाई का काम पूरा हो चुका है। ये कुल क्षेत्र का 42% है। तूफान बावी के चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ने के कारण चीन में एहतियातन 6 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। ये तूफान जापान के साकिशिमा द्वीपों और उत्तरी ताइवान से गुजरने के बाद अब चीन के लिए खतरा बना हुआ है। मेघालय अनानास महोत्सव 2026 का चौथा संस्करण नई दिल्ली के दिल्ली हाट में शुरू हो गया है। इसमें बाजार संपर्क को बढ़ावा देने के लिए राज्य के अनानास उत्पादकों को प्रदर्शित किया जा रहा है। और अब खेल खबरें। फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल मुकाबले में आज देर रात 2:30 बजे नॉर्वे का सामना इंग्लैंड से होगा। दूसरे मुकाबले में कल सुबह 6:30 बजे मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड आमने सामने होंगे। फ्रांस और स्पेन पहले ही सेमीफाइनल में पहुंच चुके हैं। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम, प्रीतिका प्रदीप और चिकिता तनिपार्थी की टुकड़ी ने आज तीरंदाजी विश्व कप के चौथे चरण में रजत पदक अपने नाम किया। टीम को महिला कंपाउंड टीम स्पर्धा के फाइनल में कोलंबिया से हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रीतिका प्रदीप ने व्यक्तिगत महिला कंपाउंड में कांस्य पदक जीता। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के फाइनल में चेकिया की कैरोलिना मुखोवा और लिंडा नोस्कोवा आमने सामने हैं। वहीं पुरुष डबल्स के फाइनल में ब्रिटेन के हेनरी पैटन और फिनलैंड के हैरी हेलियावारा ने क्रोएशिया के मटे पाविक और अल साल्वाडोर के मार्सेलो अरेवालो की जोड़ी को 7-6, 7-6 से हराकर पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने इंग्लैंड के साथ 5 T20 मैचों की श्रृंखला का अंतिम मुकाबला साउथहैम्पटन में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 16 ओवर में 1 विकेट पर 210 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने श्रृंखला में 3-0 की अजेय बढ़त हासिल कर रखी है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच लंदन के ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदान पर खेला जा रहा है। दूसरे दिन आज भारत ने अपनी दूसरी पारी में ताजा समाचार मिलने तक बिना विकेट गवाए 42 रन बना लिए हैं। इससे पहले इंग्लैंड की पहली पारी 170 रन पर सिमट गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूजीलैंड की ऐतिहासिक यात्रा संपन्न करने के बाद स्वदेश रवाना। कहा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते से भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर तेजी से बढ़ेगा। वियतनाम में नाव दुर्घटना में 15 भारतीयों की मौत। राष्ट्र

राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शोक व्यक्त किया। पश्चिम बंगाल सरकार ने समान नागरिक संहिता के मसौदा विधेयक की जांच के लिए सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया और फीफा फुटबॉल विश्व कप में नॉर्वे और इंग्लैंड तथा मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और स्विट्जरलैंड के बीच क्वार्टर फाइनल मुकाबला। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं FM 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी झालावाड़ का चंद्रभागा चैनल। आइए अब सुनते हैं गैर फिल्मी गीत गजल कव्वालियों का कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं जगजीत सिंह की आवाज़ में इस गजल से।

पंकज उदास की आवाज़ में भी आपने सुनी ये गज़ल। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर जगजीत सिंह की आवाज़ में कार्यक्रम की अगली गज़ल।

अभी आप सुन रहे थे सबरस, आकाशवाणी झालावाड़ का ये चंद्रभागा चैनल है एफएम 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात के 9:30 हुए हैं, हमारी आज की सभा यहीं समाप्त होती है। कल प्रातः 5:55 पर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए अनुमति, शुभ रात्रि।